सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। एक महत्वाकांक्षी युवक ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। 3 दिन के कड़े शुरुआती प्रशिक्षण के बाद उसे आसपास के क्षेत्र में जाने और प्रकाशन के योग्य कोई खबर लाने के लिए कहा गया। दिन भर गली गली भटकने और चिलचिलाती धूप

करने के बावजूद शाम 6 बजे असफलता के अनुभव के साथ वह कार्यालय लौट रहा था, क्योंकि प्रकाशन के योग्य कोई खबर वह नहीं ला सका था। रास्ते में वह एक तिराहे पर पहुंचा, जहां अंग्रेजी भाषा के अक्षर वाई आकार में 3 रास्ते मिलते थे। उसने देखा कि तेज गति से दौड़ती 2 बसें विपरीत दिशाओं से उस तिराहे की ओर आ रही थीं, इस बात से बेखबर कि वे कहां पहुंचने वाली थीं। लग रहा था कि दुर्घटना होकर ही रहेगी। उस युवा रिपोर्टर ने चतुराई दिखाई और उन 2 सड़कों के मिलने वाले स्थान की ओर दौड़ पड़ा। वह अपने दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाते हुए गला फाड़ कर चिल्लाया। अंततः वह दोनों बसों को रोकने में सफल हो गया। दोनों बसों के 100 से अधिक यात्रियों ने उस युवक के हाथ को अपने हाथों में ले लेकर उसे धन्यवाद दिया। कुछ ने तो उसे चूम तक लिया, लेकिन उसकी इस साहसिक कथा को सुनकर उसके संपादक ने यह कहते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया कि हेडलाइन बनने योग्य एक जोरदार खबर का सुनहरा अवसर तुमने स्वयं गंवा दिया। संसार में सिर्फ बुराई ही नहीं है, लेकिन बात यह है कि यहाँ सिर्फ बुराई ही खबर बनती है। एक ऐसे संसार में जहाँ बुराई ने इतना शोर मचा रखा हो, वहाँ हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहों की जरूरत है जहाँ से अच्छाई की आवाज़ भी

हम अब और मौन नहीं रह सकते। धूम्रपान के लिए, शराब के लिए, तंबाकू चबाने के लिए और अन्य अनेक नुकसानदायक आदतों व चीजों के लिए खूब विज्ञापन होते रहते हैं, लेकिन अच्छी आदतों व चीजों के लिए इस संसार के मन मस्तिष्क को स्वच्छता प्रदान करने के लिए क्या उपलब्ध है? कर चोरों का नाम बड़े बड़े अखबारों में प्रमुखता से दिया जाता है, इसके बजाय कर अदा करने वालों की प्रशंसा पहले पृष्ठ पर क्यों नहीं दी जाती? हत्यारों की तस्वीरें ताजा खबर के साथ दिखाई जाती हैं, इसके बजाय दूसरों का जीवन बचाने वालों की तस्वीरें क्यों नहीं छापी जाती? क्यों नहीं किसी एक सैनिक की शौर्य गाथा प्रतिदिन दिखाई या पढ़ाई जाती? बाहर निकलें और जिस जिस के बारे में आप जो जो अच्छा जानते हैं वह सब कह सुनाएं। अपने माता पिता की अच्छी अच्छी बातें अपने मित्रों को बताएं। आपके क्लब में सबको पता हो कि आप अपने बच्चों पर कितना गर्व करते हैं। अपने अध्यापकों की जिन अच्छी बातों की आप प्रशंसा करते हैं उसका एक बुलेटिन बनाकर चिपकाएं। आपके चारों ओर के साधारण लोग जो असाधारण काम कर रहे हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक चर्चा करें। जो भी अच्छाई आपको दिखाई दे उसके केवल मूक प्रशंसक ही न बने रहें, उसे जोर शोर से लोगों को बताएं, लिखें, उसका जय घोष करें। आइए हम संसार को बता दें, उसके मन में यह बैठा दें कि हमारा यह संसार सचमुच एक

0: दोस्तों ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्ची की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें खूब पढ़ाएं। बेटी कुदरत का है उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार। जो बेटी को दे पहचान

विश्राम हृदय गति आपके हृदय की वह गति है जो उस समय होती है जब आप सुबह जाग तो गए हों लेकिन बिस्तर से उठे ना हो। इस गति का धीमापन इस बात का सूचक होता है कि आपके हृदय को उसके फैलाव और संकुचन के बीच पर्याप्त विश्राम मिल रहा है, और इसका तेज होना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके हृदय को उसके फैलाव और संकुचन के बीच पर्याप्त विश्राम नहीं मिल पा रहा है। इसका अर्थ है कि आपकी विश्राम हृदय गति जितनी धीमी होगी आप उतने ही स्वस्थ हैं। निष्कर्ष यह है कि जिस हृदय की प्रशंसा की हम गीत गाते रहते हैं और जो गर्भ से लेकर दिवंगत होने तक अपना काम करता ही रहता है उसे भी अनवरत चलते रहने के लिए विश्राम अवश्य चाहिए। हमारी यह धारणा गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है कि छुट्टियां मनाने जाना केवल धनी और विशिष्ट लोगों का काम है या फिर उन युवकों का जिनके कंधों पर अभी तक जिम्मेदारियां नहीं हैं। हम आज भी छुट्टियों पर जाने को एक व्यय मानते हैं। अधिकतर लोगों के लिए छुट्टियों का अर्थ धार्मिक त्योहारों पर मिलने वाला अवकाश ही होता है। हमारा तन या मन जब अपनी सीमा के अंत तक पहुंच जाता है तब हमारी क्षमता और कार्य कुशलता घटने लगती है। अपनी ऊर्जा का ऊंचा स्तर फिर से पाने के लिए जिस प्रकार हम रात को आराम जरूर करते हैं उसी प्रकार छुट्टियां मनाने से भी हमारे मन मस्तिष्क और भावनाओं को नव जीवन मिलता है और हमारी चेतना को भी। और यदि हम छुट्टियां मनाने कहीं चले भी जाते हैं तो वहां एक ही दिन में 10 भिन्न भिन्न स्थानों को देख डालने के चक्कर में हम खुद को थकाकर चूर कर डालते हैं। छुट्टियां मनाने के नाम पर पहियों पर दौड़ते रहना, यहां वहां जाना, पूजा स्थलों पर जाना और बेतहाशा खरीदारी करना, हम बस यही करते हैं। ऐसी भागदौड़ वाली छुट्टियां वास्तव में आपकी व्यस्तता को विराम और आराम देने के बजाय उसे और भी अस्त व्यस्त कर देती हैं। कहने का भाव यह है कि हम छुट्टियां मनाने जाएं तो इस प्रकार से कि जहां हमारा तन और मन दोनों को आराम मिले, शांति मिले, सुकून मिले और फिर से हम तरोताजा होकर अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ें।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सब परिवार छुट्टियां मनाने जाना पारिवारिक संबंधों में गर्माहट लाने का सबसे अच्छा साधन है। इसी प्रकार किसी संस्थान के कर्मचारियों का सामूहिक रूप से छुट्टियां मनाने जाना उनके पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करता है। इस दौरान उन्हें एक दूसरे से मिलने का भरपूर समय मिलता है और लगातार इकट्ठी होती जा रही भावनात्मक बाधाओं में कमी आती है। इससे प्रतिदिन के धर्रे में ढल चुके जीवन के उस सिलसिले को कुछ विराम मिलता है जो कि अधिकांश लोगों के लिए रोजगार के लिए की जाने वाली एक कवायद बनकर रह गया है। छुट्टियां मनाने से न केवल मनोरंजन मिलता है बल्कि इससे आपकी चेतना में नवजीवन का संचार भी होता है। कसम खा लें कि छुट्टियां पूरे होने तक अपने कार्यालय को फोन नहीं करेंगे। और हाँ, जहां आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं वहां जाकर कुछ

हवा में सांस लेने के लिए अवकाश, विगत में झांकने और आगत पर ध्यान देने के लिए अवकाश, खुद को पूरी तरह परिवार के लिए समर्पित कर देने के लिए अवकाश, किसी दिन पूरे समय अभिभावक बने रहने के लिए और किसी दिन पूरे समय बेटा बने रहने के लिए अवकाश, अपनी पद प्रतिष्ठा से खुद को कुछ दिन मुक्त रखने के लिए अवकाश। प्रत्येक आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है, अवकाश अनिवार्य है। बिना अवकाश के हम अस्वस्थ हो जाएंगे। जब भी आप एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में जाकर फिर पहले में लौटते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ी हुई होती है। एक रास्ता कैसे भी हो उसे तोड़ा जाना चाहिए। परिवर्तन कैसा भी हो वह आपके मन मस्तिष्क का तनाव दूर करता है और तनाव रहित मन हमेशा बेहतर सोचता है। यही कारण है कि प्रकृति की गोद में बैठकर लोग कुशलतापूर्वक सोचते हैं, क्योंकि प्रकृति वे सभी रचनात्मक विकर्षण प्रदान करती है जो व्यक्ति के आकर्षण को गहराई देने के लिए जरूरी है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजी श्री। यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसे कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता, उसे दरकिनार नहीं कर सकता। स्वस्थ रहने पर ही हम हर एक अपने जीवन को और जीवन के सुखों को भोग सकते हैं। जीवन में सुखी रहने का पहला तात्पर्य ही अच्छा स्वास्थ्य है। स्वस्थ रहना स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी। अगर आप कहें कि भाई, अगर एक सुखी जीवन की पहली सीढ़ी अगर हम देखें, तो वो पहला सीढ़ी, या ये कहें कि उसका बेसमेंट जो है, उसका जो पायदान है, वो अच्छा स्वास्थ्य उससे शुरू होता है। बहुत बार लोग अधिक धनोपार्जन करने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को दरकिनार करके भी, अपने भोजन पर, निद्रा पर, अपने आराम को त्याग कर भी, हम अपने दिनचर्या में उन चीजों को साइड में रख कर पैसे कमाने पर अटेंशन देते हैं, और बाद में जो हमने अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर किया होता है, उसे वापस हासिल करने के लिए पुनः उन्हीं कमाए हुए पैसों को खर्चना पड़ता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि ये तो गोल चक्कर हो गया, कि हम बैक टू स्क्वायर वन हो गए। जो हमने कमाया था वो हमने वापस खो दिया। अब ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं कि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख कर, इस स्वास्थ्य को खोकर वापस फिर से पाने का प्रयास न करके अपने स्वास्थ्य की इस कुंजी को बना के रखें? आइए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने की दिशा में हमें और क्या करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम अपने स्वास्थ्य की कुंजी को बनाए रखें, उन चीजों को आज समझते हैं। आज इन चीजों पर प्रकाश देने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य जगत से ही एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, और साथ में भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर मोदी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं इसी से शुरुआत करना चाहूंगा कि पैसे कमाने के लिए स्वास्थ्य को इग्नोर करो, फिर जो पैसे आ गए उन्हीं पैसों को खर्च करके फिर से उस स्वास्थ्य को कमाने में उन पैसों को गवाओ। ये तो बिल्कुल ऐसे बाजुली का खेल है कि हमने दाव लगाया, हम थोड़ा जीत भी गए, और फिर बाद में अगले ही दाव में हम हार गए, और जो जीता था वो सब कुछ दाव पे लग गया। तो क्या स्वास्थ्य के बारे में इस चीज को इस तरीके से समझने की आवश्यकता नहीं है कि स्वास्थ्य और पैसे एक दूसरे के पूरक?
1: श्री भाई, आपने बड़ी सुंदर बात की है। आजकल जो आपने बोला कि पहले अपना शरीर खर्चा करके पैसे बनाओ, और फिर उसी पैसे को खर्च करके वापस अपना शरीर बनाओ। मैं बेसिक एग्जांपल्स लेता हूं आपके सामने कि पहले व्यक्ति बहुत खाता है, और फिर जब उसको लगता है कि उसका वजन बढ़ गया, तब वो जिम में जाके एक्सरसाइज करना शुरू करता है, वो कोई एक खेल खेलना शुरू करता है, वो वॉकिंग करना शुरू करता है, वो चलता है, वो तैरता है, वो कोई बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, कोई भी एक फुटबॉल, बाहर जाके खेल खेलता है, जिम जाता है, योगा करता है, पिलाटिस करता है। क्यों? क्योंकि उसका वजन बढ़ गया और उस वजन को कम करना है। तो यदि हम कम खाते तो हमारा वजन ही नहीं बढ़ता। दूसरी चीज, जब हम काम करते हैं तो हम समय नहीं देखते। ये खासकर जैसे मैं, बहुत सारे मेरे डॉक्टर मित्र हैं, पुलिस में जो काम करते हैं, अधिकारी वर्ग है, इवन बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो दुकान पता चला सुबेरे 10 बजे दुकान खुली, रात में हिसाब मिलाते मिलाते 10:30 बज गया, उसके बाद वो घर आए तो इतना थक चुके होते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा खाया, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ गए, बातचीत हुई, और वो जो सोने का टाइम था वो करीब 11:30, 11:30, और वो 12 बजे सोए तो वो सीधे 8 बजे उठे, उन्होंने अच्छे से नाश्ता किया और फिर दुकान खोलने चले गए। ये एक रूटीन लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। इसमें स्पेशली जब आप 35 इयर्स को क्रॉस करते हैं या आप 40 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, तो आपका शरीर जो है वो ये मांग करने लगता है कि प्लीज मेरे ऊपर अत्याचार मत कीजिए। वो मांग करता है कि आप अपने भोजन को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, वो मांग करता है कि आप थोड़ा टहलिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, रनिंग करिए, कोई खेल खेलिए, वो चाहता है कि आप पसीना बहाएं, वो चाहता है कि आप अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं, और तब आदमी को अपने काम करने के समय में से इसको निकालना पड़ता है और अपने शरीर को देना पड़ता है। इधर बहुत सारे डॉक्टर्स, स्पेशली जो साइकेट्री या मेंटल इलनेस में काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं प्लीज गिव 1 आवर टू योर बॉडी एंड 15 मिनट्स to 30 मिनट्स टू योर ब्रेन. मतलब अब वो ये भी कह रहे हैं कि आप 1 घंटा खेलिए और आधी घंटा कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपके दिमाग को शांति मिले. इसमें मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है, गाना गाना है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है. मतलब कोई ऐसा काम करिए जिससे आपके दिमाग को खुशी मिले और शांति मिले. और 1 घंटा आप कुछ ऐसा करिए जिससे आपके शरीर में अच्छे से पसीना आए और आपका शरीर थके, आपका जो हार्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम करे, आपकी सांस फूलनी चाहिए कि आपका हृदय अच्छा काम कर रहा है, आपके फेफड़े फूलने चाहिए कि आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं और आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए. अगर आप ये कर पाते हैं तो अपने शरीर की गंदगी को आप निकाल पाएंगे. तो श्री भैया जो आपने कहा, मैं अपने सारे श्रोताओं को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने शरीर को पहले से समय दीजिए, क्योंकि अगर आप पहले से समय नहीं देंगे तो वो बीमार पड़ जाएगा. और आपको कोई क्रॉनिक बीमारी हो गई जिसमें आपको रेगुलर गोलियां और दवाइयां खानी पड़ी, तो जो आपने बोला कि आपको पैसे खर्चा करने पड़ेंगे अपने स्वास्थ्य को वापस लेने के लिए.
0: जैसे डॉक्टर साहब आपने अभी अभी क्रॉनिक बीमारियों के बारे में कहा, ऐसी बीमारियां जिसके लिए हमें हर दिन दवाई लेने की जरूरत है. आज एक ऐसी बीमारी जो लगभग हर घर में जिसके मरीज देखने को मिलते हैं या वो इस बीमारी की दवाई लेते हुए पाए जाते हैं, वो है डायबिटीज. और प्रायः हम इस चीज को एक बीमारी के रूप में देखते ही नहीं है. हमें ऐसा लगता है कि भाई अब तो जिंदगी भर दवाई खाते ही रहना है, तो दवाई खाइए और फिर आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी चीजें करते रहिए, बस ये एक एडिशन हो गया है. बट अब हम स्वस्थ हो ही नहीं सकते, अब डायबिटीज के साथ ही जीना है, ऐसा भी बहुत सारे लोग समझ लेते हैं और कहते भी हैं. अब प्रश्न उठता है कि पिछले दिनों जब हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे तो ये बात समझी कि हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, इससे हम बेहतर तरीके

0: निजात पा सकते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि डायबिटीज के मरीज अपने दिनचर्या के बारे में कुछ प्रश्न उठाते हैं। सबसे पहले तो वो ये बोलते हैं कि भाई हम पहले जैसे स्नैक्स खाते थे इत्यादि करते थे, अब हमें कौन से स्नैक्स खाने चाहिए?
1: डायबिटीज के मरीज को सबसे पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको सफेद चीनी उसको एकदम छोड़ देना चाहिए, खासकर चाय में चीनी और जिन चीज में चीनी बहुत ज्यादा है जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, आइसक्रीम हो गई, हमारी देसी मिठाइयाँ हो गई, चॉकलेट्स या टॉफीज हो गई, या जो भी मीठा है जिसमें सफेद चीनी डाली जाती है, इसको सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। अब हम ये पूछें कि क्या खा सकते हैं, तो अगर मोटा मोटी मैं बोलूं तो आप सारे फल और सारी सब्जियां खा सकते हैं, मगर थोड़ा सा कंट्रोल। ये तक कहा गया है कि आप आम, केला और चीकू जो सबसे मीठे फल होते हैं उसको भी सेवन कर सकते हैं, मगर उसको दिन में नहीं, 3-4 दिन में एक बार। और ये नहीं कि आप बैठ गए तो आप आज पूरा 2 किलो आम खा लेंगे, नहीं नहीं सर, एक फाग आम खाइए, वो आपके मन को शांत करेगी और अगर आपको आम बहुत पसंद है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो फल एक डायबिटीज के मरीज के लिए सबसे अच्छा है वो है सेब, नाशपाती, अमरूद, संतरा, मौसमी। अच्छा, संतरा और मौसमी का रस नहीं पीना है, संतरा और मौसमी को खाना है कि उससे आपको उसका खुज्जा भी मिले। ये अब कहा जाता है कि जो भी बेरीज हैं जैसे ब्लूबेरी हुई, स्ट्रॉबेरी हुई, ये सब भी आपके लिए बहुत अच्छी हैं और ये सब जो बेरीज हैं या जो जो भी सहतूत हुआ कॉमन इंडिया मलबेरी जिसे कहते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। स्नैक्स की जैसे भैया आपने बात की, स्नैक्स में आप जितने भी नट्स हैं जैसे वॉलनट हुआ या आलमंड हुआ, आप इसको थोड़ी मात्रा में कच्चा खा सकते हैं, भिगो के खा सकते हैं या हल्का सा भूज के खा सकते हैं। आप चने को भूज के खा सकते हैं, मूंगफली को भूज के खा सकते हैं, आप पॉपकॉर्न हुआ उसको खा सकते हैं, आप अंकुरित मूंग को खा सकते हैं, आपको जो सलाद पसंद हो। भैया आजकल तो बहुत बड़े बड़े शहरों में सैलेड काउंटर्स होते हैं होटल में, आपको जो सलाद पसंद हो आप उसमें थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के आप इसे खा सकते हैं। आप अपने घर में बहुत सारी सब्जियों का काट कर उसमें थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा नींबू डाल के कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इवनिंग स्नैक है आपके लिए। और आप फरवी हुआ या जो भी हल्की चीजें हुई जैसे पॉपकॉर्न हुआ, आप इसे रेगुलरली खा सकते हैं।
0: जब हम इन चीजों को समझते हैं कि हम स्नैक्स तो खाते ही हैं, सिर्फ हमारे स्नैक्स के खाने के तरीके, किन चीजों को हम खाते हैं स्नैक्स में, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है, जिससे हमें पता चलता है कि डायबिटीज में ये चीज खाएंगे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। बहुत सारे लोग इस बात से भयभीत हो जाते हैं, अरे अब तो डायबिटीज है, अब तो हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। नहीं खाना है के बारे में जितनी जानकारी लोगों के पास है, उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हमें क्या चीज खाना है और वो कितनी मात्रा में खाना है। अब एक और चीज जो डायबिटीज के मरीज अक्सर कहते हैं वो है फ्रूट्स के बारे में। वो कहते हैं कि भाई नहीं नहीं अब तो फ्रूट्स वगैरह हमें नहीं खा सकते, भाई हमें तो डायबिटीज है, फ्रूट्स तो बहुत मीठा होता है, तो फ्रूट्स तो हमारे लिए जैसे अब फ्रूट्स का कोटा पूरा हो गया, अब हम फ्रूट्स नहीं खा सकते, ऐसा भी लोग मानते हैं। इस विषय पर आप क्या कहें?
1: भैया आप सारे फल खा सकते हैं। एक बड़ी बेसिक बात समझिए कि डायबिटीज ग्लूकोज इंटॉलरेंस से है और फलों में जो शुगर होता है वो फ्रक्टोज होता है। दूसरी चीज, फलों में नेचुरल शुगर है जो उतना नुकसान नहीं करती है जितना केन शुगर करती है या गन्ने का जो चीनी है वो करती है। मैंने जैसे अभी बोला है भैया, सेब, नाशपाती, अमरूद, पपीता, संतरा, मौसमी, विदेश के आजकल फल इंडिया में बहुत मिल रहे हैं, कीवी हुआ, ड्रैगन फ्रूट हुआ, ये अनानास हुआ जिसको पाइनएप्पल कहते हैं, ये सब आपके लिए बड़ा अच्छा है। जो चीज का ध्यान रखना है कि फलों को खाना है, न कि उनका जूस बना के पीना है। अभी भैया यूरोप में एक चीज शुरू हुई है जो दही में मतलब फल काट कर उसमें दही ऊपर से कर्ड डाल के या दही डाल के लोग खा रहे हैं, उसका एक सूदी या बहुत थिक शेक बनाकर उसको चम्मच से खा रहे हैं कि उससे उनको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वो उसको। और नेचुरल जो फल है उसकी मिठास से उनका जो मीठा खाने की जो क्रेविंग है या जो मीठा खाने का उनका जो अंदर से उनको मीठा खाने की इच्छा हो रही है, क्रेविंग है, उसको भी वो शांत करता है। इसीलिए आप जो भी फल है जैसे अमरूद, सेब, संतरा, मौसमी, ये सब आप जरूर खाइए। और इन फलों को खाने का सबसे अच्छी बात है कि इसमें बड़ा अच्छा आपको विटामिन मिलेगा, आपको बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा और आपको इसमें ट्रेस एलिमेंट भी मिलेंगे जो आपके शरीर के लिए और अच्छा है, और आपको इंसुलिन जो डायबिटीज से होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं उनसे भी आपको बचा के रखेगा। पुराने जमाने में भैया मैं एक फल का नाम लेना ही भूल गया जो कि सबसे ज्यादा प्रचारित किया जाता है, वो है जामुन। सब लोग कहते हैं जामुन खाओ, और अब तो जामुन के लोग छोटे छोटे चिप्स भी बना के बेच रहे हैं। बारिश के मौसम में ये आता है, इसको अच्छे से धोकर इसमें थोड़ा नमक और नींबू डाल के आप खा सकते हैं। ये आपके डायबिटीज शुगर को कम करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। बहुत सारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पद्धतियों में जामुन की जो गुठली होती है या जो बिया होता है उसको पीस कर उसका पाउडर बना के भी डायबिटीज के मरीजों को दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे भी आपकी शुगर जो है वो कम होगी।
0: फलों के बारे में ये एक बड़ी भ्रांति जो लोग समझते हैं कि हम डायबिटीज के मरीज हैं तो हमें फल नहीं खाने चाहिए, ये भ्रांति आज दूर होती भी नजर आ रही है कि फल सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक ही हैं, और हम इन बातों को समझकर सही तरीके से अगर हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें तो ये चीजें सही हो सकती है। आपने कहा फलों को खाना है, फलों के रस को नहीं पीना है, इसको जूस के फॉर्म में नहीं पीना है। ये भी एक प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जूस जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं और वो बहुत जल्दी पच भी जाते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग समझते हैं, और इसलिए जूसेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं फल खाने के बजाय। ऐसे में आप क्या कहते हैं, खासकर वो लोग जो थोड़े उम्र दराज हो रहे हैं, जिनको चबाने में दिक्कत है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये फल खाना ही तो नहीं आ रहा है, हम तो पी लेते हैं उसको तो चल ही जाएगा, ऐसा लगता है, ये ठीक है?
1: भैया आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है, आपने खुद कहा कि वो जल्दी पच जाते हैं। तो डायबिटीज में इसीलिए फलों के जूस को मना किया जाता है कि अगर वो जल्दी पचेगा तो उसमें फाइबर कंटेंट कम हो जाएगा, और जहां फाइबर या खुज्जा उसमें कम हुआ वो बहुत जल्दी आपकी जो शुगर है शुगर को स्पाइक करेगा, मतलब आपके रक्त में चीनी को बढ़ाएगा। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप बहुत आराम से उस रस को पी सकते हैं। आप पाचन तंत्र आपका कमजोर है, आप रस को पी सकते हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में पूरा रसाहार कराया जाता है जिसमें आदमी को सिर्फ रस पे रखा जाता है। अगर उसका पाचन तंत्र कमजोर होता है या उसको बुखार होता है या उसको सर्दी जुकाम होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ रस पिलाया जाता है। और मौसमी और संतरा, तरबूज, इनके रस में, और अब तो माल्टा भी मिलने लगा, इनके रस में बहुत मिठास है, बहुत अच्छा विटामिन है और ये शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। खीरे का रस निकाल के दिया जाता है लोगों को, लौकी का रस दिया जा रहा है जिससे पेठा बनता है भैया, उसका भी रस लोग निकाल के पी रहे हैं। और अब तो हम लोग तो पूरा एक लेक्चर अब बात कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ जूसेस पे, जो हम लोग शायद आगे कभी करेंगे। अगर आप छोटे बच्चे हैं, आप बीमार हैं, आपको डायबिटीज नहीं है या उम्र में बड़े हैं, तो आप किसी भी फल का मिक्सी में चला के उसका जूस बना सकते हैं और आप उसे उसका सेवन कर सकते हैं। बहुत से लोग जिनको कमजोरी होती है उनको कभी कभार भैया आम को मिक्सी में चलाकर उसका शेक बना के दिया जाता है कि जिससे उसमें ताकत आए। तो ये अगर आप बीमार नहीं हैं, आप नॉर्मल हैं, तो आप जूस जरूर लीजिए और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जिन लोगों को जूस पीने की भी जरूरत है या स्वास्थ्य के हिसाब से उनको वो जूसेस पीने हैं तो क्या चीजें वो बनाकर पी सकते हैं और किन फलों का उन्हें पीने की जरूरत नहीं है और डायबिटीज के लिए कौन से जूसेस नहीं पिए जाने चाहिए, ये भी बात समझ में आती है। अब हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन के बारे में भी बहुत सारे लोग डायबिटीज में ये कहते हैं कि नहीं, हमें चावल नहीं खाना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि भाई हम मीठा तो नहीं खाते हैं, मगर भोजन को एक समग्र आहार के रूप में हम हमेशा समझते आए हैं। एक बैलेंस डाइट के बारे में बात कही जाती है, कई लोग तो जैसे होटलों में इत्यादि में लोग खाते हैं तो लोग एक भारतीय थाली को पसंद करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये साउथ इंडियन थाली है, ये नॉर्थ इंडियन थाली है। इस तरीके से थाली में बहुत सारी वैरायटी के साथ भोजन हमारे यहाँ परोसा जाता है, ऐसे में क्या डायबिटीज के मरीजों को इन थालियों से परहेज करने की जरूरत है, या इस थाली में से चावल हटा दें या ये हटा दें, या ऐसा कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है?
1: भैया उस थाली में सबसे पहले जो मीठा आपको मिला उसको हटाना चाहिए सबसे पहले। दूसरे नंबर पे या तो चावल को हटाइए या रोटी को हटाइए। कभी कभार ये भी देखा गया है कि आप उसमें तीन चार तरह की रोटियां मिलती हैं, जैसे आटे की रोटी, एक नान का टुकड़ा, एक मिस्सी रोटी। तो एक हम्बल मेरा एक सुझाव है कि किसी एक अन्न की रोटी खाइए या एक अन्न ही खाइए। आप कोई भी अगर थाली खाते हैं तो मैं सबको स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट्स को एक राय देता हूँ, सिंगल प्रोटीन एंड सिंगल ग्रेन, मतलब आपका जो अनाज है वो एक होना चाहिए और आपकी प्लेट में जो आप प्रोटीन खा रहे हैं, जैसे उसमें अगर दो तरह की दाल है, मूंग है, आपका उसमें पनीर की सब्जी है, तो कृपा करके सिर्फ एक प्रोटीन का सोर्स लीजिए, एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लीजिए, या मतलब एक अनाज लीजिए, एक प्रोटीन का चीज लीजिए, और जो भी उसमें सब्जियां हैं वो आप खा सकते हैं, सलाद आप खा सकते हैं। हाँ, ये जो जितनी मीठी चटनियां हैं प्लीज उसको इमली की हो या किसी भी चीज की अगर उस थाली में आपको मिल रही है, आपको ध्यान देना चाहिए कि उस इमली में जो मिठास डाली जा रही है वो भी चीनी और गुड़ से डाली जा रही है, तो कृपा करके उसको छोड़ दें। अच्छा, एक भ्रांति और है लोगों की कि हम लोग गुड़ खा रहे हैं, हम लोग चीनी नहीं खा रहे हैं। दोनों का सोर्स एक है, दोनों गन्ने के रस से बन रहा है, तो दोनों एक ही, टेक्निकली एक ही चीज है। सो प्लीज सिंगल ग्रेन, सिंगल प्रोटीन आप अगर उसमें करें और उस थाली में से अगर मीठा निकाल दें तो वो थाली आपके लिए परफेक्ट है।
0: बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है कि हम अपनी थाली में क्या परिवर्तन लाएं और किन चीजों को हम करें। ये बात सही है कि डायबिटीज के बारे में आज बढ़ती संख्या में लोग बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों, मगर सही चिकित्सकीय सलाह अगर हमें मिलती है और हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स के कहे अनुसार करते हैं तो फिर हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है, खासकर डायबिटीज के अगर आप मरीज हैं तो उन आपको किस प्रकार का स्नैक्स खाना है, किस प्रकार के फ्रूट्स कितनी मात्रा में और कैसे खाना है, और भोजन की थाली में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए, उसके विषय पर हमें डिटेल में जानकारी दी है। आशा करता हूं कि आप सभी अपने स्वजनों, मित्रों और परिवार के जनों के लिए इन जानकारियों का इस्तेमाल करेंगे और स्वास्थ्य की ये कुंजी सबकी बनी रहे ऐसी शुभकामनाएं करेंगे। आज हम सबके प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में हमने डायबिटीज के मरीज होते हुए भी स्वस्थ रहने की कुंजी क्या है उस चीज को समझा है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में आज जो कुछ भी सुना है उस पर काम करना शुरू करें। सबसे पहले अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो अपनी थाली से मीठे को बाहर करें, चीनी हो या गुड़ हो दोनों को ना कहें, एक ही अनाज खाना शुरू करें, एक समय पर एक अनाज एक प्रोटीन, चावल और रोटी दोनों एक साथ एक ही मील में यानी एक ही वक्त के भोजन में मिलाकर न खाएं। साथ ही फ्रूट्स हमें कौन से खाने हैं, स्नैक्स में क्या खाना है, ये सब कुछ आज समझ में आया है। आज सेहत स्वास्थ्य में यही रुकते हैं, अगले एपिसोड में कुछ और विषयों पर चर्चा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करते हुए जब खुद को एक नए अंदाज से देखा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सामने आई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखा तो सबसे पहले अपने प्रति थी। और साथ ही हम बात कर चुके हैं रिलेशनशिप्स की, अब आगे बढ़ते हैं और रोल्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरह के रोल्स हम हर रोज़ निभा रहे होते हैं और कैसे उनको मैनेज करना है। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिलेशनशिप्स भी समझ में आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब समझ में आई, और सेल्फ के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, खुद के प्रति जो जिम्मेवारी है वो। अब रोल की बारी आती है, तो क्या मैं अपने रोल्स को देखूंगा, किस तरह से मैं रोल्स को आगे मैनेज कर सकता हूँ?
1: सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स कि एक अवेयरनेस के साथ अब जीवन जीना शुरू करें कि ये हर दिन जो बीत रहा है, हर दिन में जो हर पल बीत रहा है, इट इज़ लाइक अ सीन ऑफ द ड्रामा। एक सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, सीन्स आफ्टर सीन्स आफ्टर सीन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल द टाइम पुट टुगेदर इन द होल डे। एंड हर सीन में व्हाट एम आई डूइंग? आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल, बिकॉज हमें समझ में आ गया कि आई एम द एक्टर एंड दिस इज माई रोल। लेकिन एम आई कॉन्शियस वाइल प्लेइंग द रोल?
0: आई थिंक नेवर। और एक यहाँ से मुझे एक और बात समझ में आ रही कि जैसे ही मेरी सिचुएशन चेंज होती है, मेरा रोल भी तो चेंज हो जाता है। कितनी बार, मतलब मैं पहले अगर हस्बैंड था, उसके बाद जब मैं फादर बना, सडनली देयर इज अ मेजर रोल चेंज, यू नो। और अगर मैं पहले बैचलर था और फिर मेरी शादी हुई, तो मेरे और कितने सबके साथ रिश्ते जो है वो चेंज, उसकी कॉन्शियसनेस तो कभी भी नहीं रही।
1: So one is all these roles that I play, लेकिन ये जो आपने नाम भी लिए कि मैं हस्बैंड था, मैं फादर हूँ, मैं कल को ग्रैंडफादर भी बनूंगा, all these roles that I play, इसमें भी I play roles. You see, role means कि हर सीन जो आई, उस सीन में मैंने कैसे इनैक्ट किया, that is my role in that particular scene. अब एक है अगर बिना सेल्फ अवेयरनेस के चल रहे हैं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि आई एम द एक्टर, तो हर सीन जो आती जाती है एंड एवरी रोल दैट आई प्ले, आई एम नॉट अवेयर कि मैं अपना रोल क्रिएट कर रहा हूँ। आई फील कि मेरा रोल ये क्रिएट हो रहा है आपकी वजह से, सिचुएशन की वजह से। क्यों? इट कम्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ आर सीरीज कि जब हम कह रहे थे कि माई रिस्पॉन्सेस आर बेस्ड ऑन द सिचुएशन, या मेरा जो रिस्पॉन्स है वो परिस्थिति या लोगों पर बेस्ड है। इसका मतलब मैं जो अभी इनैक्ट कर रही हूँ वो किस पर बेस्ड है?
0: क्योंकि जैसे सिचुएशन आती गई मैं उस पर।
1: सो इट वॉज एज इफ सिचुएशन एंड लोग आर रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण आई एम प्लेइंग दिस रोल लाइक दिस।
0: ओके, दे आर इंस्टिगेटिंग मी टू बिहेव लाइक दिस और एक्ट लाइक दिस,
1: राइट? तो फिर हम समझते थे कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है। हम ये कहते थे कि डेस्टिनी ऑलरेडी फिक्स्ड है, भाग्य मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको प्ले कर रहा हूँ। ना इसमें फिर कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है और ये तो मैं सिर्फ करता जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
0: दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी एज अ ग्रैंडफादर, एज अ फादर, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी
1: एंड दिस इज फिक्स्ड एंड आई एम प्लेइंग इट लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। आई एम इनएक्टिंग दिस पर्टिकुलर सीन लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। जो भी मेरा अभी रिस्पॉन्स है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा बात करने का तरीका है, इट इज बिकॉज ऑफ यू। तो इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी कि अपने रोल को कैसे प्ले करना है, क्योंकि हमने सोचा डायरेक्टर कोई और है, क्रिएटर कोई और है, मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूँ और मैं वो जो किसी ने फिक्स किया हुआ मेरा रोल, मैं उसको प्ले कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हमें ये अवेयरनेस आती गई कि एवरी रिस्पॉन्स स्टार्ट्स विद माई थॉट, सिचुएशन आई, मैंने थॉट क्रिएट किया, तो जब ये फर्स्ट फंडामेंटल रिस्पॉन्स समझ में आया कि मेरी थॉट मेरी चॉइस है, इसका मतलब मेरा रोल मुझे कैसे प्ले करना है वो
0: मेरी अपनी चॉइस हो जाती
1: है, मेरी चॉइस है। सो बेसिकली सेम लाइफ, सेम रिलेशनशिप, सेम सो कॉल्ड रोल्स, बट नाउ आई विल क्रिएट द रोल
0: The way I want
1: to do it.
0: But we always say the director is one.
1: Who's the director?
0: He's directing, you know.
1: Now again, we understood what's God's role. हमने पिछले एपिसोड में देखा कि परमात्मा का क्या रोल है हमारे जीवन में। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आज व्यवहार कर रहा हूँ, क्या उसको परमात्मा कंट्रोल कर रहा है?
0: नहीं, that is not there.
1: Yeah, that is not there. So I cannot say he's creating the role for me. He can give me the wisdom and the power, लेकिन who creates my role?
0: I create
1: my role. तो अगर मैं एक दिन भी इस awareness के साथ चलूँ कि scene after scene, I not only play the role, but I create the role.
0: I create the next situation, I create the, and I start acting it that way. I can act this way.
1: हाँ, see now?
0: हाँ.
1: Fixed नहीं है. हर situation में, कोई भी परिस्थिति में, आज आपसे किसी ने बुरा भला कह दिया, वो एक scene है. You can act this way. There will be at least five different ways जिसमें आप act कर सकते हैं. इसका मतलब, as an actor, आपका role fixed नहीं है. आपके

0: बस चॉइस है कि आप
1: way?
0: किस तरह से उसको इनैक्ट करना चाहते हैं. आपकी स्क्रिप्ट ऑलरेडी
1: लिखी हुई नहीं है.
0: दिस इज अ वेरी बिग थिंग. ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन हो जाती है. और उससे क्या होगा अगर हम उस अवेयरनेस से चलेंगे.
1: ओह इट्स सो ब्यूटीफुल. ओनली द सिचुएशन कम्स. अगर हम थिएटर में भी है अगर मैं प्ले कर रही हूँ और मेरे पास प्री जो रिटन डायलॉग्स नहीं है. इट्स ओनली द सिचुएशन. देन हाउ आई हैंडल इट. इट्स माय चॉइस.
0: तो कितना क्रिएटिव हो जाएगा ये सारा.
1: इट्स अमेजिंग.
0: फिक्स्ड नहीं है कि आपने लाइंस पूरी याद की हुई है आपको सिर्फ बोलना है. नहीं उसमें कोई अवेयरनेस नहीं चाहिए. वो तो एक ऑटोमेटिक जो याद किया हुआ बोल रहे हैं. लेकिन एक है सिचुएशन आई आपने परिस्थिति को परसीव किया अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया कि इस सिचुएशन में मुझे कैसा रोल प्ले करना है और उसको प्ले किया. अब वही सिचुएशन में डिफरेंट एक्टर्स विल प्ले डिफरेंटली.
1: बट आई कैन देन टेक द प्ले इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन.
0: एब्सोल्युटली. एंड दैट इज व्हाई वी सेड यू क्रिएट योर डेस्टिनी. व्हेन वी सेइंग आप अपना भाग्य अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं दैट मींस यू कैन टेक द प्ले
1: इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन इनटू अ डिफरेंट. ओह कंप्लीटली
0: डिफरेंट बेस्ड ऑन हर सीन में आप क्या क्रिएटिविटी यूज करेंगे. अगर कोई अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यूज कर रहा है तो दैट पर्सन इज वर्किंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड मोड. वो आया मैंने ऐसे बोल दिया. वो सीन आई मैंने ऐसे कर दिया. उसने गुस्सा किया मैंने कर दिया. उसने इंसल्ट की मुझे बुरा फील हुआ. क्रिएटिविटी नहीं है. ऑटोमेटेड है. तो उसमें फिर जीवन कैसे हो जाएगी. इट बिकम्स बोरिंग. इट इज ऑटोमेटिक. अपने आप ही चल रहा है. मुझे कुछ बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिस दिन मैंने जीवन को इस तरह से देखना शुरू किया कि हर सीन में मेरा क्या रोल होने वाला है मुझे कैसे रिएक्ट करना है दैट्स टोटली माय चॉइस. माय होल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज गोइंग टू चेंज.
1: इनफैक्ट इससे पता है क्या एक बहुत बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारा जो माइंड है जो अभी ऑलरेडी जो जो चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया उसने ऐसा किया उसके बजाय विल बी नाउ वर्किंग कि मैं कैसे सिचुएशन
0: इन द प्रेजेंट.
1: यस.
0: इतनी सारी जो आज हम मैनेजमेंट वर्कशॉप सुनते हैं बुक्स पढ़ते हैं व्हाट इज इट अबाउट प्रेजेंट में कैसे जीतें पास्ट और फ्यूचर को फिनिश करें. लेकिन प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पा रहे क्योंकि प्रेजेंट में क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. आप देखो जब एक लेट्स से कि हम एक रास्ते पर जाते हैं घर से ऑफिस. अब घर से ऑफिस रोज जाते हैं घर से ऑफिस रोज जाते हैं. डू यू नो आफ्टर सम टाइम आप पूरा रास्ता कवर कर सकते हैं बिना कोई अवेयरनेस के. बिना मतलब आप बिल्कुल कुछ कुछ कुछ और सोचते सोचते आपको पता ही नहीं चलेगा आप एक घंटे में ऑफिस पहुंच गए. राइट. लेकिन एक नए रास्ते पर जाना है तो आप कितनी अवेयरनेस से चलते हैं. अच्छा अब यहाँ जाना है या यहाँ जाना है. यहाँ जाना है फिर यहाँ टर्न करना है. आप रास्ते में चीजों को देखेंगे. लेकिन जहाँ आप उसी पैटर्न पर रोज जा रहे हैं doesn't require any awareness. That means आपने वो पूरा एक घंटा जर्नी की लेकिन you were not present. आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे. इसी तरह आप जीवन की पूरी यात्रा में जर्नी कर रहे हैं. आप रास्तों पर जा रहे हैं आप सीन्स में आ रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं लेकिन आई एम नॉट देयर. आई एम नॉट देयर बिकॉज आई एम नॉट नीडेड देयर बिकॉज मैं अपना रिस्पॉन्स चूज ही नहीं कर रही. फिक्स्ड किए हुए हैं रिस्पॉन्सेस. कोई गुस्सा करेगा तो मुझे गुस्सा करना ही है तो उसमें क्रिएटिविटी की क्या जरूरत है अभी. तो विदाउट अवेयरनेस आई वॉज गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ. कुछ और सोचते सोचते तो इधर द पास्ट और द फ्यूचर एंड उसमें प्रेजेंट वाला मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला. अब जैसे ये अटेंशन आ जाएगी कि हर मिनट एक नया सीन नया रोल and my choice how to play per time hai past or future ke bare mein sochne.
1: No, that's what I'm saying. Then you know like awareness mein phir hum active rahenge. Hum actually you know all hamari senses jo hain wo taiyar rahenge ki how can we innovatively do this.
0: Absolutely. To phir jo baat ho rahi hai bar bar how to be in the present moment. You know the question is ki har ek ko ye pata hai ki past or future is waste of time and energy lekin how to do it. क्यों हमारा मन बार बार पास्ट में जा रहा है क्योंकि उसके पास प्रेजेंट में करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं. अनलेस आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू. ऑफिस में देखो काम हम करते हैं. कई लोगों का काम होता है जो बहुत मोनोटोनस होता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मोनोटोनस है. थोड़े समय के बाद करने के बाद आप वो काम करते जा सकते हैं विदाउट बीइंग देयर. आपका मन घर बैठ सकता है और आप अपना सारा यहाँ काम ख़त्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका कोई काम है विच रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस अवेयरनेस, डिसीशन, एक्यूरेसी, फिर आपके पास टाइम नहीं है यहाँ और वहाँ की बातें सोचने के लिए, क्योंकि मन फुल कॉन्सेंट्रेशन से उस मोमेंट के ऊपर है. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट आवर लाइफ लाइक दैट, कि एवरी मिनट अवेयरनेस, हाउ टू चूज द रोल, जीवन कैसे हो जाएगी. एंड मेन चीज उसमें जो आएगी, इट विल बिकम फन,
1: इट विल बी एक्साइटिंग,
0: एक्साइटिंग, या इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन.
1: जो एक वो थकान से हम भर चुके होते हैं, बिकॉज़ देयर इज नथिंग एल्स टू डू, देयर इज नथिंग
0: इनोवेटिव. अगर आपको मोनोटोनस काम करना हो तो उसके एंड ऑफ द डे कैसे फील होता
1: है? वेरी टायर्ड.
0: लेकिन अगर क्रिएटिव काम करना हो, यू एंजॉय, आप कितना भी काम कर सकते हैं सारा दिन, एंड येट यू विल से मोर,
1: आपकी ऊर्जा बची रहती है,
0: क्योंकि क्रिएटिविटी इज द नेचर ऑफ द सोल. हर आत्मा का जो हमने देखा था पर्पज ऑफ लाइफ है, इज टू एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस. लेकिन वो कब होगा? व्हेन आई एम क्रिएटिव, कि हर रोल मुझे कैसे प्ले करना है. तो अपने रोल्स को देखें. आज क्या हुआ, हमने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया, हमने ये सोचा आई हैव टू प्ले द रोल. टुमोरो पूरा दिन बिताएं, आई हैव टू क्रिएट द रोल, नॉट प्ले द रोल. प्ले द रोल ऐसे लगता है किसी और ने लिखा हुआ है, आई हैव टू प्ले इट. अगर हम इस कॉन्शियसनेस से चलते हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ रोल प्ले करना है, तो मेरी दो चीज़ें बहुत लिमिट हो जाती हैं, एंड वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी. मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, I am going to respond only in that very fixed, rigid way. And kyunki flexibility nahi hai, creativity nahi hai, meri andar ki jo anubhuti hai, jo experience hai, it's going to be very, because stagnant ho jayenge, hum wohi cheez, you know, same cheez rose play kar rahe hain. To aap life ko jo enjoy karna hai, isiliye aaj kisi se bolo kaisa hai, chal rahe hai, ho raha hai, enjoyment wali feeling, excitement wali feeling, नो, बिकॉज उनके लिए हर दिन वो सेम बन चुका है. सेम उसी तरह उठना, उसी तरह बच्चों को उठाना, उसी तरह ऑफिस जाना, वापस आना, मोर और लेस एवरी डे इज बिकमिंग लाइक सिमिलर. फिर हम कहते हैं कुछ चेंज चाहिए, यू नो, दैट इज व्हाई देयर इज दिस डीप डिजायर कि कुछ चेंज चाहिए, चलो हॉलीडे पे जाए.
1: हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि स्ट्रेट हॉलीडे पे ले जाते हैं, वहां पे भी बैठे रहते हैं या स्विमिंग पे चले जाते हैं जनरली. अगर हम
0: तो चेंज की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज अगर हम बार बार करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता. सो बी लुकिंग फॉर अ चेंज. लेकिन इफ वी लुक फॉर दैट एक्साइटमेंट एवरी डे, यू रियली वुडंट नीड अ सेपरेट हॉलीडे, बिकॉज एवरी डे वुड बी एक्साइटिंग, के हर रोज कुछ नया करना है. हम नया फिर से सिचुएशंस में ढूंढ रहे हैं. सी, हम नया कहाँ ढूंढ रहे हैं, कि कहीं सिचुएशन चेंज हो तो कुछ नया हो. अब सिचुएशन हर टाइम नहीं चेंज हो सकती. आप कितनी बार ऑफिस से हॉलीडे पर जाएंगे, फाइनली आपको 365 डेज में से 11 महीने या 11.5 महीने तो ऑफिस में ही काम करना है ना. आप साल में 15-20 दिन ही हॉलीडे जा सकते हैं. डज दैट मीन कि नया विल बी जस्ट फॉर 15 डेज and the rest 11.5 months the same boring way? No. Why not make every day exciting? And wo tab hoga ki situation nahi ho wo nahi, usi situation mein main koi naya response create karu,
1: main nahi ho jaau.
0: Ha, creativity here, not necessarily creativity in event, creativity in situation, creativity in responses. Is that possible, a creativity in a response? Ke wo hi situation, वही बॉस, वही पेरेंट, वही हस्बैंड, बट आई विल लुक एट अ डिफरेंट वे ऑफ रिस्पोंडिंग
1: एंड आई सडनली बिकम वेरी नाइस.
0: हां, व्हाटएवर यू कैन चूज दैट,
1: और अदरवाइज नाइस से अगर इफ आई सडनली बिकम वेरी बैड,
0: क्रिएटिविटी बट विच विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट. अभी क्या हुआ, हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन मेजरली हमने दो रोल्स में अपने आप को फिक्स किया हुआ है. वन इज एट वर्क, वन इज एट होम. ये दो रोल्स हैं जिसमें हम एकदम से अपने आप को टाइट पकड़ लेते हैं, लेकिन हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं ढूंढते और हम बहुत सीरियसली उन रोल्स को प्ले करना शुरू कर देते हैं. दिस इज माई रोल, यू नो, एंड इस रोल को मैंने इस तरह से प्ले करना है. और जहाँ उस रोल में हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, वो मज़ा ख़त्म हो जाता है. दैट फन ऑफ प्लेइंग द गेम इज ओवर. जैसे जो आपने कहा पोजिशन, यू नो, आई एम अ मदर या आई एम अ मैनेजर, ये फिक्स्ड हो गई है. तो पोजिशन को ही रोल समझ लिया. अब क्या होगा, एक ऑफिस का लीडर है या मैनेजर है या चेयरमैन है, जो भी, इफ ही सेज आई एम द मैनेजर, दैट्स इट, देन वो अपने रोल को हर रोज किस तरह से प्ले करेंगे,
1: मैनेजर के रूप में या चेयरमैन के रूप में।
0: परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, एम्प्लॉयज कितना भी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हों,

0: डिफरेंट सिचुएशंस, मैं कभी बॉस का रोल प्ले करूँ, लेकिन पोजीशन बॉस की है, कभी मैं एक मोटिवेटर का रोल प्ले करूँ, कभी मैं काउंसलर का रोल प्ले करूँ, कोई दर्द में है, कोई कंफ्यूजन में है, कोई दो लोगों की आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, कभी मैं एक मीडिएटर का रोल प्ले कर दूँ उन दोनों के बीच में, कभी मैं इवन एक पेरेंट का रोल प्ले कर सकती हूँ ऑफिस के अंदर. इज दैट पॉसिबल? बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन आई लुक एट द रोल विद क्रिएटिविटी. लेकिन अगर मैंने सोचा
1: ऑन द अदर हैंड आई हैव टू बी वेरी वेरी यू नो लाइक, क्योंकि मैं बहुत फियरफुल होता हूँ, मुझे ये डर होता है कि एक बार मैंने गिव इन किया तो वो दिल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड. यू नो, मैं उनके साथ उस लेवल पर बात अगर करने लग गया तो फिर तो यू नो.
0: तो दैट इज द फियर, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट. जस्ट ट्राई एंड इमेजिन कि अगर एक बॉस सिर्फ एक पोजिशन को नहीं स्टिक करके इस तरह से अलग अलग रोल्स प्ले करे तो वर्क एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा?
1: वेरी स्मूथ एक्चुअली,
0: वेरी लाइट,
1: वेरी
0: लाइट, एंड जो आपस की सबकी बॉन्डिंग होगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी. सेम विद द पेरेंट एंड अ चाइल्ड. मैं फादर हूँ, मैं मदर हूँ सिर्फ नहीं, मैं एक फ्रेंड भी हो सकता हूँ. अगेन अ पेरेंट कैन बी अ काउंसलर. हमें स्कूल में काउंसलर की क्यों जरूरत है? हमें स्कूल में, हाउ कैन वी नीड अ काउंसलर इन स्कूल? एक पेरेंट एक काउंसलर हो सकता है, एक पेरेंट एक फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट एक मोटिवेटर हो सकता है. लेकिन अगर वो सिर्फ पेरेंट है देन बहुत रिजिडिटी आ जाएगी.
1: इन फैक्ट पेरेंट एक टीचर हो सकता है. पेरेंट एक टीचर हो सकता है. अ लॉट यू नो कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा हमसे नहीं पढ़ता है इसीलिए मुझे एक ट्यूटर चाहिए, कि मुझसे तो पढ़ेगा ही नहीं, मेरी तो बात ही नहीं सुनता वो. मतलब इट्स अमेजिंग.
0: एंड टीचर नॉट नेसेसरी ओनली इन सब्जेक्ट्स बट टीचर इन सो मेनी थिंग्स. आजकल हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि बच्चे यू नो इमोशनली थोड़े से वीक हो रहे हैं, वी नीड टू मेक देम स्ट्रॉन्गर. दे विल से दैट इज द रोल ऑफ द टीचर, दैट्स द रोल ऑफ द स्कूल. व्हाई इज दैट नॉट माय रोल? हमने सोचा हमने तो उनको इतने अच्छे स्कूल में भेज दिया, बाकी सारा काम वहाँ होना चाहिए. तो कल अपनी पोजिशन से हटकर उसको एक रोल की तरह देखें. पोजीशन से अटैच हो जाते हैं कि मैं बॉस हूँ और फिर मुझे बॉस ही बनकर रहना है. तो हम उससे हम भी सफोकेटेड हो जाते हैं. इफ़ यू सी सर्टेन पीपल एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, वो हंसेंगे भी नहीं खुल के, दे विल सिट सो अथॉरिटेटिवली क्योंकि दे वॉन्ट टू रिमेन इन दैट पोजिशन, क्योंकि उन्होंने सोचा यही पोजिशन है और यही बना के रखना.
1: अच्छा, ये पर कई लेवल्स पर सिखाया भी जाता है, ट्रेनिंग का भी तो पार्ट है. समवेयर वी आर सो मच स्टक विद द ट्रेनिंग पार्ट कि हमें इसको मेंटेन करके रखना है, तो उसे अंडू करने की कितनी जरूरत है?
0: एवरीवन हैज टू आस्क देमसेल्व्स, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ज़्यादा इसी प्रकार की रही है, पोजीशन ओरिएंटेड. आपको ये बनना है, आपको ये बनना है. क्रिएटिविटी कभी उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा रही नहीं है. और इसीलिए हमने कहा कि हमें लोगों ने सिखाया क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, लेकिन क्या सोचना है वो कभी टॉपिक में था ही नहीं. आर्ट ऑफ थिंकिंग वो नहीं था. तो जब आर्ट ऑफ थिंकिंग नहीं था तो आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगा. वो एक सेट पैटर्न था कि आप मदर हैं तो ऐसी मदर होनी चाहिए, फादर हैं तो ऐसे. बट नो, इट्स द सेम थिंग. आई कैन जस्ट प्ले इट इन डिफरेंट वेज. एंड जितना हम उसको क्रिएटिवली प्ले करेंगे हम उसको इंजॉय करेंगे, उस रिलेशनशिप को भी इंजॉय करेंगे. क्योंकि आज आप देखो, एक पेरेंट और चाइल्ड, एक चाइल्ड अपने पेरेंट के अंदर कन्फाइड क्यों नहीं कर पा रहा? अगर एक बच्चे की कोई भी इशू है वो बाहर वालों को अगर बता सकता है, पेरेंट को क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि वो पेरेंट सिर्फ पेरेंट है. वो पेरेंट अगर फ्रेंड भी बन जाए तो एक बच्चे को बाहर किसी फ्रेंड को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
1: और पेरेंट को भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू नो व्हाट, समवेयर घर जब आ जाते हैं तब भी वो अपने दोस्तों से या मित्रों से उतने फोन पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा मेरा दोस्त बन सकता है. यू नो, यू कैन एक्चुअली, बच्चा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आपका. आई हैव एक्सपीरियंस इट कि वो आपको इतनी अच्छी सलाह दे सकता है जो कहीं बाहर का कोई मित्र नहीं दे सकता.
0: नाउ दिस इज क्रिएटिविटी. तो इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट करना है. नॉट नेसेसरी कि पहले हमने जो पढ़ा है वो गलत है या जो हम यहाँ अभी शेयर कर रहे हैं वो नॉट नेसेसरी. उसको करके देखना है कि हाउ डू यू फील. लेकिन वो तभी होगा व्हेन वी आर वर्किंग विद द राइट कॉन्शियसनेस कि आई एम एन एक्टर, दिस इज जस्ट अ पोजिशन बट एक्चुअली इट्स अ रोल एंड आई एम प्लेइंग द रोल एंड आई एम नॉट प्लेइंग इट बट आई एम क्रिएटिंग द रोल. हर सीन में सिर्फ ये याद रखना है, How do I want to create my role in this scene? तो आपको कैसे भी सीन मिले, कहीं बहुत उतार चढ़ाव की भी सीन मिले,

0: So you still have a choice. It's again going back to that fundamental line, I have a choice. Her situation mein, I will choose how to play the role. So first thing that we have to try, position consciousness, then actor consciousness. Ki main actor ho, I'm playing the role. दूसरी रीज़न जो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं ये करते करते इज बिकॉज हम रोल से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं
1: और रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं अपने मेरा कर्तव्य है ये
0: लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज़्यादा आइडेंटिटी बन जाती है वो
1: यही मैं हूँ
0: तो यही मैं हूँ तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की मार्जिन नहीं आती क्योंकि हमने देखा कि अपना परिचय न होने के कारण हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जैसे ही हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम हर सीन में उसको वैसे ही प्ले करेंगे क्योंकि यही मैं हूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं होता आई एम अ पेरेंट इट्स नॉट आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेरेंट
1: एक्चुअली डजंट कम यस यू नो उस वक्त आपको वो छोड़ देता है थॉट कि आई एम अ सोल यू नो
0: व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम द सोल प्लेइंग दिस रोल तो एक डिटैचमेंट आ जाएगी फर्स्ट एंड डिटैच्ड होके जो भी रोल प्ले करेंगे वो रोल पहले से भी
1: अच्छा
0: ज्यादा होगा जब रोल में फिक्स होकर प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है देखो व्हेन आई आइडेंटिफाई माय सेल्फ विद द रोल तो उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए जितने फियर्स हैं मेरे मन में उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए आई कैन बी अग्रेसिव आई कैन बी डिफेंसिव इफ लेट्स से माय आइडेंटिटी इज मैं बॉस हूँ अब आप मेरे से जरा हंस के बात करो थोड़ा सा तो मुझे डर लगने लगेगा कि वो जो मेरा बॉस का इमेज है वो कहीं यू नो कहीं ये मुझे जैसे आपने कहा फॉर ग्रांटेड ना ले लें तो फिर मैं तुरंत अग्रेसिव हो जाऊंगा क्योंकि मैंने सोचा आई हैव टू गिव यू द मैसेज प्लीज रिमेम्बर यस प्लीज रिमेम्बर हु एम आई एम द बॉस एंड यू बेटर टॉक टू मी जस्ट लाइक अ बॉस सेम विद द पेरेंट एंड अ चाइल्ड पेरेंट इमिजिएटली वो सिग्नल कन्वे करेगा बच्चे को यू प्लीज रिमेम्बर आई एम द पेरेंट दैट डजेंट मीन कि हम रूडनेस आने दें या यू नो मिसबिहेवियर आने दें लेकिन कोई हल्कापन एक यू नो लाइटनेस रिलेशनशिप के अंदर दैट्स अ पार्ट ऑफ द यू इन्जॉय दैट रिलेशनशिप लेकिन जहाँ हर रिलेशनशिप को उतना टाइटनेस से पकड़ा कि ये हाउ कुड ही टॉक टू मी लाइक दिस हाउ कुड ही बिहेव विद मी लाइक दिस बिकॉज हु एम आई आई एम दिस तो कहीं ना कहीं हमारा फिर जो बिहेवियर होता है वो अग्रेशन की तरफ या यू नो वो विड्रॉल की तरफ चला जाता है जस्ट बिकॉज मैं इनसिक्योर हूँ अपनी वो आइडेंटिटी
1: In fact, अगर हम देखें तो अगर क्रिएटिविटी है उस रिश्ते में फन है वी लुक फॉरवर्ड टू यू नो बीइंग इन दैट रिलेशनशिप
0: विद दोस पीपल यस एब्सोल्युटली
1: आप उनसे करनी नहीं काट रहे होते बिल्कुल
0: तो जो हमने पहले डिस्कस किया रिलेशनशिप्स में कि आज हम कट रहे हैं एक दूसरे से हम कटेंगे नहीं जब हमें ये लगेगा कि एवरी रिलेशनशिप इज अ चांस फॉर मी टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ माय क्रिएटिविटी इट विल बिकम अ लॉट ऑफ फन
1: और जहाँ जहाँ थोड़ी मुश्किल भी है वहाँ पर मतलब कहीं कुछ खटास या पहले से कुछ थोड़ा डिस्टेंस आया हुआ है आई कैन ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट नाउ
0: एब्सोल्युटली क्योंकि अब आपके पास चॉइस है कि वो रिश्ते में बहुत खटास है लेकिन आप अपने रेगुलर जो मेथड ऑफ एक्टिंग है प्लेइंग द रोल उस पे नहीं जाओ मेक इट क्रिएटिव क्रिएट अ ब्यूटिफुल न्यू थॉट उस आत्मा के प्रति जस्ट गो एंड इनएक्ट इट द वे यू नेवर थॉट यू कुड हैव डन इट अभी मैंने सोचा कि वो मेरे से ठीक से नहीं बात कर रहे तो मैं ठीक से क्यों बात करूँ फिक्स्ड वे ऑफ एक्टिंग द रोल कल मैं सोचा कम ऑन फॉरगेट ऑल दिस
1: कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस
0: लेट मी गो एंड प्ले इट इन अ वे दैट इवन आई विल सरप्राइज माय सेल्फ मैं आपको क्या सरप्राइज करूं मैं तो खुद ही सरप्राइज हो जाऊं कि वो मैंने कैसे कर लिया ये दैट इज क्रिएटिविटी
1: एंड कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस
0: ओनली माय परफॉर्मेंस वैसे भी आपके परफॉर्मेंस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती मैं सिर्फ कंप्लेन कर सकती हूँ या जजमेंटल हो सकती हूँ बट इफ आई जस्ट फोकस ऑन माइन You see how much fun we are going to have in the whole day.
1: Oh, wonderful. Spirituality teaches you fun.
0: Yes. Spirituality is a lot of fun.
1: Fun, yes. That's what we are understanding. Thank you so much, Sister Shivani, aaj ki is puri baatcheet ke liye. Om Shanti.
0: Om Shanti.
1: Ab apne roles par kaam karna shuru kare. I think it will be real fun. Aur jo hamare andar ka actor chupa hai, apni performance ko, jaisa ki Sister Shivani ne end mein, I think you've given the punchline, कि अपनी ही परफॉर्मेंस से अपने आप को चकित करते एक नए अंदाज से खुद हम एक्ट करना शुरू करें तो वो और वो एक्टिंग जितनी नेचुरल होगी जितनी हमारी अपनी होगी उतना हम उसे एंजॉय करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हम हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे ये प्रोग्राम आपका अपना है ये मंच आपके लिए है कोई बात कोई सवाल आपके मन में उठता है आपका हम स्वागत करते हैं आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0 99993445 0 9999 3 4 6 0 9 8 7 3 6 6 5 5 0 9 9 9 7 4 5 5. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट का ये पूरा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा. आप हमारे साथ जुड़े रहिए. आज आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

0: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ रेडियो मधुबन आपने ट्यून किया है और रेडियो मधुबन पर आ गए हम भूल जाओ गम। जी हाँ साथियों, 22 जुलाई 2026 आज का तारीख है और राशि शके 1948, शके 31, गति 6, आषाढ़ बुधवार आज है। विक्रम संवत 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार स्वाति आज है। और इसके साथ ही बात करें आज के दिन विशेष के बारे में, तो आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार, बाबू जी नमस्कार।
0: जी जी जी बोलिए गुड़ीलाल जी।
1: जी का वार भी है, बरसात भी हो रही है, आनंद भी ले रहे हैं, सभी को अच्छा अच्छा लग रहा है। हाँ, जो गणपति को दावे तो सुख पावे, शिव शिव को शिव का नाम लेवे जो भी सुख पावे, कौन है पालनहारा, ये है भजन सर। ये हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुरेश भाई को, भुलाराम जी को, मदन भाई को, और सुरेश भाई और भी हैं सब, और वो क्या नाम उनका, वो सुभाष भाई है ने?
0: हाजी, हाजी, हाजी।
1: उनको भी मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ मैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। ये थे हमारे गुड़ीलाल जी जिन्होंने अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा किया है, और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं। और आइए मैं कार्यक्रम के शुरुआत में आप सभी को बता दें कि आज विशेष राष्ट्रीय आम दिवस है, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस भी है। राष्ट्रीय आम दिवस यानी नेशनल मैंगो डे है। हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। आम उष्णकटिबंधीय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से खेती वाले फलों में से एक है। आम का फल पका हुआ खाया जाता है और इसका उपयोग हरे रंग में अचार में किया जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय फल है। इसके अलावा केरल के कन्नूर जिले के कन्नूरपुरम को स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया है। तो आम आपने खाया होगा और खा भी रहे होंगे। तो चलिए आम दिवस की विशेष बातें। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस भी है जो 22 जुलाई को मनाया जाता है, अर्थात 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जो 3 रंगों से बना है, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। भाई इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन अभी आपको ले चलते हैं एक और सुंदर गीत की तरफ। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। 8:28 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। चलिए बात करते हैं आज विशेष, जैसे कि मैंने कहा आपको आज खास दिन है तो खास दिन की विशेष बातें आपसे शेयर करूंगा। और राष्ट्रीय आम दिवस के बारे में हम लोग अगर बात करें तो आम एक अच्छा ये है हमारा राष्ट्रीय फल है जिसके बारे में हम सभी जानते भी हैं और इसका आनंद भी लेते हैं। तो बात करें राष्ट्रीय फल आम के बारे में तो इसकी कुछ खास बातें जो है रोचक बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। भारत में आम 5000 साल पहले से उगाए जाते रहे हैं और भारत में एक खास पल्स पैटर्न विकसित किया गया था जो आम के आकार पर आधारित है। हेलो जी, नमस्कार।
1: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: ओम शांति, गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, बोलिए। बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बात बढ़िया है, अच्छा है, बैठा है, कार्यक्रम सुन रहे हैं आपकी बातें और आनंद रहे
0: जी, जी जी।
1: और बहुत अच्छी बात भी बताई दी आपने कि आज राष्ट्रीय आम दिन यानी कि केरी, गुजराती में उसको केरी बोलते हैं, तो आज केरी दिन है तो ये तो बात सही। लेकिन सर क्या बता, बारिश के बाद केरी को खाना भी मुमकिन नहीं है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो कैरी अलग प्रकार की आती है तो अब कैरी जो होती है तो वो हम बारिश में खा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ हापुस कैरी बोलते हैं, वो आराम से वो खा सकते हैं वो कैरी। और कोई जो बेटियों का व्रत होता है हमारे, क्योंकि सावन महीना आएगा अभी तो बहुत सारे व्रत, पूरा महीना व्रत आएगा तो कई सारी छोटी छोटी बेटियों को भी व्रत आएगा।
0: जी जी जी।
1: तो बड़ों को भी व्रत आएगा, पूरा महीना सावन महीना के नहाना पड़ेगा। नहा तो हम रोज सर रहते हैं लेकिन बोलते हैं कि हम सावन महीना नहाया है तो फिर भी बोलने का है एक दिन खाना, एक टाइम खाना, वो रात को नहीं खाना या दिन को खाना, बस एक ही टाइम खाते हैं लोग और उपवास करते हैं सावन महीने में पूरे महीने तक। अच्छा है वो भी आज आम है। और दूसरा भी क्या राष्ट्रीय है आज मेरे हिसाब से कोई चंडा दिन ऐसा कोई भी है आज मेरे हिसाब से तो राष्ट्रीय चंडा अंगीकरण भी दिन है आज। तो कई सारी हम वो दिवस की बात करते रहते हैं मत करिए के लिए जो हम झंडा लगाते हैं इसमें कितने कलर आते हैं, ऑगस्ट में जो चक्र आता है इसको क्या बोलते हैं, कई सारी बातें हैं इसमें। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो सही है। लेकिन चलो आज बुधवार है, गणपति का दिन है तो सभी को हमारी तरफ से आपके दिन की शुभकामनाएं सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और गाना अच्छा सुना दिया आपने कि गुरु ने बुलाया है, बहुत अच्छा गाना था
0: जी जी जी।
1: तो बस हमारा भी एक पसंद का गाना है तो फूलों से भरा है दरबार गजानन आ जाना वो गाना है तो हम गणपति जी को पहले याद करते हैं। और सबको आपके दिन की शुभकामनाएं सर, नमस्ते, ओम शांति।
0: हमारा
1: बुरा राम जी को भी राम राम, बुरी लाल को भी राम राम
0: जी,
1: सन भाई को भी राम राम, सबको राम राम सर।
0: बिल्कुल
1: नमस्ते,
0: नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। ये थे सुरेश जी जो अपनी बात आम दिवस के बारे में बता रहे थे। कैरी जो है वो बारिश में ज़्यादा आती है और ये अचार के लिए खास यूज़ किया जाता है। और इन चीज़ों को जैसे पके हुए आम तो हम लोग पहले से ही खा लेते हैं, लेकिन अभी बारिश के समय में कैरी आती है जो अचार डालने के काम आता है, जो पूरे 12 ही महीना जो है वर्कआउट करती है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। सजा है दरबार, ये गीत आप सुनना चाहते हैं तो चलिए सजा है दरबार ये गीत मैं आपको थोड़ी देर में सुनाता हूँ। और आम के बारे में बातें चल रही थी। भारत में एक खास जो पैटर्न है वो विकसित किया गया था जिसके आकार पर आधारित है। और भारत में आम की टोकरी को, आम की जो टोकरी होती है उसे दोस्ती का प्रतीक माना गया है। इसलिए जब भी राजा महाराजाएं एक दूसरे के पास अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते थे तो आम की टोकरी उन्हें भेज दिया जाता था। इससे पता चल जाता था कि बंदा जो है हमसे दोस्ती का रिश्ता रखना चाहता है। दुनिया में कहीं गुलाब तो कहीं कुछ और प्रेम का प्रतीक है, लेकिन भारत में मैंगो प्यार का भी प्रतीक है। किवन दीतियों के अनुसार बुद्ध ने एक आम के पेड़ की शांत छाया के नीचे ध्यान लगाया था और आम काजू और पिस्ता से संबंधित वर्ग में आते हैं। एक पके आम से आम में उसके वजन में 14% शुगर और वजन में 0.5% अम्ल होता है। मैंगोफेस इंडिया का अर्थ है कि एक भारतीय पौधा जिस पर आम लगते हैं, और आम के पेड़ की पत्तियां, त्वचा और गड्ढे की छाल का उपयोग सर्दियों में हमारे यहाँ लोक उपचार में किया जाता है। और 3 से 4 कप आमरस दैनिक विटामिन सी का 50% और आपके दैनिक विटामिन ए का 8% मिल जाता है आपको। और राष्ट्रीय आम दिवस के उपरांत 1987 में भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली में आम के प्रचार प्रसार के लिए एक वार्षिक उत्सव अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया था। इसमें आम की किस्में प्रदर्शित की गई थी, साथ ही आम से संबंधित किसान, व्यापारी और आम के शौकीन लोग आते हैं, स्पर्धाएँ आयोजित की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं आम की रोचक तत्वों के बारे में। और इतिहास की बात करें तो भारत में ये दिवस कब से मनाया जाता है, इसका इतिहास और उत्पत्ति अज्ञात है, लेकिन जैसे कि आम के बारे में ऊपर चर्चा की गई थी, पिछले एक समृद्ध इतिहास है भारत में 5000 साल पुरानी, और खेती की जाती इसकी। भारत के लोग गीतों और धार्मिक समारोह में अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। आम का मैंगो नाम जो अंग्रेजी है और स्पेनिश भाषा में देशों में बोला व जाना जाता है, वो मलयालम मन्ना से लिया गया है। और पुर्तगाली जो मसाला व्यापार के लिए केरल आए थे, उन्होंने मन्ना का मांग के रूप में मंगा के रूप में उच्चारण किया और आगे चलकर मैंगो हुआ। आम के पेड़ लगभग 1700 में ब्राज़ील में लगाए गए थे, लगभग 1740 में, और ये वेस्ट इंडीज़ तक पहुँच गया। दुनिया में सबसे अधिक इस रसदार फल की खेती ठंड से मुक्त उष्णता कटिबद्ध जलवायु में की जाती है। तो ये थी कुछ खास बातें आम के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना, गजानंद आ जाना। अब आइए, इसके साथ ही मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, खास राष्ट्रीय अंगीकरण जेंडर अंगीकरण दिवस आज है और ये खास दिन मनाया जाता है। हमारे तिरंगा ध्वज का इतिहास भी बहुत रोचक है और इसीलिए ये राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। 20वीं सदी में जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब आज़ादी का सेनानियों को एक ध्वज की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि ध्वज स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का प्रतीक रहा है। 1904 में विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता और ने पहली बार एक ध्वज बनाया, जिसे बाद में सिस्टर निवेदिता ध्वज से जाना गया। ये ध्वज लाल और पीले रंग से बना था। पहली बार तीन रंग वाला ध्वज सन 1906 में बंगाल के बंटवारे के विरुद्ध में निकाला गया। जुलूस में सचिंद्र कुमार बोस लाए थे। इस ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में पीला और सबसे नीचे हरे रंग का उपयोग किया गया था। केसरिया रंग पर 8 दगदीले कमल के फूल सफ़ेद रंग में थे। नीचे हरे रंग का एक सूर्य और चंद्रमा बना था। बीच में पीले रंग पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा गया था। सन 1908 में सर भिखाजी कामा ने जर्मनी में तिरंगा झंडा लहराया और इस तिरंगे में सबसे ऊपर हरा रंग था और बीच में केसरिया और नीचे लाल रंग था। हरा रंग इस्लाम के लिए और केसरिया हिंदू और सफ़ेद ईसाई व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रतीक था। इस ध्वज में भी देवनागरी में वंदे मातरम लिखा था और सबसे ऊपर 8 कमल बने थे। इस ध्वज को भिखाजी कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर तैयार किया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय इस ध्वज को बर्लिन कमेटी ध्वज के नाम से भी जाना गया, क्योंकि इसे बर्लिन कमेटी में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अपनाया गया था। फिर बाद में हुआ ऐसा कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ 1916 में 10 साल के बाद पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे ध्वज की कल्पना की जो सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध दे। उनके इस पहल को एसबी बोमन जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला। इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया। वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सलाह ली और गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत देता है। और पिंगली वेंकैया लाल और हरे रंग के पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बना लिया, पर गांधी जी को ये ध्वज ऐसा नहीं लगा कि जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गया। मूल झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये सारी चीज़ें जो है गीत के साथ लिखा गया था और बाद में इसमें कुछ और संशोधन हुआ, लेकिन आखिरी में अशोक चक्र के साथ ये झंडा राष्ट्रीय झंडा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर मोटिवेशन वाला गीत, जो आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आइए आज के दिन विशेष के बारे में कुछ बातें आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे। और जैसे कि आज 22 जुलाई 2026 आज का तारीख है और आज के तारीख के हिसाब से हम लोग आज के इस दिन को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और आइए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ आज के दिन जन्म में उन लोगों के बारे में और जिनका राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण में हमने काफ़ी बातें सुनी और जिसमें काफ़ी लोगों ने मेहनत की इस झंडे को बनाने में। और आखिरकार जो है झंडा वेंकैया का ही जो है एक संशोधन के बाद उसको राष्ट्रीय झंडे के रूप में अंगीकार किया गया। इसके साथ ही मैं बात करूं आप आज विनायक पटवर्धन का भी जन्मदिन है। विनायक राव पटवर्धन ये विशेष व्यक्ति रहे जिनका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विशेष लगाव था और एक अच्छे पॉपुलर गायक थे। पंडित विष्णु दिगंबर फलुस्कर के शिष्यों में विनायक राव पटवर्धन अपने समय के महान गायक हुआ करते थे। विनायक राव पटवर्धन का आज ही के दिन 1898 को मीरज महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और संगीत की आरंभिक शिक्षा अपने चाचा श्री केशव राव से प्राप्त की और उसके पश्चात 9 वर्ष की आयु से पंडित विष्णु दिगंबर फुलस्कर ने शिक्षा लेना शुरू कर दिया और आरंभ में बाल गंधर्व की नाट्य मंडली में काम करना शुरू कर दिया। उसके पश्चात सन 1932 में गंधर्व महाविद्यालय पूना की स्थापना करके आजीवन संगीत सेवा की। कई पाठ्य पुस्तकें भी लिखी जिनमें राग विज्ञान प्रमुख है। 1972 में विनायक राव पटवर्धन को भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। विनायक राव पटवर्धन तराने के सिद्ध गायक थे, साथ ही चारों पट की गायिकों में दक्ष थे। उन्होंने रूस आदि देशों में जाकर भी भारतीय संगीत का प्रचार किया और अपनी संगीत यात्रा के प्रचार प्रसार के बाद 23 अगस्त 1975 को पूना आए थे और पूना में इस महान गायक मनीषी का देवासन हो गया था 23 अगस्त 1975 को। तो ये थी कुछ खास बातें विनायक राव पटवर्धन के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए, 8:54 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ये पर्दा हटा दो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आई बातें हो रही थी खास आज विशेष विनायक पटवर्धन जी के बारे में, और इसके साथ ही वक्त हो गया है समाचारों का। अब सीधे चलते हैं समाचारों की तरफ, उसके बाद बातचीत करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
2: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
4: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
5: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
6: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
7: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
8: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
2: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले दो तीन दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
10: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्ख

0: आरोपियों में जगह दी है। पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा, दैनिक जागरण की सुर्खी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए, आज विशेष रूप से आप सभी के साथ बातें हो रही हैं और कई बार चीज़ें जो हैं बड़ी यूनिक होती हैं और राष्ट्रीय जो बातें होती है भावनायुक्त हो जाती हैं और लोग इसमें जुड़ जाते हैं। तो कई बार कुछ अच्छे काम के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जहाँ पर हम राष्ट्रहित के बारे में सोच नहीं पाते हैं, सत्ता की भूख होती है। तो ऐसे भी कहीं प्रसंग आते हैं, तो हमें यहाँ एक समझदार नागरिक बन के चीज़ों को देखना है, समझना है और फिर उसमें आगे बढ़ना है। तो आइए, आज देवेंद्र फडणवीस का भी जन्मदिन है जिनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और भारतीय विशेष रूप से जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर दक्षिण पश्चिम में विधायक है और पूर्व में वो नागपुर नगर निगम में मेंबर भी रहे। और देवेंद्र फडणवीस ने 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और तब वो 8 नवंबर 2019 तक इस पद पर आसीन रहे। इसके बाद 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक 3 दिन तक मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये खास जो है देवेंद्र फडणवीस की बात आती है। और देवेंद्र ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माना जाता है। चुनाव प्रसार में प्रचार के दौरान नागपुर की सभा में मोदी ने फडणवीस की खुलकर तारीफ की थी और चुनाव से पहले ही दिल्ली के नरेंद्र और महाराष्ट्र के देवेंद्र के नारे लगने शुरू हो गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बीजेपी खासकर मोदी को आगे बढ़ाने में पूरा जोर लगा दिया था और फिर इसका सक्रिय जनसेवक रूप में बताया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। वो बेटा जी, ये गीत आप सुन रहे थे, ये किस्मत की हवा इस एल्बम से आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन है, उसके बाद हम बात करें संदीप पांडे जी का भी आज जन्मदिन है, जो भारत के सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक है और देश के सबसे कम उम्र में रमन मैक्स के पुरस्कार पाने वाले विजेता है। संदीप पांडे देश के अपेक्षित तथा हाशाए पर जी रहे लोगों की दशा देखकर इतना द्रवित हुए कि उन्होंने उस वर्ग की बेहतरी के लिए काम करना विशेष रूप से शुरू किया और अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए उन्होंने आशा परिवार नाम की एक संस्था खड़ी की तथा उसके माध्यम से देश के दलितों और अल्पसंख्यकों की पक्षधारता के लिए काम करने लगे। उन्होंने अपनी संख्या तथा अपने दल के साथ पूरे जोर शोर से अपने कार्यक्रम लागू करना शुरू किया और उसके लिए देशव्यापी जागरूकता अभियान चला। देश की दशा में सुधार लाने वाले इस कार्यक्रम के लिए उन्हें वर्ष 2002 का मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आइए आगे बढ़ते हुए, संदीप पांडे का जन्म आज के दिन 1965 को उत्तर प्रदेश में बालिया के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था और स्थानीय स्कूलों से बुनियादी शिक्षा पाने के बाद वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे। उसके बाद वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बार्ले से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री पाने वाले रहे और वो उनकी मुलाकात दीपक गुप्ता तथा विजय पी श्रीवास्तव से हुई, जो विदेश में रहते हुए भी देश के प्रति सचेत थे और उनके साथ उनके मन में विचार जागा कि विदेश में बसे भारतीयों के धन जुटाकर गरीब बच्चों की शिक्षा की दिशा में काम किया जाए और फिर उन्होंने वैसे ही किया। तो यहाँ से उनकी जो है गरीब बच्चों के प्रति जो आस्था थी वो जगी और काम उनका यहाँ से शुरू हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और विशेष गीत की तरफ, जो हमें सुकून देता है। 9:38 हो चुके हैं और तुम जियो हजारों साल, ये एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनील दत्त और नूतन पर पिक्चराइज किया गया एक गीत। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: समय
1: जी। हेलो,
0: हेलो,
1: हाँ बोलिए बोलिए।
0: आपके पास समय हो तो सुनवा दीजिएगा, अभी अभी ये कार्यक्रम होने वाला
1: जी
0: है।
1: जी जी जी जी।
0: ओम शांति,
1: ओम शांति, ओम शांति। चलिए, थे सुगुना बहन जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे और एक गीत की फरमाइश की है गुजराती। कोशिश करता हूँ मैं उस गीत को सुना पाऊँ। आप सुनाए हैं रीड मोर 107.8 FM। आगे बात ही चल रही थी संदीप पांडे के बारे में। 1991 में संदीप पांडे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरा करने के बाद भारत लौटे और भारत में IIT कानपुर में विशेष प्राध्यापक बन गए। वहीं उन्होंने एक जैसी सोच वाले दोस्तों के साथ मिलकर आशा परिवार नाम की एक संस्था गठन किया। इस संस्था के पीछे संदीप का यह विचार था कि वह एकदम गरीब, अपेक्षित तथा तिरस्कृत लोगों के काम आए, जिन तक लोकतंत्र का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। आशा परिवार के जरिए संदीप पांडे की नज़र देश के प्रशासन तथा उसकी राजनीतिक व्यवस्था से भ्रष्टाचार हटाने, उसकी दक्षता बढ़ाने का प्रयास करने तथा उसे अधिक जिम्मेदार बनाने का मजबूर करने जैसे कामों पर रही है। संदीप देश के करीब बदहाल लोगों को उनके जानकारी पाने के अधिकार से अवगत कराना चाहते हैं और उनमें ये आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं कि वह खुद अपने हाल के लिए खड़े हो सके। आशा परिवार संस्था संदीप के इस लक्ष्य को पूरा करने की ओर काम कर रही है। संदीप पांडे के सामने ये स्पष्ट है कि उनका ये लक्ष्य इस वर्ग की शिक्षा की जरूरत से जुड़ा हुआ है और उनकी कोशिश इस दिशा में भरपूर रही है। आशा परिवार की न्यूज संदीप पांडे के मन में बालिया में पहुंच कर पड़ी, जहां उन्होंने दलितों तथा अन्य नीच कहीं जाने वाली जाति के लोगों को बदहाली में देखा। वे लोग गरीबी से जूझ रहे हैं और वे समाज से बहिष्कृत लोग थे तथा एक तिरस्कृत जीवन को जी रहे थे। संदीप ने उन्हें गांव रेवती और बांसवा में आशा परिवार के स्थानीय स्वयंसेवकों को इकट्ठा करके इनके लिए स्कूल की व्यवस्था की। इस कोशिश की शुरुआत की। ये लोग अपने भीतर आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का भाव उपजा सके। संदीप ने ये लक्ष्य बनाया कि ये लोग न्यायपूर्णता तथा समता मूलक समाज की कीमत समझ सके और संदीप का ये मानना था कि आशा परिवार स्वयं सेवियों का ये पहला आश्रम है जो बेसहारा गरीबों के लिए काम कर रहा है। बालिया के रेवती तथा बैसहा गांव के बाद संदीप ने आशा परिवार का अगला विस्तार हरदोई में दलितों के गांव लालपुर में किया और यहां पर ये लोग एक अगला ही तरह का पाठ्यक्रम चला रहे थे। ये लोग ऐसे गीत या कहानियां सुन पढ़ रहे थे जो संदीप के लक्ष्य को उजागर करते हैं। आशा परिवार आशा आश्रम शिक्षा तथा जागरूकता के अतिरिक्त और भी जिम्मेवारियां निभाने के लिए सक्षम बने, जैसे इसकी और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाने लगे, साफ सफाई और अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए भी आशा परिवार काम करने लगा। हेलो जी नमस्कार।
2: हेलो जी नमस्कार, मुकेश जी का जन्मदिन है
1: जी, बोलिए।
2: मुकेश जी का जन्मदिन है आज।
1: किसका?

0: सारी बातें चल रही थी संदीप पांडे के बारे में, उन्नीस सौ
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। 9:50 हो रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ संदीप

पांडे जी ने आशा परिवार को आश्रम बनाया और फिर धीरे धीरे उनको जो है सभी जो सेवाएं जो गरीब लोगों के लिए शुरू किया, जिसके वजह से उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ और उनका ये कार्य आज भी चल रहा है। तो आइए 22 जुलाई को जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है, और उसके पहले आइए बात करते हैं जुलाई महीने की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सम्मान कार्य किए जाने वाले सम्मान परिश्रमिक कार्य योजना लागू हुआ 1999 में। शेर बहादुर देउब नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। समूह 8 देशों का जिनेवा में सम्मेलन संपन्न हुआ 2001 में। शांति के लिए 1976 में नोबल पुरस्कार जीतने वाले बेटी विलियम्स मैस्को में गिरफ्तार हुए 2004 में। आतंकवादी होने के संदेह में लंदन पुलिस के निर्दोष ब्राजीली नागरिक जीन चालदे मैरिज को मार गिराया गया 2005 में। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने एक अदालत में अपने खिलाफ लगे प्रतिबंधों हेतु पुनर्विचार याचिका दायर की 2008 में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था 1947 में। 22 जुलाई 2009 का सूर्य ग्रहण 29वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण था 2009 में। तो ये थी कुछ खास बातें इतिहास के पन्नों से आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए आगे बढ़ते हुए एक गीत सुगना बहन जी के लिए सुनते रहो। बस

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है 22 जुलाई की विशेष बातें। हेलो जी, नमस्कार, ओम शांति। ठीक है ठीक है, मैं लेके रख लिया हूँ बुक। हाँ, तो 22 जुलाई की विशेष बातें जो है हमने की। अब 22 जुलाई को जन्मे उन लोगों के बारे में अगर बात करें तो मुकेश पार्श, प्रसिद्ध पार्श्व गायक, उनका जन्मदिन है आज। 1923 में इनका जन्म हुआ। और संदीप पांडे, जिनके बारे में हमने बताया आपको, 1965 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। विनायक राव पटवर्धन, प्रसिद्ध संगीत शास्त्रीय संगीत गायक थे, 1898 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्म आज ही के दिन 1970 में हुआ। अनंत कुमार, जो विशेष राजनीतिक रहे, 1959 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। रीता बहुगुण जोशी, 1939 में इनका जन्म, 49 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारत के बहुत ही पॉपुलर मूर्तिकार हिम्मत शाह का भी जन्मदिन आज है, 1933 में इनका जन्म हुआ। सरदार तेजा सिंह अकपुरी, पहली लोकसभा के सदस्य, 1894 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन आज हुआ है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। भगवान गरीब निवाज है, सच्चे दिल और भावना से कोई एक पैसा भी सेवा में लगाता है तो उसे पद्मा पदम गुणा रिटर्न मिलता है। कैसे तो विचार जरूर करेंगे और देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे, परंतु कौन से वाले वो तो हम बाद में बताएंगे। आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और जी हाँ, जिस तरह पांच उंगुलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान का नेचर भी अलग अलग होता है, उसे समझने की जरूरत होती है। और आज बनाएंगे आशियाना में गुजराती डिश सुवारी, और तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये भी सस्पेंस रहेगा और पूछने वाली हूँ बहुत ही सुंदर प्रश्न। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रुक, ओए रुक, ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार ध्यान से सुनेंगे कि भगवान गरीब निवाज है। सच्ची दिल और भावना से कोई एक पैसा भी सेवा में लगाता है तो उससे पद्मा पद्म गुणा रिटर्न में जरूर मिलता है। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के साथी थे। संदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों एक साथ पढ़ते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और श्री कृष्ण द्वारिका के राजकुमार। विद्याभ्यास पूरा होने पर दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका जाकर के

राज्य का कारोबार संभाला। तो सुदामा की शादी गांव की एक गरीब कन्या से हो गई। सुदामा को अनेक संतानें हुई, एक तो गरीबी और दूसरा बड़ा हुआ परिवार, इससे सुदामा के हालात और भी खराब होते गए। बच्चों और गरीबी की परेशानी से तंग आकर के एक दिन सुदामा की पत्नी ने उसे गुस्से में कहा कि आप अपने मित्र कृष्ण की महिमा का वर्णन करते थकते नहीं हो, इतना धनवान, इतने बड़े राज्य का मालिक आपका मित्र है तो क्या वह आपको मदद नहीं कर सकता? क्यों नहीं आप उनसे भेंट करते ताकि हमारे हालात कुछ तो सुधरे? पत्नी के जोर देने पर सुदामा कृष्ण से मिलने चल पड़े, लेकिन मित्र को भेंट क्या दे, घर में तो कुछ था ही नहीं, थे तो केवल मुट्ठी भर चावल। उन्हीं को एक पोटली में बांध करके बगल में दबा करके सुदामा द्वारिका पहुंचे। सुदामा के आने की खबर सुन करके श्री कृष्ण आनंद विभोर होकर के उसके स्वागत में प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्हें प्यार से गले लगाया, बड़ी आत्मीयता से अपने दरबार में अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया। उनका ये प्यार और सत्कार पाकर के सुदामा तो जैसे गदगद हो गए, लेकिन दरबारी भी कृष्ण को इस रूप में देख करके आश्चर्यचकित हुए बिना ना रह सके। कृष्ण ने बड़े प्यार से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। संकोच के मारे सुदामा ने जो चावल की पोटली छुपा रखी थी वे कृष्ण ने ले ली। कृष्ण ने बड़ी खुशी से चावल का एक एक दाना खाया। कृष्ण की निरहंकारिता और प्यार देख करके सुदामा तृप्त हो गया और अपने आने का उद्देश्य ही भूल गया। कृष्ण के पूछने भर भी मुख से अपनी सहायता के बारे में कुछ नहीं कह सका। श्री कृष्ण का अपार प्यार और सत्कार स्वीकार करके सुदामा अपने गांव वापस लौट आया, लेकिन यह क्या, उसका घाव तो पूरी तरह से बदल गया था। वह स्वयं भी धोखे में आ गया कि मैं सही जगह पर तो आया हूं ना। इतने में गांव वालों को और अपने परिवार जनों को रेशमी वस्त्रों में आता देख करके सुदामा मन ही मन समझ गया कि कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही उसकी सर्व मनोकामनाएं पूरी कर दी है। उसका घर महल बन गया था जिसमें पशुधन सहित सर्व सुविधाएं थी। सुदामा ने मन ही मन श्री कृष्ण जी को धन्यवाद दिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि भगवान गरीब निवाज है। सच्ची दिल और भावना से कोई थोड़ा भी सेवा अर्थ लगाता है तो उसे पदमा पदम गुणा रिटर्न में मिल जाता है। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर, सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका,

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। तेज सिर दर्द से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो एप्पल, जिसको सेब कहते हैं, उसको छील करके बारीक काटे, उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके सुबह ही सुबह खाली पेट खाइए। अगर सिर दर्द बहुत ही तेज है और अब क्या करें भाई, सिर दर्द के लिए अब इतनी सी तकलीफ के लिए हॉस्पिटल कोई तो जाते कोई जाते ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सेब को धुलाई करिए, छीलिए और बारीक बारीक काटिए, फिर उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट खाइए। आहा, सिर दर्द आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, अगला नुस्खा हमारी बहनों के लिए। मासिक धर्म में दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ठंडे पानी में 2-3 नींबू निचोड़ करके पी लीजिए। ऐसे समय में बहुत ही तकलीफ होती है और सबसे ज़्यादा तो पेट दर्द बहुत रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति में नींबू साधारण आप नॉर्मल पानी लीजिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, और नॉर्मल पानी में 2-3 नींबू निचोड़ करके पीजिए तो ये पेट दर्द से छुटकारा मिलेगा। अगर अगला नुस्खा आपको सुना रही हूँ कि अगर आप कहीं पर जल गए हैं या फिर तेज धूप से त्वचा झुलस गई हो, त्वचा पर जुर्या हो या त्वचा रोग हो, तो कच्चे आलू का रस निकाल करके लगाइए, फायदा ही फायदा मिलेगा। बहुत ही सुंदर ये नुस्खा है कि भाई कहीं पर जल गए हो, कभी कभी क्या है तेज धूप में जाते तो भी स्किन जलने लगती है, फिर मान लीजिए समय से पहले ही चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो इन सारी तकलीफों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आलू, कच्चा आलू, उसका रस निकालिए और लगा दीजिए, टोटली आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। ठीक है, आलू तो हमारे घरों में होते ही है, क्योंकि भाई कोई सब्जी मिले ना मिले फटाक से आलू की सब्जी बना देते हैं और बच्चे तो बड़े पसंद करते हैं आलू की सब्जी, तो बस आलू अपने घर में ही होते हैं और नहीं है तो भाई इकट्ठा तो लाते ही है, किल्ला दो किल्ला तो ला करके रख ही देते हैं, तो बस आलू ले आइए, कच्चे आलू का रस निकालिए और अपने जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी झुर्रियाँ है या झुलस गए हैं, आराम से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट नुस्खा है कि अगर आप अपने काले होंठ को गुलाबी करना चाहते हैं तो मक्खन में थोड़ा सा केसर मिला करके रोज़ लगाइए। मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोज़ लगाने से काले होंठ भी गुलाबी हो जाते हैं, धीरे धीरे होने लगते हैं, थोड़ा सा लंबे समय तक आपको करना है, लेकिन 2-3 महीना करने से ही आप अपने होंठों का चेंज महसूस करेंगे, लगेगा कि अरे कहाँ काले दिखते थे और थोड़े से गुलाबी दिखने लगे हैं। ठीक है, तो हर प्रकार के नुस्खे आपको दिए हैं और चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न ध्यान से सुनना, एक शायरी की तरह बनाया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है, घर को सजा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो पल आने वाला है, मिठाई मिलके खाएंगे, परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे, परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे। तो कौन सा त्योहार आने वाला है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, तो ये आज का प्रश्न है। उस त्योहार का नाम आपको बताना है, हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अभी तो बढ़ते हैं गीत की ओर, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो हेलो,
3: हाँ आवाज आ रही है?
2: हाँ जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है विक्रम जी बहुत बहुत रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप?
3: बढ़िया है दीदी, अभी खेती की तैयारी कर रहे हैं गेहूँ बोने की।
2: जी जी जी, क्या बात है। आप पहले अभी आपसे बात हुई क्या?
3: हाँ दीदी, पहले भी 3-4 बार बात हुई ना।
2: अच्छा अच्छा, हाँ मेरे को लग रहा है। चले बहुत अच्छा है, फिर भी बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से बात हो रही है। तो और कैसे हो आप, पूरा परिवार ठीक है?
3: हाँ दीदी, वो थोड़ा अपने दो बेटे हैं, मतलब कि एक बड़े वाला बेटे का भी वो डेंगू मलेरिया चल रहा है ना
2: जी,
3: तो वो डेंगू हो गया, उसको अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है उसका।
2: अच्छा अच्छा, तो ध्यान रखिएगा, अभी तो मच्छरों के बहुत ही समस्या है और डेंगू चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत ध्यान रखना है। स्वच्छ पानी में भी मच्छर होते हैं, इसलिए पानी को भी ढक के रखना है।
3: हाँ पानी को तो ढका हुआ है, बाकी हमारा कच्चा मकान है थोड़ा।
2: अच्छा,
3: तो उसमें मच्छर ज्यादा आते हैं।
2: जी जी जी जी, तो आप ऐसा करिए ना कि नीम, जो नीम के पत्ते होते ना, उनको थोड़ा सूखा करके जलाइए घर में, उसकी धुनी देंगे ना तो भी मच्छर भाग जाएंगे, मर जाएंगे और भाग जाएंगे।
3: वो धुआं रहता जब तक दीदी, वो चले जाते फिर वापस आ जाते।
2: वो तो सही है, वो फिर रोज करना पड़ता है। नीम का थोड़े से पत्ते तोड़ करके रख दीजिए, सूखते जाए और थोड़े जलाते जाइए। घर में नहीं हो तब आप दरवाजा बंद करके जला दो।
3: हाँ दरवाजा बंद करके जलाना पड़े,
2: ताकि वो मच्छर खत्म हो जाए, उसके बाद आप जाओ अंदर, है ना।
3: कहीं मच्छर अगरबत्ती आती है वो थोड़ा जला देते हैं।
2: हाँ वो कुछ भी ऑल आउट कुछ भी करना ही पड़ेगा। जी जी
3: हाँ, वो तो करना पड़ता है दीदी।
2: जी जी, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: हाँ दीदी, वो सुदामा के बारे में वो शायद सुना था मैंने।
2: वो आपने विचार सुना था?
3: हाँ, बाबा मतलब गरीब निवास है, तो गरीब बच्चों के लिए आए हैं
2: जी,
3: तो हम तो है ही गरीब।
2: कोई बात नहीं, आप में ज्ञान है, तो जो ज्ञानी आत्मा होते हैं ना वो गरीब कभी नहीं होते, वो ज्ञान के खजाने से भरपूर रहते हैं।
3: हाँ दीदी, वो तो ज्ञान तो है ही, और दूसरों को भी ज्ञान हम सुनाते हैं, बाकी जो सुनते हैं
2: जी। तो फिर आप क्यों सोचते हो कि आप गरीब हो? हमको ऐसे संकल्प ही नहीं चलाने हैं, वो क्या है जो सोचते हैं वही होता है ना। आप पॉजिटिव रहिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत धनवान हूँ।
3: हाँ।
2: जी, तो देखिए आपको कोई कमी नहीं रहेगी। हमको क्या चाहिए खाने को, वो कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए, है कि नहीं? जी, बाकी तो बहुत करोड़पति बन जाएंगे ना तो भी तकलीफ बहुत, वो कहते हैं दुश्मनी पैदा हो जाती है, इसलिए भगवान बस सब्जी रोटी दाल रोटी देता रहे, यही।
3: हम तो खुश है और परिवार भी खुश है, सभी ऐसा कोई सोचता नहीं, मैं भी नहीं सोचता कि अमीर हो जाऊं, ये कर लूं कहीं।
2: जी जी, इसलिए हमेशा यही सोचिए कि मैं बहुत अमीर हूं। भाई जिसके पास ज्ञान का खजाना हो वो तो अमीर ही है, ठीक है। और आज का प्रश्न आप सुनिएगा, आप विक्रम भाई आप सुनिएगा, मैं सुना रही हूँ आज का प्रश्न, और हमारे जो श्रोता बंधु सुन रहे हैं वो भी जरूर सुने और जवाब जरूर देवे। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है, घर को सजा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो पल आने वाला है, मिठाई मिल के खाएंगे, परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे।
3: दीपावली का त्योहार आ रहा है ना।
2: देखते हैं भाई, अभी तो बहुत सारे त्योहार है, तो आपने सही जवाब दिया या गलत वो आप आशाना सुनते रहिए, हम जरूर देंगे, ठीक है। और आज का विषय है कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, इसी तरह इंसान का नेचर भी एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, क्या कहेंगे आप?
3: इंसान का नेचर दीदी देखो, कभी ज्यादा पैसे आते हैं तो लालच नहीं करना चाहिए, एक समान रहना चाहिए इंसान ने। मतलब पैसे तो आते हैं और चले ही जाते हैं, और हमें खुशी थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर खुशी चले जाती है
2: जी।
3: तो ऐसा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि पैसे हमको आज से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, सभी समान रहना चाहिए।
2: यहाँ पर समानता की बात नहीं है, नेचर की बात है, स्वभाव संस्कार की बात है कि जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं है, उसी तरह देखिए परिवार में भी सदस्य होते हैं तो भी सभी का स्वभाव संस्कार थोड़ा अलग अलग होता है, और जो हमारे समान संपर्क में आते हैं उनके भी स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, तो कैसे हम उनके साथ एडजस्ट होंगे, यह आज का विषय है।
3: देखो सबके विचार एक जैसे नहीं होते, सभी के अलग अलग होते हैं
2: जी।
3: तो जैसे हम ज्ञानी बच्चों में तो बाबा की शक्ति एनर्जी है ही, और जो बाबा से नहीं संपर्क नहीं रहता उनको तो मतलब कोई ज्ञान के बारे में पता ही नहीं है, और पता है भी मतलब अनसुने हो जाते।
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। देखिए सभी कोई भक्ति में भरपूर होते हैं, कोई किस सत्संग में जाते हैं, ज्ञान तो होता है।
3: हाँ ज्ञान तो होता है दीदी, पर वो क्या है कि जैसे कोई गुरु गुरु के बारे में सोचेंगे कि हमारा गुरु ऐसा करता है, या उनको गुरु की बातें अच्छी लगेगी, हमको बाबा की जैसी बातें अच्छी लगती
2: है। वो अपने अपने ऊपर आधार है। तो चलिए विक्रम भाई बहुत अच्छा। अच्छा आप थोड़ा सा अगर स्पष्ट करना चाहें तो कर दीजिए, क्योंकि दूसरे श्रोता बंधु भी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप?
3: दीदी अभी तो एकदम फोन लग गया, मैं अभी बेल रुके हुए और मतलब ये क्यारियां डाल रहा हूँ।
2: अच्छा तो क्या बात है, काम करते जा रहे हैं आप, खेत में है?
3: हाँ खेत में हूँ, और प्याज का रोपा डालते हैं ना अपन।
2: जी जी जी,
3: इधर तो वो डाल रहा था एकदम, मतलब ये सुन रहा था मैं
2: जी
3: रहा हूँ, तो मेरे मन में कुछ ऐसा विचार नहीं आ कि मैं सवाल का जवाब दूँ।
2: जी जी नहीं नहीं, पर आप रेडियो से जुड़े, अच्छा लगा हमें भी, आप जुड़िएगा ठीक है। हम रोज प्रश्न भी पूछते हैं, खुशनुमा जीवन की बातें भी आप सभी के साथ ही करते हैं, तो आप जरूर जुड़िएगा, और शनिवार को अंताक्षरी में जरूर जुड़िएगा ठीक है।
3: जी
2: बहुत बहुत आभार विक्रम भाई आपका। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह इंसानों के स्वभाव संस्कार भी अलग अलग होते हैं, क्या कहेंगे आप? दूर तक नहीं जाना है, हमें अपने परिवार में ही रह करके देखना है कि किस तरह सभी का नेचर अलग अलग है, फिर भी उनके बीच में हमको एडजस्ट होकर के चलना है, उनको भी चलाना है। हेलो,
4: जय माता जी, जय श्री हरि।
2: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
4: सभी सुनने चाहने वाले मेरे अजीत मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
2: जी।
4: आपको भी
2: आभार।
4: और क्या टॉपिक किया आज का?
2: टॉपिक यह है कि पांचों उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती है, हमारी उंगलियां बरोबर होती है, एक छोटी एक बड़ी, ऐसे है ना, ऐसे ही मनुष्यों के स्वभाव संस्कार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनके साथ कैसे हम एडजस्ट होकर के चलेंगे?
4: एक्चुअली आपने बहुत सुंदर टॉपिक भी रखा है। देखिए हाथों की अंगुलियां तो समान नहीं होती है, वैसे स्वभाव संस्कार स्वभाव भी एक समान नहीं होते हैं, तो उसमें क्या है अपन को जैसे कि अपना लोगो भी है कि ओम शांति, तो अपने अंदर शांति और धैर्यता रख के अपन जरूर सबसे संपर्क मतलब हिलमिल के रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु भी कहते सर मतलब कोई भी चीज करते हो तो उसको मतलब शांत धैर्यता अपने जीवन में अगर अपन ये ऐसा गुण है कि धारण कर दिया ना, तो किसी भी कार्य को मतलब कोई भी किसी के साथ रिलेशन बनाना है कोई भी कार्य, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी
2: जी। मान लीजिए सामने वाला क्रोधी है तो क्या करेंगे?
4: देखिए अपन सामने वाला क्रोधित है तो अपन शांत कुछ समय के लिए अपन शांत हो जाएंगे ना, तो उसका क्रोध शांत हो सकता है। और उस मतलब वो शांत होने के बाद में अगर वो उसको भी मन में लगेगा कि मैंने बहुत कुछ बोला है
2: जी,
4: तो मतलब वो ब्लैक बॉल फेंक रहा है, परंतु अपन मतलब ईंट का जवाब अगर पत्थर से देंगे तो वहाँ मामला बिगड़ेगा ना
2: जी।
4: अगर आगे वाला अपना क्रोधित है और वो कुछ अब्द शब्द भी बोल रहा है मगर अपन शांति और धैर्यता रखेंगे
2: जी,
4: तो मतलब वो मामला आगे बढ़ने की जगह फैल जाएगा, नहीं तो वहाँ मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो
2: जी जी।

0: बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है।
1: कहते किसी ने कहा सही कहा है कि देखिए अपन हाथों की पांच उंगुलियां है, अगर अपन एक अंगुली उनकी तरफ करेंगे तो चार उंगुलियां तो अपनी तरफ ही होंगी ना
0: जी,
1: ये गलत है।
0: सही है,
1: अगर उस समय अपन गुस्सा करेंगे तो वो और भी गुस्सा होगा
0: जी जी,
1: तो वहाँ वहाँ तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी ना
0: जी जी। तो सुरेश भाई बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, आपने बहुत अच्छा उदाहरण देने की कोशिश की कि भाई मान लीजिए सामने वाला ब्लैक बोल दे रहा है लेकिन हमें वाइट बोल ही भेजना है, हमें उस समय शांति बनाए रखनी है। सामने वाला क्रोध करता है तो हमें मौन में रहना है, शांत हो जाना है या फिर उस स्थान से हट जाना है, तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी, नहीं तो फिर आप समझ सकते हो। हेलो, हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका, कैसे हो आप?
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं
0: जी जी जी,
2: सुन रहे हैं कार्यक्रम, बहुत अच्छी बातें भी हो रही हैं
0: जी।
2: सुबह से बस हम तो अभी तो 7-8 बजे आ जाते हैं, 7 बजे दुकान पे, तो दिवाली के सीजन ज्यादा है।
0: अच्छा, फिर पूरे दिन रहते हैं दुकान पर?
2: हाँ, सुबह से 7 बजे से रात को 9 बजे कर जाता हूँ, और दोपहर को बस आधा घंटे रोटी खा रहे ही जाता हूँ, क्योंकि घर मेरे पास 1 मिनट की दूरी पर है दुकान से
0: जी,
2: तो बस रोटी खा के तुरंत आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि अभी आराम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काम इतना ज्यादा है, इसलिए
0: जी जी जी। क्या
2: बस 9 बजे घर पे जाके 10 बजे आके विकेश हो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे उठ के मेरा रूटीन बताऊँ, 6 बजे उठ के मैं तुरंत हमारे गांव की जो 10 परब है पानी से, पानी की पर्दे बाजार में
0: जी,
2: तो पूरी भर देता हूँ उठ के जाके, पहला काम मैं ही करता हूँ सब।
0: अरे वाह, क्या बात है,
2: 3 साल से लगातार एक दिन में इसमें कहते छुट्टी नहीं दी है।
0: नहीं तो जैसे आप ये पानी की पर्व भरते हैं तो दूसरों को ऐसे प्रेरणा नहीं मिलती है कि अरे रोज ये कर रहे हैं तो कभी हम भी करें?
2: नहीं, कोई नहीं करता है, क्योंकि मैं सुबह में वही करता हूँ। मैं बताऊँ तो मेरे पास मॉल के पास पर्व है, वो भी कोई नहीं भरता है, मैं ही भरता हूँ, दुकान की तो दुकान वाला है वो कुछ नहीं भरता।
0: अच्छा,
2: तो कोई बात नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ आराम से, मुझे
0: अच्छा नहीं नहीं तो बहुत दुआएं मिल रही है ना, दुआओं वाला काम कर रहे हैं, पंछी पक्षियों को जानवरों को भी तो पानी की आवश्यकता रहती है ना।
2: मैं सुबह में कई बार मुझे 6 बजे जाना होता है कोई जगह पे, तो मैं 4 बजे उठ के कर जाता हूँ काम सुबह में
0: जी,
2: लेकिन करता जरूर
0: जी।
2: बहुत अच्छा टॉपिक भी दिया, जिनकी 5 उंगलियां एक साथ समान नहीं होती, वो भी हमारे कहवत है कि भाई 5 उंगली एक समान नहीं है, तो आप ऐसे मत सोचो कि सभी लोग एक समान है
0: जी।
2: तो कई कई बार यदि घर में भी बताओ तो हमारे बीवी है, बच्चे हैं, बेटे हैं
0: जी,
2: तो वो भी इसका भी थोड़ा सा चेंज होता है, अलग अलग दबाव के सब होते हैं, लेकिन इस दबाव से हमसे सेटिंग करना है
0: जी,
2: क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा कुछ बात होता है जल्दी बोल जाता है, हम तो शांत करते हैं, कोई बात नहीं शांत के हम जो करेंगे तू बोलेंगे हम करेंगे
0: जी, सही है बिल्कुल,
2: लेकिन इसमें क्या है हम इस वक्त हमको बिल्कुल धंधा बनाना पड़ता है, इसको सुनना पड़ता है, इसको जानना पड़ता है, कई कई बार जो पत्नी भी बोल देती है कि कोई बात होती है तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाता है सभी घर में, बेटी और बच्चे को सब थोड़ा सा तो वो भी एक हल कर देते कि चलो भी कोई बात नहीं इसे जाने दो
0: जी जी,
2: जो ऐसे आप एक सामने दूसरे सामने ये सब बोलेंगे तो मामला ज्यादा बढ़ने लगे, लेकिन इसको शांत कर देना और एक को ठंडा हो जाना है और वो आराम से सब कुछ निपटा देंगे बात
0: जी,
2: तो इसी स्वभाव से सबके स्वभाव समझना जरूरी है स्वभाव से, और हमको भी कुछ थोड़ा सा भी चेंजेस करना है, कहते हैं कि जैसा सामने व्यक्ति होता है ऐसे हमको करना पड़ता है, कोई ज्यादा एकदम बोल देता है तो कोई बात नहीं हम समझ लेते हैं तो सही है चलो भाई आपकी बात सही है, लेकिन सही नहीं हो तो फिर एक ये उस वक्त सही कर देंगे तो वो मामला आगे नहीं जाएगा
0: जी,
2: चलो हमारे सुनना तो सुने नहीं सुने तो कोई बात चलो भाई कोई बात नहीं अच्छा है, ऐसे करके हम बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं तो यही मानता हूँ
0: जी जी, बहुत सुंदर,
2: एक दूसरे को सबाव जानना जरूरी, तो
0: जी बिल्कुल
2: कोई बात आगे नहीं जाएगी
0: जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बिल्कुल जी। तो बहुत ही सुंदर बातें स्पष्ट हो रही हैं कि किस तरह 5 उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती उसी तरह परिवार में भी सदस्यों के स्वभाव संस्कार अलग होते हैं, समाज में भी हर इंसान का नेचर अलग होता है, तो तो इस विषय पर और भी अधिक स्पष्ट करेंगे, परंतु अभी ले रहे हैं एक अल्पविराम। पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो।
2: हाँ दीदी, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्कार, हनुमान भाई बोल रहे हैं ना?
2: नहीं दीदी, मैं विक्रम कुशवाहा बोल रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा, हाँ जी विक्रम जी, बोलिए बोलिए।
2: हाँ वो तो क्या था प्रश्न, मतलब पांचों उंगलियाँ
1: प्रश्न? ये विषय है आज का कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती। इसी तरह हर एक का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन हम उनके साथ कैसे रहेंगे, कैसे एडजस्ट होकर के चलेंगे।
2: अच्छा अच्छा, हाँ तो थोड़ा मेरे को दिमाग में आया था कि मैं थोड़ा इसको स्पष्ट करूं।
1: जी जी जी, बिल्कुल करिएगा।
2: हाँ तो दीदी, जैसे पांचों उंगलियां समान नहीं रहती, ऐसे हमारे नेचर भी मतलब एक जैसे नहीं रहते हैं। कभी पलट जाते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी नहीं आता है। कभी हम बच्चों को भी गुस्सा करते हैं
1: जी।
2: कभी हम अच्छे भी रहते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं, ऐसा रहता है
1: जी। तो कैसे सेट होंगे ऐसे? तो फिर गृहस्थी बिगड़ जाएगी ना। हम अच्छे नहीं रहेंगे तो बच्चे सहमे सहमे रहेंगे, हम गुस्सा करेंगे तो बच्चे हमसे दूर रहेंगे।
2: वो बच्चों की बात नहीं है, जैसे हम तो किसान है, जैसे हम मजदूर लेने जाते हैं, मजदूर एकदम परेशान कर देते हैं हमको।
1: जी जी जी।
2: तो हम मजदूरों को समझाते हैं, बाकी नहीं समझते, थोड़ा गुस्सा तो उनसे करना पड़ता
1: जी। वो कहते हैं कि लव एंड लो दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है।
2: दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है। तो हम मतलब हमारे जो विचार है एक जैसे नहीं रहते हैं
1: जी।
2: कभी अच्छे रहते हैं, कभी थोड़ा चेंज आ जाता है।
1: तो चेंज आ गया, उसको वापस कैसे अच्छा बनाएंगे? चेंज किस तरह का आता है?
2: चेंज मतलब दीदी कि जैसे तो अभी तो अच्छे हैं, कभी कोई हमको गलत बातें मतलब आ जाती है, सुन लेते हैं, कभी कहीं गलत अपनों ने कुछ देख लिया तो उसको मतलब हमारे विचार भी वैसा ही बन जाते हैं ना दीदी।
1: जी जी, चलिए विक्रम भाई बहुत बहुत आभार। तो बात चल रही थी कि पांचों उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती, वैसे हर एक इंसान का स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है, लेकिन बना करके रखना पड़ता है, अपने स्वभाव संस्कार को मोल्ड करना पड़ता है, तभी हम सभी के साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे। सामने वाला गुस्सा कर रहा है और हम डबल गुस्सा करें तो क्या होगा? तू मैं बढ़ेगी, लोग इकट्ठे होंगे और फायदा कुछ भी नहीं निकलेगा, उसका कोई भी रिजल्ट, उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जब सामने वाला गुस्सा करता है तो हमें एकदम शांत होकर के सुनना है, क्योंकि उस समय अगर हम कुछ भी एक्सप्लेन भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आवेग में है, क्रोध में है, और क्रोध में है तो वो हमारी बात को नहीं सुनेगा, और बात नहीं सुनेगा तो फिर कहने से कोई फायदा भी नहीं। हेलो। हाँ जी नमस्कार।
3: नमस्कार, करियाग्रास बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा है?
3: कमलेश भाई बोल रहा हूँ, करियाग्रास।
1: अच्छा कमलेश भाई, कहाँ से? माउंट आबू से?
3: नहीं, करियाग्रास, करियाग्रास इडर के पास है, गांव है।
1: अच्छा इडर के पास, बहुत बहुत स्वागत है कमलेश भाई, कैसे हो आप?
3: बस अच्छे हैं दीदी
1: जी।
3: अभी नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ प्रसारण कम्प्लीट नहीं आता है।
1: अच्छा आप इंटरनेट से सुन रहे?
3: नहीं, रेडियो में।
1: अच्छा अगर इस तरह स्पष्ट नहीं आता है तो आप इंटरनेट के द्वारा सुन सकते हैं।
3: इंटरनेट द्वारा इससे बहुत अच्छा आता है
1: जी जी,

जी जी हम समझ सकते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता बंधु जो सुनते हैं वो सुनते रहे, जुड़े रहे। तो अच्छा, ये समस्या भी देखिए जल्दी ठीक हो जाएगी, इसका भी समाधान हो जाएगा। आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप कमलेश भाई? अच्छा, तो मैं प्रश्न अभी बोल देती हूँ, आप सुना दीजिए, जवाब दे दीजिए। प्रश्न बहुत ही सुंदर है, एक कविता की तरह मैं गुनगुना रही हूँ, आप सुनेंगे। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है,

0: परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे। क्या कहेंगे आप जवाब में?
1: ये तो दीपावली की बात है ना।
0: अच्छा, तो आप आशियाना सुनिए, हम जरूर आपके प्रश्न का जवाब देंगे, सही है या गलत है। ठीक है जी, बहुत बहुत बहुत आभार कमलेश भाई। तो देखिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु ऐसे हैं जो कहाँ कहाँ से सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आया कि बहन जी, हम इस कार्यक्रम को सुनते हैं, हम फ़ोन कॉल्स नहीं कर पाते लेकिन कार्यक्रम हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह मैसेज आते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स आते हैं तो पता चलता है कि रेडियो मधुबन के लिसनर कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से वो कोशिश करते हैं। कोई मध्य प्रदेश, कोई यूपी से, उत्तर प्रदेश से, तो कोई विदेश से। जैसे कि आपने शनिवार को बेल्जियम से सुना, दीपक भाई का फ़ोन आया था। हेलो, तो दूर दूर से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और हमारे आबू के अंचल में। आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस तरह इशारा कर रही हूँ कि देखो दूर बैठे हुए श्रोता बंधु फ़ोन कर रहे हैं और हमारे आबू के अंचल में जो ये रेडियो मधुबन चल रहा है, तो हमारे श्रोता बंधु फ़ोन कॉल्स थोड़ा कम करते, सुनते तो हैं लेकिन फ़ोन कॉल्स नहीं करते। कभी फ़ोन कॉल्स करके बता दिया करो कि आप भी रेडियो मधुबन सुनते हैं, ठीक है, हमें भी खुशी होगी। और बात चल रही थी कि भाई जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह हरेक का स्वभाव संस्कार अलग होता है, लेकिन बस हमें उनको नहीं स्वयं को बदलना है। स्वयं को बदलेंगे तो वो कहते हैं ना, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हम ही अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हम भी गुस्सा कर रहे हैं, सामने वाला नफरत कर रहा है तो हम भी नफरत कर रहे हैं, सामने वाला उदासीन है तो हम भी उदासीन है, तो फिर तो हमारे अंदर और उनमें क्या फ़र्क है, कोई चेंज नहीं है ना। इसलिए हमें अपने स्वभाव संस्कार को सुधारना है कि सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हमें शांत रहना है, सामने वाला नफरत कर रहा है लेकिन हमें प्यार ही करना है, शुभ भावना ही रखनी है उसके प्रति, अपनी भावनाओं को चेंज नहीं करना है कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, वो ऐसा है, वो वैसा है, नहीं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि जो क्रोध रूपी भूत आ जाते हैं तो पूरे दिन के लिए टिका नहीं रहता, वो वापिस चला भी जाता है, इसलिए हमें शुभ भावना ही रखनी है। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग रूप शांति।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो?
2: बस बहन जी ठीक है, अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं,
2: जुड़े हैं। तो रेडियो तो नहीं सुनाई देता, इंटरनेट से भी हाथों पर कट के आवाज आती है
0: जी,
2: और अभी पहले भी लगाया था लेकिन बात नहीं हुई, तो अभी दूसरी बार ट्राई किया था, लग गया।
0: चलिए अच्छी बात है, फोन लग गया वो अच्छा है। अच्छा, आप आज के प्रश्न का जवाब देंगे?
2: हाँ, जवाब तो ये है, दीपावली सबने दिया है ना, आपने गाना गा के जो बताया, मैंने सुना था, तुरंत पता चल गया था लेकिन थोड़ी देरी हुई कॉल करने में।
0: अच्छा, और आज का विषय है पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, इसी तरह हर इंसान का नेचर अलग अलग है, हम कैसे उनके साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे, क्या कहेंगे आप?
2: हाँ, वो तो है जी, समाज में, समाज की बात है या घर परिवार की?
0: जी, समाज की, परिवार की, स्वयं की, कैसे कभी एग्जांपल दे सकते हैं जी?
2: समाज में तो क्या है बहन जी, कि भाई कोई चार गांव का हमारा गोल है, ठीक है, तो कौन का स्वभाव कैसा है वो तो हमें देरी से पता चलता है, एकदम तो पता नहीं चल जाता
0: जी।
2: तो ये थोड़ी देरी होती है इसमें, लेकिन घर परिवार की जो बात करें तो घर परिवार में तो हम पहचान जाते हैं कि भाई इसका स्वभाव कैसा है, ऐसा है
0: जी।
2: तो कोई बात हम घर पे करते हैं तो हम इशारे से बंद कर देते हैं, कोई ऐसा हमारा बेटा है, कोई बेटी है, ऐसा घर बाहर होती है तो आ जाती है, तो क्या हम इशारे से सबको बोलते हैं कि चुप चुप कर दो, ये सब बातें बंद कर दो, क्योंकि इसमें स्वभाव एक तरीका नहीं होता और वो इसमें ये बोल देती है कि बोल देता है कि भाई मेरे को सुना रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है
0: जी। जी, चलिए, बहुत बहुत आभार।
2: जी नेचर ऐसा है, एक तरह की उंगली
0: जी जी
2: नहीं
0: जी।
2: होती, कोई किसी का उग्र स्वभाव होता है, किसी का शांत स्वभाव होता है।
0: जी चलिए कंचन भाई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है इसके लिए, और बस इस विषय को यही समाप्त करेंगे, क्योंकि भाई अगले भी आपको आशाना के किचन में भी तो आना है ना, तो बस कहने का भाव यही है कि स्वयं को बदलना है, न कि दूसरों को। हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन दूसरे को शिक्षा देने के पहले खुद को देखना है कि मैं अमल कर रही हूँ, कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो स्वयं को बदलेंगे तो विश्व बदलेगा, इसलिए हमें स्वयं को बदलना है। हम बदलेंगे अपने स्वभाव संस्कार को अच्छा बनाएंगे तो हर एक के साथ हम अच्छी तरह एडजस्ट होकर के चलेंगे, चाहे सामने वाला क्रोधी है, चाहे सामने वाला उदासीन है, या फिर किसी भी प्रकार का है, लेकिन हम उसके साथ अच्छी तरह एडजस्ट होकर के चल सकेंगे। और आइए बढ़ते हैं फिर से एक गीत की ओर, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 101.3।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो हम जरूर आपको आज गुजराती डिश सिखाएंगे, राजस्थानी भी है। ऐसा मत सोचिएगा कि राजस्थान में नहीं चलता है, लेकिन बस नाम अलग अलग है। गुजरात में कहते हैं सुवारी और राजस्थान में उसको खाजिया कहते हैं। अब देखिए, राजस्थान में भी बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे गांव हैं, अलग अलग जिलों में इसको अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन इसका प्रॉपर गुजराती में नाम है सुवारी और राजस्थानी में है खाजा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये सिखाऊंगी, क्योंकि ये दीपावली पर बहुत ही बनाए जाते हैं। सुवारी, मठिया, चोराफली, घूगरा, इस तरह के आइटम गुजरात में बहुत बनती है। उसके बाद और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये तो आपको हर घर में मिल ही जाएंगे दीपावली के दिनों में। जिसके भी घर पर आप मिलने जाएंगे ना, तो ये चार चीज़ें तो आपको नाश्ते में मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा फिर तो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें भी बहुत सारी बनाते हैं, जो आए दिन हम आपको सिखाते रहते हैं। तो चलिए, सुवारी बनाने से पहले आज का प्रश्न एक कविता की तरह मैंने बनाया है। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, बहुत ही सरल प्रश्न है, ज़रूर आप जवाब देंगे और रेडियो मधुबन से जुड़ करके जवाब देंगे। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है,

परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे, परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे। तो ऐसा कौन सा त्योहार आने वाला है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उस त्योहार पर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो भले किसी भी राज्य में रहता हो, किसी भी शहर में रहता हो, लेकिन तो वो लौट आता है। कब लौट आते हैं अपने घर और कैसे परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। और चलिए सुवारी बनाना सिखा देती हूँ। आप एक किलो लीजिएगा मैदा, ठीक है, फिर आप लीजिए 250 ग्राम मोवन के तौर पर तेल, और 250 ग्राम ही आपको लेनी है शक्कर, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार तलने के लिए फिर से तेल। बस इतनी सी ही सामग्री है जिसको फिर से दोहरा रही हूँ कि एक किलो लेंगे मैदा, 250 ग्राम लेंगे इसके अंदर मौन डालने के लिए तेल या फिर घी, ठीक है। राजस्थान में घी यूज़ करते हैं, गुजरात में तेल यूज़ करते हैं मौन डालने के लिए। अब आपको जो इच्छा हो वो लीजिएगा। अगर घी ले रहे हो तो 200 ग्राम लेना, तेल ले रहे हो तो 250 ग्राम लेना, ठीक है, और 250 ग्राम ही लेनी है आपको शक्कर। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 250 ग्राम लीजिएगा शक्कर, और अगर स्लाइट मीठा खाना चाहते हैं तो 200 ग्राम शक्कर लीजिएगा, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार आप तेल लीजिए तलने के लिए। अब मैं बनाने का तरीका भी साथ साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, मैदे को पहले छलनी से छानिए, ठीक है, छानने के बाद मैदे की छलनी से छानना हो, ऐसे नहीं आटे की छलनी से छान रहे हो, मैदे की बारीक काने वाली होती है, ऐसी छलनी से छानिएगा ताकि कचरा ऊपर आ जाए, आटे की छलनी से छानेंगे तो सारा ही अंदर चला जाएगा। फिर आप चीनी को थोड़ा पानी में घोल करके एक रस कर दीजिए, ठीक है, और इस पानी से आपको इस लोट को बांधना है, लेकिन पहले आप मोवन डालिए, तेल या घी जो भी, फिर अच्छी तरह उसको मिक्स करिए मैदे को और मोवन को, फिर आप ये चीनी वाले पानी से अच्छी तरह आटे को बांध दीजिए। पानी ज़्यादा नहीं लेना है, अबे ज़्यादा भर के तपेली कर दी है और उसमें चीनी इतनी ही डाली है, फिर पता चला कि सुवारी बनाने के बाद बहुत ही फीकी लग रही है तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही पानी लेना है। पानी तो हम सादा पानी भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन चीनी वाला पानी हमको ज़्यादा नहीं बनाना है, आवश्यकता के अनुसार जितना उस आटे को बांध सके, ठीक है, फिर उससे आप इस लोट को अच्छी तरह बांध दीजिए। फिर आवश्यकता पड़े कि भाई थोड़ा सा पानी की कमी है तो ऊपर से आप सादा पानी भी ले सकते हैं, तो इस तरह अच्छी तरह इसको फिट बांध दिए, ठीक है, बांध करके आप गीले कपड़े से ढक करके एक घंटे तक रख दीजिए, दूसरा काम करने लग जाइए। दूसरा काम हो गया आपका, फिर उसको वो अच्छी तरह गल के तैयार हो गया, अब उसके लुए बना करके फिर आप जो भी साइज पसंद करते हो उस साइज में आप बेलिए, बेल करके आप स्वच्छ कपड़े पर डालते जाइए, ठीक है, और जब आपके सारे ही डल जाए, या फिर आप दो जने हो, दो मिल करके कर रहे हो, तो फिर एक जने क्या करेंगे, तेल गरम करिए कढ़ाई में और तलते जाइए, और भाई अकेले हो तो फिर आप सारे बना दीजिए, लेकिन क्या करना है, जो पहले हम सुवारी डालते हैं ना उसका आप इकट्ठा करते जाइए, ज़्यादा नहीं सूखने देना है, भाई ज़्यादा सूखेंगे ना तो फिर तलते समय वो टूटेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं सुखाना है, जो पहले सुखाया है उनके आप जेट बनाइए, एक दूसरे के ऊपर रखिए, ठीक है, ताकि वो क्या है कि एक दूसरे के ऊपर रखने से दबे रहेंगे, फिर ऊपर से कुछ ढक दीजिए, कोई बड़ी सी पतीली है ढक दीजिए ताकि हवा नहीं लगे, पहले हवा लगानी है बाद में नहीं लगानी है, थोड़ी सी ही लगानी है, ठीक है। फिर आपके सारे जब सुवारी तैयार हो जाए बेल लो, उसके बाद आप कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल रखिए, गैस चालू करिए, तेल को गर्म कर दीजिए और मध्यम आंच पर सुनहरी होने तक ये सारी सुवारी तल दीजिए। चिमटे से निकालना है इसको, ठीक है, जाली वाली नहीं लेनी है, चिमटे की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए चिमटे से ही आपको निकालना है, और फिर ठीक है चिमटा नहीं है तो जाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि चिमटे से आप लेते हो ना तो वो जो अतिरिक्त तेल कढ़ाई में ज़्यादा चला जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ा सा प्लेन पेपर में रखिए, सफ़ेद पेपर आता है ना उसमें रखिए, उसको आप थाली या ऐसे तगारी की तरह होता है ना, जिसको हम तासला भी कहते हैं, तासले की तरह होता है, उसमें आप रखिए, पेपर बिछा दीजिए और ये निकाल के रखिए, ताकि और भी थोड़ा बहुत तेल हो तो वो पेपर आपका चूस ले, ताकि तेल ज़्यादा हमारे नहीं जाए,
तो इस तरह सुनहरी सुनहरी सारी सुवारी तल दीजिए। अब देखिए, पहले बहुत सिंपल बनाए जाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा क्रेज चला है कि आटा बांधते समय कोई इलायची पाउडर भी डाल देते हैं, कोई तिल भी डालते हैं, सफ़ेद तिल, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिंपल बनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, टेस्टी ही लगेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है बनाने का कि मैदा छानना है, छानने के बाद मैदे में मोन डाल देना है, तेल या घी, अगर घी डाल रहे हैं तो उसको पिघला करके डालिए, ठीक है, और तेल डाल रहे हैं तो ठीक है, और अच्छी तरह मिक्स करिए दोनों हाथों से। फिर एक तरफ आप चीनी वाले पानी को अच्छी तरह घोल दीजिए, थोड़ा सा आप गैस पर भी गर्म कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, और बाकी ज़्यादा कर रहे हो तो उसको ठंडा होने दीजिए, नव सेका हो तो चलेगा लेकिन गर्म होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि बांधते समय हाथ जलेंगे, इसलिए अच्छी तरह चीनी को पानी में एक रस करके फिर उस पानी से इस आटे को अच्छी तरह बांध दीजिए। अगर आप ऐड करना चाहते तो थोड़े सफ़ेद तिल बांधते समय डाल दीजिए, इलायची कूट करके इसको भी डाल दीजिए, फिर आप चीनी वाला पानी डाल करके अच्छी तरह आपको बांधना है, इसको गूंदना है, गूंद करके भले आधा घंटा भले एक घंटा आप गीले कपड़े से ढक करके इस आटे को रख दीजिए और आप दूसरा कार्य निपटा दीजिए, दूसरा काम आपका हो जाए, भले आधा घंटा भी भीगेगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। वो काम होने के बाद बस लुए बनाइए, लुए बना करके फिर आप बेलिए, जो भी साइज पसंद करते हो, पूड़ी की साइज पसंद करते हो या रोटी की साइज, वो आपके ऊपर छोड़ा है, और बेल करके आप डालते जाइए, एक स्वच्छ कपड़े पर साड़ी बिछा सकते हैं और उस पर डालिए, फिर पहले वाले जो सुवारी है उसके थप्पी लगा दीजिए, एक के ऊपर रख दीजिए ताकि उसको ज़्यादा हवा नहीं लगे, तलते समय वो टूटे नहीं, और एक भगोना उसके ऊपर ढक दीजिए, और इस तरह सारे ही सुवारी बेल करके तैयार कर दीजिए। फिर आप रखिए कढ़ाई में तेल गरम, तेल गरम हो जाए तो मध्यम आंच पर सुनहरी सुनहरी होने तक दोनों तरफ से आपको मठिये तलने हैं, मठिये नहीं सुवारी तलने हैं, चिमटे से आपको थाल भी फेरनी है और अच्छी तरह तल करके चिमटे से आपको निकालना है, तुरंत नहीं निकालना है, थोड़ा सा क्या करेंगे आप, तो चिमटे से जो आपने सुवारी पकड़ रखी ना, हल्के से आप कढ़ाई के किनोर से थपकारिए ताकि और भी जो तेल है वो अंदर ही टपक जाए, फिर आप पेपर में रख दीजिए, इस तरह सारी सुवारी आपको निकाल देनी है, इस तरह बनाना है, ठीक है। तो चलिए सुवारी तैयार है, अब हम आपको और भी कुछ सिखाएंगे लेकिन कल, भाई आज तो समय आप देख रहे हो कि होने को आया है, इसलिए हम तो रोज ही सिखाते हैं। तो आइए अभी सुनते हैं गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
2: जुबान चलाती है,
0: एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
3: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
3: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं?
4: नहीं ना। प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, बहुत ही सुंदर विचार था, तो बहुत ही सुंदर नुस्खे भी आपको दिए हैं, और बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा है कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती। इसी तरह परिवार के सदस्यों के भी स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, लेकिन तालमेल बिठा करके अच्छी तरह हिलमिल करके चलना है, और उसके लिए हमें स्वयं को बदलना है, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत अच्छा था, देखते हैं आप भी सोच रहे होंगे कितना सरल प्रश्न है, लेकिन कभी कभी सरल प्रश्न भी पूछना चाहिए। तो जवाब तो आप सभी को पता ही है, सभी ने सही दिया है। जुड़े हैं सुरेश भाई झोटाना से, सबसे पहले इन्होंने जवाब दिया है, फिर सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, विक्रम भाई कुशवाहा बड़वानी मध्य प्रदेश से, हनुमान जी यूपी से, उत्तर प्रदेश से आप जुड़े हैं, कमलेश भाई इडर गुजरात से जुड़े हैं आप, कंचन भाई मंडाली से, कुपाराम जी कोजरा से, और लीला जी कोजरा से। आप सभी ने सही जवाब दिया है, दीपावली। तो बिल्कुल सही है, दीपावली का त्यौहार आने वाला है, और दीपावली के त्यौहार पर ही पूरा परिवार इकट्ठा होता है, चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, लेकिन दीपावली के एक दो दिन पहले ही अपने घर लौट आते हैं। तो सभी के लिए ढेर सारी तालियां। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी राम जी पर, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे आशियाना कार्यक्रम लाइव में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, जब हम हिंसा की बात करते हैं, वो हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हिंसा की वजह बन जाती है और हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसी ही एक चीज है पितृ सत्तात्मकता। लेकिन ये पितृ सत्तात्मकता क्या है और कैसे हमारे दैनिक जीवन को, हमारे संस्कारों को प्रभावित करते हैं, आइए सुनते हुए देखते हैं इस नाटक के माध्यम से।
4: माँ, मारा तो पढ़नो है आगे, और तू मारी शादी की बात कर रही। कॉलेज को पहलो साल बीच में छुड़ावा को कह रही। माँ, कॉलेज तो कम से कम पूरो होवा दो, प्लीज मारो सपनो मत तोड़ो माँ, प्लीज।
5: देख बेटा, थारो सपनो थारा हावरा वाला पूरो करी। सारी बाता होगी है वे थन आगे पढ़वा दे, मैं थन आगे पढ़ाऊ तो दहेज खूब देनो पड़ी, और थारी दो छोटी बहन भी है वहाँ को भी सोचना है मारे।
6: देख बेटा, मारी माँ भी मने यही सलाह दी थी और मुँह भी थाने यही सलाह दे रही हूँ, बस कोई शिकायत मत लाइजे, ठीक है ना?

0: राजू की माँ, राजू का हारा हूँ दहेज तो खूब आयो, पर टीवी वॉशिंग मशीन ये सब चलावा तो लाइट बिल कौन भरी, यो विचार की दो।
1: राजू का बापू थे कई चिंता करो, मैं यो सब चला भी नहीं देऊ तो पछे बिल भरनो ही नहीं पड़ी।
0: वाह राजू की माँ वाह, मान गयो मैं थने, थारो नाम शानी यूं ही को नहीं राख्यो थारा माँ बाप।
2: सुनो मारे आगे पढ़ाई करनी है, थे केवो तो मैं आगे पढ़ू।
3: मारी माँ ने पूछे बताओ।
1: बेटा बींदनी तो घनी अच्छी है ये, पर गूंग तो घनो ओछो काढ़े, यो अभी को पीर कोई नहीं है, हारो है।
3: ठीक है माँ, माँ सीता आगे पढ़वा को कह रही है।
1: पॉटन कसी मास्टर जी बन जाई, घर को काम कुन करी, थू करी गई।
4: माँ केड़ी बात करे थू, भाभी की इच्छा है पढ़वा की तो पढ़वा दे, मैं भी तो कॉलेज कर रही हूँ, पछे भाभी क्यों नहीं।
1: छोरी तू पढ़नी कोई नहीं है जो मने अतरी शिक्षा दे रही है।
5: सीता ए सीता होबर, तू घूंघट वदारा काढ़िया कर, अटे थारो हावरो है हजमी के।
2: थे केड़ी बात कर रहा, मैं सगला जाना रो अतरो ध्यान राख रू, फिर भी थाने शिकायत है मारा सु।
5: मने को नहीं, मारी माँ ने। देख सीता अपना घर में माँ की इच्छा ले, माँ जो केवे वा पत्थरी लकीर होवे हैं, इन वास्ते तारे मारी मारो किनो माननो इस पड़ी।
4: अरे भाभी जदी देखो जदी थे ठंडो खानो ही खावो, माँ भाभी तो कई नहीं बोले, पर थू तो समझदार है, बहू भी चाहिए और बहू का साथ में भेदभाव भी।
1: बेटा केड़ी बात करे, मैं और बींदनी का साथ में भेदभाव।
4: हाँ माँ, अगर भेदभाव नहीं हो तो थू भाभी ने भी साथ में खानो खिला दी, सगला जना साथ में बैठन भोजन करा तो प्रेम बढ़े और एक दूसरा को ध्यान भी रेवे। माँ बहू और बेटी ने समान समझ, यदि घर में खुशियाँ बनी रही।
1: ठीक है ज्यादा शिक्षा मत जाग, मैं देख ले हमारे आगे कई करनो है।
2: अरे रीटा तू बोल, घड़ा दिन बाद मने याद की दी।
6: सीता मने ठा पड़ी कि मैं मौसी बनवा वाली हूँ तो मने खूब खुशी हुई। सुन हॉस्पिटल तो घी ना, और सुन टीवी में कोई अच्छो प्रोग्राम देख जे ताकि बच्चा में संस्कार हव उतरे, ठीक है। वॉशिंग मशीन तो चालू की दी ना।
2: हाँ रीटा हाँ।
6: अरे सीता तू डरती डरती क्यों बोल रही, सब ठीक तो है ना।
2: रीटा मैं थारा हूँ कई छुपाऊ, तू जो सोच रही है कोई भी चीज नहीं वेणी है, सासू माँ घना कड़क है, टीवी और वॉशिंग मशीन तो चालू भी कोनी की दी।
6: कई बात कर रही थी, आज का जमाना में टीवी नहीं देखवा दे, वॉशिंग मशीन में कपड़ा को नहीं धोबा दे, या कई बात मारा समझ में को नहीं आ रही। थने तो अंकल जी अतरो दहेज दी दो, पछे तू काई करे अतरा सामान को।
2: रीटा कतरो भी दहेज में सामान दी दो वे, पर हारा में वही सामान पे बहु रो कोई अधिकार कोनी वे वे है।
6: सीता मैं तो सोच रही थी कि आज को समय बदल गयो और लोगा की सोच आधुनिक भी, पर बहू का प्रति तो आज भी वही पुरानी सोच।
2: हाँ रीटा, पर सुन मारा मम्मी पापा ने कोई बात मत कीजे, नहीं तो वे टेंशन में आ जाए। चल रखू फोन, है ना।

0: माँ सीतन शक्कर आवेरी है नवा घबराए रही है, तो मोबाइल हॉस्पिटल लेन जाओगे?
1: चुप बैठ चोरू का गुलाम, थोड़ा चक्कर कहीं आ गया जी, ऊंचो नीचो वे गयो, यो तो चालिया करे, जा तू काम पे जा।
0: ठीक है माँ।
2: अरे राजू भाई बिनणी क्या ने, मने खबर पड़ी कि थे पिता बनवा वाला हो।
0: भाभी ते सही हो ब्रावियो।
2: अरे मैं कई हर मानो, यो बताओ थे बिनणी को चेकअप करवायो कि नहीं, तबियत तो ठीक है?
3: भाभी थे जानो माने, मैं कई बोल को नहीं सकू, आज भी सीता ने खूब चक्कर आ रहा हाँ, पर माँ हॉस्पिटल जावा के वास्ते मना कर दियो, थे समझाओ माने।
2: थे कई चिंता मत करो, मैं सब देख लूं, थाका घर में ही जा रही हूं।

0: थैंक यू भाभी।
1: राम राम काकी सा, राम राम।
2: आओ भाई राधा आओ। राम राम। अरे बीनड़ी देख अपना घरे कौन आया।
3: हाँ सासुमा आई। पावा दो।
1: खुश रहो। अरे बीनड़ी नीचे क्यों बैठ रहा हो, थे कुर्सी पे बैठो।
2: राधा केड़ी बात करे, छोटा मोटा रो कायदो होवे के कोनी होवे, तू तो आशा सहयोगिनी की बगै छोटा मोटा रो कायदो ही भूल गई।
1: काकी सा आप सही कह रहे हो, पर बीनड़ी पेट से है और घर की बहू भी, ये पछे क्यों जमीन पे बैठी है। अरे बीनड़ी की जांच कराई कि नहीं।
2: देख राधा आपने भी टाबर व्या एक भी दिन दवा खाने को नहीं गया, पछे बीनड़ी ने क्यों ले जानो दवा खाने।
1: काकी सा आपनो टाइम अलग हो, आपना छोरा छोरी अबे मोटा हो गया परण गया, समय गणो बदल गयो, आजकल केड़ी केड़ी बात सुनवा में आवे। फलाना बालक के गला में नाल लपट गई, फलानी के ऑपरेशन हो गयो, डीगड़ी के बालक गर्भ में ही खत्म हो गयो, वगैरह वगैरह।
2: तो दरपा मत राधा।
1: दरपावा की बात को नहीं काकी सा, आजकल एड़ो हुए रहे है। मैं आई बीनड़ी ने दवा खाने ले जावा वास्ते, पर मने लाग रही है बीनड़ी के साथ में आपे भी ले जाऊं दवा खाने, तो चलो दो ही मारा साथे।
2: चलो बीनड़ी दवा खाने चला।
4: बहुत अच्छा किया माता जी जो आप अपनी बहू को यहाँ जांच के लिए लेकर आए। गर्भावस्था में गर्भवती महिला की समय समय पे जांच बहुत जरूरी होती है, जैसे पहले 3 महीने में कम से कम एक बार जांच अवश्य कराना है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है कि नहीं, कोई कमी है या उसकी कोई ट्रीटमेंट लेनी है तो जरूरी हो जाती है। फिर अगले तिमाही में जो बीच के 3 मास होते हैं, चौथा पांचवा छठवा, उसमें कम से कम 2 बार जरूर जांच करा लेना चाहिए। और आखिरी के तिमाही में तो हर महीने में एक बार लाके जरूर जांच करानी चाहिए महिला की, क्योंकि बच्चा उस समय बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है, तो कोई उसकी तकलीफ होगी या माता को कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चे की कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाती है। इसलिए अच्छा किया जो जांच कराने लेकर आए, इसी तरह हर महीने में लेके आते जाना। साथ ही गर्भावस्था के दौरान खून की कमी हो जाती है क्योंकि बच्चे को भी खून जा रहा है माँ के शरीर से, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती है हर गर्भवती महिला को, वो लेते रहना है प्रॉपर। उसके साथ साथ खाने में भी ध्यान देना है कि हरे पत्तेदार भाजियां, फल जो आपके आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करते रहें ताकि जच्चा और बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा मेंटेन रहे, वजन अच्छे से बढ़े, माता का भी बच्चे का भी, और हीमोग्लोबिन की भी कमी ना हो, नहीं तो खून की कमी हो जाती है क्योंकि आजकल के खान पान में पहले जैसा समय नहीं रहा कि वही सारी चीजें मिल जाएगी। आजकल खान पान में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, कितने कीटनाशक वगैरह मिलाते हैं तो पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, इसलिए पहले का समय और अभी का समय बहुत बदल गया है। इसलिए जागरूक रहना, स्वास्थ्य के विषय में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहें, अच्छा लिखाना पढ़ाना चाहें तो जरूर पढ़ाएं, ताकि जितनी समझदार महिला होगी, पढ़ी लिखी महिला होगी, तो अपना स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे से कर पाएगी। अगर आपकी बहू पढ़ना चाहती है तो उसे जरूर पढ़ाइए, क्योंकि उसको जितनी जानकारी होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तो वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएगी, तो अपने बच्चे का भी रख पाएगी और घर बार का भी अच्छे से ख्याल रख पाएगी, तो इसलिए जरूर पढ़ाइए।
2: आज सो थाने खुद को ध्यान रखनो है, डॉक्टर का अनुसार आर्यन की गोली टाइम से लेनी है, जो भी सलाह देवे वनी अनुसार थारे चालनो है, एड़ा टाइम पर तू खुद पे अकेली मत समझे, मार सब अगला थारा साथ में हाँ, ठीक है। राजू सुन, तू बीनड़ी को पूरो ध्यान राख जे।
5: देखा दोस्तों, एक सास अपनी बहू को बेटी बनाती है तो कितना बदलाव आता है, और हम ये सीखते भी है कि महिला महिला की दुश्मन नहीं, दोस्त भी बन सकती है। दोस्तों, पितृ सत्तात्मकता हमारे घर परिवार और व्यक्तिगत जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। पितृ सत्तात्मकता हमारी मानसिकता है और ये कैसे घरेलू हिंसा का जरिया बनता है, आइए सुनते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कंचन मलिक जी। आप यूनेस्को के द्वारा बनाए गए किताब जेंडर मैनुअल के लेखिका है, आप फैकल्टी फेलो है यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया के, आप प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। तो आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट कंचन जी के द्वारा।
6: तो पेट्रियार्की या पितृसत्ता एक प्रकार की मानसिकता है, इट्स एन आइडियोलॉजी, और एक प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी सोसाइटी का एक प्रकार का बिलीफ सिस्टम समझ लीजिए, वो है जिसमें जो मेन हैं उनको एक प्रकार से विमेन से सुपीरियर माना जाता है, तो और विमेन को एक तरह से सबॉर्डिनेट माना जाता है। सो ये जो सोच है, इस सोच को हम पेट्रियार्की कहते हैं। ये सोच कहाँ से आती है, इसका जो थोड़ा कनेक्शन हम बना सकते हैं वो इस बात से बना सकते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हम एक सोशल पैकेज सा होता है जो उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि अब ये लड़का है तो ये सब करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ये पहनेगा, और लड़की हुई है तो ये इस प्रकार रहेगी, इस प्रकार से इसको बड़ा करेंगे, इसको ये सब सिखाएंगे। कुछ रोल्स और कुछ रूल्स बना देते हैं हम उनके लिए। तो वहां तक तो कुछ चलता है, ठीक है। कुछ चीजें इसलिए भी बनाई जाती हैं क्योंकि वो सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं या ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है कि जो हम रोल उनको देते हैं, जैसे कि घर संभालने का काम है या केयर गिवर का काम है, तो वो जो हम जैसे औरतों को देते हैं और जो आदमी हैं या मर्द हैं उनको जो हम काम देते हैं कि वो जो हैं वो घर के लिए कमा कर लाएंगे, और तो वो जो रहता है उसको हम एक बड़ा काम समझने लग जाते हैं और इसको एक सबॉर्डिनेट काम समझने लग जाते हैं। तो हम एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं काम की भी। सो उसके होते हुए समवेयर जो पावर है वो डिसीजन मेकिंग की या किसको क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज जो हैं वो आदमियों के हाथ में चले जाते हैं। तो उससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर जो मेन हैं दे हैव बिकम दे होल्ड अ हायर स्टेटस इन सोसाइटी, अ हायर सोशल पोजिशन है उनकी सोसाइटी में विमेन के कंपैरिजन में।
4: जी
6: उस चीज को हम पेट्रियार्की कहते हैं। पेट्रियार्की का इश्यू है, ये सोच का है कि भाई कौन किसको दबा रहा है और कौन किसको अपना लाइफ में डिसीजन और चॉइस लेने की छूट नहीं दे रहा है। तो जैसे आपने कहा, अगर सास वो नहीं करने दे रही है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आया कहाँ से है ये देखने की बात है। आया सारा पेट्रियार्कल वैल्यूज से है, पितृसत्ता की वैल्यू से है, जहां पे एक्सपेक्टेशन ये होती है आपसे कि आप वो करें जो आपसे जो रूल बने हुए हैं, जो रोल बने हुए।
5: दोस्तों, मैं तो कंचन जी से सहमत हूँ। घर में नियम भले कोई भी बनाए, लेकिन उसको लागू करने में महिलाएं कसर नहीं छोड़ती है। अगर हम पितृसत्तात्मकता में बदलाव लाना चाहते हैं, तो बदलते समय के साथ हम एक दूसरे को समझे और सहयोग भी करें, तभी हम कह सकते हैं, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं एक गीत आरजे उषा के द्वारा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं?

रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, तो रविवार हो गया है और हाजिर हो गया हूँ कार्यक्रम हम राही लेकर के हमेशा की तरह। और इन दिनों मैं ये कह सकता हूँ कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अच्छी अच्छी कहानियों को, प्रेरणादायक कहानियों को और प्रभावित करने वाली हस्तियों को आप सबके बीच में लाएं, क्योंकि हम

0: ही एक ऐसा कार्यक्रम है जो हम जिसके माध्यम से समाज में एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं, खासकर हमारे जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनको जॉब अच्छी मिल जाती है थोड़ा बहुत संघर्ष करने के बाद, लेकिन ज्यादा संघर्ष अपने जीवन साथी की तलाश में करना पड़ता है। तो ये संघर्ष कुछ कम हो सके, और बल्कि ये संघर्ष हो ही नहीं, समाज सभी को एक समान समझे, यही उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं। और आप सबके सहयोग से उम्मीद है कि एक न एक दिन इस उद्देश्य में जरूर सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ ये निवेदन भी दोस्तों, कोई भी दिव्यांग साथी जो विवाहित है हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। खैर, तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में देश की राजधानी दिल्ली से श्रीमान आर के शुक्ला सर और उनकी श्रीमती जी हेमा मैम को। तो शुक्ला सर और मैम, आप दोनों का हमारे इस हमराही कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद संदीप जी।
0: जी शुक्ला सर, तो हेमा मैम आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद संदीप जी।
0: जी तो आर के शुक्ला सर, आप पहले हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताएं कि मूल रूप से आप कहां से हैं और क्या कर रहे हैं आजकल, कौन सी डिसेबिलिटी है आपको?
1: संदीप भाई, मैं मूलतः तो यूपी में कानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं।
0: जी।
1: और विगत तकरीबन 40 साल से दिल्ली में ही हूं। और बाय बर्थ ब्लाइंड हूं मैं।
0: जी सर।
1: मतलब जो मेरी डिसेबिलिटी है वो
0: जी
1: बाय बर्थ है।
0: अच्छा, और वर्तमान में क्या कर रहे हैं?
1: हाँ, वर्तमान में मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में सेक्शन ऑफिसर।
0: अच्छा, तो ये आरके का पूरा नाम क्या सर आपका? मतलब
1: राकेश कुमार शुक्ला।
0: ओके ओके ओके। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये कि आपकी एजुकेशन और सब कुछ जो है वो दिल्ली से ही हुई है?
1: हाँ, मेरी दरअसल प्रारंभिक शिक्षा जो है वो तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा
0: जी,
1: चित्रकूट के पास ही पड़ता है
0: जी,
1: तो वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ दिल्ली आ गया
0: जी,
1: तो दिल्ली से ही जो है मैं 10+2 और उसके बाद फिर बीए एमए सारा सब कुछ दिल्ली से ही हुआ। 1988 में मैंने 12th पास कर लिया था, जिसी दौरान एसएससी के टेस्ट चालू हुए थे। पहला टेस्ट जो है 1987 में हुआ था, दूसरा 88 में हुआ था। तो 88 वाले टेस्ट में मैंने भी अप्लाई कर दिया
0: जी,
1: तो उसमें ही मेरा सिलेक्शन हो गया।
0: अच्छा।
1: तो उसके बाद 90 के लास्ट में रिजल्ट आया, और फिर प्रक्रिया मतलब पूरी करते करते जो है उन्होंने 6 महीने लगा दिए। जुलाई 91 में मेरी पोस्टिंग हो गई
0: जी,
1: तो जुलाई 91 में मैं सर्विस में आ गया।
0: क्या बात है।
1: और 92 में ये मेरे जिंदगी में आ गए, मतलब मेरा इनसे मिलना जुलना हो गया।
0: ये भी बड़ा अच्छा संयोग है कि जॉब पहले और फिर उसके बाद में आपके जी, जीवन जी, साथी का, आपके हमराही का आना हुआ आपकी जिंदगी में।
1: जी जी जी।
0: क्या
1: दरअसल क्या है कि एक हमारे मित्र हैं, वो बहुत ही मतलब एक तरीके से वो बड़े भाई की तरह ही है हमारे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉइंट डायरेक्टर थे, अब तो रिटायर हो गए, आपने शायद नाम भी सुना हो, डॉक्टर राम मिलन व्यास का।
0: जी सर।
1: तो उनके पास मतलब ये आती जाती थी, मतलब ये हंसराज से थी, वो भी हंसराज के ही पढ़े हुए थे
0: जी।
1: तो दरअसल क्या कि उस टाइम पे उनकी PhD चल रही थी
0: जी,
1: तो थीसिस वगैरह लिखने के लिए उन्होंने कहा होगा अपने लेक्चरर्स को
0: जी।
1: तो वहाँ उस दौरान एक श्रीवास्तव जी थे, तो उन्होंने इनको उनके पास भेजा।
0: अच्छा।
1: कि भैया आप सर के पास चले जाओ, उनके थीसिस वगैरह में थोड़ा सा मदद कर दो
0: जी।
1: तो ये रीडिंग के लिए वहाँ जाती थी उनके पास
0: जी,
1: वो वहीं पर हमारी इनसे मुलाकात हुई।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो हम चाहेंगे कि सर कार्यक्रम में आगे बढ़े, उससे पहले हेमा मैम भी जरा अपने बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं, और श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि हेमा मैम जो है वो दृष्टिवान है, उनको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी नहीं है। जी हेमा मैम।
2: नमस्कार संदीप जी।
0: जी।
2: दिल्ली से बिलोंग करती हूँ।
0: जी।
2: और एजुकेशन मेरी दिल्ली में ही हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया।
0: जी।
2: और उसके बाद से फिर मुलाकात हो गई।
0: जी।
2: वहाँ के हंसराज कॉलेज के प्रोफेसर थे डॉक्टर तनेजा।
0: जी।
2: और डॉक्टर श्रीवास्तव।
0: जी जी।
2: उनके थ्रू मुझे डॉक्टर रामलाल व्यास से मुलाकात हुआ। उनकी पीएचडी हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रहे थे।
0: जी।
2: तो मैं उनके साथ उनकी मतलब थीसिस कंप्लीट करवाने उनकी हेल्प करती थी। वहाँ इधर एक इनकी संस्था थी मोबाइल।
0: अच्छा।
2: तो उन्होंने मुझे उसमें भी शामिल किया।
0: तो
2: शामिल
0: आप...
2: होने के बाद
0: जी। जी, आप भी कोई जॉब कर रहे हैं
2: मैम? नो नो नो, मैं हाउसवाइफ।
0: ओके ओके।
2: मैंने इनकी मतलब जॉब तो उनके ऑफिस में जब इनकी मेरी मुलाकात हुई आना जाना हुआ
0: जी।
2: तो इनके ऑफिस में तो कह रहे थे कि हम कहीं ज्वाइन कर लो, मगर मेरे को नहीं करना था जॉब।
0: क्या बात, बहुत खूब जी।
2: मैंने कहा नहीं, पहले इनकी हेल्प है बाद में जॉब।
0: पूरी तरह से मतलब आपने घर परिवार को संभाला।
2: हाँ सर।
0: क्या बात,
2: जॉब यही।
0: जी जी जी। हाँ तो शुक्ला सर
1: जी,
0: अब बताएं सर, आप जो मिलने की कहानी जो बता रहे थे जिसमें बीच में मैंने आपको रोका। जी जी जी जी, बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, अब बताएं।
1: तो मतलब वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई इनसे।
0: जी।
1: और फिर जो उनकी वाइफ थी डॉक्टर व्यास जी की।
0: जी।
1: तो उन्होंने भी इनको मोटिवेट किया, इनको मतलब कहा कि भाई देखो ये लड़का बहुत अच्छा है, और मेरी राय ये है कि तुम भी जो है ना
0: जी
1: मतलब लाइन से ही शादी करो।
0: जी।
1: और भाई इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं मेरी ये राय है कि भाई मतलब अगर तुम्हें सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो तुम जो है मतलब चयन कर लो।
0: जी।
1: तो फिर मतलब हमारी बात आगे बढ़ गई, फिर मिलना जुलना शुरू हो गया।
0: जी।
1: दरअसल मैं रामजस में था, ये हंसराज में थी। तो रामजस और हंसराज की कोई ज्यादा दूरी भी नहीं है।
0: अच्छा।
1: फिर हाँ, फिर मतलब हमारी मुलाकातें बढ़ती गई। और बस मतलब तकरीबन 6 महीने हम मतलब रहे होंगे, उसके बाद फिर हाँ विवाह सूत्र में बंध गए।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब, बड़ा मतलब
1: मतलब 6 महीने एक दूसरे को मतलब जानने में
0: जैसे जानने कहते हैं ना वो महानगर में जिंदगी बड़ी फास्ट होती है, तो आपका भी जो कार्रवाई है सारी बहुत फास्ट हो गई मतलब।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और तो, देखिए देखते देखते 28 साल निकल गए।
0: 28 साल निकल गए, क्या बात। तो 1993 में आपका विवाह हुआ मतलब।
1: जी जी जी जी
0: जी, बहुत खूब बहुत खूब। तो सर मैम से पहले भी कहीं कोई बात बात चली है आपकी या नहीं चली?
1: नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं,
0: कहीं नहीं। तो ये तो मतलब बहुत भाग्यशाली है आपकी, जीवन में जो आए पहले ही उनसे ही बात बन गई।
1: जी।
0: इस बीच में सर मतलब चूंकि आपका घर परिवार यूपी में था
1: जी,
0: तो वहाँ भी तो कुछ प्रयास चल रहे होंगे ना फैमिली में?
1: हाँ प्रयास तो किए मतलब, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। और दूसरी बात यह कि वहाँ क्या है कि मतलब वो आमतौर पे मानना ही है लोगों का कि ये भाई ये हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप ही मतलब कोई ऐसा साथी मिले तो वो ज्यादा मतलब इनके लिए बेनिफिट होगा।
0: ऐसा आपसे किसी ने मतलब डायरेक्टली भी कहा या बस ये सुनी सुनाई बातें या इधर उधर जो फैमिली मेंबर्स थे?
1: कहा तो नहीं, लेकिन जो बातें मतलब लोगों के बीच में मैंने सुनी।
0: जी जी जी जी,
1: वो आपके सामने में।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि आम तौर पर सोच यही रहती है लोगों की। जी
1: हाँ। और हालांकि मदर मेरी जो है ना वो इस मायने में बहुत जागरूक कहें या मतलब मोटिवेट करने वाली।
0: जी।
1: मतलब वो मेरे फादर को मतलब हर तरह से, जब मैं छोटा था मतलब स्कूल के लिए भी उन्होंने ही मतलब मेरे फादर को प्रेरित किया कि भाई ऐसे जीवन कैसे इसका व्यतीत होगा, भाई हम लोग कितने दिन तक रहेंगे, और भाई कहीं इसको डाल दो, कहीं मतलब पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो कुछ बन जाएगा। और वास्तव में उनके आशीर्वाद से ही मैं आज जो कुछ भी हूँ। मैं तो ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी माँ सभी को मिले।
0: बहुत खूब सर। तो आपके फैमिली में कोई और को किसी को ये प्रॉब्लम थी किसी तरह की सर?
1: अच्छा, किसी को भी नहीं, किसी को भी।
0: और आप शहर से थे या गांव से थे?
1: नहीं, मैं शहर से ही, मेरी जो कानपुर सिटी में ही पैदाइश हुई थी।
0: कानपुर सिटी में ही। तो शहर में आमतौर पर थोड़ा सा माहौल अपेक्षाकृत थोड़ा सा ठीक होता है, मतलब है।
1: उस टाइम पे ऐसी बात नहीं, मतलब मेरे फादर ने प्रयास भी बहुत किया
0: जी,
1: जब मेरा जन्म हुआ तो उस टाइम पे सीतापुर एक जगह है यूपी में
0: जी,
1: वहाँ को हॉस्पिटल सबसे बढ़िया माना जाता था, वहाँ पे डॉक्टर ले करके गए मेरी सिस्टर, मतलब शादीशुदा, तो वो और मेरे फादर मेरे को लेकर के गए। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने ये बोला कि भाई अभी तो ये छोटा है और जब एक आध साल का हो जाए तब लेकर के आना
0: जी।
1: बाद में फिर जब लेकर के गए तो बोला कि भाई ये तो इसके आंखों में तो कुछ है ही नहीं, नसें इसकी सूखी पड़ी हुई हैं। और अलीगढ़ में भी एक हॉस्पिटल होता था उस टाइम पे, वहां पर भी लेकर गए, जहां जिसने बताया मतलब वहां दिखाया, लेकिन कहीं से कोई सक्सेस नहीं मिली।
0: लेकिन सक्सेस मतलब आंखों के मामले में भी नहीं मिली, और जो वहां पर जीवन साथी की तलाश में भी आपको पहले ही समझ में आ गया था कि भाई कोई फायदा नहीं है यहाँ पे ज्यादा तलाश करने से।
1: हाँ हाँ, जीवन साथी के रूप में तो यूं कहें ना के बराबर ही, मतलब तलाश जो भी हुई वो ना के बराबर ही रही।
0: तो थोड़ा सा सर आपके समय में बताइए ना कि मतलब क्या होता था, जैसे आप कभी गांव जाते होंगे, मतलब शहर जाते होंगे, अपने घर जाते होंगे, तो फैमिली वाले आपके साथ बैठ करके पूछते थे, बात करते थे, भाई क्या चाहते हैं आप, क्या अब जॉब भी लग गई है, क्या इरादा है?
1: मतलब वैसे तो हर तरीके से बातचीत करते थे और तारीफ भी करते थे, और मतलब लोगों के सामने लोग, लेकिन इस विषय में कि भाई अब नौकरी लग गई तो शादी विवाह मतलब हो जाए इसका, वो कोई बातचीत नहीं।
0: अच्छा, इस बारे में कोई बातचीत नहीं होती थी। तो जब सर आपका मैम से जब ये तय हो गया, आपने बताया तो होगा ही घर वालों को?
1: हाँ हाँ,
0: बिल्कुल। उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं थी सर घर वालों की?
1: अरे उसके बाद तो उसके बाद जब पता लगा तो जो है ना
0: जी
1: भाई, अब मतलब इनके घर वालों को तो खैर होना ही था नाराज, तो लेकिन मेरे घर वाले भी कि भाई अपने आप कर लिया और बताया नहीं, और भाई थोड़ा सा वहाँ के सामाजिक तौर तरीकों के मुताबिक भी जो है
0: जी जी जी जी जाति वाती के बारे में जो आमतौर पर सोच होती है जी।
1: हाँ हाँ
0: जी,
1: तो मेरी सिस्टर ने और मेरे बहन भाई ने समझाया कि देखो
0: जी
1: अब इसकी पोजीशन भी तो देखो, और मतलब अगर अपने आप कर लिया तो कौन सा पहाड़
0: टूट पड़ा, बिल्कुल सही है।
1: हाँ, कौन सा गुनाह कर दिया
0: जी,
1: और भाई ये प्रयास तो हम लोगों का था,
0: बिल्कुल सही है,
1: हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाए
0: जी,
1: या हम लोगों ने कुछ नहीं किया तभी तो उसने ये ऐसे कदम उठाए।
0: क्या बात है, बहुत खूब जी।
1: तो फिर मेरे फादर राजी हो गए और यहाँ से मेरे को और मेरी वाइफ को दोनों को ले गए।
0: अच्छा,
1: फिर वहां दो करके मतलब काम ने रिसेप्शन वगैरह भी दिया, वहाँ छोटी मोटी पार्टी जो होती है, तो मतलब नाते रिश्तेदारों को सबको बुला करके
0: जी।
1: फिर उनके घर वाले भी 6 महीने में मान गए,
0: विवाह के बाद 6 महीने तक नहीं माने मतलब वो भी।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी
0: जी। तो अब बात करते हैं जरा हेमा मैम से। तो हेमा मैम, आप तो मतलब अच्छा खासा आपका मतलब पढ़ाई चल रही थी, और जब सर का प्रस्ताव आपके सामने आया तो मतलब आपको कुछ कठिनाई नहीं हुई निर्णय तक पहुंचने में, या पहले से ही आप?
2: कठिनाई तो नहीं हुई, बस मुझे जो व्यास जी की मिसेज थी ना
0: जी,
2: बिमला भाभी
0: जी,
2: उनका व्यास जी जो मिसेज उनका बिमला व्यास नाम था।
0: अच्छा,
2: तो उन्होंने मुझे हाँ मतलब इतना वो कर दिया, तो मैं फिर मैं कहा ठीक है देखा जाएगा।
0: तो वो दृष्टिवान थी या दृष्टिबाधित थी?
2: वो
0: दृष्टिबाधित थी। अच्छा, तो वहाँ मतलब उस फैमिली को देख करके जी,
2: क्या कह रहे हैं सर,
0: उस फैमिली को देख करके मतलब कहीं ना कहीं आप पहले ही प्रभावित थे मतलब?
2: जी जी जी जी
0: जी जी, जो आपको एक तरह से
2: मैंने अपनी संदीप जी
0: जी
2: मैंने अपनी लाइफ में कॉलेज टाइम पे मैंने मैं हकीकत बताती हूँ
0: जी,
2: मैंने ब्लाइंड को नहीं देखा।
0: अच्छा जी,
2: मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं उनके घर गई, डॉक्टर त्रिनेत्र जी भेजा
0: जी।
2: तो

0: कि मैं हैरान रह
1: जी,
0: तो मुझे तो पता नहीं था कि वो ब्लाइंड है ना। उन्होंने मुझे कहा, सर ने बोला कि मैं तुमको एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ चले जाइएगा
1: जी
0: और वहाँ आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं चले जाती हूँ। मैं गई, बेल बजाई थी, उन्होंने दरवाजा खोला और सर ने दरवाजा खोला
1: जी।
0: तो मैं देख के हैरान एकदम, डॉक्टर व्यासी से मिलना था।
1: अच्छा,
0: हाँ कही कही नहीं व्यास। मैंने गुड आफ्टरनून सर, मुझे डॉक्टर तनेजा सर ने भेजा है। तो कहा हाँ आई आई आई, बस उन्होंने मतलब उनकी मतलब उन्होंने अपना काम बताया कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ हिंदी साहित्य से, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये आपको करना है। मैं कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैं उनकी दो बेटियां थी छोटी छोटी
1: जी,
0: उनकी वाइफ आई, उन्होंने मिलवाया, मैं उनको भी देख के हैरान। तब मुझे कहलाया कि एक ब्लाइंड मतलब हो करके इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हम किसी का क्यों नहीं बन सकते।
1: क्या बात है, बहुत खूब है।
0: तो भाभी जी बोली कि हेमा तुम अगर मेरी सलाह मानो तो किसी के साथ ऐसे करना तो उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी, तुम्हारा भी आगे भविष्य बन जाएगा
1: जी।
0: मैंने कहा ठीक है भाभी जी। तो मैंने फिर ठान लिया, मैंने कहा करना है तो ठीक है, भाभी के मुताबिक ही चलना
1: जी।
0: अब तक हमारा भाभी का और हम मतलब वो तो चले गए बेचारे, डॉक्टर व्यास जी अब अकेले हैं, तो अब तक उनकी तीन बेटियां हैं, काफी अच्छा चल रहा है।
1: तो फिर
2: मतलब ये है कि अभी भी अगर कोई फंक्शन होता है ना, चाहे छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, तो हमारे बिना वो फंक्शन अधूरा रहता है।
1: क्या बात है, अच्छा
2: हाँ
1: बहुत जबरदस्त जी। तो हेमा मैम, मतलब आपके फैमिली में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कौन कौन है।
0: हाँ मैं बता देती हूँ, मेरी मदर नहीं थी।
1: अच्छा।
0: हम दो ब्रदर दो सिस्टर थी, मैं बड़ी सिस्टर मतलब, और मेरी छोटी थी।
1: अच्छा, और आपके फादर?
0: और बड़ा ब्रदर थे वो घर जमाई एक तरह से।
1: अच्छा, और
0: छोटा आपके... ब्रदर था वो हमारे पास ही था, हमारी छोटी सी फैमिली।
1: और आपके पिताजी?
0: मेरे फादर पहले गवर्नमेंट जॉब थे
1: जी।
0: वो जॉब बंद हो गया था तो अपना बिजनेस था उनका।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ।
1: तो जब ये सर से मुलाकात हुई आपकी
0: जी जी,
1: तो उस समय भी मतलब आप बस व्यास सर को देख करके ही प्रभावित थे, या धीरे धीरे आपने अपना मन बनाने के लिए भी मतलब शुक्ला सर का भी मतलब अध्ययन एक तरह से किया कि
0: हाँ, गया मेरा
1: ये बताएं जरा मैं।
0: हाँ
1: जी
0: मैं बताती हूँ
1: जी।
0: व्यास की तरफ से तो था ही था
1: जी, जी।
0: जब मैं इनसे मिली ना तो मुझे इनका नेचर स्वभाव बहुत अच्छा लगा
1: जी।
0: मैं ये बताऊँ
1: जी,
0: मैं मतलब बहुत लोगों से मिली, बहुत लोग मेरी मतलब उसमें आए, मोबाइल संस्था थी ना तो वहाँ हम लोग फंक्शन वगैरह करते थे डीयू में, डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बहुत लोग मिलते थे। तो कहते हैं ना उंगली पकड़ के पोछा पकड़,
1: बिल्कुल
0: बहुत लोग आए, मगर मुझे इनके जैसा स्वभाव किसी का नहीं, मुझे इनका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा
1: जी।
0: तो इनसे मतलब मेरा दिल लग,
1: ब्लाइंडनेस कभी आपके लिए मतलब कोई परेशानी नहीं रही ब्लाइंडनेस की?
0: ये तो नहीं, मेरे लिए तो नहीं रही, ये तो ये बता सकते कि मेरे से आपको इनको कोई परेशानी हुई हो?
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो खैर हम जानेंगे ही।
0: हाँ।
1: जी जी जी
0: मुझसे नहीं, मुझे कभी कोई नहीं हुई।
1: आमतौर से होता है ना, मैं महिलाओं के मन में
0: आने, आप मेरे को नींद से कुछ छोड़िए, और भी शायद आपकी ना आपके सद उसमें आए होंगे, मेरे को सब जानते हैं दिल्ली में।
1: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: दिल्ली का कोई ऐसा मतलब लाइन सॉरी भाई नहीं है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगी, मैं जो वर्ड यूज कर रही हूँ ना मतलब है ना जो डिस्टर्बित है
1: जी,
0: जो मैं कह रही हूँ, तो सब लोग मुझे जानते हैं मेरे नेचर के बारे में, सब जानते हैं।
1: बहुत बहुत,
0: मगर एक बात तो बुरा मत मानिएगा
1: जी जी,
0: मेरे जैसा आदमी कोई नहीं
1: जी। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया,
0: कोई भी नहीं है
1: जी जी जी जी,
0: मैं नहीं तो सब लोग एक क्या कहते हैं सेल्फीज को क्या बोलेंगे।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: मैंने उस टाइप
1: सब अपने मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं जी
0: जी जी जी जी।
1: तो जब आप
0: ये हमेशा अभी भी देखो एजुकेशन में होकर के ना दूसरों की हेल्प पूरी करते हैं
1: जी,
0: ठीक है, और लोग जो और उनके दोस्त वगैरह इनसे फायदा उठाते हैं।
1: अच्छा,
0: जब काम होता है ना तब शुक्ला जी याद आते हैं, कभी शुक्ला जी नहीं याद आते।
1: ये मैम ज्यादातर पत्नी की शिकायत रहती है लेकिन खैर शुक्ला सर है ही इतने विनम्र की सबकी हेल्प कर दिया करते हैं। अच्छा मैम बताएं, जब आपने घर वालों को बताया आपने
0: जी,
1: फिर क्या कहा आपके फैमिली में सबसे पहले जब इस बारे में सुना?
0: पहली बात मैं बताऊं मैं हकीकत में झूठ नहीं बोलूंगी
1: जी,
0: मेरी फैमिली एग्री नहीं।
1: बिल्कुल वही हम जानना चाह रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा था, क्यों मना कर रहे थे
0: जी। उनके मन में नहीं, क्योंकि उनको मैंने बताया नहीं, मुझे पता था कि नहीं मानेंगे
1: जी।
0: कितना भी मैं कोशिश करूं मनाने की नहीं मानेंगे, मगर एक मेरे मौसा जी थे और मेरे नाना जी, मेरे नाना जी बहुत वो थे, तो वो कहते थे ठीक है कोई बात नहीं हम तेरे साथ हैं। मगर उस बीच क्या हुआ, उनका वो एक्सपायर, मेरी शादी होने से पहले एक्सपायर हो गए।
1: अच्छा।
0: और जो मेरे मौसा जी थे ना, वो भी मेरी शादी से एक दिन पहले एक्सपायर। मेरा 21 का शादी था
1: जी,
0: और उनका 20 को, उनको उनको मतलब जो 20 तारीख को वो एक्सपायर।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: जो सपोर्ट कर रहे थे आप, जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे।
0: जी जी जी।
1: जब तक आप,
2: एक इनकी भाभी थी, एक इनकी भाभी थी ना, उनको भी पता था, लेकिन जो है ना वो उन्होंने मतलब डर की वजह से किसी को
0: नहीं बताया,
2: नहीं बताया, इनको सारी जानकारी थी।
1: लेकिन शुक्ला सर, यहाँ पर एक प्रश्न मेरा आपसे है, कभी आपके मन में नहीं आया यार, जब फैमिली में पता नहीं है, लोगों को ज्यादातर को बताया नहीं है, मैं कैसे एकदम कदम उठा लूं कल को बाद में?
2: दरअसल क्या है कि मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा था और इन्होंने भी मतलब मुझे पूरा भरोसा दिया था, तो इस वजह से हम दोनों मतलब बिल्कुल।
0: संदीप जी, यहाँ पे मैं इनकी बात काटती हूँ
1: जी,
0: आपको बताती हूँ
1: जी।
0: मैं, हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम वेल एजुकेटेड तो थे
1: जी जी जी,
0: है ना, हमने ठान लिया तो करना है तो करना है,
1: बिल्कुल
0: देखा जाएगा जो होगा
1: जी,
0: तो हमने कर लिया।
1: यानी एक तरह से सर को, वो सर जो कह रहे हैं ना कि आप पर भरोसा था कि घर वाले अगर कुछ भी, घर वाले कितने ही विरोध में हो जाए, कुछ भी कर लें, लेकिन आप पीछे नहीं हटने वाले थे। तो आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह में बताया आपने किसी को, उनका क्या रिएक्शन था अगर बताया हो तो?
0: मेरे फ्रेंड सर्कल में, हाँ, उनके उनके मतलब पेरेंट्स तैयार नहीं।
1: अच्छा।
0: मेरी फ्रेंड तो तैयार थी, मगर उनके पेरेंट्स तैयार नहीं।
1: आपने अपने बारे में जब बताया, खुद के बारे में आपने?
0: हाँ।
1: अच्छा।
0: वो भी मतलब वो मना कर रहे थे कि नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो।
1: तो जब मैम शुक्ला सर से आपकी मुलाकात हुई, तब आप क्या कर रहे थे, पढ़ाई कौन सी कर रहे थे उस समय?
0: मेरा बीए ही था।
1: बीए चल रहा था आपका ना?
2: बीए फाइनल ईयर था।
1: बीए फाइनल ईयर था
0: जी।
1: तो आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे थे हेमा मैम, और जाहिर सी बात है कि मतलब जिस कॉलेज में आप थे वो कॉलेज भी अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित। तो कभी मतलब आपकी नजर में कोई और व्यक्ति आया हो, या आप पर किसी की नजर रही?
0: जी नहीं,
1: ऐसा कुछ नहीं हुआ।
0: नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये तो मेरे कॉलेज में आप जाके पूछ लीजिए
1: जी।
0: हाँ, ऐसा कुछ नहीं था।
1: क्या बात, बहुत कुछ है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए भी यही कहा जा सकता है कि शुक्ला सर ही एक तरह से पहली बार जिंदगी में आए और बस आप दोनों आज साथ साथ हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके बाद में फिर जब फैमिली को पता तो चला ही होगा ना एक ना एक दिन
0: जी,
1: फिर क्या हुआ?
0: उन्होंने तो कुछ नहीं बोला कि उन्होंने किया है, तो जैसा कि अच्छा किया होगा उन्होंने।
1: पता कैसे चला फैमिली को, आपने खुद ही बताया या किसी दूसरों से पता लगा?
0: नहीं, जो बताया ना मेरे मौसा जी, तो जो एक्सपायर हुए थे मेरी शादी से एक दिन पहले, मेरे मौसा जी एक्सपायर हुए थे ना, उनकी वाइफ ने उनको बताया।
1: अच्छा।
0: उनको तो पता था, उन्होंने बताया, तब थोड़ा नाराज हुए,
1: वही ब्लाइंडनेस को लेकर के।
0: जी जी जी।
1: की आंखों में दिखाई नहीं देता है और जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, यही सब बातें जो हमेशा दोहराई जाती है
0: जी।
1: दिल्ली में भी यही सब चलता है।
2: एक्चुअली संदीप भाई, क्या है हमारे देश में अजीब विडंबना है
1: जी सर,
2: एक रिक्शे वाले को दे देंगे।
1: हाँ, ये जी,
2: दृष्टिबाधित चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसको ये सोचेंगे यार इसको मतलब हमारी लड़की कैसे रहेगी, कैसे जीवन यापन करेगी।
1: ये बड़ा, ये सर कम, ये मतलब बड़ी गंभीर समस्या है देखा जाए तो, कि समाज दिव्यांगता को पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं कर पाता।
2: हाँ, जबकि समय बदल रहा है
1: जी,
2: तो समय के अनुसार चेंजेस आने चाहिए
1: जी,
2: लेकिन अभी भी हम लोगों के मामले में लोगों की वही पुरानी सोच।
1: हाँ, जबकि आज इतने सालों से आप लोग बहुत सक्सेसफुली मतलब अपना जीवन चला रहे हैं, उसके बावजूद यह हाल है, बताइए
2: जी।
1: तो आपके सर शहर में, कानपुर वगैरह में आपके फैमिली में जाना होता है या अभी संपर्क
2: नहीं? जाना होता है, और अब तो मतलब हम लोग जब जाते हैं तो हमें मतलब अच्छी हवा भगत मिलती है।
1: अच्छा,
2: मतलब अच्छी तरह से
1: रिस्पेक्ट पूरा मिलता है, मतलब
2: जी पूरा रिस्पेक्ट मिलता है और मतलब अच्छे तरह से आदर भाव करते हैं और जब मिलवाते हैं, मतलब हमारे भाई वगैरह भी जो है ना, मेरे एक बड़े भाई हैं, एक छोटा है, तो छोटा तो यहीं दिल्ली में ही रहता है, बड़े वाले वहां रहते हैं, तो मतलब बहुत अच्छी तरह से बहुत मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं।
1: तो शुक्ला सर उस जमाने में मतलब तकनीक वकनीक का तो खैर कहीं नामो निशान ही नहीं था।
2: नहीं, नहीं, नहीं।
1: तो कभी कभी आपके मन में भी आता होगा ना कि यार मैं मतलब साइटेड व्यक्ति के साथ सामंजस्य कैसे बिठाऊं, मैं मतलब हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग और इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी अलग, तो इस सब पर मतलब आपने कुछ सोचा या कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसे?
2: नहीं, दरअसल मेरे ऑफिस में तो फिर अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले जो मेरा प्रोफाइल वर्क था वो टेलीफोन का था, और अब जो है जब से मैं सेक्शन ऑफिसर बना तो अब फाइल वर्क आया मेरे पास, तो अब तो मेरे नीचे भी 10-12 आदमियों का स्टाफ है, तो उनसे मुझे हेल्प मिल जाती है, तो ज्यादातर तो साइन ही करना होता है, बाकी वो पढ़ करके खुद सुनाते हैं।
1: मैं मेरा मतलब था ये सर कि खासकर घरेलू मामलों में कि जैसे अच्छा, कुछ एक्सपेक्टेशन रही होंगी मैम की भी, अगर नहीं रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी होता ही है ना कि मतलब उम्मीद तो होती है हर किसी वाइफ को अपने हस्बैंड से।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो आपके मामले में कौन सी परिस्थितियां रही सर?
2: किस तरीके से?
1: कि भाई जो रोजमर्रा के जो कामकाज होते हैं हमारे जीवन से संबंधित।
2: देखिए ज्यादातर तो हम काम करते थे तो मतलब साथ ही जाते थे
1: जी
2: शुरुआत में
1: जी,
2: मतलब कोई भी सामान लाना है तो हम साथ ही जाते थे।
1: अच्छा।
2: और घर में हालांकि मदर वगैरह थी तो वो अपना घर का ही काम देखती थी, कोई ना कोई तो मेरे साथ मतलब हमेशा रहा ही।
1: अच्छा, हमेशा कोई ना कोई था ही जी।
2: हाँ हाँ,
1: बहुत बढ़िया जी सर।
2: अब तो फिर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब तो सारा काम बच्चे ही करते हैं, हमें कहीं आना जाना ही नहीं पड़ता।
1: तो कितने बच्चे हैं सर, थोड़ा सा यहाँ पर ये भी मैं पूछना चाहूंगा।
2: जी मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक जी, बेटी है
1: जी
2: और 2 बेटे हैं।
1: क्या कर रहे हैं सर तीनों, जरा बताएं प्लीज।
2: बेटी मेरी जो है सबसे बड़ी है, वो वैसे तो MA BEd है
1: जी,
2: लेकिन इस समय वो फॉरेन में है, USA में जॉब कर रही है।
1: क्या बात। और दोनों जो आपके पुत्र हैं वो?
2: हाँ, 3 साल से वही।
1: अरे बहुत बहुत खुश है। और दोनों आपके जो पुत्र हैं वो?
2: और बेटे मेरे बड़ा वाला जो है वो योगा ट्रेनर है, योगा की कोचिंग देता है।
1: योगा की? ओके।
2: हाँ जी।
1: और दूसरा बेटा जो है वो?
2: बेटा उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बीएड कर रहा है।
1: क्या बात। पूरी तरह से मतलब सब कुछ कहा जाए कि वेल सेटल्ड मामला है।
2: हाँ जी।
1: तो सर आपकी बिटिया जो US में है
2: जी,
1: कभी मतलब इस बारे में चर्चा होती है उनसे कि वहां पर जो हमारे VI साथी है, ब्लाइंड साथी है?
2: नहीं, उसको जो है ना वहाँ के बारे में
1: भी दादा अभी नॉलेज में। ओके।
2: हाँ, नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है
1: जी। जी
2: मैंने एक आध बार जिक्र भी किया उसे
1: जी,
2: तो उसने कहा पापा मेरे को पता नहीं।
1: अच्छा।
2: बाकी मतलब बातचीत तो डेली ही होती है
1: जी।
2: और उदयपुर जो हम लोग गए थे तो बेटी थी।
1: अच्छा, आई थी क्या वो उदयपुर? आई थी वो? क्या बात। अच्छा अच्छा, वही मैंने कहा ना कि
2: याद नहीं करती अभी तक जो है ना।
1: अच्छा।
2: तो भूल नहीं पाई हो?
1: अच्छा।
2: बहुत एंजॉय किया दोनों। एक हमारे साथ थे ना नेगी जी,
1: जी जी जी,
2: त्रिपन सिंह नेगी।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
2: तो उनकी बिटिया भी थी और मेरी बिटिया भी थी, तो दोनों की अच्छी कंपनी
1: जी जी
2: हो गई थी, तो उन लम्हों को जो है वो अभी तक भूल नहीं पाई। जो क्या है वो कौन सा था, पटकल लेक
1: है?
2: अरे कौन सा लेक था वो, पिचोला लेक या कौन सा लेक?
1: हाँ, हाँ, वो फतेहसागर, फतेहसागर पिचोला। हाँ, जी जी जी,
2: हाँ, वहाँ पर बहुत एंजॉय किया दोनों बच्चों ने। हाँ, बोटिंग, बोटिंग जब करी ना, बोटिंग में बहुत एंजॉय किया।
1: क्या बात, क्या बात।
2: हाँ, और डेली तो मॉल जब 3-4 दिन जब तक रहे डेली मॉल।
1: हाँ, वो मॉल सामने ही था, वो सेलिब्रेशन मॉल जो था वो सामने ही था। क्या तो श्रोताओं, ये पुरानी थोड़ी सी यादें हैं जो ताजा हो गई। सर के माध्यम से। तो हेमा मैम
0: जी,
1: उस समय मतलब आपने क्या एक्सपेक्टेशंस की थी सर से, आपकी क्या
0: जी? ऐसा कुछ नहीं, मुझे बस शादी करना था, मैंने कर लिया।
1: नहीं, लेकिन आपको मन में कभी कि यार कभी कभार चाय बना लें तो ठीक हो, ये छोटी छोटी बातें होती
0: है। नहीं, नहीं,
1: कभी आपने सोचा?
0: जी
1: जी,
0: कभी नहीं।
1: अच्छा, क्या बात, मतलब आपको अपने आप पर तो पूरा भरोसा था ही था कुल मिलाकर के हर मामले में।
0: जी,
1: और बगैर भरोसे के मुझे लगता है कि इस तरह के निर्णय लेना आसान भी नहीं होता है। क्यों, क्या मानना है आपको?
0: जी,
1: क्योंकि जो लड़कियां हिचकिचाती हैं या डिसीजन नहीं ले पाती है, खासकर किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के बारे में, तो उसके पीछे क्या कारण देखती हैं
0: आप? संदीप जी, अपनी सोच समझ है।
1: जी,
0: मैं बस अपने बारे में तो कह सकती, मैं दूसरे बारे में नहीं कह सकती।
1: नहीं, बिल्कुल।
0: उनकी सोच कैसी है?
1: बिल्कुल,
0: मतलब मैं अपने बारे में जरूर कह सकती हूँ कि हाँ, मैं पूरी हेल्प करती हूँ, ऐसा मैं।
1: लेकिन मैम, आप तो हेल्प करती हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मतलब जो समाज की जो सोच है उसमें भी तो परिवर्तन होना चाहिए ना, कि
0: होना चाहिए। हाँ,
1: जो जिनको नहीं दिखाई देता है वो भी सब कुछ कर सकते हैं, वो पूरी तरह से कैपेबल हैं हर मामले में, तो कमी कहाँ रह जाती है?
2: दरअसल क्या है संदीप भाई, मैं आपको बताऊं, जब तक हमारे से कोई मिलता नहीं है ना, तब तक वो हमारे बारे में नहीं जान पाता, और जब वो हमारे से मिल जाता है ना, वो उसके बाद फिर वो हमारे बारे में जान करके फिर वो पीछे नहीं हटना चाहता, मतलब फिर वो सोचता है यार ना कि भाई ये लोग वाकई में कैपेबल हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, अगर इनको थोड़ा सा सहारे की जरूरत है, अगर इनको थोड़ा सा सहारा मिले, साथ मिले, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: कहीं ना कहीं सर, आपका इशारा इस बात की ओर है कि हम लोगों को, दिव्यांग साथियों को जो विवाहित है, उनको हर तरह की गैदरिंग में, हर तरह के फंक्शन में जितना संभव हो उतना जाना चाहिए, या मुख्य धारा के लोगों के बीच में ज्यादातर जाना चाहिए।
2: जी जी जी,
1: बिल्कुल। कहीं आपका ये कहना तो नहीं?
2: नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग जो झिझकते हैं ना, तो हमें झिझकना नहीं चाहिए, हमें बराबर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक बार कोई साथ नहीं देगा, दो बार साथ नहीं देगा, तीसरी बार जब वो हमें देखेगा तो जरूर उसके मन में भी आएगा कि भाई इनको भी साथ में लेना चाहिए। अच्छा, ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं पिछले 30 साल से सर्विस में हूँ। तो लोग कभी हमारे जैसों को या हमें दरकिनार किया करते थे
1: जी,
2: आज वो हमारे से जब जुड़ गए, हमारे बीच आ गए, तो वो और 10 लोगों को ये बताते हैं कि यार हमारी जो सोच इनके प्रति थी ना, वो गलत थी
1: जी,
2: ये लोग हमारे से ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा कैपेबल हैं
1: जी,
2: और जो काम हम नहीं कर सकते वो ये कर सकते हैं। कई कई चीजें ऐसी हैं जो कि वो मतलब हमारे से ज्यादा इनके पास है।
1: जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर, बड़े शहर में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं
2: जी,
1: आमतौर से देश के हर कोने से,
2: हाँ जी,
1: मतलब वैवाहिक संबंधों को लेकर के कई तरह के जो केस हैं, कई तरह की घटनाएं जो है वो सुनने को मिलती हैं, पढ़ने।
2: हाँ जी, हाँ।
1: लेकिन पिछले कुछ समय से सर ऐसा हो रहा है कि ये जो बड़े शहर हैं जितने भी, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, और भी मतलब आजकल जो उप महानगर है या महानगर जो है, तो हमारे क्षेत्र में भी दिव्यांगों के मामले में भी वैवाहिक संबंधों को लेकर के कई सारे अपराध, कई सारी समस्याएं, कई सारे इस तरह के केस सामने आ रहे हैं सर। तो आपको क्या लगता है कि ये सब मतलब जो है कहीं ना कहीं और हमारी जो छवि है उसको थोड़ा सा कहीं कुछ मतलब उस पर खतरा नहीं उत्पन्न हो जाए, आप क्या मानते हैं?
2: देखिए, आप वहां तो हर वर्ग में ही होते हैं
1: जी,
2: लेकिन अब ये कि जो हमारे कैटेगरी के लोग हैं उसमें अगर ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है तो वो थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट हो जाती है।
1: बिल्कुल सर, जो समाज थोड़ा छोटा होगा उसकी समस्याएं जल्दी लोगों की निगाह में आ जाती है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
2: लेकिन बाकी अपराध तो हर जगह ही होते हैं।
1: जी जी जी
2: हाँ, तो, क्या कहना चाह रहे थे?
1: जी मैं वही कह रहा था कि ये अपवाद तो है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आमतौर पर जितना हो सके इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
2: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको नजरअंदाज किया जाना चाहिए।
1: जी तो हिमा मैम।
0: जी सर।
1: अब तक तो आप बहुत लोगों से मिले होंगे, कई फैमिलीज को देखा होगा आपने।
0: जी सर।
1: उस जमाने में यानी आज के 30 साल पहले और अब में आपको परिवर्तन नजर आता है कि नहीं अपने साथियों के बीच में या दृष्टिबाधित फैमिलीज में?
0: नहीं कोई ऐसा तो नहीं लगता सीधा।
1: अच्छा, कोई खास बदलाव आपको
0: नहीं
1: नजर? नहीं आज मतलब तकनीकी रूप से काफी कैपेबल हो गए हैं हमारे साथी, दिव्यांग साथी, ऐसा नहीं लगता?
0: मैं सर कहीं जाती नहीं हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी जी जी
0: मैं अपने तक सीमित
1: हूँ। आप तो घर परिवार में खुश है मतलब?
0: जी जी जी।
1: बाहर कार्यक्रमों में कभी कभार जाना हो जाए तो हो जाए?
0: हाँ कभी कभी, साल में एक बार दो बार बस।
1: जी तो बच्चों का खासकर क्या रवैया रहता है मैम, जैसे सर के प्रति आपके प्रति, आपको कभी ऐसा महसूस हो? जी
0: ये तो यही बता ना सर, मैं क्या बता?
1: जी नहीं आप जैसे आंखों, बहुत सारी चीजें क्या होता है ना मैम कि इंसान आंखों से देख करके महसूस कर लेता है।
0: जी
1: तो उस लिहाज से हम पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि आई कॉन्टेक्ट जो आप लोगों का होता है वो मतलब काफी चीजें बयां कर देता है। जी
0: इनका पता है, इनका चुप रहना ही पता चल जाता है कि गुस्से में।
1: मतलब सर को गुस्सा आता है?
0: हाँ तो चुप रहना ही इनका बेटर होता है, तो पता चल जाता है गुस्से में।
1: जी
0: बस यही है और कुछ नहीं।
1: अच्छा तो इतने सालों में मैम ऐसे भी पल आए होंगे कि जब आप दोनों के बीच में भी थोड़ा कभी कुछ खटपट हो जाती होगी?
0: संदीप जी वो तो होता है हर जगह,
1: हर जगह होता है।
0: देखिए चाहे हमारा घर हो चाहे नॉर्मल सेटल लोग जो है उनके घर में भी होता है, इतना छोटा मोटा चलता है।
1: जी
0: मगर इतना हम लोग ज्यादा नहीं होता,
1: लंबा नहीं
0: खींचते हैं बस
1: बहुत। तो आमतौर पर मैम जो शुरू शुरू में जब विवाह हुआ तो लोग जो देखते रहे होंगे आस पड़ोस के,
0: जी, जी।
1: उनका क्या रवैया रहता था आप लोगों को देख करके? मतलब
0: बहुत लोग हैरान होते थे कि भाई उन, अच्छा कुछ लोगों को पता नहीं था कि दिल्ली की लड़की है। अब जैसे मैं तिमारपुर में हूँ तो कुछ लोग थे आस पड़ोस में, तो जो पता चला कि मैं यहीं की हूँ और सब कुछ यहीं है दिल्ली का, तो सब हैरान हो गए, तुमने कैसे कर लिया? अरे ये भी तो इंसान है ना।
1: बिल्कुल सही है मैम,
0: फिर से करती है, मैंने से कर दिया तो क्या होगी?
1: क्या हो गया? बिल्कुल सही है,
0: मैंने गलत ना किया। मेरे मायके में भी सब कहते थे
1: अच्छा
0: तुमने इसे क्यों किया, मैंने कहा मैंने किया मेरा मर्जी।
1: बहुत सही जी, मतलब ये सारे प्रश्न जो आमतौर पर आपको भी सामना करना पड़ा इन सारे प्रश्नों का।
0: हाँ
1: लेकिन आपने सबको मतलब समय के अनुसार जवाब दे दिया, और आज तो शायद ही कोई होगा जो कोई ऐसी बात करता होगा।
0: नहीं कोई नहीं करता, आज तो अब तो सब मतलब मेरे तरफ वाले जो घर वाले हैं सब इनकी मतलब बहुत इज्जत करते हैं। जो मेरे चाचा जी थे मेरी शादी के 9 साल बाद मुझे एक्सेप्ट किया था, 9 साल बाद किया
1: जी,
0: तो वो भी मरते दम तक इनको इतना पूछते थे मुझे बिना पूछे कोई काम नहीं करना
1: जी,
0: जब तक मैं पहुंच ना जाऊं या ये ना पहुंच जाता तो कोई काम नहीं करना, इतना वो हो गया था।
1: तो शुक्ला सर
2: जी
1: आपने सीखा कभी कुछ कुकिंग वुकिंग या ऐसा कुछ?
2: नहीं।
1: कभी जरूरत ही नहीं पड़ी?
2: नहीं,
1: जैसे कई लोगों का शौक होता है ना एक्चुअली कि कुछ खटपट करते हैं।
2: जी आज की बात बताऊं,
1: जी
2: शादी से पहले
1: जी
2: मैं चाय बना लेता था।
1: अच्छा
2: हाँ तो
0: वो भी हीटर पर?
1: अच्छा
0: नहीं
1: क्या बात,
2: चाय बना लेता था, कपड़े प्रेस कर लेता था
1: जी,
2: और छड़ी से अपने आप इधर उधर आ जाता था
1: जी,
2: लेकिन शादी के बाद मेरी छड़ी खत्म हो गई।
1: क्योंकि कभी गैस को छूने की जरूरत नहीं पड़ी
2: गैस की छूने की जरूरत नहीं पड़ी
1: जी।
2: और अब छड़ी खत्म हो गई क्योंकि जो है अब दूसरी छड़ी आ गई दो भाई दो आंखों वाली
3: जी बिल्कुल सर।
2: और अब तो कहीं भी आना जाना हो अब तो घर पर मान लो बच्चे बड़े हो गए तो मैं मतलब कभी भी अकेले चलने का चांस ही नहीं मिलता। मतलब अगर कई जगह ऐसी होती है जहाँ की मान लो नहीं नाना ले जाना मुनासिब होता है तो वहां पर भी ये मेरे साथ तैयार रहती है कि भाई नहीं तुम्हें अकेले नहीं जाना मैं साथ चलूंगी बच्चे अगर नहीं जा सकते तो मैं साथ चलूंगी। मैंने कहा कोई कोई बात वहां मतलब ऐसा कई जगह ऐसी होती जहाँ पर मान लो लेडीज को थोड़ा सा
3: जी जी जी असहज महसूस हो जी
2: हाँ मतलब अब मान लो भाई कोई मीटिंग वगैरह है तो वहां पर तो इनका कहना यह था कि भाई वहां नहीं जाऊं मैं अपना बाहर वेट कर लूंगी लेकिन नहीं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना।
3: जी जी जी जी जी
2: तो अब मैं तो कभी इमरजेंसी में मान लो अकेले चलना भी हो तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती स्टिक उठाने की मतलब स्टिक से चलने की।
3: तो आप सर अपनी जिंदगी से आपने क्या अनुभव लिया है अभी तक आपको क्या महसूस हुआ आपकी अपनी जिंदगी को जब आप देखते हैं और आपके जैसे दूसरे दृष्टिबाधित साथियों की जिंदगी को जब आप देखते हैं।
2: देखिए अपनी अपनी जगह दोनों ही मतलब अलग पहलू हैं और अगर मैं अपने मुताबिक कहूँ तो भाई मैं ये कहूँगा कि मेरे जैसा मतलब भाई सभी को साथ मतलब जैसे मुझे मिला हुआ है जैसे सभी को साथ मिले
3: जी।
2: लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है।
3: बिल्कुल सर
2: ना आप भी इस बात से सहमत होंगे।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल जी कुल मिला के आप ये मानते हैं कि भाई आज समय के अनुसार अपने अंदर हम लोग बदलाव लाएं और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो बहुत ही शानदार सफर रहा आज के हमारे हमराही का आप दोनों के साथ में और समय जो है वो इशारा कर रहा है कि अब
2: बातों बातों में पता ही नहीं लगा
3: कार्यक्रम समाप्त करने का भी इशारा मिल रहा है। और ये बात सही है सर कि जब आपकी तरह अनुभवी साथियों से बातें होती हैं तो वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि दृष्टिबाधित साथियों को भी दिव्यांग साथियों को भी और हमारे समाज को भी ऐसे ही अनुभवों की शायद आवश्यकता है। तो हेमा मैम पहले आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी सुनने वालों। जी हेमा मैम
0: मुझे बहुत अच्छा लगा आपने हमसे डिस्कस किया।
3: ऐसा लग रहा है काफी भावुक हो गई है मैम आप शायद कार्यक्रम करते करते बहुत वाकई में ये इंसान जो भावुक इंसान है वही शायद किसी की फीलिंग्स को समझ सकता है मुझे ऐसा लगता है। जी शुक्ला सर तो मैम के दिल की बात और आपके दिल की बात आप ही कह दीजिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी सुनने वालों के लिए। जी सर
2: जी भाई मैं तो यही कहूंगा की जैसे
3: जी
2: 28 साल हो गए पता ही भी नहीं लगा
3: जी
2: कैसे निकल गए
3: जी।
2: तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई आगे आने वाले साथियों को भी ऐसे ही अपने साथी का चुनाव करना चाहिए जो कि एक लाइफ पार्टनर अच्छा लाइफ पार्टनर
3: जी,
2: बने
3: जी,
2: और भविष्य में किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें ना आए
3: जी।
2: क्योंकि जो लव मैरिज होती हैं तो उनमें दिक्कतें तो आती ही आती हैं।
3: बिल्कुल सर
2: लेकिन अगर हम और हमारा साथी
3: जी
2: अगर उनमें अटूट विश्वास है
3: जी
2: तो दुनिया की भी ताकत क्यों ना हो उससे भी हम मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे।
3: जी जी जी क्या बात बहुत खूब सर निश्चित रूप से दोनों का एक दूसरे के लिए समर्पित और एक दूसरे के लिए खड़े होना बहुत जरूरी है मुझे लगता जी, है कि यही कहना चाह रहे हैं। तो
2: जो होती है अरेंज मैरिज में तो खैर इतनी दिक्कतें
3: नहीं आती हैं ठीक कह रहे हैं सर जी।
2: लेकिन अरेंज मैरिज होती कहाँ है हम लोगों की अरेंज मैरिज को करना ही नहीं जब हमारी जो सोच है ऐसी हमारे बीच में जो लोगों की बनी हुई है तो उसमें तो अरेंज मैरिज होंगी नहीं तो फिर जो है ये संभव ही नहीं।
1: बिल्कुल सही है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमा मैम और शुक्ला सर।

और हर किसी के जीवन में खुशियां लाते रहे, बस यही रेडियो मधुबन की गुजारिश है आप सभी से। तो श्रोताओं, आज तो दीजिए मुझे इजाजत, अगले रविवार हाजिर होऊंगा फिर किसी और हमराही को लेकर के। तब तक के लिए

0: शांति नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार डॉक्टर प्रीति जयकर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रीति, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक, नमस्ते रमेश जी, ओम शांति। अर्शना जी को, कल्पेश जी को बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथ दूसरी बार हूँ शो पे, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, आई थिंक ये आपका एक सिग्नेचर लाइन है, वो सुन के आपकी वो आपका एक स्माइल है साथ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपका आई थिंक एक ही शो है जो मैंने आई थिंक इतने एपिसोड्स देखे हैं, और कोई एक आपका गेस्ट सेम नहीं है, हर एक का अलग। आई थिंक अर्शना हैज बीन वेरी गुड एट गेटिंग सच गुड स्पीकर्स। तो एक एक आपके सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इट इज सो डाइवर्स, एंड डाइवर्सिटी में उनका पैशन इतना आगे आता है, इट इज रियली वेरी यूनिक। तो उसके लिए बहुत बधाई,
0: थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर प्रीति के स्वागत में आज हमारे साथ कल्पेश जी जुड़े हैं, एक बहुत ही खूबसूरत गीत
2: नमस्कार
0: जी भी है। नमस्ते नमस्ते कल्पेश, मैं चाहूंगा स्वागत पेश कीजिए।

0: थैंक यू,
1: थैंक यू
0: आई होप यू
1: संतोष।
0: लाइक्ड इट।
1: या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने नरेट किया, थैंक सो मच, बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामना। तो आइए मैं फिर से अभी डॉक्टर प्रीति जी को जोड़ना चाहूंगा आप सभी के साथ में। आज हम लोग जिस विषय को लेकर बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन चीज है, जैसे कि थायराइड के बारे में आप सभी जानते होंगे। अब इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर प्रीति जी से। तो प्रीति जी, मैं चाहूंगा कि थायराइड ये क्या है, इसके बारे में बताइए।
2: रमेश जी, अपना बेसिकली अभी क्या है कि वी हैव टेकन, अभी इंग्लिश में बोलते हैं कि वी हैव टेकन आवर बॉडी आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। अपना हार्ट अपना काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, पैर काम कर रहे हैं, तो वी फील दैट एवरीथिंग इज ओके। लेकिन ये ऐसा है कि इसको सब कंट्रोल या बैलेंस में लाने के लिए हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हम हिंदी में उसको अंतःस्राव ग्रंथि बोलते हैं, जो गले के निचले हिस्से में रहता है, जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अभी मैंने मेरा ट्रेनिंग सब बंबई में किया है, सर्जरी के बाद 2 साल टाटा में फेलोशिप किया था हेड नेक में। अभी ये हेड नेक डिपार्टमेंट में काफी पेशेंट जो है थायराइड के पेशेंट आते थे कैंसर के, और वो काफी लेट स्टेज में आते थे, उनके सर्जरीज जो है जो जल्दी अगर आते थे तो लेस कॉम्प्लिकेशन लेस साइड इफेक्ट से हम ट्रीट कर सकते थे, लेकिन काफी लेट आते थे। तो तभी भी ऑलमोस्ट 20 इयर्स नाउ जब मैं टाटा छोड़ा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जागरूकता अभी भी थायराइड के लिए काफी कम है। तो आपके ये शो में जितना हमारे पास टाइम है, ग्लैंड तो ग्लैंड का ऐसे वो ग्रंथि का काम समझाना बहुत मुश्किल है लेमन्स टर्म में, लेकिन अपना जो बॉडी का संतुलन है, हर एक कोशिका हर एक ऑर्गन को जो कंट्रोल करता है बैलेंस लाता है वो ये ग्लैंड है। अभी अगर आप अडल्ट मेल को ले या आप यूजुअल हेल्थी मेल को ले जिसका वजन अगर 60 किलो का है, तो क्या आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये ग्लैंड का वजन कितना हो सकता है? जस्ट अ वाइल्ड गेस, कितना हो सकता है? ये 25-30 grams का ग्लैंड है सिर्फ। आप सोचिए 60 किलो हेल्थी अडल्ट मेल में 25-30 ग्राम का 2 इंच का एक छोटा ग्लैंड जो है ये नीचे अपने गले के नीचे हिस्से में रहता है, और जो हमारी सांस की नली है उससे वो चिपका हुआ रहता है, और तितली के शेप का बोलते हैं हम। इसलिए मैंने इसका एक्चुअली शील्ड करके इसका जो टॉपिक दिया है, वो जैसे ढाल बोलते हैं वैसे इसका चिपका हुआ रहता है। नॉर्मली आप में हमें ये दिखता नहीं है, लेकिन इसका जो कंट्रोल अपने बॉडी पे है, आपका सोना, आपका उठना, आपका जो स्किन का टेक्सचर है, आपका आवाज है, आपका जो एनर्जी है, आपका जैसे आप इतने प्यार से लोगों को ग्रीट करते हैं, आपका वो सिग्नेचर लाइन, आपका पैशन एनर्जी, सब का जो मेन कंट्रोल है वो ये ग्लैंड करता है। एक ही ग्लैंड नहीं है अपने बॉडी में, अपने पास बहुत सारे ग्रंथियां हैं, लेकिन ये दूसरे ग्रंथि आप लेके जैसे पैनक्रियाज है, उसका ज्यादा कंट्रोल रहता है शुगर पे। आपका डायबिटीज और पैनक्रियाज से आपको डेफिनेटली उसकी थोड़ा कुछ मालूम रहेगा। लेडीज में ओवरीज रहती है, जेंट्स में टेस्टीज रहती है, ब्रेन में 2-3 ग्लैंड्स रहते हैं, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, लेकिन सबका एक एक जो हार्मोन रहता है उसका फंक्शन लिमिटेड रहता है कि आगे पैनक्रियाज है वो शुगर पे कंट्रोल करे, या ओवरीज का जो हार्मोन्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कंट्रोल करे। तो ये थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो पूरे शरीर में हर कोशिका सर से लेके पैर तक, अपने चमड़ी से लेके आंखों तक, अपने मूड से सबसे संबंधित रहता है, और जब ये हेल्थी रहता है हम हेल्थी रहते हैं। तो इसकी जानकारी, इसके जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा समझना, सतर्क रहना बहुत जरूरी है कि हमें आगे चल के ट्रीटमेंट भी जल्दी मिले। और इसका एडवांटेज ये है कि जल्दी पकड़ में आने में ट्रीटमेंट भी बहुत ही आसान है। तो ये ग्लैंड, इसके सिम्टम्स, इसके फंक्शंस, इसके प्रॉब्लम्स है, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि हम हेल्थी कैसे रहे।
1: बिल्कुल डॉक्टर प्रीति, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये ग्रंथि है जो बहुत ही कम वेट का है, लेकिन इससे पूरा जो है बहुत सारे काम होते हैं जो आपने अभी जिक्र किया। तो अब बात आती है कि अभी कॉमनली जैसे कि चलो थायराइड का ही बीमारी है ये समझना बहुत जरूरी है पहली बात तो कि ये थायराइड के कारण हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो फिर चीजें आगे बढ़ेगी नहीं। तो प्रॉब्लम को कैसे हम लोग कॉमनली देख सकते हैं, समझ सकते हैं?
2: बिल्कुल, अभी जैसे हमने डिस्कस किया ये पूरे शरीर पे काम करता है। तो इसके सिम्टम्स भी जो है वो सामने आने के लिए भी काफी टाइम लगते हैं, लेकिन लकीली जो 30 साल या 40 साल पहले सिवियर डिजीज के साथ आते थे कि बाबा बहुत ही थायराइड का इश्यू है और फिर वो डायग्नोस हो रहे हैं, वो लकीली आज अनफॉर्चुनेटली जो बोले कि आजकल कम दिखाई देता है, क्योंकि ये टेस्ट बहुत फ्रीली अवेलेबल है और जो सतर्कता है एटलीस्ट शहरों में या आप गाँव में भी बोले तो ये टेस्ट जो है काफी इजिली मिलता है करने के लिए। तो ये हॉर्मोन्स जो है जो ग्लैंड से निकलते हैं वो बेसिकली दो हॉर्मोन है, T3 और T4। इसका जो लेवल बॉडी में रहना चाहिए उसका जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उससे हमें एक इजिली आइडिया आ जाता है कि लेवल्स आपके बॉडी में बराबर है कि नहीं। अगर लेवल्स बॉडी में कम है, अभी प्रॉब्लम्स अगर हम सोचे तो सिम्टम्स वाइज अगर हॉर्मोन लेवल ज्यादा है, यानी प्रोडक्शन जो कार्य प्रणाली ग्रंथि से हो रही है अगर वो ज्यादा हो रही है तो इसे हम हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं, यानी जो हॉर्मोन लेवल है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा है। अगर उसका प्रोडक्शन या कार्य प्रणाली कम है, यानी थायराइड ग्लैंड हॉर्मोन कम कर रहा है, तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और तीसरा एक टोटली डिफरेंट सिम्टम जो हम और डिस्कस करेंगे वो है कि जब गले में गांठ आती है, जो नॉन कैंसरस या बिनाइन भी बोलते हैं और जिसमें उसमें कैंसर होता है, तो उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अभी ये जो हॉर्मोन्स है वो बचपन से लेके अपने आयु के अंत तक उसका काम रहता है, स्पेशली लेडीज में ऐसा देखा गया है कि 10 लेडीज में से एक को डेफिनेटली थायराइड प्रॉब्लम होता है और वो कभी कभी मिस हो जाता है। अभी ये 10 में से आप एक सोचो, यू आर टॉकिंग अबाउट 10%, काफी बड़ा नंबर है। और ये लेडीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्यूबर्टी से लेके प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, इसका जो रोल है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स आते हैं लेडीज में उस पे काम उसका प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो इनफर्टिलिटी, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, जिनमें कंसीव जो हम बोलते हैं कि बच्चा हो नहीं रहा है, जिसको हम इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं, ब्लीडिंग का इश्यूज ज्यादा होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान जब अगर स्त्री को या महिला को थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपो या हाइपर, तो उसे हम हाई रिस्क कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है वो बच्चे में और मदर में दोनों में हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम आते हैं वो ज्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जो कार्य प्रणाली है वो कम है, तो थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान देना है वो बराबर से गायनेक एंडोक्राइन जो स्पेशलिस्ट है वो देके प्रेगनेंसी एंड तक बराबर उसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर बाय चांस ये मिस हो गया और अगर बच्चा पोस्ट डिलीवरी हमें चेक करना है कि बाबा रिसेंटली डायग्नोस हुआ है या उनका जो ट्रीटमेंट है वो एडिक्वेट नहीं है मदर का, तो बच्चे में भी हाइपोथायराइड सिम्टम्स बहुत डेंजरस होते हैं। ब्रीदिंग से लेके क्राइंग तक, फीडिंग तक, मेंटल रिटार्डेशन तक वहां प्रॉब्लम जा सकता है और ये इरिवर्सिबल है। अगर हम जल्दी पकड़ नहीं लेते हैं कि बाबा बच्चे में, जन्मजात बच्चे में, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू बॉर्न, उसमें एक स्पेशल टेस्ट रहता है जो हील प्रिक टेस्ट बोलते हैं, वहां से

0: खून में इमीडिएटली हम लोग चेक करते हैं कि थायराइड लेवल कैसा है, और अगर हम तभी के तभी इनिशिएट नहीं करते हैं ट्रीटमेंट तो आगे चल के रिटार्डेशन और प्रॉब्लम जो इरिवर्सिबल है उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। तो ये सब चीज जो है थायराइड हार्मोन से जुड़ी हुई है, और ये थायराइड ग्लैंड जो लेडीज में मैंने जब अभी उसका उल्लेख किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि थायराइड अपना नॉर्मल होना चाहिए। सिम्टम्स आप बताएं तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत वेग सिम्टम्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्किन ड्राइनेस रहना, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स, मोटापा होना, अगर मोटापा एज इन नॉट ओबेसिटी टाइप मोटापा, खाते भी ज्यादा है खाते कम है कोई कोई लोग, नींद नहीं आती है, थोड़ा सा लेथार्जी जो बोलते हैं कि बाबा एनर्जी नहीं है, निकलना नहीं है बेड से, ये सब चीजें जो है कभी कभी फेस में थोड़ा सा पफीनेस आ जाता है, ये थोड़े वेग सिम्टम्स है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा एक सिम्टम पकड़ के हम बोले कि बाबा ये थायराइड की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि बाबा 3 महीने पहले मैं आई वॉज फीलिंग बेटर और अभी थोड़ा सा बदल हो गया है, ये सब थोड़े थोड़े सिम्टम्स है, तो बेटर टू गेट योर थायराइड लेवल्स चेक। हाइपर थायराइडिज्म में जहां वो कार्य प्रणाली ज्यादा हो रही है और ट्रेमर्स आते हैं हाथ में, पैल्पिटेशन होते हैं, एपेटाइट बढ़ता है लेकिन वेट नहीं बढ़ता है, जो हाइपर एक्टिविटी है वो होता है, तो एब्सोल्युटली उल्टा सिम्टम्स, और दोनों कैटेगरी में लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकते, दैट इज क्वाइट कॉमन इन बोथ। अभी ड्राई आईज रहते हैं किसी किसी में, हाइपर में, और एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि आंख जो है, हमें आंख का जो ऊपर का व्हाइट है जो नॉर्मली दिखता नहीं है वो दिखने लगता है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सॉफ्थाल्मस, वेरी क्लासिकल, लकीली ज्यादा दिखता नहीं है अभी, लेकिन दिस आर द सिम्टम्स। तीसरा जो रीजन है ये सब, अभी मैं हॉर्मोन्स का मैं आपको लेवल बता रही हूँ, लेकिन उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आपके ऑफिस में आपका बॉस रहेगा या आपका फैन रेगुलेट करने के लिए एक स्पीड रहेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा बाबा मैं सिर्फ T3 T4 करके अगर मेरा लेवल नॉर्मल है तो या डज दैट मीन कि मेरा थायराइड बराबर है। आप सबने TSH करके टेस्ट सुना होगा जो इसके साथ में जाता है, T3 T4 TSH। अभी ये TSH जो है वो थायराइड से निकलता नहीं है, वो थायराइड का एक बॉस है जो ब्रेन में रहता है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, वो और एक हार्मोन ग्लैंड है, छोटा सा 1 सेंटीमीटर का ग्लैंड है लेकिन वो किंग है। तो जब हमारे शरीर में हम उसको लगता है कि बाबा हमें थायराइड हार्मोन ज्यादा चाहिए यानी कमी है, तो वो एक सिग्नल भेजता है, TSH बढ़ जाता है। तो ये जो लेवल है वो उल्टा है, यानी आपका थायराइड ग्लैंड कम सेक्रीट कर रहा है तो ये TSH ज्यादा हो जाएगा। तो ये काफी लोगों को समझता नहीं है, उनको लगता है कि मेरे को थायराइड ज्यादा हो गया है क्योंकि TSH बढ़ जाता है, लेकिन उसका जो मतलब है वो उल्टा है, यानी TSH बढ़ गया यानी आपका थायराइड लेवल कम है, तो आपको थायराइड की गोली चाहिए। उल्टा हाइपर थायराइड में होता है कि उसका जो प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से थायराइड का जो स्टिमुलेशन चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड कम होता है, तो वो रेंज से कम हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि बाबा ये पेशेंट हाइपर थायराइड है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है हाइपो और हाइपर के लिए। अभी मैं रही सर्जिकल डॉक्टर, तो मैं ज्यादा मेडिकल इश्यूज से ज्यादा आई एम ज्यादा मेरा गले से जो गांठ के पेशेंट आते हैं सिम्टम लेके उसपे हमारा ज्यादा ध्यान जाता है। तो थर्ड कैटेगरी के जो पेशेंट है वो गले में गांठ लेके आते हैं। अभी आप अगर कहीं भी घूमे तो भी आप देखेंगे कि बहुत सारे इसमें ये गांठ दिख जाती है रास्ते में चलते हुए, आप बहुत लोगों में आपने देखा होगा। अभी ये जो है इसे हम इंग्लिश में गॉइटर बोलते हैं, इसका स्पेसिफिक सिर्फ थायराइड से संबंध है, और हिंदी में इसको गलगंड बोलते हैं। अभी ये जो गॉइटर है वो बहुत, हम अगर क्लासिफाई करें तो हमें जो है उसको दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, एक जो है स्मूथ जो ग्लैंड रहता है उसको डिफ्यूज गॉइटर बोलते हैं, और दूसरा आप देखेंगे पूरा ऐसे पूरा सूज जाता है तो उसे डिफ्यूज गॉइटर बोलते हैं। दूसरे इसमें जहां वो थायराइड के ग्लैंड में ही गांठ आती है उसको नोड्यूलर गॉइटर बोलते हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ट्रीटमेंट अलग है दोनों का, और तीसरे जो वैरायटी है वो पूरे अपने कैंसर रिलेटेड आते हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे आई कैन स्पीक ऑन द स्वेलिंग्स की हम
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बीच में एक क्वेश्चन किसी ने डाला है, शुभाजी लिखा, हाँ ट्राइबल आदिवासी लोगों को ज्यादा थायराइड होता है क्या, दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये पूछा है, और व्हाई पीपल एक्सप्लेन ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बताइए दीदी. डॉक्टर प्रीति जी, रमेश जी, अर्चना जी, ओम शांति. थैंक यू. यस, आदिवासी और ट्राइबल जो गांव के अंदर रहते हैं उन लोगों को ज्यादा होता है कि ये पूछा है मैंने.
0: बिल्कुल, अभी ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि ये पिछले आई थिंक 50 या 60 इयर्स में काफी बदल चुके हैं. बिकॉज जो पहले के जमाने में जो सॉल्ट होता था वो हमें या तो डायरेक्टली सी सॉल्ट से मिलता था और उसका जो है सब्स्टिट्यूट ज्यादा इंटीरियर्स में नहीं मिलता था. एज इन द सेंस कि वो लोग जो है उनके प्रोडक्शन में जो उनको सॉल्ट मिल रहा है वो यूज करते थे. अभी थायराइड इतना एक अमेजिंग या इतना वंडरफुल एक ग्लैंड है जो पूरे शरीर में आयोडीन का जो रिक्वायरमेंट रहता है, आयोडीन करके आई थिंक आप सब लोग तो वो जो आयोडीन है वो उसको यूज करने में सबसे इम्पोर्टेंट उसका एक काम है और वो T3 और T4 दोनों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है काम करने में. तो पहले के जमाने में जब हमारे पास आयोडाइज सॉल्ट नहीं रहता था तो ये जो नमक आती थी, अभी जो आप सब नमक जो मार्केट में मिलता है वो सब आयोडाइज्ड है. तो पहले के जमाने में जब नहीं मिलता था या तो ऐसे जो आदिवासी हैं जो आयोडाइज नमक नहीं ले रहे हैं उनमें जो है ये आयोडीन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है जिसकी वजह से अगेन थायराइड का सेक्रीशन कम हो जाता है और उनको वो गॉइटर आ जाता है. तो उसमें वो स्वेलिंग्स और वो जो हाइपोथायराइड डिजीज है वो आयोडीन डेफिशिएंसी के वजह से है और ये रिवर्सिबल है. तो इन लोगों में अगर ये हम इंफॉर्मेशन दें कि बाबा आपका सॉल्ट आपसे वो नमक चेंज करके आयोडाइज सॉल्ट ले ले तो ये प्रॉब्लम मिट जाए. तो अभी कंपेयर टू द लास्ट 40-50 इयर्स बहुत कम है, लेकिन पहले एंडेमिक एरियाज थे जैसे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में एंडेमिक एरियाज थे जहाँ पे ये हमें ज्यादा दिखता था.
1: प्रीति जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और सुभाष जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका. क्योंकि कई बार चीजें हमारे सामने होती हैं लेकिन फिर हम उसे ठीक से नहीं समझ पाते. अगर समझ जाएंगे तो नेचुरली ये चीजें जो है, पहले मेरे ख्याल से ये खास करके एड भी चलता था एक तरह का आयोडीन नमक ये करके वगैरह में, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रचलन था ये. तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये सारा नॉर्मल मना लोग आयोडीन नमक खाने लग गए और ये सारी चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई. अब बात करते हैं हम लोग डायग्नोसिस पे, इसके बारे में इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं.
0: अभी डायग्नोसिस जो हाइपो या हाइपर थायराइड के हैं वो सिंपल ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है. एक T3 T4 TSH का एक सिंपल ब्लड टेस्ट रहता है जिसके लिए हमें भूखे पेट की भी जरूरत नहीं है. वो टेस्ट में एक अंदाज आ जाता है कि अपने लेवल्स ठीक है कि नहीं. अभी इसमें अगर आप T3 T4 भी ना करें और सिर्फ TSH करें तो उससे भी हमें काफी आइडिया आ जाएगा कि बाबा थायराइड का आपका प्रोडक्शन बराबर है कि नहीं. और ये रेंज में रहता है, वो रेंज में अगर है तो यूर ओके. और ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा रेंज, फॉर एग्जाम्पल अगर 4.95 है और आपका अगर 5 है तो आपको हाइपोथायराइड, ऐसे नहीं है. ये जो है हम डिसाइड करते हैं गोलियां देनी है नहीं देनी है बेस्ड ऑन द लेवल सिम्टम्स. तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा एक पॉइंट इधर उधर हुआ तो आप हाइपो या हाइपर है. तो ये ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपका रेंज में नहीं है तो इमीडिएटली आपके या तो MD स्पेशलिस्ट जो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट है या तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इससे अगर आप मिले तो दे कैन गाइड यू कि आपको मेडिकेशन की जरूरत है या आपको टेस्ट थोड़े दिनों के बाद वापस रिपीट करके चेक करना है. इसके अलावा जो है अगर हाइपर थायराइड की बात करें तो और 2-3 ब्लड टेस्ट रहते हैं जो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह करते हैं, उसमें भी आइडिया आता है. इसके साथ में कभी कभी हम गले की सोनोग्राफी निकालते हैं देखने के लिए कि थायराइड ग्लैंड दिखने में कैसा है, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बराबर है कि नहीं. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास पेशेंट वो गांठ लेके आते हैं तो हमें पता करना पड़ता है कि वो गांठ कैसा है, कितना बड़ा है, एक है कि ज्यादा है, या हमें उसमें कोई डेंजर सिम्टम लग रहे हैं, उसके साथ में और कहीं फैला हुआ गांठ हमें दिख रहा है कि नहीं करके. तो इसके ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है. अल्ट्रासाउंड तो आपको मालूम है, आई थिंक 15 मिनट्स में अल्ट्रासाउंड हो भी जाता है. तो ये बहुत सिंपल टेस्ट है. इसके अलावा अगर हमें डाउट है कि हाइपरथायरॉयडिज्म कोई पर्टिकुलर एरिया थायराइड की वजह से है तो कभी कभी थायराइड स्कैन होता है जो स्पेशलाइज्ड स्कैन है जो न्यूक्लियर मेडिसिन एक अलग ही डिपार्टमेंट है वहां पे करते हैं. तो वो सिर्फ थायराइड का ग्लैंड देख के वो बताते हैं कि बाबा ये एरिया में उसका प्रोडक्शन ज्यादा है, तो वो स्पेशलाइज्ड स्कैन है. CT MRI तो हम सबने सुना है. तो अगर कैंसर का डाउट है या हमें लग रहा है कि कोई और सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस है तो कभी कभी हम वो भी करते हैं. इसके अलावा अगर कोई एरिया में हमें दिखता है तो छोटी सी हम उसमें सुई डालते हैं जिसे FNAC करते हैं. तो उसमें एक FNAC करके है जो छोटी सुई वो एरिया में डाल के उसका जो है टेस्टिंग करके हमें आइडिया आता है कि ये कैंसरस है कि नहीं. तो ये सब जो है टेस्ट है जो हमारे पास है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन वन।
1: एक कुछ सवाल आए हैं, वापस एक बार हम लोग उनको देख लेते हैं। यहाँ पर संगीता चांदक लिखते हैं, क्या पत्ता गोभी से बढ़ता है थायराइड या इसे अवॉइड करना चाहिए? दूसरा उन्होंने लिखा है, तो इसको अवॉइड या थायराइड को कम करने के लिए कोई एक्सरसाइज है?
0: ये बहुत ही कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हमारा वजन ज्यादा है या तो हम कोई चीज खा रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया पत्ता गोभी, किसी किसी को एक स्पेशली दे आर आस्क्ड टू अवॉइड टमाटोज, तो ये सब जो चीजें हैं इनका थायराइड से कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस विद थायराइड। थायराइड का जो ग्लैंड है वो अपने आप से एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड है जिसका आयोडीन छोड़ के डाइट में कोई फर्क में कोई चीज में आप ले या ना ले उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कोई चीज अवॉइड करने के लिए थायराइड के लिए कोई देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल। एक्सरसाइज की बात, एक्सरसाइज करना तो एनीवे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक्सरसाइज और अगेन थायराइड का कोई संबंध नहीं है। तो अगर थायराइड में प्रॉब्लम है, कमी या ज्यादा है, तो उसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। साथ ही आप एक्सरसाइज कीजिए, साथ ही आप बैलेंस डाइट लीजिए, इट विल हेल्प, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द सिचुएशन।
1: सवाल आया है यहाँ पर, इट इज ए बिलीव दैट इफ यू कर्ब योर फीलिंग यू डू नॉट स्पीक आउट, यानी जो लोग अपने भावनाओं को दबा के रखते हैं और बात नहीं करते हैं, तो इससे भी क्या थायराइड प्रॉब्लम होता है, क्या ये सही
0: है? एक्चुअली क्वाइट द रिवर्स। बेसिकली क्या रहता है कि जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर हाइपो है या हाइपर है, तो जैसे मैंने बताया इसका जो रोल है वो पूरे शरीर में है, इंक्लूडिंग द ब्रेन। तो बहुत अनट्रीटेड जो थायराइड बोलते हैं, जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है, उनके दिमाग में बहुत विचार चलते हैं, हाइपर एक्टिविटी से लेके डिप्रेशन तक, एंग्जाइटी तक, कुछ भी हो सकता है। तो मेनी पीपल ये रिलेट करके ऐसे समझते हैं कि बिकॉज मैंने ऐसा किया तो मुझे थायराइड हुआ, वो एक्चुअली सिचुएशन टोटली उल्टा रहता है। थायराइड डिटेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके जो विचार है उसकी वजह से कोई चेंज हो सकता है। अगर ऐसा लग रहा है कि बाबा विचार अलग आ रहे हैं या हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ तो बदल हो गया है, तो डेफिनेटली
1: एक और सवाल आया है, ये लिखते हैं मीनल जी के बाद, कल्पेश जी खुद लिख रहे हैं, क्या थायराइड की वजह से डायबिटीज होने का चांसेस है क्या?
0: ये टोटली अलग अलग ग्लैंड्स है। फॉर एग्जांपल जैसे थायराइड ग्लैंड जो है उसका, मैंने बिगिनिंग में कहा था थायराइड ग्लैंड का फंक्शन अलग है, पैंक्रियास का फंक्शन अलग है, हर एक का रोल है, और वो रोल जो है इतना बैलेंस्ड है जिसकी वजह से आप ऐसे हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। तो ये बैलेंस रखने के लिए हर ग्लैंड को अपना काम बराबर करना चाहिए। तो डायबिटीज जो है वो रिलेटेड रहता है, उसका पैनक्रिया से भी रिलेशन है, उसका इंसुलिन जो सेक्रेट हो रहा है डाइट में, वो उसमें उसका टोटली अलग एक रीजन रहता है, लेकिन थायराइड की वजह से डायबिटीज होना अनलाइकली है।
1: अच्छा अच्छा, चलिए कल्पेश जी आपने जो पूछा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी अलग है, टेस्टिंग भी अलग है, सब कुछ है अलग। तो आइए अब बात करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें समझ लिया कि थायराइड एक ग्रंथि है और हाइपो हाइपर या हाइपो मना कम, हाइपर मना ज्यादा, मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहबा? तो ये कम ज्यादा वाला बात होता है, तो इसमें आपको, इसलिए मेरे ख्याल से थायराइड के टैबलेट्स में ना पावर होते हैं, है ना, तो कभी 25 कभी 50 कभी 75 100 तक भी जाते, तो आप फिर कम होते वो सारी चीजें कम भी गोलियां कम लेनी पड़ती, इसका मतलब आपका थायराइड लेवल अगर बैलेंस में आ रहा है कम करनी पड़ेगी गोलियां, और अगर कम हो रहा है तो फिर आपको गोलियों का पावर बढ़ाना पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ठीक से समझने की जरूरत। एक और बात आई थी इस पर पिछली बार, किसी डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बातें कही थी, तो क्या थायराइड एक बार होने से कम्प्लीटली वो खत्म होता है क्या ट्रीटमेंट करने के बाद, या रहता ही है या गोली लेना ही पड़ता है?
0: देखिए इसमें जो है हाइपोथायरॉयडिज्म में, जहाँ पे सेक्रीशन जो कार्य प्रणाली वो कम हो रही है, उसमें हमें टैबलेट लेना ही है। और वो टैबलेट क्या है, वो एक्सटर्नल सिंथेटिक हम लोग हार्मोन दे रहे हैं कि वो बैलेंस करने की। तो ये कम ज्यादा हम कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ, लेकिन ये यूजुअली जो है लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है कि आप अपने, जैसे आप अपना चश्मा है वो अगर आप शुरू से पहन रहे हैं तो सडनली जो है आप निकाल नहीं सकते, आपको नंबर चेंज हो सकता है,
1: नंबर चेंज हाई
0: बिल्कुल। तो हाई, और वो क्या है, सिर्फ एक गोली है जो सवेरे हम भूखे पेट लेते हैं, तो इट इज लाइक अ लाइफ स्टाइल, यू हैव टू चेंज इट कि बाबा हमें थायराइड की गोली लेनी है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। वो हमारी कमी को बैलेंस कर रहा है, दैट इज द ओनली रोल इट हैज। हाइपरथायरॉयडिज्म जो है हमें क्योर करने के लिए उसके उसके पीछे हम यूजुअली ट्राई करते हैं। हाइपर में क्या रहता है कि समटाइम्स वो ग्लैंड ही सूट जाता है किसी डिजीज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, कभी एक जगह जो है वो ग्लैंड का वो ज्यादा काम करता है। तो नॉर्मली इसमें जो है दवाई टोटली अलग दी जाती है, वो थायराइड हार्मोन नहीं रहता है, वो हार्मोन को दबाने के लिए अलग से ड्रग रहता है। वो कभी कभी जैसे वो उसकी सूजन चली जाती है या उसका जो प्रभाव है वो निकल जाता है, तो हो सकता है कि 3-4 साल में वो गोली हम बंद भी कर सकते हैं। तीसरा, अगर वो 3-4 साल के बाद भी नहीं हो रहा है और हमें एक पता है कि वो एक जगह में वो गड़बड़ है, तो ऑपरेशन द्वारा वो भाग निकाल के हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो हाइपर में डेफिनेटली हम बंद करने की कोशिश करते हैं, हाइपो में चांसेस कम है।
1: कम, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट था जो समझना जरूरी था। अब बात करते हैं, जैसे मान लो किसी को डिटेक्ट हो गया भाई थायराइड है, हाइपो या हाइपर, लेकिन फिर भी अब ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या करना होता है, थोड़ा सा वो बताएं।
0: अभी हाइपो में जैसे हम अभी बता रहे थे कि गोली लेनी पड़ती है, और जैसे आपने सही बताया कि उसके पावर रहते हैं, तो ये जो दवाई है वो कोई अपने आप से ना लेके, अगर आप बराबर एक फिजिशियन के पास या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जाके, अगर आप डोज वो टीएसएच को देख के आपको डिसाइड करते हैं कि आपको स्टार्टिंग डोज क्या लेना है। अब वो अगर 25 से चालू करें तो 25 ऐसा नहीं कि 10 दिन में आपका लेवल बदल जाएगा। ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो मे बी 2 महीने या 3 महीने के बाद वापस चेक करके वो देखते हैं कि लेवल कितना चेंज हो गया है। अगर नॉर्मल आ गया है तो वो उसी डोज पे आपको कंटिन्यू करेंगे, फिर भी अगर टीएसएच ज्यादा है यानी आपका लेवल फिर भी कम है तो वो थोड़ा और डोज बढ़ा देंगे। तो वो जो बैलेंस करने का जो एक ये रहता है कि आपको 25 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, वो बैलेंसिंग करने के लिए कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। और ये करने के बाद हर 6 महीने में वो टेस्टिंग रिपीट करके हम देखते हैं कि अदर लेवल टीएसएच लेवल्स नॉर्मल हो रहे हैं कि नहीं। हाइपर में क्या रहता है कि एक स्पेशल जैसे मैंने बोला वो टैबलेट देते हैं जिसकी वजह से वो हम लोग हार्मोन लेवल्स कंट्रोल करते हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट ड्रग रहते हैं। अभी ये जो थायरोक्सिन की गोली है जो आती है पावर में, उसका सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट चीज है कि वो सवेरे बिफोर ब्रेकफास्ट भूखे पेट में लेना है, और हो सकता है तो उसके बाद एटलीस्ट एक 40-45 मिनट्स 1 आवर के बाद आप चाय लो, कुछ और लो, कुछ और ले सकते हैं। तो एम्प्टी स्टमक होना जरूरी है। इसमें भी काफी अभी वाद विवाद है, बट जो टीचिंग है हमारा रेगुलर वो ऐसा है कि मॉर्निंग में भूखे पेट में ले लीजिए, और मिस नहीं होना चाहिए, वो एक जरूरी चीज, तो वो मिस ना करें और बराबर से लें। और प्रेगनेंसी के द्वारा तो यू हैव टू बी इन टोटल कनेक्शन विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट कि बाबा बराबर चल रही है कि नहीं, तो उसमें भी हार्मोन लेवल्स बहुत ऊपर नीचे चले जाते हैं। ये हाइपो हाइपर। अभी अगर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट जाए तो जो गलगन जो बोलते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए राइट फ्रॉम कुछ नहीं करने से लेके पूरा थायराइड निकालने तक हमारा एक पूरा एक प्लान रहता है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो डिफ्यूज जो स्मूथ गोइटर है उसको नॉर्मली ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो अपने आप से बैठ गई, अगर हम हाइपो है, हमने गोली ले ली, वो बैठ गई तो ठीक है, नहीं बैठी तो भी हम लोग उसके लिए ऑपरेशन नहीं करते हैं। अगर बाय चांस उसकी वजह से तकलीफ हो रही हो राइट फ्रॉम कॉस्मेटिक कि बाबा बहुत सूजा हुआ लग रहा है, या उसकी वजह से प्रेशर के सिम्टम्स आ रहे हो, तो ही हम उसे ऑपरेट करते हैं। जो नोड्यूलर गोइटर है जिसमें जो उसमें ग्रंथि में ही छोटे छोटे गांठ है, उसमें 2 टाइप के हैं। एक जो सिंगल गांठ आती है उसमें हम एक स्पेशली उसका नाम रहता है जो हम सॉलिटरी थायरॉइड नोड्यूल, यानी एक ही साइड में एक ही जगह वो गांठ है, उसके लिए अगर हम साइज 1.5 सेंटीमीटर से क्रॉस करें तो वो हम आधा थायराइड निकालते हैं। तो वो जो भाग है, क्योंकि चांसेस कम है लेकिन वो आगे चल के कैंसर में बदलने का चांस करके हम करते हैं। तीसरा जो है मल्टी नोड्यूल, यानी दोनों साइड में छोटी छोटी गांठें हैं, उसको भी हम यूजुअली सर्जरी नहीं करते हैं। ये जब हम टच करते हैं, जब हमें कोई डाउट है कि बाबा कोई एक जगह डेंजर हो गया है, सडनली कुछ बढ़ गया है। अभी ये आप मैं जो नोड्यूल बता रही हूँ वो 2 मिलीमीटर से लेके 1.5 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। कोई कोई पेशेंट ऐसे लिटरली ऐसे गांठ गांठ लेके आते हैं, उनमें भी आपने देखा भी होगा काफी, इट्स क्वाइट कॉमन, अभी भी क्वाइट कॉमन। लेकिन फिर भी अगर हमें डाउट है कि बाबा उसमें तकलीफ हो रही है, उसमें तकलीफ क्या रहती है, 2 चीज से हमें डर रहता है। एक तो प्रेशर की वजह से बिल्कुल पीछे सांस की नली रहती है, तो बहुत टाइम से अगर 15 साल 20 साल वो हम गांठ में वो सूजन गले में सूजन है तो उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है, तो लेटते समय सांस में तकलीफ आ जाती है। उसके पीछे डायरेक्टली जो है हमारा हमारी अन्न नलिका रहती है, तो कभी कभी निगलने में तकलीफ आ जाती है। और ये जो ग्लैंड है उसके दोनों साइड उसके पीछे से छोटी जो है नसें जाती है, जो हमारा हमारी जो वॉइस बॉक्स है, जो हम बात कर रहे हैं, अपना जो पिच है, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, तो उसको वो सप्लाई करती है, तो कभी कभी उस पे प्रेशर आता है तो आवाज होर्स हो जाता है, जैसे हमारा गला बैठ गया है वैसे आवाज आती है। ये सब कंडीशन में हम ऑपरेट करने के लिए हम पेशेंट को सलाह देते हैं। टोटली डिफरेंट चीज है कैंसर। अभी कैंसर में और जो थायराइड ग्लैंड के कैंसर्स हैं वो नॉर्मली 3-4 टाइप के रहते हैं। कोई कोई कैंसर उसमें फैमिलियल रहते हैं, जो जेनेटिक रहते हैं कि किसी के फादर की साइड से या मदर के साइड से वो कैंसर ट्रांसमिट होता है, लेकिन वो कम है। लेकिन अगेन सतर्कता जरूरी है कि बाबा somebody in my family had cancer, especially thyroid cancer, तो हम chances है। इंडिया में जेनेटिक टेस्टिंग अभी भी इतना प्रचलित नहीं है, तो ये जो जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री है वो अभी भी काफी कम हमें दिखता है या हम उसका जो डायग्नोसिस कर रहे हैं। आई थिंक आगे के 20-30 साल में वो और बढ़ जाएगा। ये जो कैंसर आते हैं इसमें इसका जो टाइप्स है वो 2-3 टाइप के जैसे है, जो काफी कॉमन है उसका ट्रीटमेंट भी जो है वो कैंसर के टाइप से डिसाइड होता है। तो इसका जैसे हमने पहले बताया कि छोटी सुई डालते हैं, उसका स्लाइड देखते हैं, अगर उसमें कैंसर दिखता है तो या तो सर्जरी, या तो सर्जरी के साथ कभी कभी हम कीमो, कभी रेडिएशन, वो भी देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर वो एक स्पेशल टाइप का कैंसर जो मेड्यूलरी कैंसर बोलते हैं, फॉलिकुलर कैंसर बोलते हैं, जो उसका फैलने का डेंजर रहता है, तो जो थायराइड ग्लैंड के साथ में कभी कभी उसके आजू बाजू के जो नोड्स हैं जो गले में फैल रहे हैं उसको देखना पड़ता है। कभी कोई टाइप के कैंसर्स में हमें एक्स्ट्रा बूस्ट, जैसे हम रेडिएशन देते हैं वैसे, जैसे आयोडीन का कनेक्शन है थायराइड के साथ, रेडियो आयोडीन करके एक थेरेपी रहता है जिसमें वो सिर्फ आयोडीन की के माध्यम से, स्पेशल आयोडीन के माध्यम से जो कैंसर का टिश्यू है वो जल जाता है। अच्छा। तो इसका वो एक स्पेशल, ये सब मॉडलिटीज हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट काफी सक्सेसफुल रहता है, जितने जल्दी आएंगे उतना डेफिनेटली सर्वाइवल अच्छा है। तो अगर पेन है, कहीं नया गांठ कुछ निकला है, आपको ऐसे लग रहा है कि गले में आपका आवाज में बदल आ गई है या सांस लेने में बदल आई है, तो प्लीज आपके डॉक्टर से मिलिए एंड गेट दैट चेक्ड अप, बिकॉज ये नॉर्मली दिखता नहीं है किसी में। अगर दिख जाता है देन यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम, सो इट इज इजी टू, अभी डर के बैठ के घर पे बैठने से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो यू हैव टू अप्रोच द डॉक्टर, यू हैव टू गेट इट ट्रीटेड।
1: बिल्कुल बिल्कुल। कल्पेश जी कुछ लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मेरी वाइफ शायद 250 नहीं होगा, 25 होगा, नहीं टेबलेट 250 mg का भी आता है क्या?
0: नहीं, वो 100 के आके देते भी हैं, इट इज नॉट, इज नॉट गिवन, काफी वो
1: तो हो सकता है, ज्यादा भी देना पड़ता है अपने को डोज
0: कभी। और ये जो हम जब ऑपरेशन करके पूरा थायराइड निकालते हैं तो जिंदगी भर थायराइड की गोली देनी ही पड़ती है, तो वो ऑपरेशन के बाद 6 हफ्ते के बाद हम लोग टेस्ट करके बेसलाइन कितना है देखे, वो हम लोग लाइफ लॉन्ग देने की जो है एक नीड हो जाता है कि देना ही पड़ता है, तो हो सकता है कि वो लगे, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज कंट्रोल में है डोज मैटर नहीं करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी मिस कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक सवाल आया था जैसे पत्ता गोभी खाने से थायराइड बढ़ जाता है या सही है, या कोई एक्सरसाइज है जिससे हमारा थायराइड कम हो सकता है, तो ये इन चीजों पे थोड़ा सा और आप गहराई से बताएं।
0: ये सबसे जो आसान मिसकंसेप्शन जो मैं बोल रही हूँ, कॉमन मिसकंसेप्शन है वो है कि मैंने 6 महीने मेरी थायराइड की गोली ले ली, अभी मेरा लेवल नॉर्मल है, अभी मैं बंद कर देती हूँ। और जैसे यू नो मेरा नेबर है वो 25 ले रहा है, मेरे डॉक्टर ने मुझे 100 लेने को बोला है, वो तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैं अपने आप से कम कर देता हूँ। तो ये चीज बहुत गलत है। आपके थायराइड लेवल चेंज होने में 2 महीने लग जाते हैं, तो अगर आपका लेवल नॉर्मल है, ये नॉर्मल है क्योंकि आपकी गोली चल रही है, तो अपने आप से तो कभी बंद मत कीजिए। अगर करना भी है कि आपको चेक करना है कि कोई चेंज करना है, तो टेस्ट करके आपके डॉक्टर की सलाह के साथ ही लीजिए। जैसे मैंने, वो सिर्फ एक ही गोली है सवेरे लेनी है, बस लिटरली अपने दिन की शुरुआत अगर उससे करें तो आपका पूरा दिन जो है इट इज गोइंग टू गो वेल. तो हम सवेरे उठ के चाय पीते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, उसके वैसे ही हमें ये एक लाइफस्टाइल में जोड़ना है. वो एक चीज है. लेकिन मिसकंसेप्शन ये है कि आपने जैसे बताया कोई डाइट खाने से या डाइट ना खाने से ये इसमें बदल हो सकता है. दैट इज एब्सोल्युटली नॉट प्रूवन कि डाइट और इसमें कोई संबंध है. सिर्फ वो आयोडीन का है जैसे मैंने बताया. तो आयोडाइज सॉल्ट लेना बहुत जरूरी है. तो ये डेली डाइट में जितना अपना रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है जिसको RDA बोलते हैं, वो लेना जरूरी. और थर्ड जो ये हम सर्जिकल इसमें देखते हैं कि काफी लोगों में ये जो गांठ आती है वो दिखने में तो काफी बड़ी भी होती है, कभी कभी छोटी रहती है, लेकिन बहुत जो पेशेंट्स आते हैं उनको डर रहता है कि निशान ना आ जाए. अच्छा. मैं ऐसे कैसे घूमू की इधर ऑपरेशन हुआ है करके. लेकिन कॉस्मेटिक

0: जो सर्जरी का एक भाग नेक का सर्जरी रहता है, जो हम इंसिजन ही ऐसा लेते हैं, जो कट ही ऐसा लेते हैं, तो
1: पता
0: निशान और उसका जो दिखने का जो एक डर रहता है वो भी काफी लोगों में रहता है, वो ना ले। द अदर थिंग इज कि बाबा मेरा वॉइस बदल ना जाए ऑपरेशन के बाद। ये
1: बिल्कुल
0: काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम सिंगर्स में देखते हैं, जो टीचर्स हैं, जो आपकी तरह है, जो आरजे है, जो आपका काम ही है, जो यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, तो इनमें जो है, जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो आपके सर्जन के साथ आपको ये समझना जरूरी है कि वो जो दो नसें जा रही है, जो अपने वोकल कॉर्ड को पिच दे रही है, जो उसको बैलेंस दे रही है, वो कभी कभार जो है इंजर होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली कैंसर में। क्योंकि
1: अच्छा
0: कैंसर का एम है कि हम कैंसर को निकालना जरूरी है, लेकिन अगर वो कैंसर वो नस में चली जाए, या बाई मिस्टेक वो आप लिटरली आपके जो बाल है उससे भी छोटे वो नसें रहती हैं, जो हमें बचा के ऑपरेशन करना है, इतना डेलिकेट सर्जरी है वो। और वो कभी कभी अगर इंजर होती है, तो कभी टेम्पररी भी इंजर हो सकती है, कभी परमानेंट भी हो सकती है। तो ये कभी कभी पेशेंट को पहले अगर पता होता है कि बाबा ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो टेम्पररी चीज थोड़े दिनों में, हफ्तों में एक्सरसाइज के साथ ठीक भी हो जाती है। परमानेंट जब रहती है तो भी 2-3 महीने में उसका जो एक बैलेंस आ जाता है। वॉइस में हो सकता है कि थोड़ा बदल हो, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी बैड कैंसर या वेरी बैड थिंग। नॉर्मली
1: बिल्कुल
0: पेशेंट आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होता नहीं है, लेकिन ये वॉइस इश्यूज काफी लोग डर जाते हैं उससे, तो नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया सब गांठ में कैंसर नहीं होते हैं, सब थायराइड स्वेलिंग्स में ऑपरेशन नहीं लगता है, लेकिन किसमें लगता है नहीं लगता है वो आपके डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं, एक चीज।
1: जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि क्या इसमें कुछ बहुत सारे लोग अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो क्या थायराइड में भी कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है?
0: अभी बहुत ऑल्टरनेटिव अपना, आई थिंक इंडिया इज द हब फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, लेकिन लेकिन एक बहुत इसका एक लॉजिकल ये है कि अगर हमारे हार्मोन कम है, ग्लैंड कम सेक्रेट कर रहा है, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद द सेम हार्मोन, तो दूसरे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में जाने के लिए लॉजिक क्या है? आई एम एन एलोपैथ, आई मुझे ज्यादा होम्योपैथी के बारे में नहीं है, एलोपैथी यूनानी कुछ भी, आई डोंट नो मच अबाउट द अदर थिंग, बट लॉजिक एंड प्रैक्टिकली जब हम बात करें कि बाबा इसका ये हम हमारे पास आसान से इलाज है, बहुत सस्ता भी है, अगर हम ले और हेल्थी रहे तो व्हाई नॉट,
1: व्हाई
0: अभी
1: नॉट, सही
0: अलग
1: बात,
0: व्हाई नॉट। एंड सेकेंडली अगर हम जो फीमेल्स के बारे में जिनमें ये बहुत ज्यादा दिखता है थायराइड प्रॉब्लम, उसका हम देखें तो ये इसके जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा है। तो आई वुड नॉट लाइक एनी फीमेल या कोई भी महिला कि बाबा मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, मैंने बराबर ट्रीटमेंट जो है जो रिकमेंडेड है या जो मेरे सामने अवेलेबल है, अगर मैं ना लू तो आर यू रेडी टू टेक अप द प्रॉब्लम्स दैट कम एसोसिएटेड विद, मिसकैरेजेस है, प्रेगनेंसी रिलेटेड मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स है, इनफर्टिलिटी है, स्पेशली प्रेगनेंसी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारे। तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिव, बट आई नो कि हमारे पास जो अभी अवेलेबल है जो ट्रीटमेंट है, दे वर्क, दे आर गुड। अल्टीमेटली अल्टीमेटली इट इज अ व्हाट यू कॉल एजुकेटेड चॉइस, कि आपको ये पता होना जरूरी है कि आपके पास ये 2-3 ऑप्शन है और आप वैसे चूज करो, दैट इज द मेन थिंग।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कई बार होते हैं लोग, अरे एलोपैथी नहीं, आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में चले जाओ, ठीक हो जाएंगे, और ज्यादा दिन डोजेस यानी दवाइयां भी लेनी नहीं पड़ेगी, ऐसे कुछ सजेशन, तो ये
0: नहीं
1: भी
0: वो
1: एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है।
0: नहीं वो ऐसे नॉट ओनली थायराइड, मैं कोई भी डिजीज के बारे में आपको बताऊं कि
1: जी
0: अपने एटलीस्ट अपने भारत में हमने देखा है कि अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, अपने जो जो अपने कांटेक्ट में है, उनके जो विचार है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है, वो हमें बहुत आई थिंक दूसरे दिन ही पता चलता है कि भाई मुझे भी ये प्रॉब्लम था, मेरे नेबर को भी ये प्रॉब्लम था, मेरे इसको भी प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि जो मेडिकली हम 13 साल या 15 साल सीख के हम आपके सामने ला रहे हैं, वो हम आपके नेबर के साथ हम कैसे उससे कैसे मैं आर्ग्यू करूं तो अभी एजुकेशन हमारे सब आई थिंक ऑल ऑफ अस आर एजुकेटेड, लेकिन ये जो मेडिकल एजुकेशन है या ये जो बॉडी का साइंस है, वो इतना इतना इट इज सो अमेजिंग कि मैं थायराइड कैंसर के बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को बोलो तो वो आपका शो सवेरे से लेकर रात तक ले जाए सिर्फ थायराइड पे. यानी इतना एडवांस्ड हो गया है अभी अपना ये. फिर भी हमारा जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो और बढ़नी चाहिए. ऐसा ना हो कि मेरा ऐसा ही एक होप है कि बाबा कोई एडवांस स्टेज में ना आए, अर्ली डायग्नोसिस करे, सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन अपने पास कोई शॉर्टेज नहीं है. तो अगर आपको कोई डाउट है कि बाबा ये ट्रीटमेंट जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, मुझे और एक ओपिनियन है, तो बिंदास ले लीजिए, लेकिन डिले मत. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले और प्रेगनेंसी के द्वारा, प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले रूटीन टेस्ट जो है उसमें थायराइड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसेप्शन से लेके पूरा आपके जो प्रेगनेंसी के दौरान जो 9 महीने 40 वीक्स के जो है, वो जो दौरान आपका प्रेगनेंसी ठीक चल रहा है कि नहीं, बच्चा बराबर बढ़ रहा है कि नहीं, जो बच्चा फर्स्ट डे से लेके पैदा होने तक उसका जो डेवलपमेंट है, उसका और थायराइड का इतना क्लोज संबंध है कि आपको वो आपको बहुत केयर लेना पड़ता है. तो एनीबॉडी प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, जो भी महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, वो सब रूटीन टेस्ट के साथ एक थायराइड टेस्ट भी कीजिए. फर्स्ट जो एंटीनेटल स्कैन रहता है, एंटीनेटल टेस्ट रहता है, पहले 6 हफ्ते में जब आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हो, तभी भी 99% गायनेकोलॉजिस्ट थायराइड टेस्ट भी कराती है, तो ये करना जरूरी है.
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफी चीजें हमने समझ ली है थायराइड के बारे में. अभी कोई मिसकॉन्सेप्ट में मत जाइए. आप सीधे, अगर आपको लग रहा है कुछ चीजें ऐसी है, तो आप टेस्ट करें, डॉक्टर के पास जाइए और उनसे जरूर ट्रीटमेंट ले और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले. हाइपो और हाइपर के बारे में आपको पूरी तरह से पता चल गया है, जहाँ पर आपको सिर्फ टैबलेट्स लेने हैं हाइपो में, और हाइपर में मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्रीटमेंट होने के बाद आप नॉर्मली मतलब बिना टैबलेट के भी रह सकते हैं. तो ये ऐसा नहीं हो कि भाई आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने से बंद कर दे, ये चीजें बिल्कुल ना करें आप. इन चीजों के लिए अगर बंद भी करना है आपको, तो डॉक्टर से प्रॉपरली डायग्नोस होने के बाद डॉक्टर कहे तो बंद कीजिए, अदरवाइज कोई मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज नहीं है. आप सवेरे उठ के एक गोली ले लिया तो समझ लो फ्रूट खा रहे एक तो मैनेज हो जाएगा.
0: परफेक्ट, आपने परफेक्ट शॉटिंग कर दिया.
1: जी जी, चलिए अर्चना जी, कुछ पूछना है आपको?
2: हाँ जी.
1: जी,
2: हाय डॉक्टर प्रीति, नाइस टू सी यू ऑन द शो बैक अगेन.
0: वी आर सेम हियर, आई एम सो हैप्पी टू सी यू.
2: एक सवाल मुझे पूछना था आपसे. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड, आई थिंक इट्स द हाइपरथायराइड. सो आई सी देम दैट यू नो दे स्किप देयर लंचेस एंड दे कीप हैविंग सम न्यूट्री बार्स एंड योगा बार्स. सो आई ऑलवेज वंडर कि हाउ कैन फूड सब्स्टिट्यूट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस. So I think they have it, thyroid ke wajah se. So is it good to have these kind of Nutribars and things, artificial food in place of natural food? Like, does it help you reduce your thyroid levels?
0: Absolutely not. I think you have, got the crux of the whole thing. Ye jo thyroid ka problem hai, वो लाइक आई सेड एक्सेप्ट फॉर आयोडीन देयर इज नो कनेक्शन टू अ डाइट. लोगों को क्या रहता है कि अगर हाइपोथायरॉयड है तो वजन बढ़ता है, तो उनको लगता है कि वजन क्यों बढ़ गया है तो उसकी वजह से डाइटिंग करते हैं. और अभी जो है स्पेशली सिटीज में जो ये डाइट के फैड्स आ गए हैं, जैसे इफ यू लुक आउट द, आप अगर डायटरी फैड्स देखो कि बाबा कीटो डाइट है, ये डाइट है, वो डाइट है, फ्रूट डाइट है, जूस डाइट है, ये सब जो है दे आर टेम्पररी एंड दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स. जो मैं अपने पेशेंट को एक ही, कोई भी वॉट एवर इट इज, वेदर इट इज अ थायराइड प्रॉब्लम और एनी अदर प्रॉब्लम, मैं एक सलाह देती हूँ कि मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस डाइट. यू डोंट हैव टू हैव टू मच ऑफ वन थिंग. ऐसे नहीं कि दिन भर फ्रूट्स खाओ एंड यू आर ओके एंड योर बॉडी इज गोइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल. इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग कि बाबा यू हैव अ हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड यू आर गोइंग टू अप योर विटामिन ई लेवल्स. इट डजंट वर्क दैट वे. इट इज अ सिस्टम व्हिच इज गोइंग टू वर्क इन इट्स ओन टाइम एंड इफ यू help it, it will work better. We are all aging. All of us are growing older every day, every second. But we can age well. We can age healthy. So you have to maintain a diet where you are getting everything. So you take a Nutribar, nothing is wrong. But if you are taking a Nutribar in place of something, the rest of the meal has to make sure that you are compensating for it. I have patients who have no breakfast, no lunch. They will have a cup of soup in the evening and they feel that they are losing weight. But is that a good way to lose weight? No. Because it will, aapko do din mein pata nahi chalega. चलेगा, बट सिक्स मंथ्स लेटर यू स्टार्ट हैविंग जॉइंट पेन्स, यू स्टार्ट हैविंग टायर्डनेस, एंड देन यू कांट रिवर्स सिक्स मंथ्स इन टू डेज, देन इट टेक्स दैट मच टाइम टू गेट इट बैक. सो एज अ रूल, इफ यू हैव अ गुड हेल्थी डायट, इट शुड नॉट बी एन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, इट शुड बी हैव अ बैलेंस. बैलेंस यानी आप अगर भाजी ले रहे हो, चपाती ले रहे हो, उसके साथ में सैलेड लो, यू टेक दाल, यू टेक, देर हैज टू बी अ प्रोटीन, देर हैज टू बी अ कार्ब, देर हैज टू बी अ फाइबर, देर हैव टू बी balance of everything, unless you have been specifically told ki baba restrict this, agar aapko sugar ka problem hai ya aapka bp ka problem hai, then you lower it. But as a rule, most healthy people who don't have any underlying disease can manage with a good healthy diet. So these fads are absolutely no help and definitely not in thyroid.
2: People who are getting treated regularly

0: फ्यू पीपल, बहुत कम ही पेशेंट्स रहते हैं जिनमें अगर आप देखें तो सालों तक वही एक डोज चलता है. देर आर क्वाइट अ फ्यू पेशेंट्स हु जस्ट आई नीड वन डोज एंड इट कंटिन्यूज, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरीमेनोपॉजल ओल्ड एज जो लेडीज रहते हैं 60+ 70+ इवन 90s, दे हैव अ वेरी व्हाट वी कॉल अ लेबाइल थायराइड. यानी यू नो एक महीना हाइपो, नेक्स्ट मंथ हाइपर, यू नो द डोज हैज टू वेरी बेस्ड ऑन द लेवल्स दैट यू गेट. उनमें जो है सिम्टम्स बहुत जल्दी पता चल जाता है कि बाबा दे हाइपर एक्टिव, देन यू नो कि बाबा थोड़ा लेवल बढ़ गया है, चेक करते हैं तो कम करना पड़ता है. सो इट इज नोन क्वाइट अ फ्यू पीपल हैव दैट प्रॉब्लम. द ओनली थिंग टू डू इज बी पेशेंट, चेक, मेक श्योर दैट योर लाइफ स्टाइल इज प्रॉपर, योर ईटिंग वेल, योर एक्सरसाइजिंग मेंटली, योर डूइंग योर मेडिटेशन. मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट रियली हेल्प्स काम यू डाउन वेदर यू हैव अ थायराइड और नॉट, बट डेफिनेटली मेक्स यू फील बेटर. एक्सरसाइज, गुड lifestyle, make sure that you have a hobby. I think that is very, very important nowadays. We have all lost having a hobby. And get your thyroid levels checked every 6 months if possible. As a routine, I would tell everybody get it checked at least once in a year as a routine. But if you already have a problem, check it every 6 months. So you know whether you're in the range or not. But don't worry, it happens. There are changes and it can be easily corrected. Not a problem.
1: ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति. बहुत ही अच्छी बात ये आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है. और हमारे बाबूलाल प्रजापति जी लिखते हैं, डॉक्टर साहिबा ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली स्पष्टीकरण दिया है इस बीमारी पर, तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करके मैसेज किया है. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका. सुभाष जी ने भी धन्यवाद भेजा है, कल्पेश जी ने भी धन्यवाद भेजा है. आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं. और चलिए फिर से एक बार जो है, आपको थायराइड अगर हो जाता है तो भी टेंशन लीजिए, क्योंकि एक ही गोली आपको खाना है. और अगर हाइपर है तो आप जो है ट्रीटमेंट लेके उसको खत्म भी कर सकते हैं. तो ऑप्शन आपके पास है, चॉइस इज यूर्स. और कभी भी अल्टरनेटिव पे मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर वो ग्रंथि के साथ काम होता है, तो इसीलिए आप ज्यादा सोचिएगा नहीं. और बहुत ही सस्ता टैबलेट है, वो टैबलेट आप कंटिन्यू ले सकते हैं. और सिर्फ एक ही लेना है तो वो भी आराम से आप सवेरे ले सकते हैं. और फिर भी लग रहा है कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके आप इसका इलाज बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं. तो चलिए आप सभी थायराइड से मुक्त रहे, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार. सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति.

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेकी गर्ल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर अनुभव एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? एक बात बताऊं, जब भी मैं आप सब से मिलता हूं, तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। वो स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, दोस्तों के साथ खेलना, भाई बचपन की तो बात ही अलग है। क्यों, सही कहा ना मैंने? चलो इसी बात पे मिलते हैं अपनी मीना से। लेकिन ये मीना है कहाँ? मीना हाँ, वो रही मीना अपनी क्लास में। लगता है मीना की बहन जी बच्चों को कोई जरूरी बात बता रही है।
1: बच्चों, जैसा कि तुम सब जानते हो, हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में खेल दिवस मनाया जाएगा।
2: हमें याद है बहन जी, आप ही ने तो बताया था कि 3 हफ्तों के बाद हमारे स्कूल में खेल दिवस का आयोजन होगा।
1: हाँ मीना, लेकिन अब कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव आया है। अब खेल दिवस 3 हफ्ते बाद नहीं, बल्कि अगले हफ्ते ही मनाया जाएगा। एक मिनट, तुम सब यही सोच रहे हो ना कि कार्यक्रम में अचानक से ये बदलाव क्यों किया गया? मैं बताती हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि हर साल खेल दिवस के मुख्य अतिथि सरपंच जी ही होते हैं।
2: जी बहन जी, और सरपंच जी ही सभी विजेताओं को अपने हाथ से पुरस्कार देते हैं।
1: हाँ मीना, लेकिन वो अगले हफ्ते शहर जा रहे हैं, और इसलिए प्रिंसिपल साहिबा ने खेल दिवस का आयोजन अगले हफ्ते करने का फैसला किया है। वैसे तुम सब की तैयारियाँ तो पूरी है ना?
3: जी बहन जी।
1: शाबाश,
0: और स्कूल की छुट्टी के बाद जब मीना, दीपू, रीटा और रीटा का भाई श्रवण वापस लौट रहे थे तो
4: मीना, तुम देखना, इस बार दौड़ की प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ।
2: दीपू, तुम भूल रहे हो कि रीटा और श्रवण भी बहुत तेज दौड़ते हैं।
5: तेज दौड़ते हैं, सबको पीछे छोड़ते हैं।
2: रीटा, श्रवण, तुम दोनों कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना?
6: मीना, इस बार श्रवण और मैं दौड़ की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे।
2: क्या? लेकिन तुम दोनों तो अपना अपना नाम पहले ही बहन जी को लिखवा चुके हो।
7: तब हमें ये नहीं पता था कि खेल दिवस इतनी जल्दी होगा।
2: मैं कुछ समझी नहीं।
6: अगर खेल दिवस 3 हफ्ते बाद होता तो हम दोनों भाई बहन उसमें हिस्सा जरूर लेते, लेकिन अब हम दौड़ की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे।
2: लेकिन क्यों?
7: क्योंकि कल से हमें पिताजी के साथ खेत में जाके फसल काटनी है, हर रोज।
2: ये तुम क्या कह रहे हो? तुम दोनों खेत में काम करोगे?
7: हाँ मीना, पिताजी ने हमें पिछले हफ्ते ही कह दिया था कि हम दोनों स्कूल ना जाके उनके साथ खेत में जाया करेंगे फसल काटने।
2: श्रवण, रीता, भूल गए बहन जी ने उस दिन क्या कहा था?
6: क्या कहा था?
2: बहन जी ने कहा था कि 14 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, काम नहीं।
7: बहन जी की बात हमें याद है मीना, लेकिन हम पिताजी को ना नहीं बोल सकते।
6: उन्हें हमारी मदद चाहिए। अब हम चलते हैं। चलो श्रवण।
2: रीता, श्रवण सुनो तो। चले गए।
4: क्या सोच रही हो मीना?
2: दीपू, रीता और श्रवण बहुत उदास है।
4: तुम ठीक कह रही हो मीना, वो दोनों खेल दिवस को लेके बहुत उत्साहित थे, लेकिन अब तो
2: हमें कुछ करना होगा।
4: लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं?
2: चलो मेरे साथ।
4: कहाँ?
2: बहन जी के घर।
4: बहन जी के घर?
2: हाँ, हम बहन जी से कहेंगे कि वो रीता और श्रवण के पिताजी से इस बारे में बात करें, ताकि वो दोनों दौड़ की प्रतियोगिता में भाग ले सकें।
4: ठीक है, चलो।
0: मीना दीपू को लेके बहन जी के घर गई और उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुन के बहन जी ने कहा,
1: मीना, तुमने मुझे ये बात बता के बिल्कुल ठीक किया। एक काम करते हैं, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगी, फिर वहाँ से हम श्रवण और रीता के घर चलेंगे।
2: ठीक है बहन जी।
0: और फिर शाम को मीना और बहन जी श्रवण और रीता के घर पहुँचे।
8: बहन जी, नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते बच्चों। तुम्हारे पिताजी खेत से वापस आ गए?
6: जी, बस आते ही होंगे।
5: आते ही होंगे, आवाज लगाते ही होंगे।
9: रीता, श्रवण,
6: पिताजी आ गए। अब आई पिताजी।
10: अरे बहन जी, आप? नमस्ते।
1: नमस्ते भाई साहब।
2: नमस्ते चाचा जी।
9: मीना बिटिया भी आई हुई है। नमस्ते नमस्ते।
3: भाई साहब मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है।
9: जी बहन जी बोलिए।
3: दरअसल हमारे स्कूल में होने वाला खेल दिवस
9: वो तो 3 हफ्ते बाद है ना?
3: नहीं अब वो 3 हफ्ते बाद नहीं बल्कि अगले हफ्ते है।
9: अगले हफ्ते?
3: जी हाँ, और मैं चाहती हूँ कि श्रवण और रीता दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लें।
9: मुश्किल है बहन जी, क्योंकि कल से ये दोनों रोज मेरे साथ खेत चला करेंगे फसल की कटाई में मेरी मदद करने।
3: जरा सोचिए भाई साहब, अगर इन दोनों में से कोई भी जीता तो उसे सरपंच जी पूरे गांव के सामने इनाम देंगे। आपके लिए ये कितने सम्मान और गर्व की बात होगी।
9: मैं मानता हूँ बहन जी, लेकिन अगर ये दोनों मेरे साथ खेत में नहीं गए तो फसल की कटाई कैसे होगी?
3: भाई साहब, इन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने खेलने कूदने की है, काम करने की नहीं।
9: मैं समझता हूँ बहन जी, लेकिन फसल की कटाई भी तो जरूरी है।
3: क्या आपको पता है 14 साल से छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना एक कानूनी अपराध है?
9: कमाल करती हैं आप बहन जी। अरे भाई, खुद के खेतों में काम करना मजदूरी थोड़ी ना होती है। ये दोनों तो बस मेरी मदद करेंगे।
3: माँ बाप बच्चों से खेतों में काम करवाएं या घर में, उसे बाल मजदूरी ही माना जाएगा, जो कि एक कानूनी अपराध है।
9: ये बात मुझे पता नहीं थी बहन जी।
0: रीटा और श्रवण के पिताजी बहन जी की बात सुन के कुछ सोचने लगे। तभी मीना के बाबा भी वहाँ आ गए और जब उन्हें पूरी बात का पता चला तो वो बोले,
10: विजय भाई, बहन जी ठीक कह रही हैं। इन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की है, ना कि मजदूरी करने की।
9: आपका कहना ठीक है भाई साहब, लेकिन अगर रीता और श्रवण फसल की कटाई में मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा रुपए पैसे का बहुत नुकसान हो जाएगा।
10: और जो इन दोनों के बचपन का नुकसान होगा वो?
9: अब वो
10: एक बात बताओ विजय भाई, तुम फसल की कटाई के लिए कोई मजदूर क्यों नहीं रख लेते?
9: भाई साहब, अगर कोई मजदूर मिलता तो मैं रीता और श्रवण को अपनी मदद करने के लिए कभी न कहता, लेकिन ये समय है कटाई का और अपने गांव के सभी मजदूर किसी न किसी के खेत में काम कर रहे हैं, ऐसे में भला
10: बस इतनी सी बात? तुम्हारी ये समस्या तो मैं कल ही दूर कर दूंगा।
2: वो कैसे बाबा?
10: मीना बेटी, कल सुबह मैं किसी काम से नदी पार वाले गांव जा रहा हूँ, वहाँ बहुत से मजदूर रहते हैं। वापसी में मैं अपने साथ विजय भाई के खेत में काम करने के लिए एक दो मजदूर साथ ले आऊंगा।
2: ओ बाबा, आप कितने अच्छे हैं।
3: बोलिए विजय भाई साहब, अब तो ठीक है ना?
9: जी बहन जी, रीता श्रवण, अब तुम खेत में काम नहीं करोगे बल्कि अब तुम दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लोगे। बहन जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं।
3: धन्यवाद मुझे नहीं भाई साहब, मीना को कीजिए। ये सब इसी की समझदारी का नतीजा है।
5: नतीजा है? मिट्टू अपने चाचा का भतीजा है।
0: और अगले हफ्ते दौड़ की प्रतियोगिता जीती रीटा और श्रवण ने, और सरपंच जी ने उन दोनों को पूरे गांव के सामने इनाम दिया। देखा दोस्तों, है ना सच में चतुर और चपल अपनी मीना।
11: सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना।
0: चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक मजेदार कविता।
2: बचपन जाके फिर ना आता, बात ये रखना याद,
5: बच्चों से श्रम कराना है कानूनी अपराध।
0: भाई वाह, कविता सुन के तो मजा आ गया। अब आप खुद ही सोचिए, जब कविता इतनी मजेदार थी तो गाना कितना बढ़िया होगा।

0: देखा दोस्तों, मैं भी ठीक ठाक गा ही लेता हूँ। खैर, अपना गाना किसी और दिन सुनाऊंगा, क्योंकि अब समय है खेलने का, एक नया खेल मीना की क्लास में।
1: बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली
2: तोड़।
1: हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी। स से मेरा नाम शुरू है, र पे खत्म हो जाता, कहाँ से आऊँ कहाँ मैं जाऊँ कोई जान न पाता। चलो चलो बच्चों, शाबाश, जल्दी से सोचो।
3: स से नाम शुरू होता है,
4: क्या होगा, कहाँ से आता है,
5: कहाँ से आता है।
6: बहन जी, ये पहेली तो बहुत मुश्किल है।
7: हाँ बहन जी, दीपू ठीक कह रहा है, दूसरी कड़ी बताइए ना।
1: ठीक है रीता। बच्चों, अब सुनो दूसरी कड़ी। उठती गिरती चाल मेरी, गहरी मेरी कहानी, प्यास किसी की बुझा न पाऊं, वैसे तो हूँ पानी।
8: ओ, ये पहेली तो बहुत ही मुश्किल है।
9: लेकिन प्यास नहीं बुझा सकता।
10: ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है बहन जी।
11: तीसरी कड़ी भी बताई दीजिए बहन जी।
1: मेरा चेहरा देख के अक्सर सबका चेहरा खिलता, शंख सीप मोती मुझ में और नमक भी मुझसे मिलता।
12: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है समंदर।
1: हाँ मीना, बिल्कुल ठीक जवाब, शाबाश। तो बच्चों, मजा आया ना?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
12: दोस्तों, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: बंटी, पात्र परिचय: आकाश, वेदांत, आदित्य प्रकाश। आदित्य, बंटी की मॉरल साइंस नैतिक शिक्षा की क्लास चल रही थी, तभी
2: हमारे राष्ट्रपति को तुम जानते ही हो, उनकी अहिंसा की नीति आजादी की लड़ाई में बड़ी कारगर साबित हुई। आज सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, जिससे कोई भी देश विकास नहीं कर पा रहा है। विकास करने के लिए जरूरत है शांति कायम होने की, चाहे खाड़ी युद्ध हो या कारगिल युद्ध या फिर पानीपत की लड़ाई। सारी लड़ाइयों में जन और धन दोनों का नुकसान हुआ है।
1: एक हफ्ते से टीचर यही टॉपिक पढ़ा रही थी, तभी बंटी ने सोचा,
3: ओह कितना बोरिंग टॉपिक है, कुछ ऐसा किया जाए जिससे बोरियत दूर हो जाए।
1: वह अपने पड़ोस में बैठे राहुल से बोला,
3: यार राहुल, तुमने कल मैच देखा था?
4: हाँ बंटी, देखा था।
3: सहवाग की बैटिंग देखने लायक थी, उसने जो कवर ड्राइव लगाया वह तो बहुत शानदार था। सहवाग बहुत अच्छा बल्लेबाज है, वह अगला सचिन तेंदुलकर है। एक दिन वह सचिन से भी ज्यादा रन बनाएगा।
4: वह अच्छा बल्लेबाज जरूर है, लेकिन वह सचिन से ज्यादा रन नहीं बना सकता।
1: बंटी और राहुल को बात करते हुए टीचर ने देख लिया, तभी,
2: अच्छा तो ये दोनों मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बंटी, मुझे पता है कि तुम राहुल के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हो। मैं तुम्हें टॉपिक देता हूँ और तुम उसे पूरी क्लास के साथ डिस्कस करो। पूरी क्लास दो ग्रुप में बंट जाएगी, एक ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए का कैप्टन होगा बंटी और ग्रुप बी का राहुल।
1: पूरी क्लास दो ग्रुप में बट गई। तब टीचर बोले,
2: अब दोनों ग्रुप इस पर डिस्कस करेंगे कि अहिंसा हिंसा से अच्छी कैसे है। बंटी की टीम अहिंसा के पक्ष में बोलेगी। बंटी, तुम तैयार हो ना?
3: यस सर। लड़ाई झगड़े से किसी का भला नहीं होता, बल्कि बहुत सारे धन का नुकसान हो जाता है। दुनिया की हालत देखते हुए लगता है शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर सारा देश शांति से मिलजुल कर रहे तो युद्ध नहीं होगा। जब युद्ध ही नहीं होगा तो हम इतिहास में कम चैप्टर पढ़ने लगेंगे।
1: तो इस तरह नटखट बंटी का ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाकर टीचर ने और बातों से हटा दिया।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, 7वां पाठ, जगमग जगमग, पृष्ठ 69। बन्नी और बन्नो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। क्या तुम्हें बन्नी के परिवार में पिछले साल हुई शादी के बारे में याद है? देखो गणित का जादू कक्षा 3 पृष्ठ 153। बन्नी और बन्नो ने एक साल बाद अपनी शादी की सालगिरह मनाने की सोची। यहां पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें जंगल के जानवर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही एक बोर्ड पर लिखा है सालगिरह मुबारक। उन्होंने अपने परिवार वालों और दोस्तों को बुलाया। उन्होंने खाने में बहुत ही मजेदार चीज खीर बनाई, जो कि दूध, चीनी और चावल को पकाकर बनाई जाती है। सभी जीव जंतु आए, दौड़ते भागते, कूदते फांदते और रेंगते हुए। पृष्ठ 70। यहां पर एक चित्र है जहां पर जंगल के जानवर दिखाए गए हैं और साथ ही एक बोर्ड पर लिखा है तुम जियो हजारों साल, बन्नी और बन्नो। हाथी 50 लीटर खीर पी रहा है। जिराफ रिक्त स्थान लीटर खीर पी रहा है। गाय रिक्त स्थान लीटर खीर पी रही है। फिर गिलहरी आई, उसने कहा मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकूंगी, इसलिए मुझे 500 मिलीलीटर खीर दीजिए। गधे ने पूछा 500 मिलीलीटर खीर, क्या ये 1 लीटर से ज्यादा नहीं है? लोमड़ी ने कहा गधे की तरह चौंको मत, समझने की कोशिश करो। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 500 मिलीलीटर का मतलब हुआ आधा लीटर। पृष्ठ 71। मेंढक अपने 9 दोस्तों के साथ कूदता हुआ आ पहुंचा। उसने कहा ओह, हमें तो सिर्फ 100 मिलीलीटर ही चाहिए। यहां पर मेंढक और उसके 9 दोस्तों का चित्र बना है।
3: म्याऊ म्याऊ, अच्छा ये रही तुम्हारी खीर,
2: बिल्ली ने कहा जो सबको खीर परोस रही थी। उसने 10 गिलास लिए और हर गिलास में 100 मिलीलीटर यानी ml खीर डाली। यहां पर बिल्ली को गिलासों में खीर डालते हुए दिखाया गया है। गधे ने हैरान होकर पूछा
4: डेचू,
5: हर गिलास में 100 मिलीलीटर, ये कितना हुआ?
2: लोमड़ी को अपना तेज दिमाग दिखाने का एक और मौका मिल गया। वो बोली
5: आहा, ये तो बहुत आसान है। 10 बार 100 मिलीलीटर यानी ml मतलब रिक्त स्थान मिलीलीटर यानी ml बराबर रिक्त स्थान लीटर।
2: अब तुम लिखो 10 × 100 मिलीलीटर बराबर रिक्त स्थान।
5: देखो यहां एक चींटियों का दल चला आ रहा है, टिड्डा बोला।
3: म्याऊ म्याऊ, खीर तो खत्म हो गई, अब हम क्या करें,
2: बिल्ली उदास होकर बोली।
5: टिड्डा बोला क्या हमें देर हो गई?
2: पृष्ठ 72।
6: चिंता मत करो,
4: वो ज्यादा नहीं पिएंगी। हर एक को सिर्फ 1 मिलीलीटर खीर चाहिए। मैं अपनी खीर में से उन्हें हिस्सा दे दूंगा।
2: हाथी अपने कान से बिल्ली की आंखों के आंसू पोंछता हुआ बोला। हाथी ने पूछा,
4: तुम सब कितने हो?
2: चींटियों ने एक साथ कहा,
3: हम सिर्फ 1,000 हैं।
2: बिल्ली बोली,
3: म्याऊ। क्या कहा? 1,000? हमें 1,000 चींटियों को खीर देनी पड़ेगी।
2: कुछ सोचकर हाथी ने कहा,
4: चिंता की कोई बात नहीं, हो जाएगा।
2: हर चींटी 1 मिलीलीटर यानी ml खीर पिएगी, इसलिए 1,000 चींटियां खीर पिएंगी। 1,000 × 1 ml बराबर रिक्त स्थान ml।
3: ओह, इन चींटियों को उतना ही चाहिए जितना 10 मेंढकों को चाहिए,
2: गधे ने कहा। सभी चींटियों ने खीर पी ली। सब खुश थे। अब वो शादी की सालगिरह के मौके पर खुशी से नाचने गाने लगे। यहां पर सबसे नीचे जंगल के जानवरों का चित्र है जो खुशी में नाच रहे हैं। पृष्ठ 73। कौन पी सकता है 1 लीटर खीर? क्या तुम्हें खीर पसंद है? तुम्हारे घर खीर को क्या कहा जाता है? तुम कितनी खीर खा सकते हो? क्या तुम एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हो? यहां पर एक लड़की और एक लड़के का चित्र है। लड़की कहती है,
3: मुझे लगता है कि मैं 1 लीटर पानी पी सकती हूं।
2: लड़के ने कहा,
3: मैं 400 ml पानी पी सकता हूं।
2: इसी पृष्ठ पर सबसे नीचे एक गधे का चित्र बना है। यह गधा अलग अलग तरीकों से जोड़कर 1 लीटर बनाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट पूरा करने में उसकी मदद करो। यहां पर एक चार्ट बना है। अब तुम इस चार्ट को खुद पूरा करो। यहां पर एक तालिका दिखाई गई है। इस तालिका में 3 पट्टियां बनी हैं। एक लेटी हुई पट्टी, दूसरी खड़ी हुई पट्टी और तीसरी तिरछी पट्टी यानी बाएं से दाएं तरफ जाती हुई पट्टी। अब हम इन पट्टियों को अलग अलग पढ़ते हैं और तुम इनमें दिए गए खाली स्थानों को पूरा करो। लेटी हुई पट्टी, बाएं से दाएं तरफ, रिक्त स्थान ml जमा 200 ml बराबर 1 लीटर। लेटी हुई पट्टी में अब हम दाएं से बाएं तरफ चलते हैं। 500 ml जमा 500 ml बराबर 1 लीटर। अब हम खड़ी पट्टी को देखेंगे। खड़ी पट्टी में सबसे पहले नीचे से ऊपर चलते हैं। रिक्त स्थान ml जमा रिक्त स्थान ml जमा रिक्त स्थान ml जमा 100 ml बराबर 1 लीटर। अब हम खड़ी पट्टी में ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। रिक्त स्थान ml जमा रिक्त स्थान ml जमा 250 ml बराबर 1 लीटर। अब हम तिरछी पट्टी को देखते हैं। तिरछी पट्टी पहले बाएं से दाएं तरफ जाती हुई। रिक्त स्थान ml जमा रिक्त स्थान ml जमा रिक्त स्थान ml बराबर 1 लीटर। अब हम तिरछी पट्टी में दाएं से बाईं तरफ चलेंगे। रिक्त स्थान ml जमा रिक्त स्थान ml बराबर 1 लीटर। पृष्ठ 74। आसपास देखो। इन चित्रों को देखो। ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो पैकेट में मिलती हैं या बोतल में? अपनी सूची बनाओ। यहां पर एक तालिका है जिसके 2 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है पैकेट और दूसरे में लिखा है कितना है लीटर या मिलीलीटर यानी ml में। इस तालिका के इर्द गिर्द कुछ चित्र भी बने हैं। इस तालिका का पहला कॉलम हम भरते हैं, उसके बाद बाकी कॉलम तुम भरो। पैकेट दूध, कितना है लीटर या मिलीलीटर यानी एमएल में? 500 ml। अब बाकी खाने तुम खुद भरो। मेरी लीटर की बोतल, क्या तुमने कभी 1 लीटर वाली पानी की बोतल देखी है? 1 लीटर वाली बोतल और कुछ और छोटी बोतलें इकट्ठी करो। अंदाजा लगाओ कि उन छोटी छोटी बोतलों से 1 लीटर वाली बोतल को भरने के लिए तुम्हें कितनी बार पानी उड़ेलना पड़ेगा। यहां पर सबसे नीचे एक लड़की को एक बड़ी बोतल में छोटी बोतल से पानी डालते हुए दिखाया गया है। पृष्ठ 75। अब करके देखो तुम्हारा अंदाजा सही है या नहीं। तालिका भरो। यहां पर एक तालिका है जिसके 3 खाने हैं। पहले खाने में बोतल 1, बोतल 2 और बोतल 3 लिखा है, और दूसरे खाने में सबसे ऊपर मेरा अंदाजा, और तीसरे खाने में सबसे ऊपर लिखा है मेरा माप। अब तुम इन खाली स्थानों को भरो। बोतल 1, मेरा अंदाजा, रिक्त स्थान। मेरा माप, रिक्त स्थान। बोतल 2, मेरा अंदाजा, रिक्त स्थान। मेरा माप, रिक्त स्थान। बोतल 3, मेरा अंदाजा, रिक्त स्थान। और मेरा माप, रिक्त स्थान। देखो आदित्यन क्या कर रहा है। यहां पर एक बच्चे का चित्र है जो कह रहा है, 1 लीटर बोतल पूरी भरने के लिए मैंने पानी से भरी 2 छोटी बोतलें उड़े ली। उसकी एक छोटी बोतल में कितना पानी था? यहां पर एक चित्र में आदित्यन को छोटी बोतल से बड़ी बोतल में पानी भरते दिखाया गया है। इसी चित्र के नीचे एक और चित्र भी है जो लड़की का चित्र है। लीला कह रही है,
3: मुझे 1 लीटर की बोतल को पूरा भरने के लिए 5 बार छोटी बोतल से पानी भरना पड़ा।
2: तब लीला की छोटी बोतल में कितना पानी होगा? रिक्त स्थान। रामू की माप की बोतल। यहां पर सबसे नीचे की तरफ रामू का चित्र है जिसके हाथ में एक छोटी बोतल है और उसके सामने एक बड़ी बोतल दर्शाई गई है। बोतल को माप की बोतल बनाने के लिए उसने क्या किया? पृष्ठ 76। मेरी माप की बोतल, 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml और 1 लीटर मापने के लिए अपनी बोतल खुद बनाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों और अध्यापक के साथ चर्चा करो कि यह बोतल तुमने कैसे बनाई। अंदाजा लगाओ और जांच करो। अपने घर पर बाल्टियों, मगों, गिलासों और दूसरी चीजों को देखो। सोचो हरेक में कितना पानी आ सकता है। मापने वाली अपनी बोतल से अपने उत्तर को जांचो। यहां पर एक तालिका दी गई है जिसके 3 भाग हैं। पहले भाग में ऊपर से नीचे की तरफ लिखा है मग, गिलास और भगोना, और दूसरे खाने में सबसे ऊपर लिखा है मेरा अंदाजा, और तीसरे खाने में लिखा है मेरा माप। अब इस खाने को तुम खुद भरो। मग, मेरा अंदाजा, रिक्त स्थान। मेरा माप, रिक्त स्थान। गिलास, मेरा अंदाजा, रिक्त स्थान। मेरा माप, रिक्त स्थान। भगोना, मेरा अंदाजा, रिक्त स्थान। मेरा माप, रिक्त स्थान। इस पृष्ठ के सबसे नीचे एक घर का चित्र है। इसमें एक लड़का और एक लड़की को बैठे दिखाया गया है। लड़का कहता है,
3: मुझे लगता है कि ये 750 ml से कुछ कम है।
2: लड़की कहती है,
3: मुझे लगता है कि इसमें 250 ml और 500 ml के बीच आ सकता है।
2: पृष्ठ 77। नीतू अस्पताल में। नीतू को 5 दिन तक रोज 3 इंजेक्शन लगेंगे। उसे 1 दिन में कितनी दवाई की जरूरत है? 5 दिन में कुल कितनी दवाई दी जाएगी? यहां पर एक चित्र में डॉक्टर को नीतू को इंजेक्शन लगाते दिखाया गया है। नीतू बोली,
3: मुझे सुई लगवाने से डर नहीं लगता।
2: व्यक्ति बोला,
5: एक इंजेक्शन से तुम्हारे शरीर में 5 ml दवाई पहुंचाई जाएगी।
6: यहां पर एक गैंडे का चित्र है और उसके सामने एक इंजेक्शन का चित्र है। गैंडा इंजेक्शन को देखकर सोच रहा है,
4: मेरे लिए एक इंजेक्शन में कितनी दवाई की जरूरत होगी?
6: एक बार में हम कितना इस्तेमाल करते हैं? यहां पर 2 कॉलम है। पहले कॉलम में सबसे ऊपर लिखा है आंखों में डालने की दवाई और दूसरे खाने में सबसे ऊपर लिखा है हम एक बार में 1 ml से भी कम इस्तेमाल करते हैं। अब तुम दिए गए खानों को अंदाजा लगाकर स्वयं भरो। उन चीजों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग एक बार में 1 लीटर से भी ज्यादा किया जाता है। नहाने का पानी। अब तुम दिए गए खानों को खुद भरो। पृष्ठ 78। अभ्यास का समय 1। अमीना की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। उसने 250 मिलीलीटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर पानी पी लिया। बोतल में कितना पानी बचा है? 2। यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है। एक चाय बनाने के लिए वो 20 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है। कल उसने 100 गिलास चाय बनाई। उसे कितने दूध की जरूरत पड़ी होगी? यहां पर एक चाय की दुकान का चित्र है और दाहिनी तरफ कुछ गिलास और कप बने हैं। दुकान पर कुछ व्यक्तियों को भी दिखाया गया है। 3। राधा की दादी बीमार थी। डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवाई की बोतल दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज सुबह दवाई लेनी थी। उन्हें हर सुबह कितनी मिलीलीटर दवाई लेनी थी? रिक्त स्थान। इस पृष्ठ के सबसे आखिरी भाग में

बर्तन धोने में 20 लीटर और नहाने में 75 लीटर। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ एक आदमी और एक औरत का चित्र है जिन्हें कपड़े धोते और बर्तन साफ करते हुए दिखाया गया है। कुल मिलाकर परिवार ने कितना पानी इस्तेमाल किया? रिक्त स्थान। तुम्हारा परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है? अंदाजा लगाओ और चार्ट बनाओ। अब इस दिए गए चार्ट को तुम खुद भरो। यहां पर एक चार्ट है जिसके तीन खाने हैं। पहले खाने में सबसे ऊपर लिखा है कार्य, दूसरे में पानी का उपयोग बाल्टी में और तीसरे में लिखा है पानी का उपयोग लीटर में। अब तुम इन कार्यों को देखकर इनके सामने के खानों को खुद भरो। कार्य: खाना बनाने और पीने में, पानी का उपयोग बाल्टी में, रिक्त स्थान। पानी का उपयोग लीटर में, रिक्त स्थान। कार्य: कपड़े धोने में, पानी का उपयोग बाल्टी में, रिक्त स्थान। पानी का उपयोग लीटर में, रिक्त स्थान। कार्य: बर्तन धोने में, पानी का उपयोग बाल्टी में, रिक्त स्थान। और पानी का उपयोग लीटर में, रिक्त स्थान। बूंद बूंद से सागर बनता है। क्या तुम्हारे घर या स्कूल में कोई नल है जो टपकता रहता है? क्या तुम जानते हो कि टपकते हुए नल से हम कितना पानी बर्बाद कर देते हैं? एक लीटर की बोतल टपकते हुए नल के नीचे इस तरह रखो कि सभी बूंदें उसमें इकट्ठा हो जाएं। समय लिखो। एक घंटे बाद देखो कि बोतल में कितना पानी इकट्ठा हो गया है। पृष्ठ 80। पता करो कि एक दिन में कितना पानी टपक कर बेकार बह जाता है। रिक्त स्थान। एक हफ्ते में, रिक्त स्थान। एक महीने में, रिक्त स्थान। और एक साल में, रिक्त स्थान। पहेली: यहां पर एक चित्र में कुछ बच्चे और कुछ व्यक्ति दिखाए गए हैं और यहां पर एक बोर्ड पर लिखा है दुग्ध सहकारी समिति में। चिल्लानूर गांव में दूध की एक सहकारी समिति है। गीता और अम्मिनी वहां 4 लीटर दूध खरीदने गईं, लेकिन वहां पर 1 लीटर मापने वाला बर्तन नहीं था। सिर्फ 3 लीटर वो 5 लीटर की बोतलें थीं। फिर भी उन्हें पूरा 4 लीटर दूध दे दिया गया। बताओ ऐसा कैसे किया गया? इसी के साथ 7वां पाठ जगमग जगमग यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगडोह, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।
2: आदि क्या तुमको याद है हमारे स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था?
3: कौन सा?
2: वो रेडियो टीवी कंपटीशन था, तुम्हें याद होगा।
3: हाँ याद है।
2: तुम भी आए थे, मैंने तुम्हें देखा था।
3: आया था पर भाग नहीं लिया था कंपटीशन में।
2: मैंने लिया था, मैंने रेडियो वाले में भाग लिया था और फिर उसमें हमने एक स्टोरी सुनाई थी।
3: हाँ सुनी तो थी मैंने भी।
2: सुनी थी, कैसी लगी?
3: याद नहीं आ रही। दीदी वैसे कंपटीशन तो बहुत सारे होते हैं ना?
2: हाँ होते तो हैं।
3: हर चीज के कंपटीशन होते हैं।
2: हर चीज के।
3: और जिसके नहीं होते वो भी हो सकते हैं।
2: हाँ हो तो सकते हैं, पर अब जब हमने कंपटीशन के बाद चालू की है तो हम हमारी दीदी से पूछते हैं इन कॉम्पिटिशन्स के बारे में।
4: हेलो बच्चों।
2: हेलो दीदी,
4: कैसे हो आप लोग?
5: ठीक है।
4: वैसे आपकी स्माइल से तो आप ठीक नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा क्या बातें हो रही थी मेरे पीछे?
2: हम लोग कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर रहे थे।
4: कॉम्पिटिशन के बारे में?
2: हाँ।
4: अच्छा किस तरह का कॉम्पिटिशन?
2: हमारे स्कूल का।
4: ओ स्कूल के बारे में बातें हो रही थी। हाँ भाई स्कूल में तो बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, जब मैं छोटी थी तब भी होते थे और अब तो मुझे लगता है बढ़ गए हैं बहुत सारे कंपटीशन।
6: हाँ दीदी बहुत सारे, अभी तो कंपटीशंस ढेर सारे होते हैं, जैसे ड्राइंग के भी होते हैं, ऐसे के लिए भी होते हैं और स्पोर्ट्स तो है ही हमारे मेन।
2: अब तो मेहंदी और रंगोली के भी होने लग गए हैं।
6: हाँ
7: गरबा भी।
4: अरे गरबा के भी कंपटीशन होते हैं?
6: हाँ जी
2: सब के भी।
4: वाओ तो आज कौन कौन बात करने वाला है कंपटीशन के बारे में, एक बार अपने बारे में तो जरा बता दो।
7: हेलो मैं देवत, क्लास 9th का।
2: हेलो मेरा नाम दृष्टि है और मैं क्लास 10th में हूँ।
8: मेरा नाम यश है और मैं क्लास 10th में हूँ।
3: मेरा नाम आदि है और मैं क्लास 9th में हूँ।
4: और मेरा नाम आरुषि है और मैं किसी भी क्लास में नहीं हूँ फिलहाल। अब क्या करें भाई, पढ़ाई तो पहले कम्प्लीट हो गई लेकिन कॉम्पिटिशन आज भी याद है।
6: दीदी काश ऐसा होता कि हम पढ़ते ना लेकिन हम स्कूल में रहते तो कितना अच्छा होता ना।
4: बहुत अच्छा होता। कभी कभी तो मुझे लगता है काश ही कॉम्पिटिशन नहीं होते, पता है मेरे पेट में तो दर्द हो जाता था।
2: मेरे भी।
4: हाँ सच
2: मेरे
4: में?
2: तो अब भी होता है, कोई स्कूल में डांस हो या कोई कॉम्पिटिशन हो मुझे पेट में दर्द होने लग जाता है और मैं बहुत ज्यादा टेंशन में मतलब दिखाती नहीं हूँ पर कहीं ना कहीं आ जाती हूँ।
6: इसका रीजन पता है क्या है? दृष्टि का तो मेरे को पता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाती है।
4: क्यों डर जाती है दृष्टि?
6: नर्वसनेस।
2: हाँ जी नर्वस हो जाती हूँ और कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ करते हैं ना तो अचानक ब्लैंक हो जाते हैं, तो इस बात का मुझे डर।
4: तो उस समय क्या आप सोच रहे होते हो, क्या चल रहा होता है दिमाग में?
2: मैं सोच रही होती हूँ कि भगवान आप जानते हो ना मैंने तो कितनी प्रैक्टिस करी थी और मैं उनको ऐसे बहुत सारे मस्के लगाती हूँ, पर मैंने हमेशा यही एक्सपीरियंस किया है कि घबराने से कुछ नहीं होता, वो तो बस एक फीलिंग होती है, आपको सिर्फ कंपटीशन के पहले लगता है, उसके बाद लगता है कि अरे क्या इतना घबराए,
4: फालतू में इतना डर गए।
2: हाँ जी।
4: और यश आपको क्या लगता है?
6: मैं इससे बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, मैं कोई भी कॉम्पिटिशन में भाग लेता हूँ या कहीं पे भी परफॉर्मेंस देता हूँ, मैं सबसे पहले अपने आप को आईने में देख के ये पहले ही कह देता हूँ कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि जो भी करूँगा वो बहुत अच्छा जाएगा।
4: तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगता?
6: बिल्कुल भी नहीं।
4: ओ माय गॉड क्या बात है। देवत आपको डर लगता है कॉम्पिटिशन में?
7: नहीं बिल्कुल नहीं।
4: पहले भी नहीं लगता और कॉम्पिटिशन के समय भी नहीं लगता?
7: नहीं।
4: और ये जादू कैसे होता है?
7: बहुत बार परफॉर्म किए हुए इसलिए।
4: अच्छा तो पहले जब पहली बार परफॉर्म किया तब लगा था डर?
7: नहीं तभी भी नहीं लगा था।
4: हाँ
7: जब मैं फर्स्ट में था तभी जाके किसी ने कुछ बोला ही नहीं, स्टेज पे गया पोयम सुना के आ गया बिना डरे।
4: क्या बात है। और आदि आपको?
3: दीदी जब मैं पहले पहले गाने वाले कंपटीशन में गाता था या फिर केशियो बजाता था तब मेरे पैर बहुत ज्यादा कांपते थे।
4: अच्छा
3: पर अब नहीं कांपते।
4: अब नहीं कांपते, पहले क्यों कांपते थे?
3: पता नहीं।
6: आदत हो जाती है दीदी इसीलिए, क्योंकि वो जो क्राउड हमारे सामने उसकी आदत हो जाती है ऑडियंस को फेस करने की। एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसे बस।
4: कब?
6: तब जब हमारी हाउस की असेंबली स्टार्ट हुई थी और मेरे को पहली बार दीदियों ने आके बोला था कि तुझे कमांड देनी है अपनी असेंबली में। मैं पहले तक बहुत कॉन्फिडेंट था और मेरे को कोई डर नहीं लग रहा था। फिर बाद में एकदम ऐसे हुआ, मैं गया स्टेज पे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके लोग आने लगे और फिर एकदम ग्राउंड पूरी तरह से भर गया।
4: ओह
6: मैं पूरी कमांड दी देने के बाद जब प्रेयर चल रही थी तब मैं खुद फील कर पा रहा था कि मेरे पैर हिल रहे हैं।
4: सच में हिल रहे थे मतलब?
6: हाँ जी।
4: तो और लोगों ने भी देखा?
6: नहीं देखा तो नहीं।
2: इतने ज्यादा नहीं हिल रहे होंगे। और दीदी आपको पता है कि ना हम लोग को मतलब मैंने ऐसा महसूस किया है मतलब जैसे कभी मैं बाहर भी गई हूँ परफॉर्म करने डांस वगैरह तो मैंने ये महसूस किया कि जो हमारे जानने वाले लोग होते हैं ना हम उनके सामने ज्यादा डरते हैं परफॉर्म करने से और जो नहीं जानने वाले होते हैं ना उनके सामने हमें थोड़ा कम डर लगता है क्योंकि हमें पता है कि हमारे जानने वाले लोगों को हमें बाद में फेस करना है
4: तो मतलब मम्मी पापा से भी डर लगता है जब मम्मी पापा सामने बैठे होते हैं तो कॉम्पिटिशन में ज्यादा हिम्मत मिलती है यारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे ऐसा लगता है
6: हिम्मत मिलती है
2: कहीं ना कहीं मेरे को तो हिम्मत मिलती है और कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे पर मैं हर चीज मम्मी के सामने कर सकती हूँ सिवाय डांस के पर मतलब सिर्फ प्रैक्टिस में नहीं तो बाद में स्टेज पे तो मम्मी के सामने मम्मी चाहिए ही के सामने हो मम्मा
4: होना ही चाहिए।
2: हाँ जी
4: ओके। और वैसे ऐसा होता तो है कि डर लगता है आपको पता है जब मैं 10th क्लास में थी ना मैं पहली बार स्टेज पे जब गई थी बोलने के लिए तो पेट में दर्द हो रहा था और बहाने चल रहे थे दिमाग में कि बोल देती हूँ टीचर को कि आज पेट में दर्द है बोल देती हूँ कि अरे मैं सब भूल गई या फिर मैं भूल गई जो लिखा हुआ था तो बहाने बनाने का बहुत सोचा मैंने उस समय। आप लोगों ने कभी कॉम्पिटिशन में कोई बहाना बनाया?
3: नहीं दीदी
2: नहीं दीदी पर एक बार पता है क्या हुआ था कि मैं जब पहली बार स्टेज पे स्टोरी बोलने गई थी ना तो मेरे पेट में तो दर्द हो ही रहा था और मैं बहुत जैसे कांप रही थी दिख भी रहा था कि मेरे हाथ शिवर हो रहे हैं तो फिर उसके बाद मैं मेरा ऐसे हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी ना मेरे को लग रहा था कि क्या मैं स्टेज पे से भाग जाऊं क्या कोई मुझे कुछ कहेगा अगर गलत हो गया तो मैं मुझे डांटेंगी तो नहीं और ऐसे इतनी सारी चीजें चल रही थी दिमाग में और ऐसा लग रहा था अरे यार वो भी तो मेरे हाउस की है मैं उसको बोल देती हूँ वो बोल देगी पर कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मैं इतना अच्छा मौका नहीं खोऊंगी फिर मैंने हिम्मत करके बोल ही दिया और उसके बाद मतलब मेरे हाथ शिवर हो रहे थे और मेरे हाथ में जो पेपर था वो भी शिवर हो रहा था मतलब थोड़ा
4: हिल रहा था
2: पर हवा के कारण वो इतना दिखा नहीं क्योंकि हवा भी काफी थी उस टाइम
4: तो लोगों को लगा हवा से हिल रहा है पेपर तो
2: लेकिन असली वजह तो मुझे पता है
4: और अब हमें भी पता है। अच्छा दैवत आपको तो डर लगा नहीं बिल्कुल भी है ना आपको पहला कंपटीशन आपका याद है कब आपने पार्टिसिपेट किया था?
7: वो सबसे पहले तो एनुअल फंक्शन में एलकेजी में किया था सबसे पहला वो भी एलकेजी और एचकेजी दोनों में डांस परफॉर्मेंस थी।
4: तो आप फिर आपकी किसने डांस प्रैक्टिस कराई थी मम्मी ने?
7: नहीं
4: तो फिर
7: स्कूल में ही प्रैक्टिस चलती थी उसमें पूरा याद रह जाता था।
4: तो स्टेज पे आप गए थे बिल्कुल एंट्री दी हीरो की तरह
7: पूरा ग्रुप डांस था
4: तभी तो बिल्कुल डर नहीं लगा कि साथ में है मेरे दोस्त।
2: पर दीदी आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि ग्रुप डांस में थोड़ा मतलब मिसमैच होने का ज्यादा डर होता है पर सोलो में कुछ भी कर लो किसी को थोड़ी पता है कि हमने ये स्टेप बिठाया था।
4: ये तो है ग्रुप डांस में एक भी गलती नहीं कर सकते है ना।
6: बट लेकिन दीदी जहाँ तक सोलो में देखा जाए तो ग्रुप में आपको कम से कम हिम्मत तो मिलती है कि स्टेज पे चढ़ने वाला साथ में कोई है लेकिन सोलो में पूरे स्टेज में सेंटर पे आप एक अकेले तो नर्वसनेस से सोलो में भी गलती हो सकती है
4: मतलब सब हमें देख रहे हैं।
6: हाँ वही तो और ग्रुप में तो पता नहीं कि कोई किसी को देख रहा है कोई हमको देख रहा है नहीं तो फिर भी आंखें बंद कर कर आगे हो जाता है।
4: अच्छा अच्छा ये जो डर लगता है स्टेज के पहले लगता है जब हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके ओवर हो गया तो दर्द एकदम से गायब हो जाता है क्या तब भी डर लग रहा होता है?
2: मुझे कहीं ना कहीं तब भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि यार रिजल्ट कैसा आएगा पर मतलब मैं जल्दी भूल जाती हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं वो मुझे ज्यादा देर डरने नहीं देते।
4: ओके
6: और तो एकदम भूल जाता हूँ
2: क्योंकि उनकी बातों से डरावना और कुछ नहीं है इस दुनिया में।
4: हाँ वैसे ये दोस्त तो ऐसी मस्ती करते हैं चिढ़ाते हैं कि आप डरना भूल जाते हो।
2: हाँ
4: यश आपको?
6: नहीं जब भी डर लगा जैसे मैंने अपना कमांड का एक्सपीरियंस बताया आपको जब खत्म हो गई असेंबली मैं वापस मुड़ के चला गया क्लास में बैठ गया। यह अलग बात है कि सब लोगों ने मेरे को शाबाशी दी बहुत अच्छा किया करके कहा लेकिन डर मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। उसके बाद से जब मेरे सारे दोस्तों ने और टीचर ने भी मेरे को शाबाशी दी उसके बाद से तो फिर मैंने कई बार कमांड दी स्टेज पे जाके।
4: ओके और आदि आपको कंपटीशन के बाद डर लगता है या बिल्कुल ठीक हो जाते हो आप?
3: हाँ बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ कभी कभी होता है कि डर सा लगता है कैसा बोला होगा या फिर कैसा गाया होगा कैसा परफॉर्म किया होगा।
4: अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और किसी ने आपको बोला हो कि नहीं नहीं भाई बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ ये तो परफॉर्मेंस?
3: ऐसा तो कभी नहीं हुआ।
6: ऐसा नहीं होता
2: मेरे साथ ये तो नहीं हुआ कि किसी ने बोला हो कि बहुत अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस पर कई बार ना कई लोग होते हैं ना जो मतलब अपना हमको कंपटीशन, मतलब मुझे ऐसे कई लोग अपनी लाइफ में मिले हैं और मुझे, मेरे को ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे सही गाइड नहीं किया, बट कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हाँ क्या सही था क्या गलत था. और जिसमें हम खुद कॉन्फिडेंट है उस चीज में अगर सामने वाला बोले कि नहीं ये आपने गलत किया, तो लगता है ना भाई इसको क्या, हमने तो सही किया, हम जानते हैं, हमारी टीचर कह रही है. तो फिर इसीलिए ऐसा होता है कई बार कि कई लोग जो हमको अपना कंपटीशन समझते हैं या ये समझते हैं कि शायद ये मुझसे अच्छा कर रही है या मेरे से बेटर कर रही है, तो वो लोग कई बार मतलब मेरे साथ ऐसे कॉन्फिडेंस गिराने के लिए करते हैं कि
4: तो बुरा लगता है.
2: बुरा लगता है कि यार मैं तो मतलब मैं ऐसा नहीं करती कभी उनके साथ, मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करती हूँ. वो थोड़ा भी गलत करते हैं तो उनको हर जगह सही करती हूँ, और जब वो ऐसे करते हैं ना तो मेरे को थोड़ा लगता है कि बुरा है, बट फिर भी मैं अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरने देती, क्योंकि वही एक चीज है, उसके बगैर हम लोग कोई भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, अगर अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता है.
4: और दैवत आपको ऐसा लगता है कभी किसी ने कहा हो कि नहीं नहीं दैवत ये तो आपने अच्छा आज नहीं किया उतना जितना आप करते हो?
7: मेरे साथ एक बार हुआ ऐसा.
4: कब हुआ?
7: जब हमारी स्किट थी तो उस टाइम जितने भी स्टाफ जो भी टीचर्स थे सारे हमारे ग्रुप को बोला कि तुम्हारा सबसे बेस्ट गया है सबसे मस्त. और क्लास में जैसे ही मैं एंटर हुआ एक बच्चा आकर बोले, क्या पता क्या हुआ था उसको, उसने जाकर मैम को क्या बोला कि ना मैं एबसेंट रहूंगा मैम, मैं नहीं आ पाऊंगा. तो उसकी जगह मेरे को ले लिया. तो उस दिन उसका जो जाना कैंसिल हो गया, तो मैम ने कुछ किया ही नहीं, कॉम्पिटिशन किया, बाद में वो बोलेगी तेरा तो गया ही नहीं अच्छा.
4: फिर आपको कैसा लगा?
7: थोड़ा थोड़ा सा बुरा लगा, बट सबने ऐसा बोला अच्छा बहुत अच्छा किया, बट दोस्त ने ऐसा बोल दिया तो थोड़ा बुरा लगा.
4: बुरा लगा. तो आपने अपने उस दोस्त को कुछ बोला फिर उसके बाद?
7: मैं बोला ठीक है अब रहने दो.
4: अच्छा, मतलब कोई बात नहीं, आपने उसको माफ कर दिया. अरे वाह. और आदि आपके साथ कभी ऐसा हुआ?
3: नहीं दीदी,
4: कभी नहीं. हमेशा सबने बोला आदि आपने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है.
3: नहीं ऐसा भी नहीं बोला.
4: ओके.
2: ऐसा भी नहीं बोला.
4: फिर क्या बोला?
3: अच्छा गया, बस ऐसे ही बोलता है, ज्यादा अच्छा गया ये नहीं बोलते.
4: अच्छा अच्छा, ज्यादा अच्छा गया कोई बोलता नहीं है कभी? कोई भी नहीं बोलता.
2: मैं भी नहीं बोलती आदि,
3: मेरा मतलब था कोई कोई
2: कोई कोई.
4: अच्छा, कभी किसी का कमेंट बुरा लगा है? कभी किसी का कमेंट बुरा लगा आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में?
3: नहीं.
4: क्या बात है, आदि को बुरा ही नहीं लगता है, बहुत अच्छी बात है वैसे तो ये. अच्छा, तो कॉम्पिटिशन ये वाले तो स्कूल वाले कॉम्पिटिशन होते हैं. अच्छा, आपका फेवरेट चीज क्या है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो? सब लोग बताना एक एक जो कंपटीशन आपका फेवरेट कंपटीशन है जिसको आप कभी मिस नहीं करना चाहते हो.
6: मेरा फेवरेट कंपटीशन तो स्कूल में आता है 3 बार.
4: यश का फेवरेट कंपटीशन क्या है जो 3 बार आता है?
6: इंटर हाउस मार्च पास.
4: ओके.
6: हाँ, क्योंकि मेरे को मार्चिंग बहुत ज्यादा पसंद है. तो फिर एक बार स्पोर्ट्स डे पे, फिर 26 जनवरी, 15 अगस्त, 3 बार आता है. ऐसे तो शायद प्राइज एक ही बार का होता है, बट लेकिन मैं हर बार मार्चिंग में रहता हूँ, इस कारण मेरे को वो बहुत ज्यादा पसंद है.
4: ओके. और आपको क्या पसंद है आदि?
3: मेरे को
4: कौन सा कंपटीशन पसंद है?
3: बैडमिंटन.
4: बैडमिंटन सिंगिंग से भी ज्यादा?
3: हाँ.
4: ओके, तो आप हमेशा पार्टिसिपेट करते हो बैडमिंटन में?
3: नहीं, वो तो नहीं हो पाता.
4: क्यों नहीं हो पाता?
3: क्योंकि
6: और अच्छे प्लेयर्स हैं इसलिए.
3: हाँ.
4: अच्छा, तो फिर आप और मेहनत नहीं करते फिर बैडमिंटन खेलने के लिए?
3: हाँ, करता तो था, अब छूट गया बैडमिंटन खेलना.
4: भाई फेवरेट कंपटीशन है, उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए. क्यों? देखो आपके दोस्त भी आपको बोल रहे होंगे ऐसा. है दृष्टि, छोड़ना चाहिए फेवरेट कंपटीशन?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं. और जब भी मौका मिले उल्टा उस पे और प्रैक्टिस करके और अच्छा बन जाना चाहिए.
4: अब आदि वापस खेलना पड़ेगा बैडमिंटन आपको, अब राज तो पता चल गया हमें. और दैवत आपका फेवरेट कंपटीशन क्या है?
7: क्रिकेट.
4: क्रिकेट, ओके. और दृष्टि आपको?
2: मुझे ऐसे तो रिले रेसिंग पसंद है कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि डांस कॉम्पिटिशन्स में मैं इतना पार्टिसिपेट नहीं करती. और जब मैंने ये निश्चय लिया कि हाँ चलो इस साल तो मैं पक्का कैसे भी हिम्मत करके, क्योंकि सोलो होता है और मुझे थोड़ा डर लगता है, तो इस बार जब मैंने सोचा कि मैं कैसे भी करके रहूँगी, तब मुझे पता चला कि अब से तो बंद हो गए सारे कॉम्पिटिशन, अब से तो हम नहीं रह पाएंगे. और फिर उसके बाद एक कुकिंग कॉम्पिटिशन आया था. और पिछले साल शायद मेरे को कुछ, शायद मेरा डांस था या कुछ था, तो मैं रह नहीं पाई थी.
4: ओके.
2: और फिर मैंने उसी टाइम बोला था कि 10th में तो पक्का रहना है, और 10th में वो कंपटीशन अभी तक आया ही नहीं.
4: अच्छा, मतलब दृष्टि को कुकिंग कंपटीशन पसंद है?
2: हाँ जी. और रिले रेसिंग बस और कोई कंपटीशन ऐसे नहीं है जो मुझे लगे कि हाँ इसमें तो रहना ही है।
4: ओके अच्छा अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कोई कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया और आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक आपको फर्स्ट प्राइज मिले लेकिन कोई आपकी तारीफ नहीं करे और सेकंड सब लोग आपकी तारीफ करे लेकिन आपको प्राइज नहीं मिले, तो आपको क्या बेटर लगेगा?
6: दीदी मेरे को तारीफ से तो कोई ज्यादा मतलब नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने कैसा किया है।
4: ओके
6: मेरे को अचीवमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे अचीवमेंट काम आएगी, तारीफ नहीं।
4: तो आपको प्राइज ज्यादा ऑप्शन अच्छा लगेगा?
6: हाँ जी।
4: ओके और आप लोगों को?
7: प्राइज।
4: ओके धैवत को भी प्राइज अच्छा लगेगा, कोई तारीफ नहीं कहेगा तो चलेगा।
7: वैसे भी जब कॉलेजेस और जॉब्स के लिए जाते हैं तभी भी वो क्या बोलते हैं कि तुमने किस में पार्टिसिपेट करके और किस में अचीवमेंट पाई है वो सब देखते हैं, इतना ये नहीं पूछते कि तारीफ किस किस ने की है।
4: ओके
7: पूछते ही नहीं है बिल्कुल।
4: हाँ ये तो कोई पूछता ही नहीं है सवाल। क्या बात है धैवत, ये तो बड़ी अच्छी बात बोली। और दृष्टि आपको क्या लगता है क्या अच्छा लगेगा? सच सच सोच के बताओ।
2: ये बहुत सोचने की बात है क्योंकि मुझे एक्चुअली बिल्कुल आदत नहीं है कि मतलब मेरी तारीफ ना हो और मुझे प्राइज मिल जाए, या मतलब ऐसा नहीं कि मैं हर प्राइज जीतती हूँ बट तारीफ मुझे सब करके देते हैं कोई टीचर हो या कुछ, तो शायद मैं

0: अगर एक कंपटीशन के लिए हो, हर कंपटीशन के लिए नहीं,
1: हाँ
0: अगर एक दो कंपटीशन के लिए हो तो मैं शायद तारीफ लूंगी, क्योंकि प्राइज लेकर भी एक खुशी नहीं होगी कि यार किसी को पसंद तो आया नहीं है, प्राइज तो फ्री रिफंड का मिल गया।
1: ये भी सही बात है। आदि आपको क्या लगेगा?
2: दीदी प्राइज ज्यादा इम्पोर्टेंट आएगा क्योंकि
1: क्यों प्राइज इम्पोर्टेंट है आपके लिए तारीफ से ज्यादा?
2: लोगों के सामने तो इज्जत बाद में भी बन सकती है, पर खुद के लिए अपने अंदर ही इज्जत पहले बढ़ानी होती है।
1: ओ माय गॉड, ओके, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है यहाँ पे, क्या बात है।
3: आदि बड़ा हो गया।
1: आदि बड़ा हो गया। अच्छा ओके, काफी। हाँ
2: क्योंकि जब तक खुद के लिए इज्जत अपने अंदर नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर हौसला नहीं होगा कुछ आगे करने का।
1: तो आपको लगता है कि अगर हम कॉम्पिटिशन्स नहीं जीतते तो हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते?
2: नहीं, ऐसा भी नहीं है।
1: नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मोटिवेशन तो मिलता है जब हम कॉम्पिटिशन जीतते हैं तो।
0: हाँ जी,
1: डेफिनेटली मिलता है, सही बात है। अच्छा, अब आखिरी सवाल मैं आप लोग, आखिरी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। जब सबसे पहले आप कॉम्पिटिशन जीतते हो तो क्या करते हो?
0: मैं बताऊंगी पहले।
1: बताओ।
0: मैंने एक कंपटीशन जीता था, मैं मतलब ऐसे एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। तो मेरे को उसके लिए ना मेडल मिला था, तो मैंने उसको मम्मी से छुपाया, फिर उसके बाद मम्मी को जाके पहना दिया। ये सबसे मेरी फेवरेट थिंग चीज है कि मम्मी को जाके दे दो, मम्मी को जाके पहना दो, तो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे कॉम्पिटिशन जीतने के बाद मैं सबसे पहले हवा में उड़ के सबको बोलती है, देख मैं जीत गई। जीती रही ना, देख लो कि तेरे को तो अगली बार भी मैं जीतूंगी। और ऐसे हम फिर दोस्त बहुत मस्ती करते हैं और फिर हमें पार्टी मिलती है
1: ये। और सब आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले प्राइस मिला, क्या करते हो, किसको बताते हो या क्या करने का मन करता है? धैवत, आपको क्या मन करता है?
4: सबसे पहले तो स्पोर्ट्स में मिला हो, जो भी जिस को भी प्राइज मिला हो पूरा ग्राउंड पूरा भागते उस हाउस का फ्लैग लेकर।
1: ओके, और आप दोनों क्या करते हो, आदि और यश?
2: जब मैंने सबसे पहले प्राइज जीता था, तब मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था केशियो में।
1: ओके,
2: उस टाइम मैं ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि उस टाइम मेरे साथ किसी का झगड़ा हो गया था।
1: अच्छा, वो कंपटीशन के टाइम पे झगड़ा हो गया?
2: नहीं, कंपटीशन का प्राइज जब मिलने वाला था तब झगड़ा हो गया था।
1: ओके, फिर क्या?
2: मैंने मम्मी को जाके दिखा दिया प्राइस, ज्यादा मेरे को खुशी नहीं हुई, मम्मी को ज्यादा खुशी हुई।
1: वैसे क्या करते हो, जनरली क्या करते हो?
2: जनरली ज्यादा नहीं करते, बस खुशी मनाते हैं।
1: सबसे पहले क्या करते हो अगर जीता? अभी ये द अवार्ड गोज टू आदि, तो अब क्या करेगा आदि?
2: पहले तो बच्चे ही प्राइस ले लेते हैं मेरा देखने के लिए।
0: दीदी ऐसा होता है, पता है, प्राइस मिलते ये दिखाना, ये दिखाना
4: कैसा प्राइस मिलता है, कैसा।
2: और यहाँ पे प्राइस यहाँ पे होता है और यहाँ से पीछे चल जाता है, पता नहीं कहाँ पे।
1: अच्छा ओके, और यश आप क्या करते हो?
3: दीदी मेरे को तो एक बार प्राइज मिला था तो उस दिन मैं एब्सेंट हो गया। फिर अगले दिन एग्जाम, मेरा मूड ऐसे ही खराब था। फिर मेरे को प्राइज मिल गया, मेरा मूड और भी अच्छा हो गया। फिर उसके कारण मेरा एग्जाम भी अच्छा गया वैसे।
1: ओके,
3: तो हम मैं जब भी मेरे को कोई प्राइज मिलता है तो स्कूल में होता है तो उस समय दोस्तों से शेयर करते हैं, और कुछ जो टीचर्स हमारी मेरी फेवरेट टीचर्स है जो उनको मैं बताता हूँ जाके, तो वो भी बहुत खुश होते हैं, तो उनको देख के भी अच्छा लगता है कि हाँ जिन्होंने हमें पढ़ाया है उनको देख के खुशी हो रही है कि हमने कुछ अच्छा किया है। फिर उसके बाद घर आते ही मैं एकदम जैसे दृष्टि करती है छुपा के, फिर उसके बाद एकदम मम्मी को दिखाता हूँ, सरप्राइज देता हूँ।
1: ओके,
3: तो ये करता हूँ मैं।
1: ओके, मम्मी को मतलब सबसे पहले बताते हो?
0: हाँ जी। दीदी आपको पता है मेरे साथ ऐसा होता है कि ना, मतलब जैसे अभी मेरा नाम आने वाला है, मतलब पता चल जाता है कि हाँ ऑफकोर्स इसके बाद हमारा ही आएगा, तो फिर थोड़ी थोड़ी मन में ऐसे चालू हो जाता है कि और जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। फिर उसके बाद प्राइज ले लिया और फिर फोटो भी खिंचा ली, आते वक्त ना आते आते बैठती हूँ, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसे यकीन सा नहीं आता कि यार प्राइज मिल गया,
1: मुझे मिला।
0: और मन में कुछ कुछ होता रहता है, एकदम कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे अंदर कुछ चल रहा है कीड़ा सा।
1: लेकिन पेट दर्द तो खत्म हो जाता है ना?
0: पेट दर्द खत्म हो जाता है।
1: ओके,
0: पर जब पेट दर्द होता है तो बहुत जोर से होता है, मैं खड़ी भी नहीं हो पाती इतना जोर से।
1: बापरे, ये तो बहुत ज्यादा जोर से होता है, फिर इसका तो कुछ करना पड़ेगा। दृष्टि,
0: पहले मुझे लगता था मुझे प्रॉब्लम है, पर मतलब जब दिखाया भी डॉक्टर्स को तो यही पता चला। खैर अब तो मैं थोड़ा सहन कर लेती हूँ, अब मेरे को इतना नहीं होता, और स्पेशली स्कूल जाती हूँ ना तब तो भूल जाती हूँ क्योंकि मेरे दोस्त है ना।
1: बिल्कुल, अब ये बात तो देखो आपको भी समझ में आ गई क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा, मुझे भी होता था, क्योंकि हमारे मन में जब टेंशन है तो वो बॉडी पर असर करती ही करती है।
0: हाँ जी,
1: है ना बच्चों। तो अपनी टेंशन को जीतने के तो बहुत सारे उपाय हैं, फ्रेंड से बात करना, और ये समझ लेना कि ये आखिरी कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा बच्चों, अब मुझे लग रहा है हमारी बातों में समय कहाँ गया मालूम नहीं, तो अब हमें जाना भी तो पड़ेगा ना।
4: हाँ जी
3: दीदी,
1: तो हम फिर मिलेंगे बच्चों की दुनिया में। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: EIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 3, चखने से पचने तक, पृष्ठ 22। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपटकर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीजें खाकर? झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते? जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ नमकीन भी। हाँ खट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज रखूंगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और झुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पृष्ठ 23, पीस कर खिलाओ नहीं तो फट पहचान लोगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीस कर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीजें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई, कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली। झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। चर्चा करो और लिखो। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब कब पानी आता है? अपनी पसंद की 5 चीजों के नाम और उनके स्वाद लिखो। तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग? क्यों? झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? कैसे? पृष्ठ 24। खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीजें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघकर पहचान सकते हो? क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? आंख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीजें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीजें चखाओ और पूछो, स्वाद कैसा था? खाने की चीज क्या थी? जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज्यादा पता चल रहा था? आगे, पीछे, बाईं या दाईं तरफ? तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज्यादा पता चला? अपने अनुभव के आधार पर जीभ के एक चित्र में लिखो। कुछ खाने की चीजों को मुंह के किसी और हिस्से पर रखो, होंठ, तालू, जीभ के नीचे। क्या कहीं और भी स्वाद का पता चला? पृष्ठ 25। जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वहां चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो। कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? बताओ। अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीजों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। कुछ चीजें चखने के बाद झुंपा बोली, सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाजें निकालो। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। पृष्ठ 26। चबाकर या चबा चबाकर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर कक्षा में ये गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30-32 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? चर्चा करो। घर में लोग तुम्हें कहते होंगे, खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे। जब तुम कोई सख्त चीज जैसे अमरूद खाते हो, तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे? सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी। पृष्ठ 27। दिल की बात। तुम्हें क्या लगता है, शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग? चर्चा करो। क्या तुमने किसी को कहते सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है, भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? सचमुच अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा। एक बच्ची कहती है, भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। बच्चा बोला, जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। दूसरा बच्चा बोला, जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ। एक बच्ची बोली, जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। कुत्ता बोला, मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। पृष्ठ 28। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। बताओ और चर्चा करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे? क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है? कहाँ? क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होता है? अपने साथियों को भी बताओ। पृष्ठ 29। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती हैं। सोचो, वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? बताओ, नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया? कहानी खिड़की वाले पेट की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली। हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल। बातें जान ली उसने भेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहें तब उसमें झांक लें, अंदर का सारा हाल भांप लें। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया, कर सकते थे वह मीन मेख भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीजें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेब भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की। इसके उसके सबके पेट की। कहानी यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। यह कविता राजेश उत्साही ने लिखी थी। पृष्ठ 30। कहानी पेट में झांका, जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा, वह सन 1822 में 18 साल का और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंड के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मॉर्डिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में, 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह मालूम नहीं था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है, पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज डुबोकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीमीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आम तौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका उन्होंने बना ली। पृष्ठ 31। जैसे कच्चा दूध, पचने का समय पेट में 2 घंटे 15 मिनट, गिलास में 4 घंटे 45 मिनट। उबला दूध, पेट में पचने का समय 2 घंटे, गिलास में पचने का समय 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला हुआ अंडा, पेट में पचने का समय 3 घंटे 30 मिनट, गिलास के पाचक रस में 8 घंटे। कम उबला अंडा, पेट में पचने का समय 3 घंटे, गिलास के पाचक रस में 6 घंटे 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ, पेट में पचने का समय 2 घंटे, गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा, पेट में पचने का समय 1 घंटा 30 मिनट और गिलास में पचने का समय 4 घंटे। कहो आप क्या सोचते हो, है कुछ फायदा इस पेट का? डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी ये देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए, जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड यानी अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने कभी किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने, पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? ये लेख अनीता रामपाल ने लिखा। पृष्ठ 32। सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो हम तुम्हें दे रहे हैं। रश्मि 5 साल, 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ। अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती। खेलने की ताकत भी नहीं होती। खाना, पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। कैलाश, 7 साल, उम्र से बड़ा है, शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। खाना, घर का बना खाना उसको पसंद नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। बाजार के चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, बस यही भाता है उसे। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। पृष्ठ 33।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए मंगल कामनाएं करते हैं। और आज विशेष दिन है, 22 जुलाई है, और 22 जुलाई हमें याद दिलाता है मुकेश जी को। मुकेश जी का आज जन्मदिन है, जो बहुत ही अच्छे गायक हैं, जिनके गाने आज भी आप सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। संदीप पांडे, विनायक राव पटवर्धन, देवेंद्र फडणवीस, अनंत कुमार, हरिता बहुगुणा जोशी, हिम्मत शाह, इन सभी का जन्मदिन है। इसके साथ ही यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, मुत्तू लक्ष्मी रेड्डी, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं और आप सभी के साथ मिलकर कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ। और आशा करूंगा आपको विचार जब सुनाते हैं तो आप भी अच्छा फील करते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो आइए, कुछ बदलना है तो कैसे बदलें, इसके बारे में आप और हम चिंतन करें और अपने जीवन को समृद्ध और सुंदर बनाएं, ऐसी शुभ आशा के साथ आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए संदीप पांडे के बारे में बात करते हैं। भारत के एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है देश के सबसे कम उम्र के रेमन मेस के पुरस्कार प्राप्त किए हुए विजेता है। संदीप पांडे देश के अपेक्षित तथा हाशाए पर रहे लोगों की दशा देखकर इतनी द्रवित हुए कि उन्होंने उस वर्ग की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया। अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए उन्होंने आशा परिवार नाम की एक संस्था खड़ी की तथा उसके माध्यम से देश के दलित और अल्पसंख्यकों की पक्षधारता के लिए काम करने लगे और अपनी संख्या तथा अपने दल के साथ पूरे जोर शोर से अपना कार्यक्रम लागू करना शुरू किया और इसके लिए देशव्यापी जागरूकता अभियान भी चलाया। देश की दशा में सुधार लाने वाले इस कार्यकर्ता के कार्यक्रम के लिए उन्हें विशेष 2022 में मैग्से पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में बात करते हैं। आज 22 जुलाई 1965 को उत्तर प्रदेश के बालिया में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। स्थानीय स्कूलों में बुनियादी शिक्षा पाने के बाद वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र बने और उसके बाद वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बार्कले से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री प्राप्त की और वहाँ उनकी मुलाकात दीपक गुप्ता तथा VJP श्रीवास्तव से हुई, जो विदेश में रहते हुए विदेश के प्रति सचेत थे। उनके साथ उनके मन में विचार जागा कि विदेश में बसे भारतीयों से धन जुटाकर गरीब बच्चों की शिक्षा की दिशा में कुछ ठोस काम किया जा सकता है। बस यहीं से एक आशा की किरण जगी और आशा परिवार की स्थापना हुई और 1991 में संदीप पांडे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में PhD करते हुए भारत लौटे और IIT कानपुर में प्राध्यापक बन गए और वहीं उनके एक जैसी सोच वाले दोस्तों के साथ मिलकर आशा परिवार नाम की संगठना स्थापन किया और इस संस्थान के पीछे संदीप का ये विचार था कि वह एकदम गरीब, अपेक्षित और तिरस्कृत लोगों के काम आएंगे जिन तक लोकतंत्र का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। आशा परिवार के जरिए संदीप पांडे की नज़र देश के प्रशासन तथा उसकी राजनीतिक व्यवस्था से भ्रष्टाचार हटाने, उनकी दक्षता बढ़ाने का प्रयास करने तथा उसे अधिक जिम्मेवार बनाने को मजबूर करने जैसा कार्य में लगे रहे। तो संदीप देश के गरीब बदहाल लोगों को उनकी जानकारी पाने में अधिक से अवगत कराना चाहते थे और उनमें ये विश्वास पैदा करना चाहते थे कि ये खुद अपने हाल के लिए खड़े हो सकें। आशा परिवार संस्था संदीप के इस लक्ष्य को पूरा करने की ओर काम कर रही है और संदीप पांडे के सामने ये स्पष्ट है कि उनका लक्ष्य इस वर्ग की शिक्षा की जरूरत से जुड़ा हुआ है और उनकी कोशिश इस दिशा में भरपूर रही है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ संदीप पांडे की कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा आपको। तो चलिए एक और खास व्यक्ति की जीवन कहानी से आपको अवगत कराते हैं। विनायक राव पटवर्धन यहाँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ये गायक थे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्करे के शिष्य में विनायक राव पटवर्धन अपने समय के महान गायक बने। और आइए इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म आज के दिन 1898 में मिरज महाराष्ट्र में हुआ था और संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने चाचा श्री केशव राव से प्राप्त की और उसके पश्चात 9 वर्ष की आयु में विष्णु दिगंबर पलुस्कर से शिक्षा लेना शुरू किया और आरंभ में बाल गंधर्व की नाटक मंडली में काम करते हुए उसके बाद 1932 में गंधर्व महाविद्यालय पूना की स्थापना करके आजीवन संगीत सेवा की और कई पाठ्य पुस्तकें भी लिखी जिनमें राग विज्ञान मुख्य रूप से हैं। सन 1972 में विनायक राव पटवर्धन को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया और विनायक राव पटवर्धन तराने के सिद्ध गायक थे और साथ ही चारों पट की गायकी में दक्ष थे। उन्होंने रूस आदि देशों में जाकर भारतीय संगीत का प्रसार भी किया। 23 अगस्त 1975 को पूना में ही इस महान गायक मनीषी का देवासन हो गया। तो ये थी कुछ खास बातें आपके लिए खास विनायक राव पटवर्धन के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आइए एक और खूबसूरत सा गीत और इसके बाद मुकेश जी की कहानी आपको सुनाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, जी हाँ, सफर सुनते रहो।

0: दीवाना, ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना।
1: नमस्कार, मैं हूँ पार्श्व गायिका श्रद्धा पंडित। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए आप सभी को ले चलते हैं। अभी मुकेश जी के बारे में बात करते हैं। जी हां, इनका जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ। भारत में संगीत इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक है। पेशे से एक इंजीनियर के घर में पैदा होने वाले मुकेश चंद्र माथुर के अंदर वो सलियत थी कि वो एक अच्छे गायक बनकर उभरे, और हुआ भी यही। कुदरत ने उनके अंदर जो काबिलियत दी थी वो लोगों के सामने आई और मुकेश की आवाज़ का जादू पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोला। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आइए इनकी कहानी और गीत आपको अभी सुनाते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आवाज में गजब दर्द, मिजाज में सरलता, जिस भी गाने को छुआ उसे अमर बना दिया। नाम मुकेश चंद माथुर, जिन्हें हम प्यार से सिर्फ मुकेश कह के पुकारते आ रहे हैं।

इनका जन्म 22 जुलाई सन 1923 में हुआ। जगह लुधियाना। पिता जोरावर चंद माथुर और माँ चांद रानी। ये अपने माँ बाप के 10 बच्चों में से छठे नंबर पे आते थे। ये बात भी गौर करने लायक है कि इनकी बड़ी बहन सुंदर प्यारी के लिए एक म्यूजिक टीचर सिखाने आया करते थे और तब नन्हे से मुकेश एक कोने में बैठकर सिर्फ सुना करते थे। तभी शायद अंदाजा हो गया था कि इस बच्चे को कला से बहुत प्यार है और गायकी के लिए तो ये बना ही है, पर फिर भी ये किसी ने ना सोचा था कि आगे जाकर ये बनेगा महान गायक मुकेश।

मुकेश साहब ने 10वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद कुछ वक्त के लिए ही सही ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स में काम करने लगे। जब ये काम कर रहे थे तब ये अक्सर अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया करते थे और घर के आसपास रिश्तेदारी में अक्सर इनकी आवाज का जिक्र हुआ करता था। कैसे मुकेश जी मुंबई पहुंचे और बन गए एक गायक, ये किस्सा भी बड़ा मशहूर रहा। बात दरअसल यूं रही कि मुकेश जी की बहन की शादी थी और जगह थी दिल्ली। मुकेश जी ने दरअसल अपनी जिंदगी का काफी वक्त दिल्ली में ही बिताया। उनकी बहन की शादी में बहुत से मेहमान आए और इनके एक दूर के रिश्तेदार मोतीलाल भी वहां पर मौजूद थे। वही मोतीलाल जिनके अभिनय का सभी लोहा मानते थे। मोतीलाल साहब के अभिनय ने फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। मोतीलाल साहब बड़े ही जबरदस्त अभिनेता थे और उनके सामने मुकेश जी को गाने के लिए कहा गया। जैसे ही मोतीलाल साहब ने मुकेश जी की आवाज सुनी तो फौरन मन बना लिया कि इस लड़के में कोई बात है, उनके मुंबई आने का प्रबंध कर गए।

मुंबई पहुंचकर पंडित जगन्नाथ प्रसाद से इन्होंने और भी शिक्षा ली। मोतीलाल साहब ने ही इन्हें पहला ब्रेक दिलवाया। अनिल विश्वास साहब का संगीत था, फिल्म का नाम पहली नजर और गाना दिल जलता है तो जलने दे। इस गाने से ही मुकेश जी ने साबित कर दिया कि इनमें दम कम है। और इसमें भी कोई दोराय नहीं कि उस वक्त फिल्मों में आने वाला हर कलाकार कुंदन लाल सैगल बनना चाहता था। केएल सैगल का ऐसा बोलबाला था कि लोग घर से भागते थे ये सोचकर कि फिल्म इंडस्ट्री में जाकर वो भी केएल सैगल ही बनेंगे। और मुकेश जी भी केएल सैगल साहब के इतने बड़े फैन थे कि इनके शुरुआती दौर के गानों में खासा असर सैगल साहब का ही आता है। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि जब मुकेश जी का गाया पहला गाना दिल जलता है तो जलने दे सैगल साहब को सुनाया गया तो बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि कमाल की बात है, मुझे याद नहीं आता मैंने ये गाना कब गाया था। तो बताया गया ये गाना एक नए लड़के मुकेश ने गाया है।

हरा। इनके निजी जीवन की तरफ हम रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनका विवाह हुआ सरल त्रिवेदी से। ये एक लव मैरिज थी। उस जमाने में लव मैरिज, और वो भी इंटर कम्युनिटी मैरिज, ये तो किसी ने सुना ही नहीं था और सोचा भी नहीं था। दोनों के ही माँ बाप इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा घर से भाग कर इन्हें शादी करनी पड़ी, और कन्यादान भी महान अभिनेता मोतीलाल साहब ने ही किया।

राज कपूर साहब के साथ इनकी गहरी दोस्ती थी और राज साहब ने ये बात एकदम साफ कह दी थी कि फैम द बॉडी, मुकेश इज द सोल, मतलब यदि मैं शरीर हूँ तो मुकेश उसकी आत्मा, मुकेश की आवाज के बिना मैं एकदम अधूरा हूँ।

0: कहा झूठा जग है, झूठे जग की झूठी चाहे।
1: मुकेश जी की आवाज सभी हीरोज को सूट करती थी, चाहे वो शशि कपूर रहे के शम्मी कपूर, राज कपूर के दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राजेश खन्ना या फिर अमिताभ बच्चन।

बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ इन्होंने काम किया, चाहे वो शंकर जयकिशन की जबरदस्त जोड़ी रही या फिर एसडी बर्मन और नौशाद साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या फिर कल्याण जी आनंद जी और खयाम साहब गायकी की ऊंचाइयां छू रहे थे। पर तभी सन 1976 में एक अमेरिकन टूर आया, जहां पर ये लता जी के साथ गए लाइव शोज करने के लिए। कोई नहीं जानता था वो इनका आखिरी टूर होगा, और वैसा ही हुआ। हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनका बड़ा बेटा नितिन इनके साथ ही था। जब भी कभी मुकेश जी से पूछा जाता कि गायकी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो हमेशा कहते कि गायकी एक बहुत अच्छा शौक जरूर है, पर एक बहुत ही पीड़ादायक व्यवसाय।

0: यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में मुकेश जी जैसी आवाज न किसी की थी और ना ही होगी। इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
1: तो ये थी गजब कहानी मुकेश जी की। आशा करूंगा आप उनसे मोटिवेट तो हो गए होंगे उनके गीतों को, उनके मधुर आवाज से आपके दिल में कहीं ना कहीं जरूर कुछ नई प्रेरणा प्राप्त हुई होगी, नहीं तो सुकून तो जरूर मिल ही गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आप सभी को ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। आप सुना है रेडियो माधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए मंगल कामनाएं करते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी से रूबरू होते हुए, और मुकेश जी की कहानी सुनकर आप भी तरोताजा फील कर रहे होंगे। तो आइए आपकी ताजगी को और बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब देवेंद्र फडणवीस के बारे में। जी हाँ, भारत के ये विशेष राजनेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक हैं। पूर्व में वो नागपुर नगर निगम में मेयर भी रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और वो 8 नवंबर 2019 तक इस पद पर आसीन रहे। इसके बाद वो 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस का ये विशेष जो समय है 22 जुलाई 1970 को नागपुर में जन्म हुआ और इनकी छवि जमीन से जुड़ी तेज तर्रार नेता की है। देवेंद्र फडणवीस को राजनीतिक विरासत में मिली और इनके पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर से एमएलसी थे। फडणवीस ने वार्ड स्तर से अपनी राजनीति शुरू की और फडणवीस ने बीजेपी में वार्ड संयोजक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बनने का सफर तय किया। और जब मजहब 27 साल के थे तभी वे नागपुर के मेयर बन चुके थे। और फडणवीस

को सक्रिय जन सेवक बताया था और इस तरह तारीफ उनके फर्नांडिस की तारीफ उनके विरोधी भी करते रहे। चुनाव से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने फर्नांडिस को मुख्यमंत्री पद का शपथ से योग्य चेहरा बताया था। तो ये थी कुछ खास बातें विशेष देवेंद्र फर्नांडिस के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। और कुछ लोगों का तकदीर पहले से बना होता है और कुछ लोगों को बनाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन का ये खूबसूरत जरिया जो है हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन को नई प्रेरणा देती रहती है। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 एफएम पर। चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते और एक विचार आपके नाम। कहते हैं यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। क्या बात है। तो इसी तरह आप सभी को फिर से एक बार ढेर सारी खुशियां। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और कार्यक्रम शुरू हो चुका है युवा मंच का। और आज हमारे साथ एक गेस्ट है जिनसे हम जानेंगे कि करियर में हमें जो डिसीजंस लेने होते हैं, कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है जब हमें ये जानने का होता है कि हमें आगे कौन से ऑप्शंस लेने हैं और कौन कौन से डाइवर्स फील्ड हमारे लिए ओपन है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ एक करियर कोच हमारे साथ हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी। हमारे साथ शोभित सर हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। सर,
1: तो मैं एक करियर काउंसलर हूँ, लाइफ कोच हूँ और एक स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, और लखनऊ में मेरी सर्विसेज में प्रदान करता हूँ। हमारा ऑफिस यहाँ पर है। हमको इस फील्ड में काम करते हुए, सेवाएं देते हुए करीब 15 वर्ष हो गए हैं, और हम लोग अलग अलग स्कूल के साथ काम करते हैं। हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं ताकि उनको एक दिशा मिले जीवन।
0: जी सर, थैंक यू सर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की मुलाकात को। सबसे पहला सवाल लेकर कि जैसे कि कई बार हमारे पास चॉइसेस आती हैं, सबसे पहली चॉइस जो हमें लाइफ में मिलती है करियर को लेकर, वो क्लास 10th के बाद मिलती है कि हमको साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है। सर, तो वहाँ हमारे कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, उनके मन में हमेशा उन्हें ये बताया जाता है कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो या जो तुम्हें अच्छा लगता है वहां जाओ, लेकिन मन में एक डर रहता है कि क्या मैं इस चीज को आगे कर पाऊंगा कि नहीं, इसका कितना स्कोप है। और कभी कभी व्यक्ति फैमिली प्रेशर में भी आ जाता है और पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि नहीं, उन तुमको यही सब्जेक्ट लेना है, यही पढ़ना है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज हम कैसे पहचाने कि हमें कहाँ जाना है, और अगर पेरेंट्स हमें फोर्स कर रहे हैं अगर इस चीज को लेके, तो हम उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं उस फील्ड में जाने के लिए।
1: तो आपने जो अपना प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर कुछ 3 भागों में दूंगा, क्योंकि एक प्रश्न में कई प्रश्न और कई पहलू समाये हुए हैं।
0: जी।
1: तो जैसे पहले आपने कहा कि 10वीं के बाद बच्चों को एक मौका मिलता है चुनाव करने के लिए कि वो साइंस लें कि कॉमर्स लें, तो बच्चों के पास साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, जिसे आर्ट्स भी कहते हैं, ये 3 विकल्प होते हैं चुनने के लिए। और हर स्कूल ये 3 विकल्प जरूरी नहीं है कि वो दे। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपके स्कूल में अगर ह्यूमैनिटीज नहीं है या फिर कॉमर्स नहीं है, तो फिर ये मत समझिएगा वो विकल्प है ही नहीं दुनिया में या अन्य स्कूलों में। अब बात आती है कि हम ये चुनाव कैसे करें कि हम कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करें। तो अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की, तो साइंस के लिए आमतौर पर स्कूल में कट ऑफ होता है कि जैसे जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के जो स्कूल होते हैं वहां पर कहते हैं कि अगर 80% से ज्यादा आपके अंक आए हैं 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में, तो आप साइंस के लिए आप चुनाव करिए। और ये न्यूनतम जिसे एलिजिबिलिटी कहते हैं वो ऐसा कहते हैं। फिर साइंस जो विषय है इसको अन्य विद्यालय, अन्य स्कूल भी देते हैं, और वहां पर जिसे कहेंगे कि परसेंटेज कट ऑफ हो सकता है 65 हो जाए, 70 हो जाए, या 60 ही रहे, ऐसा भी होता है। तो जरूरी है कि बच्चों को ये बात समझें कि विज्ञान में भी हमारे पास क्या अलग अलग शाखाएं हैं साइंस में। जैसे साइंस में अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स का होना जरूरी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, और अगर किसी को जीव जंतु और पेड़ पौधों में रुचि है तो उनको बायोलॉजी लेना होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये भी अलग क्षेत्र हैं जो कि व्यक्ति साइंस लेकर उसको आगे कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं उस क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए आमतौर पर कोई कट ऑफ नहीं होता है, और इसको कोई भी विद्यार्थी अपना जो है करियर के रूप में या अपने इच्छा या रुचि के अनुकूल उस विषय का वो चयन चुनाव कर सकता है। लेकिन बात ये समझनी होगी कि हर करियर जो है अच्छा करियर है, और ये बात, ये धारणा, अवधारणा बनाना कि अगर विज्ञान हमने लिया है, साइंस हमने लिया है, तो हम बुद्धिमान मन समझे जाएंगे, और यदि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज आर्ट्स लिया है तो हमको मंद बुद्धि का समझा जाएगा, कहेंगे कमजोर है पढ़ाई में तो भी आपने ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स ले लिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जहां पर हमारी रुचि होती है वहां पर हम विषय का, उस सब्जेक्ट का हम चुनाव करेंगे तो हम सफलता को प्राप्त करेंगे। तो दूसरा पहलू आपने कहा कि माता पिता जोर करते हैं, एक एक प्रकार का जैसे आपने कहा प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप फला फला सब्जेक्ट स्ट्रीम ही आप चुनाव करेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि माता पिता जिस क्षेत्र में होते हैं वो उसी क्षेत्र में बच्चों को अपने विषय का चुनाव करने के लिए प्रेरित करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर माता पिता डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे कि बेटा पीसीबी बायोलॉजी विषय लें, अगर माता पिता इंजीनियर्स हैं तो वो चाहेंगे पीसीएम लें, और अगर माता पिता बिजनेस में हैं तो वो कहेंगे कि आप कॉमर्स दो बेटा, और अगर माता पिता संगीत में हैं तो वो प्रेरणा देंगे बच्चों को संगीत में जाएं, अगर वो कत्थक घराने से हैं तो कहेंगे कि आप ह्यूमैनिटीज लेकर कत्थक आगे घर के नाम को रोशन करिए, आप आगे लेके चलिए। कोई अगर साइकोलॉजी में है और वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो भी उनको प्रेरणा देंगे कि ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लें। तो बच्चों को खुद, या एक तो बच्चों को ना, क्योंकि 15 वर्ष की आयु होती है, 16 वर्ष की आयु होती है, आज के समय में बच्चों के पास जानकारी उपलब्ध कराने की कमी नहीं है। गूगल के माध्यम से वो ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा विवेकशील बनना होगा, और जैसे आपने सवाल हमसे पूछा, ये सवाल आप गूगल से पूछेंगे, और गूगल ये सारी जानकारी आपको वहां पर विस्तार से आपको देगा कि 10वीं के बाद कौन कौन से विषय हमारे पास हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हम आज के समय में डिजिटल युग जिसे कहते हैं, हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं, सारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं, सारा काम ऑनलाइन हो गया है, यहाँ तक घर बैठे आपको सामान मिल जाता है, खाना सब्जियां मिल जाती हैं, और अगर आपको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो वो भी घर बैठे आप, कई एप्स हैं जैसे उबर है, उबर सर्विसेज, वहां से आप सेवाएं ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से जानकारी भी हम हर प्रकार की गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त बच्चे कर सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उनको शांति से अपने साथ बैठकर ये आंकलन करना होगा कि मेरी रुचियां किस क्षेत्र में और मेरी काबिलियत किधर है, वेयर माई इंटरेस्ट लाइज एंड वेयर माई एप्टीट्यूड लाइज। एट द सेम टाइम अगर हम केवल अपना चुनाव इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के ऊपर छोड़ देते हैं और हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं उसको हम नहीं समझते हैं, तो भी यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि 12वीं के बाद फिर क्या करेंगे, 12वीं के बाद फिर चुनाव करना होगा। तो चुनाव केवल
0: जी
1: आप अपनी रुचियों के आधार से नहीं करते हैं, क्योंकि रुचियां भी 2 प्रकार की होती हैं, और बच्चे अक्सर इस बात में मूंझ जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक रुचि होती है मनोरंजन के लिए और एक रुचि होती है पैसा कमाने के लिए। तो दिन भर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा हम क्या काम करेंगे, जैसे लोगों, क्या हमको धूप में बाहर बाजार में घूमना अच्छा लगता है? तो कई युवा कहेंगे हाँ अच्छा लगता है, लेकिन क्या रोज आपको ये काम अच्छा लगेगा, 8 घंटा 14 घंटा रोज करना? हाँ, तो ये एक प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो या फिर कहते हैं कि हमको गैजेट के साथ, हाँ गैजेट के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो शौकिया अच्छा लगता है, जैसे कि कुछ लोगों को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एडिट करना, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसको रोज आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो भी 8 घंटा निरंतर, 14 घंटा निरंतर? हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक जैसे एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनना ये भी एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है। तो ये हमको पूछना होगा अपने आप से, और ये अलग करना होगा, रुचियों की जो मनोरंजन के लिए है वो अलग है, और जीविका के लिए जो हमारी रुचियां हैं वो अलग हैं। तो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं आकलन कर पा रहे हैं तो तो हम वैज्ञानिक तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से एक करियर काउंसलर से परामर्श लेकर और एक एक सुलझे हुए और वैज्ञानिक ढंग से हम अपनी काबिलियत, अपने एप्टीट्यूड को, अपनी क्षमताओं को और अपनी रुचियों को समझ सकते हैं।
0: जी सर, बहुत अच्छा लगा जान के। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ की पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए, और हम ये नहीं
1: जी
0: सोच सकते कि वो दूसरा व्यक्ति वो ले रहा है या उसके से मेरे को क्या होगा करके। अगर मन में डर है तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। और ये तो सर हमारे स्कूल की बात हो गई कि यहाँ पे हमने 10th के बाद चॉइस ली, यही चीज़ 12th के बाद भी अप्लीकेबल होगा कि इस फील्ड में हमको जाना है, उसकी प्रॉपर रिसर्च करके इंटरनेट में सारी जानकारी हमें मिल जाती है और हम अपने उस स्ट्रीम में जा सकते हैं। सर, अब हम जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज में आ गए, कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, लेकिन जैसे मैं पर्सनली बात करूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग करते करते या कोई भी जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, कुछ एडिशनल स्किल्स भी हमें ज़रूरत होती है कि हम जब फ्यूचर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ वो स्किल्स चाहिए जो कॉलेज में हमें नहीं सिखाई जाती, या हो सकता है कि कई कॉलेजों में वो चीज़ें स्किल्स सिखाई नहीं जाती, होता क्या है वो सब बताया ना जाता हो। तो कौन कौन सी स्किल्स है, पहली चीज तो ये कि वो जो हम सीखें जो हमें आगे जॉब में काम आए, और हम वो कहाँ से सीख सकते हैं?
1: देखिए, स्किल्स जो होती है ना, दो प्रकार की होती हैं। अगर हम उसकी शाखाएं बनाए, एक हार्ड स्किल्स होती है और एक सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो ये दोनों ही हमको जरूरत होती है जीवन में सफलता पाने के लिए। हार्ड स्किल होगी जो कि आपके विषय से संबंधित है, तो जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग की जो शाखाएं हैं वो 22 से भी ज्यादा शाखाएं वर्तमान में है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मरीन, पेट्रोलियम, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। तो आप जिस इंजीनियरिंग एरिया में स्पेशलाइज करना चाहते हैं उसके हार्ड स्किल्स तो आपको सीखने होंगे, और उसके लिए ऑनलाइन माध्यम से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर आप ऐप मेकिंग का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आप जैसे टैली और जो बेसिक MS ऑफिस है वो आना जरूरी हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ढेर सारे काम को कम समय में, जिससे करने में पहले काफी समय लगता था, वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की कलाओं को हम अगर सर्टिफिकेशन के माध्यम से या फिर डिप्लोमा के माध्यम से, हम डिग्री कोर्स के साथ साथ हम उसको करें तो हमको लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हमें कुछ प्रैक्टिकल काम, व्यवहारिक काम करने का मौका मिलता है, देखिए डिग्री कोर्सेज में 1 महीने या 2 महीने का इंटर्नशिप मिलता है करने को, लेकिन जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स मिलते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि असल जिंदगी से संबंध रखते हैं, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए संबंध रखते हैं। तो हमें अगर मौका मिलता है किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो सहयोग करके सीखने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने के लिए, तो ये विन विन सिचुएशन होती है और बच्चों को काफी उसमें जानकारी मिलती है, स्किल एनहांसमेंट होता है उसमें। फिर उनको समझ में आता है कि किताबी रूप से तो कैसा लग रहा है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल रूप से किया जाएगा तो वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स, देखा गया है कि जब उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया और वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो ब्लड देखते हैं और फिर डाइसेक्शन बॉडी का करना होता है, तो कई बच्चे ना वो बेहोश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, और फिर वो डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये भी एक मौका मिलता है अपने को आकलन करने के लिए कि क्या प्रैक्टिकल में मेरे लिए वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब एक होता है ना कि डबल श्योरिटी हमारे लिए हो जाती है। तो इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एम्पैथी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इस तरह की कलाएं भी हमको अपने अंदर विकसित करनी होती है, क्योंकि विजडम और होशियारी का होना बहुत जरूरी है और वो

0: तब हमारे अंदर आएगा जब हम इन सब चीजों को भी उतनी ही अहमियत देंगे जितना हम हार्ड स्किल्स को देते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स को भी हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सारा काम दुनिया समाज में एक संगठन में होता है, ग्रुप में होता है। तो टीम स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, हाँ, ये सब भी हमको आना चाहिए। और ये तब आएगा जब हम वॉलंटियर करेंगे, अपने आप को कॉलेज के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेंगे, या कॉलेज के बाहर हमें कुछ करने को मिलता है तो उसमें हम भाग लेंगे।
1: जी सर, और ये भी है कि अभी हमारी सबकी छुट्टियां आ रही हैं गर्मी की, और स्कूल्स में भी और कॉलेज में भी इस समय हॉलीडेज पड़ने वाली है, तो हम इस हॉलीडे जो हमें वेकेशन मिला है इसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को बिल्डअप करने के लिए कि वो हमें फ्यूचर में काम आए, जॉब में क्या क्या कर सकते हैं वो आपसे जानना चाहेंगे सर।
0: बहुत कुछ कर सकते हैं। छुट्टियों का मतलब ये होता है कि बच्चे और यूथ उसको ना एंजॉयमेंट के साथ उसको कोरिलेट करते हैं, और ये एक मौका मिलता है कि हम एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय को अपने लक्ष्य से हम मिलाकर चलें। तो जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग वो सीख सकते हैं, फोटोग्राफी है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, कई प्रकार की चीजें आप ऑफलाइन तरीके से ट्यूशन लेकर आप सीख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन तरीके से सीख सकते हैं। कई प्रकार के सर्टिफिकेशन हैं जो कि एक दिन से लेकर एक महीने के या 3 महीने के होते हैं, और 1 घंटा 2 घंटा आपको देना होता है उसको, 5 days a week या alternate 3 days a week, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया, या हेल्थ केयर न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्स हो गया। तो इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हम लोगों को एक राय दे सकते हैं। आमतौर पर देखा गया यूथ जब उनको कॉलेज में ऐसे पेइंग गेस्ट की तरह रहना होता है, हॉस्टल में रहना होता है, तो उनकी सेहत खराब हो जाती है। तो न्यूट्रिशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे तो वो उस समय तो उनको फायदा करेगा, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद भी वो उनको फायदा देगा, क्योंकि वो जो समय होता है 18 से 22-23 वर्ष की आयु में, वो हेल्थ का पीक जिसे कहते हैं, वहां तक जाने के लिए जो कि युवा अवस्था होती है वहां जा सकते हैं। तो अगर पोषण अच्छा मिलता है शरीर को तो मन भी स्वस्थ रहता है और तन भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा कई प्रकार की रीडिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज होती हैं, या फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं, या एजुकेशनल वीडियोस पॉडकास्ट हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, या वो दर्शन फिलोसफी से संबंधित हो, या वर्तमान में विश्व में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स को लेकर। आजकल वर्चुअल वर्कशॉप्स और वेबिनार, जिनके पास पैसा है तो वो पैसा खर्च करके, जैसे मैं आपको बताऊं, ऋषिवुड यूनिवर्सिटी 15 दिन की पॉलिसी मेकिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है, समर कैंप, जो कि सोनीपत में है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जब गर्मियां आती है तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन और केवल यूथ और कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि किंडरगार्टन, प्राइमरी और जूनियर स्कूल के बच्चों के लिए भी तमाम एक्टिविटीज पब्लिक डोमेन में हमको देखने को मिलती हैं। तो वो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, हाँ, कई प्रकार के। आज तो पिनिंटरेस्ट एक ऐप है जहाँ पर काफी DIY, जिसको कहते हैं डू इट योरसेल्फ, वो सीखने को मिलता है। या फिर फिटनेस और वेलनेस को लेकर, जैसे वर्कआउट वीडियोस देख सकते हैं, या फिर योगा क्लासेस हैं, सेल्फ अवेयरनेस वेलनेस को लेकर, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, हाँ, इन सब चीजों के प्रति भी थोड़ा समय निकाल सकते हैं, जो कि बहुत फन इंटरेस्टिंग होता है, और मिलके अगर करा जाए तो हाँ एक एक सुंदर एक्टिविटी बनती है, जहाँ पर हम लोग शेयरिंग भी करते हैं और प्रेम भी बढ़ता है लोगों का, क्योंकि सेहत भी अच्छी हो रही है और मन दुरुस्त भी, जैसे कहते हैं, मन भी दुरुस्त हमारा बनता है। या फिर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, तो जैसे मम्मी पापा महीने खर्चा देते हैं 5,000 रुपये या 3,000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये खर्च करने के लिए, तो हम थोड़ा समझें कि हम पर्सनल फाइनेंस बजटिंग कैसे करें, और रुपए को हम कैसे बचा सकते हैं, या किसी को गिफ्ट करना है तो हम कितना पैसे रखें, अगर हमको दान करना है, मन में भावना आती है, तो उसके लिए कितना पैसा निकाल के रखें, हमें कोई सामान कपड़े खरीदने हैं या हमको खाने का सामान खरीदना है। आजकल फ्रेंडशिप्स बहुत होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वहां पर कितना या कोई कोर्स हमें करना है, तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ है इसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज लर्निंग, तो भाषा भी अगर सीखना चाहें, क्योंकि विश्व भी एक छोटा होता जा रहा है, तो चाहे वो भारत में तो तमाम भाषाएं हैं, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, आप हिंदी और उर्दू और उड़िया, बहुत भाषाएं हैं, लेकिन जैसे कि फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, तो अगर कोई युवा विदेश में रहना चाहता है, तो जिस देश में रहना चाहता है वहां की अगर भाषा भी सीखना शुरू करे थोड़ा थोड़ा, तो उनको काफी लाभ मिलेगा और वहां पर संबंध, रिलेशनशिप बिल्डिंग वो अच्छा कर पाएंगे और जीवन में सफलता पाने के लिए रिलेशनशिप का होना भी जरूरी होता है। तो देखिए बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर ऑनलाइन बात करें तो कोर्सेरा, यूडेमी, खान एकेडमी, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत तरह की आप फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में, रुपए में आप कोर्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से यूथ अपना टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं।
1: जी सर, और हम जब स्किल्स की बात कर ही रहे हैं तो हमारे युवा ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से स्किल्स हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहेंगी, क्योंकि कईयों का सवाल होता है कि जैसे जो चीज ज्यादा यूज आगे होने वाली है, जैसे AI हो गया या और भी कई सारी चीजें हैं जो आगे आ रही हैं, तो कौन सी वो स्किल्स हैं जो हम करें जिसका हमें आगे फ्यूचर में लाभ रहेगा?
0: देखिए जो न्यू एज करियर हैं वो सारा सारा काम डिजिटल हो रहा है अभी, और पेपरलेस काम हो रहा है, ई पेपर की तरफ चीजें शिफ्ट हो रही हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी का नाम लूंगा, एक बहुत ही बड़ा बूमिंग करियर है जो कि अब रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता ही जाएगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी। आप देखिए कितना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाऊं, तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखिए, तो वो ये जो फील्ड है ये बूमिंग फील्ड है और बहुत पैसा है इसमें, और भारत जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। KPMG की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं और वो यही बात दर्शाती है कि भारत आने वाले समय में 2040, 2050 इट वुड बी लाइक वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव एंड वर्क इन फॉर। तो टेक्नोलॉजी एक बड़ा एरिया है। दूसरा हेल्थ केयर, हाँ, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी, हाँ देखिए मेडिकल में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो गया, हेल्थ केयर में भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो चाहे जैसे नर्सेस हो या फिर मेडिकल टेक्नीशियंस हो या फिर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो या फिजिशियंस हो, उनके असिस्टेंट्स हो, तो और आप देखिए बीमारियां भी कितनी बढ़ती जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा एक एरिया होगा। फार्मेसी, जैसे बैचलर्स इन फार्मा कहते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। हम लोगों ने कोविड देखा था, तो कोविड में देखिए सारे प्रोफेशन एक तरह से ठप हो गए थे, लेकिन हेल्थ केयर वो सबसे आगे था। और अगर देखा जाए तो हम अगर हम इतिहास देखें 100 साल का, तो जैसे जैसे एक एक दशक बीतता गया है बीमारियां और बढ़ती गई हैं, बीमारियां कम नहीं हुई हैं और नई नई बीमारियां आ गई हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हेल्थ केयर इज अ बूमिंग सेक्टर। तीसरा ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो क्लाइमेट चेंज हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, एनवायरमेंटल साइंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सब बहुत बड़े करियर्स हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति से संबंधित रखते हैं और मनुष्य का जीवन आसान बनाते हैं। तो अगर हम सोलर पे काम करते हैं या विंड एनर्जी पे काम करते हैं या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर अर्बन प्लानिंग, टाउनशिप प्लानिंग, सस्टेनेबल जो की है, तो ये करियर्स भी युवाओं के लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है। आज देखिए घर बैठे हर व्यक्ति सामान चाहते हैं, तो उसके लिए बैंकिंग का भी काम होता है, तो फाइनेंस और फिन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं फाइनेंस टेक्नोलॉजी, देखिए हर शब्द में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस का तो बहुत बड़ा फील्ड है ही, लेकिन चाहे वो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो फाइनेंस भी बहुत अच्छा इवॉल्विंग, रैपिडली डेवलपिंग करियर है युवाओं के लिए। और पैसा अब देखा जाए तो वो हार्ड करेंसी यूज नहीं होती, कैश यूज नहीं होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ई कॉमर्स, पेमेंट ट्रांजैक्शन सब डिजिटल तरीके से हो रहे हैं, तो इसमें लोग अच्छा करियर बना सकते हैं। और एग्जांपल हम देखें तो पेटीएम का हमने एग्जांपल देखा है और जीपे का एग्जांपल हम देख रहे हैं। और आप यूथ हैं, आप खुद हमको बताइए वेदांत, ऐसे कौन से माध्यम है जिससे यूथ अभी पेमेंट करते हैं, आप बताइए मुझे दो ऐसे नाम।
1: सर जिससे हम लोग अभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे।
0: हाँ देखिए आपने फोन पे एक तीसरा नाम हमको बताया, तो युवा काफी स्मार्ट है और उनको मालूम है कि क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो रिमोट लर्निंग जिसको यानी टीचिंग में जाना जाता है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग बहुत हो गया है, तो जो टीचर्स हैं प्रोफेसर हैं अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो अपने आप को वो ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोजी से वो अपने आप को इक्विप करे ताकि वह शिक्षा ऑफलाइन अगर नहीं है तो ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकता है। और आजकल तो लोग अपने कोर्सेज बना देते हैं ऑनलाइन और फिर उसको बेचते हैं, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ज्ञान है जो कि लोगों को उससे फायदा हो सकता है, तो उसको एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर भी आप उसको बेच सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की मैंने बात करी, ये बहुत बहुत ही बूमिंग करियर है, सोफेस्टिकेटेड करियर है, क्योंकि बहुत तरह तरीके से ठग बैठे हुए हैं और वो भी पढ़े लिखे ठग, तो पढ़े लिखे ठगों को पढ़े लिखे लोग ही अच्छे से उनको निपटारा कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी लोग प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में उनका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है कि वहां पे, और गवर्नमेंट तो काम करती ही है, तो हर शहर में, हर स्टेट में भारत में वहां पर साइबर सिक्योरिटी का पूरा विभाग होता है, बहुत बड़ा विभाग है, और दिन प्रतिदिन इसके जो तरीके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एथिकल हैकिंग हो गया या साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी जब कोई बिजनेस कोई करता है तो उसके बारे में भी सोचता है और कंसल्टेंसी लेते हैं। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी एक बढ़ता हुआ फील्ड है, तो अगर कोई रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं, तो बहुत कुछ ये सब न्यू एज करियर्स का फायदा ले सकते हैं।
1: जी सर, और एक सवाल फिर मेरा यहाँ पे एक और आता है कि इंटर्नशिप्स को लेकर, क्योंकि अभी मैं भी अपने थर्ड ईयर में हूँ जहाँ पे हमें कहा जा रहा है कॉलेज की तरफ से कि हमें इंटर्नशिप करनी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि गाइडलाइंस हमें नहीं दी जाती हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ हम कॉलेज में सीख रहे हैं और जो चीज, क्योंकि मैंने भी देखा कि जो चीज हम कॉलेज में सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट हमें नहीं सिखाया जा रहा है, बट हम जब किसी इंडस्ट्री में गए तो वहां पे कुछ नई चीजें हमने देखी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तो कुछ और ही डिमांड है जो हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इंटर्नशिप के लिए हमें कोई फैकल्टी हमें बता भी नहीं रहा है सपोज कि हमें कहाँ जाना है, कौन इंटर्नशिप के लिए कहाँ हम अप्लाई करें, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि कंपनीज डायरेक्ट तो एंटरटेन करती नहीं है स्टूडेंट्स को, तो कैसे हम अप्लाई करें, कौन से ऐसे साइट्स या पोर्टल हैं या क्या तरीका है किसी कंपनी को अप्रोच करने का इंटर्नशिप के लिए।
0: देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स को ना ये ट्रांजिशन युग है, ये जो समय वर्तमान का समय चल रहा है ये बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, काम करने के ढंग बदलते जा रहे हैं, तो अपने आप को अडेप्ट करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट को लेकर ना अपने आप को अडेप्ट करना होगा एंड दे विल हैव टू बिकम प्रोएक्टिव, व्हिच मीन कि वो फर्स्ट ईयर से ही वो खुद अपने लेवल पे पता करें और अब कि उनका जो इंटरेस्ट है वो जो बनना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्चुअरियल साइंटिस्ट बनना चाहता है और उसने एक्चुअरीज की वो स्टडी कर रहा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है एक्चुअरीज में, एक्चुअरीज का काम मतलब होता है इंश्योरेंस प्लानिंग से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस, वेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, तो वो जो स्टूडेंट है वो फिर फर्स्ट ईयर से सोचना शुरू कर देता है कि अगर मुझे एक एक्चुअरियल साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंपनीज है जहां मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो उसकी वो लिस्ट बनाता है, तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट बनाएगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट बनाएगा, और वो स्टेट लेवल की लिस्ट बनाएगा, और वो जोन जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे करके लिस्ट बनाएगा और एक नेशनल लिस्ट बनाएगा, कीपिंग इन माइंड कि फैमिली या उसकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस उसको ये इजाजत देते हैं कि वो उस शहर में, उस स्थान में जाकर वो इंटर्नशिप कर सके। तो इसी प्रकार से और इन सब चीजों में समय लगता है। फिर दूसरा जो कॉलेज का प्लेसमेंट होता है, तो आपके जो प्लेसमेंट हेड होते हैं उनसे फिर आप एक विवेकशील और एक समझदारी से आप बात कर पाएंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कॉलेज आपको क्या दे रहा है। फिर आप उनको भी एक दिशा दिखा सकते हैं कि मैम सर हम चाह रहे थे कि आप नॉर्थ इंडिया में हमको जॉब्स दें, हमने एक लिस्ट खुद बनाई है जो गवर्नमेंट की है और प्राइवेट की है, अगर आप इस तरफ कोशिश करें तो हमको फायदा मिल सकता है। तीसरा जो लिस्ट आप प्रिपेयर करते हैं उन कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट में आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं अपनी खुद मेहनत करके कि यू आर इंटरेस्टेड, आप इस कॉलेज में हैं और आप 2 महीने का इंटर्नशिप करना चाहते हैं। आप वो इंटर्नशिप लेटर अपने कॉलेज से इशू करवा सकते हैं और वो ईमेल में आप भेज भी सकते हैं साथ में। अगर वो लेटर मिल जाता है समय से, अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कम से कम आप ईमेल भेजिए और उसमें लिख सकते हैं कि कॉलेज से जो हमको लेटर मिलेगा वो हम बाद में आपको भेज देंगे, अभी हम लोग को इशू नहीं हुआ है, ऐसे करके। इसके अलावा अगर आपके रिश्तेदार हैं या आपके घर परिवार में कोई ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो इंश्योरेंस एजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं यही एग्जाम्पल लेकर आगे चलता हूँ, और तो आपको अगर मौका मिलता है उनको सहयोग करने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए, तो वो भी आपके लिए इंटर्नशिप का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो या फिर एक लार्ज स्केल कंपनी में हो, अगर वो कोई स्टार्टअप है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि छोटे में ना बहुत तरह के काम करना होता है, जॉब रोटेशन बहुत होता है, तो सीखने का मौका बहुत मिलता है। तो स्टूडेंट्स को तैयार होना चाहिए अलग अलग काम सीखने के लिए, ना कि कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है कि ये तो हमने इंटर्नशिप में हमको नहीं बताया गया था हमको सिखाएंगे या हमको काम देंगे, अरे इंटर्नशिप पे हमको ले लिया है लेकिन बहुत काम हमसे कराते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
1: जी सर जी।
0: हाँ, तो स्टूडेंट्स को भी तैयार होना होता है कि अगर उनको जीवन में कुछ करना है, सफलता पानी, बड़ी सफलता पानी है, तो एक लक्ष्य को लेकर उनको चलना होगा, उसके प्रति मेहनत करनी होगी। इसके अलावा कई प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि नॉमिनल फीस लेती हैं और वो आपको समय समय पर बताती हैं कि आप कहाँ जॉब कर सकते हैं या फिर आपको इंटर्नशिप कहाँ मिल सकती है। और कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज या इंटर्नशिप एजेंसीज होती हैं जो कि कॉलेज के साथ टाई अप कर लेती हैं और सारे ही स्टूडेंट को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने के लिए काम करती हैं। तो ये सब चीजें पता करके हम अपने कॉलेज के जो चेयरमैन हैं या प्लेसमेंट के जो हेड हैं उनके साथ हम ये शेयर कर सकते। जैसे लखनऊ में यहाँ पर एक इंटर्नशिप कंपनी है जो कि एमबीए स्टूडेंट्स को वो इंटर्नशिप कराती है, तो उनका कॉलेज के साथ टाई अप है और कॉलेज स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देती है कि अगर आप कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आप खुद अपनी इंटर्नशिप कहीं पर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और जो इंटर्नशिप डिपार्टमेंट बना है तो वो कई ऑप्शन स्टूडेंट्स देते हैं, तो इस तरीके से भी इंटर्नशिप का काम होता है।
1: जी सर, सर आपने ये भी बात एक बताई कि हम एचआर डिपार्टमेंट में अपना रिज्यूम भी भेज सकते हैं, रिज्यूमे भेजने से फिर हम ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सर यहाँ एक क्वेश्चन ये भी होता है हमारे युवाओं का कि हम रिज्यूमे में ऐसे कौन सी पॉइंट्स को डालें या बनाने का क्या सही तरीका है, प्रॉपर वो एडीएस फ्रेंडली हो, कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हम उसमें लिखें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और वो एक अच्छा पोर्टफोलियो का काम करे, उसकी थोड़ी टिप्स लेना चाहेंगे आपसे।
0: वेदांत, इसमें युवाओं को ध्यान देना होगा पहले जिस कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया है वो कंपनी क्या करती है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है वो इंटर्नशिप सीवी भेज देंगे और लिखेंगे हमको आपके यहाँ इंटर्नशिप करना है। अरे इंटर्नशिप तो करना है लेकिन आप किस एरिया में इंटर्नशिप करना चाहते हो वो तो लिखो। फिर अगर मान लीजिए एचआर ने फोन किया और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी के बारे में आपको कैसे मालूम चला या हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैम सॉरी वो तो मुझे मालूम नहीं अभी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
1: जी
0: हाँ, तो स्टूडेंट्स को जो वो बनना चाहते हैं उस हिसाब से वो कंपनीज की जैसे सिलेक्शन लिस्ट बना ली, तो वो हर कंपनी के बारे में रिसर्च करें कि वहां पे क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो कंपनी बनाती है, और अगर वो खुद एक एक एनालिसिस कर पाए कि अपॉर्चुनिटी गैप क्या है और कंपनी के एचआर को बताया कि मैम हमने आपकी वेबसाइट और आपके प्रोडक्ट्स है उसके बारे में हमने कुछ एनालिसिस किया और हमको लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी गैप है। इस तरह की बातें अगर एचआर सुनते हैं या फिर जो भी इंटर्नशिप रिक्रूटर समझता है वो काफी इंप्रेस होगा, या फिर हम उनको खुद बोलें कि आई एम ओपन टू, अगर आपको समझ में नहीं आता, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हमें किस चीज में इंटर्नशिप करनी है, बस चूंकि वो हमको 2 महीने का बोला गया है हमको मार्क्स मिलेंगे तो हमको इंटर्नशिप करनी है, तो फिर वो सच बोले फिर एचआर वो कंपनीज में कि आई एम ओपन टू डू इंटर्नशिप इन एनी फील्ड और आई एम लाइक अ फ्रेशर, तो आप जो जैसा गाइड करेंगे हम उस रूप से करेंगे। तो इंटर्नशिप कराने के लिए अब तो जो कंपनीज है वो चार्ज करती हैं, जैसे 3,000 रुपीज, 5,000 रुपीज
1: जी
0: इफ
1: सर,
0: द स्टूडेंट इज नॉट केपेबल एट ऑल पर मंथ। जैसे मैं बात करूं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी सेटिंग है, तो हॉस्पिटल में कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप करने, तो उनको फिर 3,000 रुपीज पर मंथ या 5,000 रुपीज पर मंथ फीस देनी होती है वो काम सीखने के लिए। आप समझ रहे हो, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना टाइम निकाल कर और अपने रिसोर्सेस निकाल रहा है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी है कि वो हर स्टूडेंट को वो ट्रेन करें, क्यों ट्रेन करें, हाँ, और स्टूडेंट क्या वैल्यू ऐड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जानता है कि इससे स्टूडेंट छोड़ के चला जाएगा, 2 महीना आया है उसको तो अपनी अपनी बस रिपोर्ट बनानी है, एंजॉय करेगा चला जाएगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो द स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू शो द ऑर्गेनाइजेशन एज एज अ वैल्यूएबल एसेट, और ये दिखाना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहेगा और अगर मौका मिलेगा या सब ठीक रहेगा तो मे बी ही कुड ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो।
1: जी सर,
0: आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो
1: यस सर,
0: इट वर्क्स बोथ वेज, क्योंकि इंडस्ट्री इज ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड गुड ह्यूमन रिसोर्स, और लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी समझदार होना होगा क्योंकि आज के समय में एम्प्लॉयमेंट की क्या कहते हैं जो लोग
1: बहुत
0: सीधी,
1: कमी चल रही थी।
0: हाँ, तो बहुत लोग आप जॉब तो बहुत लोग लेना चाहते हैं लेकिन जॉब
1: सीट
0: कम
1: नहीं
0: लोगों को
1: है जी
0: मिलती है, फिर हाँ
1: सर,
0: वो इसी कारण से। तो सीवी जो हम लिखेंगे, सीवी में हम फिर हमारा हर सीवी अलग होगा, हम एक सीवी बनाकर 10, 20, 30 कंपनी में नहीं भेज सकते हम, ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं।
1: जी सर,
0: हाँ, तो हर कंपनी को स्टडी करिए, उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस प्रोफाइल या किस इंटर्नशिप टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे उस हिसाब से अपने सीवी को ट्वीक करिए और वो कस्टमाइज करिए अपने सीवी को, तब भेजिए। और फिर फॉलो अप करना जरूरी होता है, ऐसा नहीं बस ईमेल डाल के छोड़ दिया, उसके उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, कॉलिंग नंबर दिया होता है, तो उनको फिर कॉल करके मैसेज करके डाला जाता है कि मैम सर थैंक यू और ईमेल, इट विल बी वेरी कॉन्सिक्यूट ऑफ यू इफ यू कुड यू नो सेंड मी एन एक्नोलेजमेंट रिप्लाई, और इफ समथिंग कैन बी लुक्ड इनटू इट आई एम टोटली फाइन एट योर कन्वीनियंस, जो भी टाइम आप देंगे हम उस टाइम पर आकर मिलने के लिए भी तैयार हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि आई कैन कम ओनली एट दिस टाइम, आप तो कंपनी एचआर को लगता है अरे अभी तो कुछ यू नो दे विल थिंक यू नो, मैं आपको बहुत रॉ शब्द में बताया कि अभी तो पंख भी नहीं निकले और ये लोग ऐसे बात कर रहे
1: हाँ
0: हैं।
1: सर, ऐसा बोलते हैं जी।
0: हाँ, सो यू, और कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये मेंटालिटी होती है हम बहुत होशियार हैं, हम तो सब कुछ कर लेंगे, इन लोगों को तो कुछ नहीं आता, जो लोग कंपनियां चला रहे हैं उन लोगों को तो कुछ नहीं आता, हमें जितना आता है, दे हैव दिस
1: सर,
0: मेंटालिटी, सो दे नीड टू यू नो कम इन टर्म्स विद द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉट लिव इन अ बलून इन अ बबल, क्योंकि
1: यस सर,
0: जब वो बबल अचानक फूटता है ना तो फिर बहुत दुख होता है।
1: हाँ सर, वही सर, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कोई एक चीज उन्हें ज्यादा अच्छी आती है तो वो फिर वो ये समझने लगते हैं कि हमको ये चीज बहुत अच्छी आती है, अगर इनकी जगह मैं होता तो बहुत अच्छे से करके दिखाता, लेकिन जब वो रियलिटी आती है उनके सामने तब वो उसे फेस नहीं कर पाते और इसी वजह से फिर उनका जो वहाँ बिहेवियर है और बाकी सब चीजें वहाँ पे इफेक्ट होता है।
0: बिकॉज लाइफ इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, वो एक मुखी नहीं है, वो बहुमुखी है, तो स्टूडेंट्स जब काम करते हैं तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या दो तीन मतलब है बस उतना ही है, पर जब आप रियल जिंदगी में आते हैं तो आपको सारा मतलब आंख नाक कान सब कुछ एकदम अलर्ट रखकर और आपको काम करना होता है, और आपको एक स्किल नहीं मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए, to perform and to be a you know a role model of excellence.
1: जी सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये सब बहुत जरूरी था. लास्ट अब हम शो को खत्म करते हैं सर. आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द

0: ई टू बी सक्सेसफुल इन एनी करियर?
1: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और की टू बी सक्सेसफुल, जो सफलता की मैं आपको 10 चाबियां बताता हूं मैं टू बी सक्सेसफुल। पहली चाबी है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए और आपके अंदर प्रेरणा होना चाहिए और रुचि होनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति, और वो स्थायी परमानेंट होना चाहिए, टेम्पररी नहीं। अगर टेम्पररी है तो समझ लीजिए वो मनोरंजन वाला आपका काम है, अगर वो स्थायी रहता है, बना रहता है और जितना भी मेहनत करने के लिए हमको समय देना चाहिए उसमें सफल होने के लिए, तो पहली चाबी ये है। दूसरा है कि हमें निरंतर सीखने की हमारे अंदर ये वृत्ति होनी चाहिए कि हम निरंतर अपने आप को सीखें। हम हर तीसरे साल, दूसरे साल अपने बदलते हुए समय के हिसाब से जो कलाएं हमको विकसित करनी है उसको हम विकसित करें। तीसरा, बिना मेहनत के तो हम सफल नहीं हो सकते, तो परसिवियरेंस, कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट हमको होना बहुत जरूरी है। और हमारे सामने चुनौतियां भी आएंगी तो हम ये सोचे चुनौती आ गई तो चलो सारा काम रोक कर बैठ जाओ, जब चुनौती खत्म हो जाएगी तब हम फिर से शुरू करेंगे, तो वहां पर वो ब्रेक लग गया। तो हमें ये अपने आप को बनाना होगा कि समस्या आई लेकिन काम चल रहा है, समस्याओं से भी निपट रहे हैं और काम भी चल रहा है। फिर चौथा, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें सफलता में चाहिए, कि जैसे 10 साल का हमने हमारा लक्ष्य है लेकिन उसको छोटे छोटे गोल्स में, हर पहला साल का गोल, दूसरा साल का गोल, जिसको हम एक्शनेबल भी बनाए, मेजरेबल भी बनाए और उसको समय समय पर हम उसका आंकलन करते रहे, उसको असेस करते रहे। और जो गोल्स हम बनाए वो अचीवेबल होने चाहिए, वो ख्वाबी ड्रीम गोल्स नहीं होने चाहिए, दे शुड बी रियलिस्टिक गोल। पांचवा, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग। आज के समय में अगर आपके अच्छे संबंध लोगों के साथ नहीं है तो फिर ये गारंटी है कि आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपके नंबर कितने अच्छे हो, कितनी भी कलाएं आपके अंदर हो, अगर आपके अंदर संबंध लोगों के साथ अच्छे नहीं है तो फिर आपको मौके जीवन में नहीं मिल पाएंगे, या अगर जो मौके होंगे वो सब आपसे छूट जाएंगे। तो कल्टिवेटिंग गुड रिलेशनशिप्स हमारे पीयर्स, हमारे सहपाठियों के साथ, हमारे मेंटर्स के साथ, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ, ये जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि रिलेशनशिप बिल्डिंग तो घर से शुरू होती है, अपने भाई बहन, माता पिता, अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे बनाए। फिर छठा पॉइंट मैं बोलूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। जैसे कई बार चेंज को लोग रेजिस्ट करते हैं, आप पुराने तरीके से ही काम करना चाहते हैं, नई चीजों को अपनाते नहीं है, तो नई चीजों को अपना कर हमारी तरक्की हो सकती है अगर हम उसको ना बोल देंगे। हाँ, जैसे अभी कई लोग कहते हैं कि अरे नहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया कोर्स करें, अब जैसे चल रहा है चलने दो, अब टाइम निकालना पड़ेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो वो टाइम निकालिए, वो होता है शार्पनिंग योर एक्स जिसे कहते हैं। तो हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं तेज तीव्रता से बदलते हुए समय में। फिर सातवीं बात है कि प्रभावशाली वक्तव्य, मतलब वार्तालाप, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हमारा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, जितना जरूरत है, जितना मतलब का है वो आप बोलिए, और चाहे वो लिखित रिटन हो चाहे वो वर्बल हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होगा तो हमारे संबंध भी लोगों के साथ अच्छे बनते हैं और हम अपने विचारों को अच्छे से हम लोगों के साथ साझा कर पाते हैं। आठवीं बात, प्रोफेशनलिज्म और इंटेग्रिटी, कैरेक्टर होना चाहिए। तो हमारे अंदर जैसे हमने जो कहा वो हमने किया, अगर हमने नहीं कहा तो आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर इट। तो ये मतलब प्रोफेशनलिज्म हम अपने ध्यान में रखें, चाहे वो क्लाइंट्स हो, हमारे स्टेक होल्डर्स हो, हमारे कोलीग्स हो, तो उससे क्या होता है, विश्वास और क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। और नाइन्थ पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारा मतलब भावनात्मक रूप से हम बहुत समझदार हो, हमारे अंदर ये ज्ञान इस चीज का होना चाहिए कि हम जैसे कोई आया, किसी ने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, ये प्रॉब्लम है, बॉस ने मुझे बोल दिया, ये काम मैं कब से कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, और मैं कहूँ हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दुख दर्द को, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो बताना, जितना हो पाएगा मैं करूंगा। तो इस तरीके से हम जब लोगों के साथ डील करते हैं तो ये भी हमको सफलता की तरफ लेके जाता है। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। तो हम ये कई बार क्या होते हैं, लोग वन डायरेक्शन हो जाते हैं, प्रोफेशनली बहुत अच्छा करें लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत खराब है, या पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों को बैलेंस करते हुए हम चलेंगे तो एक होलिस्टिक जिसे सक्सेस बोलते हैं लाइफ में वो हमको मिल पाएगी। तो ये 10 सूत्र, 10 में चाबियां आपको सफलता की मैं आपको देना चाहूंगा।
0: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे श्रोता जो भी हमें सुन रहे थे, जो भी युवा हमें सुन रहे थे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। कई सवाल थे उनके जिनका जवाब आपने हमें दिया और ये बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं को ही समस्या आती है, क्योंकि यही एक पीक पॉइंट है जहाँ पे उन्हें अपने करियर के लिए सोचना पड़ता है, जॉब्स के लिए सोचना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सर आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहते हैं?
1: मुझे लगता है मैं इतना बहुत कुछ बोल चुका हूँ,
0: कुछ
1: इसके अलावा और क्या मैं बोलूँ।
0: जी सर, और वही है कि सर आप जैसे मार्गदर्शक जब हमें मिलते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। कई बार रियलिटी नहीं पता होती है कि हाँ ये चीजें भी एग्जिस्ट होती है। जैसे कई रिज्यूम में आपने जो चीजें बताई हमको, कंपनी में इस तरह अप्लाई किया जाता है, ये सब कई सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती है, लेकिन जैसे सर आपने बताया उस तरह हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे थे अभी युवा मंच कार्यक्रम रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नया डिस्कशन लेकर आपके साथ। सर थैंक यू, सर थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई विश एवरीवन अ वेरी सक्सेसफुल एंड अ ब्राइट करियर रहे।
0: थैंक यू
1: वेदांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण देने का।
0: थैंक यू सर। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारे मन की क्वालिटी कैसे है?
2: अभी बजे हैं शाम के 6।

iconic.

0: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम
1: उड़ान के साथ।
0: मैं हूं आपकी दोस्त मोना और आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आ गई हूं। कुछ कहानियां, कविता और सवाल भी लेकर आई हूं। आज का होमवर्क भी आप तक पहुंचाएगी हमारी रूहानी। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिएगा आगे की बातों को लेकर, उड़ान की कहानियों को लेकर। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की अमेजिंग जानकारी आपके लिए। वैसे हम सबकी दो आंखें हैं, हमारी रूहानी की तो चार हैं। अब पूछोगे कैसे भाई, कल ऑप्टिशियन जो थे ना, जी हाँ सही जवाब में ऑप्टिशियन थे। जो ऑप्टिकल शॉप या चश्मे की दुकान में जो चीज़ बेचते हैं वो चश्मा होता है, तो हमारी रूहानी का चश्मा है। और चश्मा मतलब दो आंखें ऐसे ही हैं और दो नज़र और दो आंखें लग गई। अब सोचती हूँ घोड़े को भी चश्मा लगाना पड़ता होगा कभी। रूहानी तुम क्या बोलोगी,
1: उसको क्यों लगाना होगा?
0: अच्छा, लेकिन घोड़े की आंखें चेहरे के दोनों तरफ होती हैं, तो वो देख कैसे पाते हैं?
1: घोड़े की आंखें उनके चेहरे के दोनों तरफ होने के कारण वे लगभग 360 डिग्री तक एक एरिया देख पाते हैं, यानी वे अपने आगे, बगल में और काफी हद तक पीछे की चीजें भी देख सकते हैं।
0: इस तरह घोड़े की आंखें सिर के दोनों तरफ होने से उसे दूर दूर तक नजर देखने और खतरे से जल्दी बचने का उपाय मिल ही जाता है। तो आंखें भले ही साइड की तरफ हो, लेकिन 360 डिग्री होने की वजह से वो क्या कर लेते हैं,
1: हर तरफ देख पाते हैं।
0: जी हाँ, वो हर तरफ देख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप तक पहुंचाते हैं आज का गाना, और आज का गीत है आपके लिए, आज की उड़ान में गीत मजेदार, सुन लेते हैं अब।

0: चलिए दोस्तों एक पॉपुलर गीत आप तक पहुंचाते हैं आज की उड़ान में. पहला गीत बिल्कुल इस कार्यक्रम को सुनते सुनते आज का ये पहला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए.
1: लकड़ी की आटी का

0: दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। आगे बढ़ते हैं जनाब, आज के सवाल का जवाब भी देने से पहले आज के सबसे पहले क्या लेकर आते हैं, होमवर्क। इसके बाद
1: ये है ललद्य का तीसरा वाक। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दू क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है, अपने द्वारा परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठयोग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहा, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में आयु भी बढ़ती गई। जब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु करीब थी। जब उसने अपनी जिंदगी का लेख जोखा किया तो पाया कि वह बहुत दरिद्र है और उसने अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पाई और कोई पुण्य कर्म नहीं किया और अब उसके पास कोई करने का समय नहीं है। अब तो उसे परमात्मा से मिलन हेतु भक्ति भवसागर के पार ही जाना होगा। पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही हठयोग में बिता दिया। उसने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री अपने इस अवस्था पर पूर्ण पछतावा हो रहा है और इससे अब कोई मोल नहीं, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता।
0: बिल्कुल सही कहा, जो समय एक बार चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता, इस बात का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इनमें से किस पुरस्कार को आम तौर पर हम गर्दन में पहना करते हैं या गर्दन में पहना जाता है? ए ट्रॉफी को, बी मेडल को, सी प्रमाण पत्र को। सही जवाब जरूर देना। नंबर है हमारा
1: 9414151415।
0: इनमें से किस पुरस्कार को आम तौर पर गर्दन में पहना जाता है? जरूर जवाब दीजिए हमारे 9414151415 पर। जवाब दीजिए, सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: साल पुराने खजाने से भरा बक्सा।
1: देखो देखो बुद्धू देखो, जमीन के अंदर से 300 साल पुरानी मुद्राएं पाई गई हैं।
2: पर इसे ऐसे खबरों में दिखाने की क्या जरूरत है मालिक? बाजार में 5 रुपए के गंदे नोट कोई लेना नहीं चाहता, फिर ये 300 साल पुराने मुद्रा कौन लेगा, आप ही बताइए।
0: पुरातत्व के विभाग के माने तो इस खजाने का वर्तमान मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपए है।
2: क्या कहा? इतने थोड़े से मुद्राओं का मूल्य 1.5 करोड़? पुरानी हो जाने के बाद चीजों की कीमत नहीं मिलती, पर यहाँ ज्यादा पुराना होने पर कीमत बढ़ गई।
1: अरे चुप कर रहे तू, जरा ध्यान से मुझे खबर तो सुनने दे।
0: इस वक्त है हमारे साथ अमिताभ बाबू, जिन्होंने अपनी जमीन खुदवाकर खजाना निकाला है। तो अमिताभ बाबू, कैसा लग रहा है आपको?
3: बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार ने कहा है कि इस खजाने का 20% हिस्सा मुझे मिलेगा।
0: 20% मतलब 25 लाख रुपए।
1: इस आदमी की किस्मत बहुत अच्छी है, जमीन खोद कर खजाना पाकर करोड़पति बन गया, साथ ही टीवी पर आकर सेलिब्रिटी भी बन गया। देखा, लगता है मैं इस जन्म में करोड़पति तो कभी नहीं बन पाऊंगा। टीवी में आकर सेलिब्रिटी होना तो दूर की बात है।
2: ऐसा मत करिए मालिक, आपका सपना ये बुद्धू राम सच करेगा। हाँ।
1: ऐसा है क्या? तो क्या करेगा तू?
2: आज से सारे कामकाज छोड़कर सिर्फ मिट्टी खोदूंगा।
1: क्या मतलब? अरे बुद्धू सुन जरा सुन। अरे ऐसे नहीं होता है। अब देखो इसका तमाशा। बुद्धू रे, सुबह से पेट में एक कप चाय के सिवा और कुछ भी नहीं गया है। अब दोपहर को मैं क्या खाऊंगा?
2: कहावत है ना मालिक, तकलीफ उठाकर ही कुछ पाया जा सकता है। आप भी थोड़ी उठाइए।
1: गधे कहीं के, वो ऐसे है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि खाने वाने का क्या इंतजाम है? हाँ?
2: वो तो आपका काम है ना मालिक, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है कि आपको फेमस करने के बाद ही गड्ढा खोदना बंद करूँगा।
1: मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुझसे बात करने चला आया। मैं जाकर होटल से 2 लोगों का खाना खरीद के ले आता हूँ।

0: क्या हुआ, कुछ मिला क्या रे बुद्धू?
1: नहीं मालिक, लगता है आपके बगीचे में मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है।
0: अरे रहने दे रे बुद्धू, रहने दे, मेरे बगीचे में कोई भी खजाना वजाना नहीं है।
2: अरे तुम अब मालिक और नौकर ने मिलकर खजाने के लालच में मिट्टी खोदना शुरू कर दिया है? ये सब उस खबर का असर है।
0: मेरा बगीचा, मेरी मिट्टी है, मैं खोद रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। इसमें कहने वाले तुम होते कौन हो?
2: मेरा मुंह, मेरी जीभ, मेरी आवाज, मेरा गला, मैंने कहा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।
0: सुनो कालू काका, तुम बेकार में झगड़ा करने मत आया करो। हाँ मैं बता देता हूँ कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
2: वो फल फूल का हिसाब किताब तुम ही रखो रघुराम, मैं तो चला मिट्टी खोद दे। खजाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह का पता चला है।
0: ये कालू काका की इतनी हिम्मत है? आज ही मैं अपने सारे बगीचे की खुदाई करके रख दूंगा।
3: हे, हे, हे, हे,

0: मालिक पूरा बगीचा खोदने के बाद खजाना तो क्या एक फूटी कौड़ी तक नहीं निकली।
1: हिम्मत हारने से नहीं चलेगा बुद्धू। अगर कालू काका को एक बार खजाना मिल गया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी रे।
0: मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता मालिक, मैं अभी उठता हूँ।
1: रुक जा। किसी चीज की मुझे आवाज आई। एक बार और कुदाल चला के तो देख। जरूर मिट्टी के अंदर कोई धातु की चीज होगी। आराम से उसे बाहर निकालना बुद्धू।
0: मिल गया मालिक। एक लोहे का बक्सा मिल गया मालिक।
1: सिर्फ बक्सा ही नहीं मिला है बुद्धू, ये तो बहुत ही पुराना बक्सा है। लगता है ये खजाने का बक्सा मिल गया है। ऊपर वाले लगता है अब मैं भी करोड़पति हो जाऊंगा। सब कुछ आप ही की कृपा है।
0: अगर आप कहें तो एक हाथ से बक्से का ताला तोड़ दूं?
1: बिल्कुल नहीं, मैं पूरा तत्व वालों को और न्यूज चैनल वालों को बुला के लाता हूँ। हाँ, अब जो करना है वही लोग करेंगे। आइए सर। हाँ आइए, जल्दी आइए सर। वो बक्सा मुझे अपने घर के सामने आंगन की खुदाई करके ही मिला, वो अभी भी वहीं पर ही रखा हुआ है। कालू काका, मुझे खजाना मिल गया है, अगर देखना है तो मेरे साथ चलिए।
0: क्या?
2: और ये एक बड़ी खबर, रघुराम बाबू ने बहुत ही पुराना एक बक्सा मिट्टी से खोद कर निकाला है। रघुराम बाबू को आप लोग लाइव देख पा रहे हैं। पुरातत्व विभाग के लोग उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अंदर क्या है ये जानने के लिए देखते रहिए।
3: देखिए, ये काफी साल पुराना बक्सा है, इसके अंदर क्या है ये देखने के लिए हमें ये ताला तोड़ना पड़ेगा।
1: तो फिर आप लोग देर क्यों कर रहे हैं? अरे शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से तोड़ डालिए।

0: नहीं, इसमें तो कोई भी स्वर्ण मुद्रा नहीं है। लेकिन इसमें कुछ पुराने कागज जरूर है और शायद पुराने हिसाब हो। इनकी कीमत स्वर्ण मुद्रा से भी अधिक है। हाँ रुकिए, पहले हमें जांच करने दीजिए।
1: अरे न्यूज चैनल वाली भाभी, मेरे मालिक की तरफ कैमरा करके सभी को दिखाइए, मेरे मालिक ने ही तो इसे ढूंढ के निकाला है। हाँ।
2: बताइए बताइए रघुराम बाबू, पुराने कागज पाकर कैसा लग रहा है आपको?
3: बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया। पर कागजों में क्या लिखा हुआ है, ये जान पड़े तो और भी है।

0: अच्छा लगता। हाँ
1: ये सारे तो परीक्षा के कागज हैं। इसका मतलब प्राचीन काल में भी परीक्षा की व्यवस्था थी।
0: परीक्षा के कागज?
1: ये जिसके परीक्षा के कागज हैं उसे हिंदी में मात्र 2 मिले हैं और भूगोल में मिले हैं 3।
2: क्या अंग्रेजी में कितने मिले हैं फिर, और इतिहास में कितने मिले?
1: इतिहास में बहुत ही खराब नंबर है, 100 में से सिर्फ 1.5।
2: और गणित में?
1: गणित के पेपर में
3: क्या हुआ भाई, बताइए गणित में कितना?
1: गणित में 0, 0 मतलब गोल गोल अंडे।
4: जी जी जी जी, शर्म नहीं आती है रघुराम? रघुराम बिल्कुल शर्म नहीं आती ना। हिंदी में 2, भूगोल में 3, इतिहास में 1.5 और गणित में वाह वाह वाह वाह, गणित में 0। जी जी जी जी जी, ये परीक्षा के कागज मैं फ्रेम करवा कर रखूंगा, पूरे मोहल्ले के लोग आकर तेरे नंबर देख कर जाएंगे।
5: पिताजी पिताजी पिताजी के इन सबको फ्रेम कराने से पहले मुझे इन सबको छुपा देना चाहिए।
6: हाँ।

0: हाँ ठीक है ठीक है, हमने नंबर तो सुन लिया, अब जरा देखिए तो वो सारे पेपर हैं किसके।
1: नाम ये रहा, यहाँ लिखा है रघुराम।
0: क्या कहा? रघुराम।
2: आप लोगों ने देखा रघुराम बाबू के नंबर। मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ, अगर ऐसे नंबर नहीं पाना चाहते तो अभी तुरंत टीवी बंद करके पढ़ने बैठ जाएं। इन्होंने हमारा वक्त बर्बाद किया है, चलिए यहाँ से।
0: रुकिए मालिक, मैं आपके लिए बाजार से मिठाई लेकर आता हूँ। लखपति नहीं हो पाए तो क्या हुआ, टीवी पर आकर सेलिब्रिटी तो बन गए आप। हाँ।
3: ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से आज 50 साल पहले की परीक्षा के रिजल्ट के कारण मुझे टीवी पर सबके सामने आज बेइज्जत होना पड़ा है। आज मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे बुद्धू राम। रुक जा बदमाश, रुक जा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। रुक जा। अरे रुक जा रे बुद्धू, रुक जा।
0: कोई बचाओ, लखपति मालिक के हाथों से मुझे बचाओ। अरे बाप रे, बचाओ मालिक, मैंने क्या किया, मुझे बचाओ। ये रघु अब से एक लखपति मतलब सेलिब्रिटी है। क्या कहते हैं?
4: हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। इनमें से किस पुरस्कार को आम तौर पर गर्दन में पहना जाता है? भाई हमारे कई साथी कॉल ज़रूर कर रहे होंगे लेकिन उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन फिर से उनसे आग्रह करेंगे कि प्लीज़ कॉल ज़रूर करिए हमें, 9414151415 पर करिए। और गीते आपके लिए, हाल कैसा है जनाब का।

0: हाल कैसा है जनाब का? वेल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपके लिए आज की कविता भी जरूर लेकर आते हैं। जब बात कर रहे हैं हम किसी एक खास विजेताओं की चीज की, तो ये विजेताएं खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कोई कलाकार से, कलाओं से संबंधित भी हो सकते हैं, और तो और हमारे भारत के सैनिक भी हो सकते हैं। अदम्य साहस पसीने और राष्ट्र के गौरव को समर्पित रहता है ये विशेष पुरस्कार। सवाल दोस्तों पुनः सुन लीजिए, इनमें से किस पुरस्कार को आम तौर पर गर्दन में पहना जाता है? ऑप्शन है ए
1: ट्रॉफी, ऑप्शन बी है मेडल, ऑप्शन सी है प्रमाण पत्र।
0: भाई सही जवाब झटपट दीजिए। और कविता है, पसीना बहाकर जो मैदान में उतरे हैं, देश के सम्मान की खातिर जो लड़ते हैं,
1: हार जीत से परे जो लक्ष्य पर निगाहें गड़ाए, ऐसे ही जाबाज इतिहास नया बनाते हैं।
0: पर्वतों से चट्टानों को भी जो चीर जाते हैं, स्वर्ण पदक गले में सजा कर मुस्कुराते हैं,
1: तिरंगे की शान में बजती है जब धुन, मेडल विजेताओं के रूप में देश के भाग्य सवर जाते हैं।
0: देश के असली रत्न ये कहलाते हैं, संघर्ष की भट्टी से कुंदन बनकर ये निकलते हैं।
1: इन वीरों के हौसले को हमारा सलाम, जो देश का नाम सारी दुनिया में चमकाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। इस कविता के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन गीत से पहले मिशन लाइफ लेकर आते हैं।
2: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
3: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
2: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
3: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: है आसमान जाबाज हैं हम। चलिए दोस्तों, आज का सवाल भी अब देने का वक्त आ चुका है। इनमें से किस पुरस्कार को आमतौर पर गर्दन में पहनते? भाई तुम प्रमाण पत्र पहन के घूमती होगी?
1: नहीं।
0: तो ट्रॉफी?
1: ट्रॉफी का कौन पहनता है गले में?
0: अच्छा, तो कौन सा सही जवाब है?
1: ऑप्शन बी, मेडल।
0: ओके, सही जवाब दोस्तों मेडल है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम
1: 6 बजे।
0: तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहूंगी मैं मोना और मेरे साथ रूहानी,
1: गुड बाय।
0: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपने लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में नाम सुनते हैं प्रोग्राम का नाम कार्यक्रम का नाम मेरा गांव मेरा अंचल। जिस गांव जिस अंचल में हम रहते हैं पले बड़े और यहाँ तक पहुँचे वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि गांव स्वर्ग होता है। गांव को लेकर ही हमारा देश बनता है और देश को लेकर ही पूरा विश्व बनता है। तो इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव में अंचल में आते सभी वर्गों से मिलते तो आज हमें खुशी है। इस कार्यक्रम को लेकर पहुँचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवल में पहुँचे, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय के मिलित सहयोग से विद्यार्थियों का विकास में आज इनको मंच मिलेगा, जिसका चलते बच्चे अपना हुनर को प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को हमारा सही रूप में अनुशासन रूप में हमारा सर जी उपस्थित है तो वो भी अपना परिचय देंगे और बच्चों को थोड़ा वार्म अप कराएंगे। सर जब भी हम माउंट आबू में जब थे उस समय भी उनको मिले थे बहुत अच्छे से कोऑपरेशन किया, आज भी अवल में सहयोग दे रहे तो सर जी आपको स्वागत करते, आप अपना परिचय देंगे और बच्चे कितना
1: मैं पूरी खुश हूँ। राजकीय माध्यमिक विद्यालय आवल में उपाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज का दिन वैसे तो पवित्र भाई जी रेडियो मधुबन और स्थानीय विद्यालय के बालकों का है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। पवित्र भाई और रेडियो मधुबन 107.8 का बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ कि ये एक ऐसा मंच है जो अपनी हदों से आगे निकलकर विद्यालय के छात्र छात्राओं गांव के लोगों के साथ संपर्क कर रहा है, उनसे जुड़ रहा है और उनकी प्रतिभाओं को निखारने के साथ साथ अपनी जो भावनाएं हैं उनके साथ प्रेषित कर रहा है और उनकी भावनाओं को रेडियो मधुबन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत ही समुचित प्रयास कर रहा है। तो मेरी तरफ से तो बहुत ही बहुत आभार है और मैं विद्यालय के बालक बालिकाओं और गांव के परिवेश के जो लोग हैं
0: जी सर
1: उनसे मैं भी आग्रह करूंगा कि ये ऐसा मंच है जो स्वयं चल के आपके पास आ रहा है, आपको इस मंच के पास जाने की आवश्यकता नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं चाहूँगा कि हम सब आप सब इस मंच का उपयोग करें, ये उपलब्धि हमें बार बार प्राप्त नहीं होती और ये ईश्वरीय देन है कि मंच स्वयं हमारे पास चलकर उपस्थित हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि बालक बालिका इस मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभाएं भी निखारें और उनको जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको ग्रहण करें, अपनी प्रतिभाओं को जन जन तक इस रेडियो मधुबन के माध्यम से पवित्र जी भाई के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करें। आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं रेडियो मधुबन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पवित्र जी भाई बार बार मिलते हैं, इनसे बड़ा प्रेम और सद्भाव प्राप्त होता है तो इन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।
0: और सर आपका नाम कितना सुंदर, पुनीत सर, पुनीत काम में हमेशा तत्पर रहते हैं।
1: मेरा नाम और इनका नाम एक ही है, इनका नाम पवित्र और मेरा नाम पुनीत है ना। पवित्र जी भाई का नाम का अर्थ पवित्र है और मेरा नाम पुनीत है तो उसका मतलब भी पवित्र ही होता है।
0: पवित्र तो
1: और रामायण में ये शब्द बार बार दोहराया गया है, पुनीत शब्द बार बार दोहराया गया है तो इसी से प्रभावित होकर मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था।
0: क्या बात,
1: क्योंकि उनको उनको रामायण का अध्ययन करने का बहुत शौक था और बहुत अध्ययन करते थे
0: जी सर,
1: तो ये नाम जब बार बार उसमें उनके द्वारा दोहराया जाता था तो बचपन में छोटा था मैं तो उन्होंने मेरा नाम भी यही रख दिया था।
0: यूनिक नाम सर, जैसे मिलना बहुत कम होता नाम,
1: इसके लिए तो मैं अपने पिताजी को धन्यवाद देता हूँ
0: क्योंकि
1: उन्होंने ये नाम रखा मेरा।
0: बहुत अच्छा बात, इसलिए नाम से सार्थक कर रहे सर और आज पुनीत काम कर रहे हैं, नाम जैसे आज हर जगह में सभी बच्चों को आप समान बनाते हैं। सर के पास जो विशेषता है एक भी अंत जो भी है उनका पास देने के लिए कोशिश करते हैं, चाहे जो भी फील्ड में हो। हमें देखें आबू पर्वत में भी देखें बच्चों को ऐसे प्रोत्साहन करके पूरा एकत्रित करके उनको आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ ऐसे, तो आज भी दे रहे हैं और नाम का सार्थक भी कर रहे हैं। श्रेष्ठ पुनीत मतलब श्रेष्ठ काम, पावन काम है। तो आज इस मंच का माध्यम से सर अपना बात को रखें और ऐसे 15 साल से हम इस एरिया में एक मंच देते हैं, रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, आपका रेडियो है। ऑल इंडिया रेडियो में ये लोग बच्चे तो नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो तो बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, वो खुद आते नहीं। रही बात कमर्शियल रेडियो जो कि बड़ा बड़ा सिटी में होता है तो गांव का बच्चों को कैसे मिलेगा, इसलिए सरकार का योजना FM चैनल शुरू किया, कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी द्वारा कम्युनिटी भागीदारी आज देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको किताब भी दिखाया था, 3 साल में 3 कम्युनिटी रिपोर्ट बनाया, 2011 से 2015 तक एक रिपोर्ट बनाया, 15 से फिर 20 21 तक बनाया, अभी 21 से 2026 3 किताब हमारा इस आसपास जो कवरेज किया है, चाहे सभी वर्गों को मैंने उसमें जोड़ा है, चाहे प्रशासन गांव के संग हो, चाहे नशा मुक्ति हो, चाहे बच्चों का जो कुपोषण को लेकर भी बात करते हैं, नरगा में जाते हैं उनका जो संस्कृति है उसको भी जागृत करते हैं, और एक रेडियो पार्टनर हिसाब से पत्रकार के हिसाब से उसको कवरेज लाइव कवरेज करते हैं, जैसे नेशनल फेस्टिवल हो, चाहे अगस्त 15 हो, चाहे सरकार का जो भी जैसे ग्राम्य ओलंपिक होता है, सरकार का जो जो प्रोग्राम होता है, विकसित भारत हो, उसको हम कवरेज करते हैं डायरेक्ट जाकर, क्योंकि ये इसका माध्यम से हमारे आसपास क्या गतिविधि हो रही है तब तक उन तक पहुँचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे खासकर इंटरनेट ट्राइबल एरिया होने के नाते ट्राइबल तक पहुँचता है FM ही पहुँचता है, आजकल गाड़ी में भी पहुँचता है, तो रेडियो में ही हमारा पिताजी बा दादा परदादा रेडियो में ही सुनते थे, अभी तो इंटरनेट आ गया बा डिजिटल आ गया, लेकिन हमें इस रेडियो से ही हमें समाचार मिलता था, लेकिन रेडियो आज भी जिंदा है, जैसे साइकिल कितना भी मर्सिडीज कितना भी एरोप्लेन आए लेकिन साइकिल अभी भी जिंदा है, तो कहने मतलब रेडियो एक शुद्ध अच्छा मैसेज देता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बच्चों का आवाज़ सुनेंगे और कुछ विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। सुनील सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहले हम पुनी सर को सुन रहे थे और वो अच्छा कोऑपरेट किए। जब भी जाते हैं एक इशारा से हमें सहयोग देते हैं, इसे होने से हमें भी स्कूल में बार बार आने के लिए इच्छा होता है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ 3 छात्र आए, तो उनको भी स्वागत करेंगे, क्योंकि स्कूल में जाए व विद्यालय में जाते तो विद्यार्थियों का साथ रूबरू नहीं हो ये हो ही नहीं सकता। और खासकर जब हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में एक प्रार्थना करते हैं, माँ सरस्वती को आह्वान करते कोई भी कार्य करने का पहले प्रभु याद में रहते, तो इस कार्यक्रम को भी अच्छा से सुंदर रूप में सजाने के लिए 3 छात्र है। तो अपना अपना नाम, क्लास और कहाँ से आते हैं वो बताएंगे।
1: मेरा नाम अरुणा कुमारी है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं आवल से हूँ, राजकोट माध्यमिक विद्यालय आवल से।
0: लेकिन अरुणा, आप बड़े होकर क्या लक्ष्य रखे, कुछ बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारा पोस्ट होता है ना?
1: मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ।
0: टीचर, तो उसके लिए आपका परिवार में कोई टीचर है?
1: नहीं।
0: फिर भी स्कूल में जो आते टीचर को देखते हैं, मैम को देखते होंगे, सर को देखते हैं, तो कौन सा मैम या कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है, उनका जो अनुशासन हो, पढ़ाने का तरीका हो?
1: सभी टीचर अच्छे हैं।
0: मतलब पास होगी भाई, सभी टीचर उनके लिए अच्छे हैं, क्योंकि सभी से गुण ग्रहण करते हैं, बुरा को नहीं देखते हैं, अच्छा चीज़ को ग्रहण करते हैं, इसको कहते हैं गुणग्राही। सबको गुण को उठाना है, अब उनको नहीं देखना है कि नहीं? तो बहुत अच्छा बात बताए। और ना नेक्स्ट, हेलो, नाम बताइए आप।
2: मैं मनीषा कुमारी, कक्षा 12 की छात्रा हूँ।
0: अच्छा, कहाँ से?
2: अंजलि।
0: यहाँ से कितनी दूर है स्कूल से? अंजलि थोड़ा दूर है ना। चलो नेक्स्ट।
3: मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवल से हूँ। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ।
0: सुनीता,

0: सुनिए तो, तुम कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है खेलने में? भाई
1: क्रिकेट।
0: लोग सोचते हैं क्रिकेट खेलते ज़्यादा, बहन भी कम नहीं, अव्वल में भी क्रिकेट, और खोखो तो नाम से प्रसिद्ध था, यहाँ पर खोखो बहुत अच्छा खेलते थे, है ना? खोखो खेलते हैं? खोखो तो बहुत अच्छा, तुमने राष्ट्रीय स्तर पर भी गए होंगे खोखो में, है ना? अभी भी खोखो चलता है या
1: चलता है।
0: चलता है, लेकिन आप क्रिकेट अच्छा लगता है आपको? क्रिकेट का कोई भी एक अच्छा प्लेयर का नाम बताओ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो।
1: विराट कोहली।
0: वाह, पास हो। आप क्या करना चाहेंगे, बैटिंग ना बॉलिंग ना फील्डिंग, किसमें आपका ज़्यादा रुचि है सुनीता?
1: सर बैटिंग।
0: बैटिंग में कितने मार सकते हैं? चौका छक्का? चौका छक्का लगाएंगे जब तो मौका मिलेगा, तो खेल खेलना चाहिए। कोई भी आजकल खेल में भी अच्छा रुचि रखेंगे तो ओलंपिक तक भी जा सकते हैं, नेशनल लेवल पर जाते, भारत का झंडा लहरा सकते हैं, है ना? अपना खांदा में, शोल्डर में तिरंगा झंडा होना चाहिए, जब विजयी हो गए तब ना। वेरी गुड। चलिए एक प्रस्तुत सुनेंगे, अरुणा।

0: साजे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको जानो का संचार दे मा, इशार दे मा, इशार दे मा, अज्ञानता से हमें तार दे मा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। बच्चों को मिलता है चांस, और खासकर लड़कियों को, छात्राओं को, लड़के तो कर नहीं पाते लेकिन लड़कियां सब में होशियार हैं खेल में, और बड़े होकर सब कोई टीचर, कोई स्पोर्ट्समैन सब बनना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और इस कार्यक्रम को सुंदर में सजाए। और अरुणा आप बताओ, आवल का गाँव का आसपास कुछ नज़ारा तो बताओ, हमारा श्रोता मित्र सुन रहे, बात कभी आएंगे तो आवल के आसपास क्या क्या देखने को मिलेगा? ग्राम पंचायत कौन कौन ग्राम पंचायत बताओ देखिए। अरुणा चनार, जैसे चनार ग्राम पंचायत है ना, चनार आगे
2: चनार है,
1: मुंगथला भी एक ग्राम पंचायत है, मुंगथला, चनार, गिरिवर, गिरिवर भी आसपास है। आप रोड कभी गए आप?
2: हाँ।
1: क्यों जाते हैं आप रोड?
2: मामा
1: का घर, मासी का घर तो जल्दी जाना होता है, क्योंकि मामा का घर तो मम्मी कुछ बोलेगा तो चलो मामा का घर, माँ कुछ बोलेगी डांटेगी तो चलते हैं मासी का घर, है ना? मासी और मामा मामी होते हैं।
2: हाँ।
1: मामा मामी है।
2: हाँ।
1: कितना मामा मामी? एक ही है, तब तो बहुत लाडला मामा है। क्या देते हैं मामा? कुछ भी, पढ़ाई करने से कुछ मदद मांगने से मिलता है? और ना क्या करते हैं मामा जी, छोटे ना पढ़े?
2: घर में सबसे छोटे
1: मामा।
2: हाँ।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा, अपना बात को रखें सुंदर रूप में। और परिवार में कोई भी चीज़ होता है अरुणा, कोई भी नया चीज़, जैसे आम का सीजन में आम आएगा।
2: हाँ।
1: कोई त्यौहार में अच्छा कपड़ा आएगा, होली हो चाहे दिवाली समय में नया कपड़ा, तो पहले किसको देते? भाई को देते ना, बहन को देते? सही बात बताना अरुणा, तुम्हारा घर में जो रहते हैं तो किसको देता है? देखा बता दिया सही बात, बहन को नहीं मिलता फिर भी अफसोस नहीं होते, भाई को आगे रखते आप। हाँ, भाई आगे रहे, भाई को मिले, हमको नहीं मिले चले गए, लेकिन ऐसे तो थोड़ा पात्र अंतर हो जाता है ना, आपको मन में आता है भाई हमको क्यों मिलता है, झगड़ा कभी होता है दोनों भाई, अरे तुम हमेशा क्यों लेते हैं, हमें तो कम से कम मिलना चाहिए, हमें भी तो चांस मिलना चाहिए।
2: थोड़ा बहुत होता है,
1: होता है ना, कभी कभी होता है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि बराबर मम्मी पापा को समझाना चाहिए। एक बगान का दो फूल है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा, बराबर देखना चाहिए, क्योंकि जब हम समानता, जेंडर इक्वालिटी कहते हैं तो बराबर होना चाहिए। और ना आपका भी विचार में बराबर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बराबर होना चाहिए, लेकिन बहन सोचेगी मेरा भाई आगे बढ़े, भाई सोचेगा मेरा बहन आगे बढ़े, तब जाकर समानता आएगी। बहन को जब देंगे तो बहन बोला मैं नहीं लूँगा, भाई को दे दो, भाई जब को मिलेगा भाई बोलेगा नहीं मेरे हिसाब से मैं पहले बहन को, ये जब होगा तब हमारा राम राज्य आएगा, घर में राम राज्य होगा, भाई और बहन में कभी झगड़ा नहीं होगा। ऐसे करना चाहिए कि नहीं चाहिए?
2: चाहिए।
1: आप घर में बड़े हैं ना छोटे?
2: सबसे छोटे।
1: हाँ, तो सबका प्यार तो मिलता होगा? हाँ, सबका प्यार मिलता है कि नहीं? सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं आप, सबसे स्नेह? बहन। कितना बहन?
2: एक
1: ही बहन। पढ़ी वो क्या करती है? पढ़ाई?
2: पढ़ाई तो पूरी हो गई, अभी सिलाई करती
1: है। सिलाई तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनको प्यार करते हैं, दो बहन प्रेम, दुर्गा और सरस्वती जैसे। हाँ, दुर्गा और सरस्वती दो बहन। अच्छा, वेरी गुड। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सुनते हैं अगला प्रस्तुति और खासकर हमें बहुत खुशी मिलता है जब भी गांव और अंचल में जाते हैं और खासकर जब विद्यालय में जाते हैं, विद्यार्थियों के साथ हम जब मिलते हैं तो अपना जो छुपी हुई चुप्पी को तोड़ देते हैं और अपना बात को रखते हैं, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, और बढ़ चढ़ कर एक का बाद एक भाग लेते हैं। और हमारा शिक्षक तो पहले पूरा गियर स्टार्ट कर देते हैं, इसके बाद सेकेंड गियर, थर्ड गियर पता कर पूरा चलते हैं। और जैसे हमारा थे अरुणा और सीमा अनिता, ये सब मिलकर वार्म अप करा दिए और उनका आवाज़ को सुनते हुए और एक आवाज़ ग्रुप रेडी है तो क्या प्रस्तुत करेंगे वो उनको पता, मुझे तो पता नहीं, फिर भी अभी बताएंगे पता चलेगा। अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और क्या प्रस्तुत करेंगे, उनको कैसे महसूस होता है वो भी बताएंगे। अपना नाम बताएंगे प्लीज।
3: मेरा नाम सविता है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ, मेरा चूज माध्यमिक विद्यालय आगरा में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम कविता कुमारी है और मेरा क्लास 12 में चूज माध्यमिक विद्यालय आगरा में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम कविता कुमारी है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, चूज माध्यमिक विद्यालय आगरा में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ, चूज माध्यमिक विद्यालय आगरा में।
2: चलिए सभी का नाम का साथ धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए। चलिए एक प्रार्थना ना क्या प्रस्तुत करेंगे सुना क्या आदिवासी करे। अरे वाह बहुत अच्छा, चलिए शुरू करते हैं आदिवासी।

ஆனால் வீட்டு விழாவிலே மயிலின் எவர் பேரசைக்கே நாம்

0: Aku tidak tahu tapi baik
1: बहुत बहुत धन्यवाद ताली बजा भाई मुख्य काम तो गाए क्योंकि आदिवासी गीत में जो बलापन जो सुंदरता है उनको मौका मिलना चाहिए कभी शादी में जाते हैं विदाई में जाते हैं तो कोई गणगौर त्यौहार होता है मेला होता है तब तो पूरा नाचते हैं गीत गाते तो पूरा धूम मचा डीजे में पूरा बजते रहता है और बच्चे पूरा नाचते हैं तो इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए तो लीडर कौन है तुम्हारा यहाँ
2: पूजा
1: पाठ तो करना ही पड़ता है और हमारा पूजा इस कार्यक्रम को सुंदर में सजाए बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चलेंगे और अरुणा हमारा इस कार्यक्रम को भी सजाएंगे इसका बाद सुंदर है कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल मधुबन 107.8 FM पर ये था खासकर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय आवल का आवाज़।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: वंस मोर गाते हुए आज बच्चों को और एक मंच मिल रहा है और इस मंच के माध्यम से अपना बात को रखेंगे। अगला प्रस्तुति के लिए अरुणा एंड दोस्त को बुलाएंगे और अपना आवाज़ भी सुनाएंगे, क्योंकि अरुणा तो पूरा नाम जितना काम उतना करते हैं और सबका बॉस है, सबका लीडर है। कौन अरुणा तुम्हें अच्छा दोस्त?
3: करिश्मा।
2: करिश्मा कौन सा क्लास के?
3: 12वीं।
2: ओह, तो उनके पास क्या विशेषता, क्या गुण है जो आपको अच्छा लगता है? सब मन का बात भी बताते, जो भी सहयोग जो भी बात होता तो दोस्त को बताते। मम्मी पापा को जो चीज़ नहीं बताते दोस्त को बता देते, हल्का हो जाते। हाँ, होते हैं ना दोस्त लोग, जैसे सुदामा और श्री कृष्ण, कितना दोस्ती है उसका। गरीब अमीर का बात नहीं, लेकिन गुण अच्छा और साथ अच्छा बनेंगे तो अच्छा सत्संग करेंगे तो अच्छा बन पाएंगे। चलिए देर किस बात की, अगला प्रस्तुति के लिए अरुण एंड पार्टी को स्वागत करते हैं, इस कार्यक्रम को सजाएंगे सुंदर रूप में। चलिए सुनते, जब उनका आवाज़ सुनेंगे, मम्मी पापा सुनेंगे, उनका जो अच्छा बहन जो उनको बहुत पसंद है, बड़ी बहन तो सुनेगी, अरे देखो मेरा आवाज़ कितना सुंदर से गाए रेडियो में जो आता है आकाशवाणी में, सभी लोग सुनते तो खुशी लगता है। चलिए अरुणा को स्वागत करते हैं और उनका दोस्त को भी शुरू हो जाइए

0: प्रभु याद में रहेंगे तो हमें खुशी मिलेगा, अच्छा बन पाएंगे, उनका आशीर्वाद, उनका गुण, शक्ति और ज्ञान जब मिलता है तो हमें आगे बढ़ पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कैसे लगा इस प्रोग्राम में, अचानक में रेडियो में माइक में आपको बोलने के लिए मौका मिला, क्या महसूस कर रहे हैं अरुणा?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है, जैसे आपका अच्छा दोस्त का नाम बताए, आपका अच्छा बहन का नाम बताए, तो रेडियो भी आपका अच्छा दोस्त बन गया आपसे बात के। रेडियो के आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, खासकर ये था राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय आवल का आवाज़। तो सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा आंचल।

0: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God. And friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना. Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं. We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर नो वी डोंट फियर गॉड. देन देयर इज अ सेकंड गुड रीजन व्हाई वी हैव नॉट अंडरस्टूड गॉड, बिकॉज फ्रेंड्स मोर देन 80% ऑफ द वॉर दैट इज फॉट टुडे इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नेम ऑफ गॉड. चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वार हो, अमेरिका इराक वार हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, हैव वी रियली अंडरस्टूड गॉड? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का. वी आर फाइटिंग इन द नेम ऑफ गॉड एंड वी कॉल आवरसेल्व्स इंटेलेक्चुअल्स. फ्रेंड्स लेट्स अंडरस्टैंड द नेम वेरी क्लियरली. हिंदूस मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं. अरे दिवाली में है अली ALI तो रमजान में है राम RAM. दिवाली में है अली, रमजान में है राम. दिवाली में है दिल DIL तो रमजान में है जान ZAL. अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है. वो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है. हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं. एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट वी कैन एस्टैब्लिश विद द ऑलमाइटी गॉड. एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है. और जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है. तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए.

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मामा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? बोला, यस। तो मामा को बिल देता है तो मामा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मामा, इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मामा, आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मामा, आपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मामा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देख कर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इनडेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर में आपका

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खैगंज से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: रुक। ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसे कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता, उसे दरकिनार नहीं कर सकता। स्वस्थ रहने पर ही हम हर एक अपने जीवन को और जीवन के सुखों को भोग सकते हैं। जीवन में सुखी रहने का पहला तात्पर्य ही अच्छा स्वास्थ्य है। स्वस्थ रहना स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी। अगर आप कहें कि भाई, अगर एक सुखी जीवन की पहली सीढ़ी अगर हम देखें, तो वो पहला सीढ़ी, या ये कहें कि उसका बेसमेंट जो है, उसका जो पायदान है, वो अच्छा स्वास्थ्य उससे शुरू होता है। बहुत बार लोग अधिक धनोपार्जन करने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को दरकिनार करके भी, अपने भोजन पर, निद्रा पर, अपने आराम को त्याग कर भी, हम अपने दिनचर्या में उन चीजों को साइड में रख कर पैसे कमाने पर अटेंशन देते हैं। और बाद में जो हमने अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर किया होता है, उसे वापस हासिल करने के लिए पुनः उन्हीं कमाए हुए पैसों को खर्चना पड़ता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि ये तो गोल चक्कर हो गया, कि हम बैक टू स्क्वायर वन हो गए। जो हमने कमाया था वो हमने वापस खो दिया। अब ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं कि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख कर, इस स्वास्थ्य को खोकर वापस फिर से पाने का प्रयास न करके अपने स्वास्थ्य की इस कुंजी को बना के रखें? आइए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने की दिशा में हमें और क्या करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम अपने स्वास्थ्य की कुंजी को बनाए रखें, उन चीजों को आज समझते हैं। आज इन चीजों पर प्रकाश देने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य जगत से ही एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, और साथ में भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर मोदी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं इसी से शुरुआत करना चाहूंगा कि पैसे कमाने के लिए स्वास्थ्य को इग्नोर करो, फिर जो पैसे आ गए उन्हीं पैसों को खर्च करके फिर से उस स्वास्थ्य को कमाने में उन पैसों को गवाओ। ये तो बिल्कुल ऐसे बाजोली का खेल है कि हमने दाव लगाया, हम थोड़ा जीत भी गए, और फिर बाद में अगले ही दाव में हम हार गए, और जो जीता था वो सब कुछ दाव पे लग गया। तो क्या स्वास्थ्य के बारे में इस चीज को इस तरीके से समझने की आवश्यकता नहीं है कि स्वास्थ्य और पैसे एक दूसरे के पूरक?
1: श्री भाई, आपने बड़ी सुंदर बात की है। आजकल जो आपने बोला कि पहले अपना शरीर खर्चा करके पैसे बनाओ, और फिर उसी पैसे को खर्च करके वापस अपना शरीर बनाओ। मैं बेसिक एग्जांपल्स लेता हूं आपके सामने कि पहले व्यक्ति बहुत खाता है, और फिर जब उसको लगता है कि उसका वजन बढ़ गया, तब वो जिम में जाके एक्सरसाइज करना शुरू करता है, वो कोई एक खेल खेलना शुरू करता है, वो वॉकिंग करना शुरू करता है, वो चलता है, वो तैरता है, वो कोई बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, कोई भी एक फुटबॉल, बाहर जाके खेल खेलता है, जिम जाता है, योगा करता है, पिलाटीस करता है। क्यों? क्योंकि उसका वजन बढ़ गया और उस वजन को कम करना है। तो यदि हम कम खाते तो हमारा वजन ही नहीं बढ़ता। दूसरी चीज, जब हम काम करते हैं तो हम समय नहीं देखते। ये खासकर जैसे मैं, बहुत सारे मेरे डॉक्टर मित्र हैं, पुलिस में जो काम करते हैं, अधिकारी वर्ग है, इवन बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो दुकान पता चला सुबेरे 10 बजे दुकान खुली, रात में हिसाब मिलाते मिलाते 10:30 बज गया, उसके बाद वो घर आए तो इतना थक चुके होते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा खाया, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ गए, बातचीत हुई, और वो जो सोने का टाइम था वो करीब 11:30, 11:12, और वो 12 बजे सोए तो वो सीधे 8 बजे उठे, 8 बजे उठे उन्होंने अच्छे से नाश्ता किया और फिर दुकान खोलने चले गए। ये एक रूटीन लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। इसमें स्पेशली जब आप 35 इयर्स को क्रॉस करते हैं या आप 40 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, तो आपका शरीर जो है वो ये मांग करने लगता है कि प्लीज मेरे ऊपर अत्याचार मत कीजिए। वो मांग करता है कि आप अपने भोजन को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, वो मांग करता है कि आप थोड़ा टहलिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, रनिंग करिए, कोई खेल खेलिए, वो चाहता है कि आप पसीना बहाएं, वो चाहता है कि आप अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं। और तब आदमी को अपने काम करने के समय में से इसको निकालना पड़ता है और अपने शरीर को देना पड़ता है। इधर बहुत सारे डॉक्टर्स, स्पेशली जो साइकेट्री या मेंटल इलनेस में काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं प्लीज गिव 1 आवर टू योर बॉडी एंड 15 मिनट्स to 30 मिनट्स टू योर ब्रेन. मतलब अब वो ये भी कह रहे हैं कि आप 1 घंटा खेलिए और आधी घंटा कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपके दिमाग को शांति मिले. इसमें मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है, गाना गाना है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है. मतलब कोई ऐसा काम करिए जिससे आपके दिमाग को खुशी मिले और शांति मिले. और 1 घंटा आप कुछ ऐसा करिए जिससे आपके शरीर में अच्छे से पसीना आए और आपका शरीर थके, आपका जो हार्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम करे, आपकी सांस फूलनी चाहिए कि आपका हृदय अच्छा काम कर रहा है, आपके फेफड़े फूलने चाहिए कि आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं और आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए. अगर आप ये कर पाते हैं तो अपने शरीर की गंदगी को आप निकाल पाएंगे. तो श्री भैया जो आपने कहा, मैं अपने सारे श्रोताओं को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने शरीर को पहले से समय दीजिए, क्योंकि अगर आप पहले से समय नहीं देंगे तो वो बीमार पड़ जाएगा. और आपको कोई क्रॉनिक बीमारी हो गई जिसमें आपको रेगुलर गोलियां और दवाइयां खानी पड़ी, तो जो आपने बोला कि आपको पैसे खर्चा करने पड़ेंगे अपने स्वास्थ्य को वापस लेने के लिए.
0: जैसे डॉक्टर साहब आपने अभी अभी क्रॉनिक बीमारियों के बारे में कहा, ऐसी बीमारियां जिसके लिए हमें हर दिन दवाई लेने की जरूरत है. आज एक ऐसी बीमारी जो लगभग हर घर में जिसके मरीज देखने को मिलते हैं या वो इस बीमारी की दवाई लेते हुए पाए जाते हैं, वो है डायबिटीज. और प्रायः हम इस चीज को एक बीमारी के रूप में देखते ही नहीं है. हमें ऐसा लगता है कि भाई अब तो जिंदगी भर दवाई खाते ही रहना है, तो दवाई खाइए और फिर आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी चीजें करते रहिए, बस ये एक एडिशन हो गया है. बट अब हम स्वस्थ हो ही नहीं सकते, अब डायबिटीज के साथ ही जीना है, ऐसा भी बहुत सारे लोग समझ लेते हैं और कहते भी हैं. अब प्रश्न उठता है कि पिछले दिनों जब हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे तो ये बात समझी कि हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, इससे हम बेहतर तरीके से निजात पा सकते हैं. ऐसे में प्रश्न उठता है कि डायबिटीज के मरीज अपने दिनचर्या के बारे में कुछ प्रश्न उठाते हैं. सबसे पहले तो वो ये बोलते हैं कि भाई हम पहले जैसे स्नैक्स खाते थे, इत्यादि करते थे, अब हमें कौन से स्नैक्स खाने चाहिए.
1: डायबिटीज के मरीज को सबसे पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको सफेद चीनी, उसको एकदम छोड़ देना चाहिए. खासकर चाय में चीनी और जिन चीज में चीनी बहुत ज्यादा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, आइसक्रीम हो गई, हमारी देसी मिठाइयां हो गई, चॉकलेट्स या टॉफीज हो गई, या जो भी मीठा है जिसमें सफेद चीनी डाली जाती है, इसको सबसे पहले छोड़ देना चाहिए. अब हम ये पूछें कि क्या खा सकते हैं, तो अगर मोटा मोटी मैं बोलूं तो आप सारे फल और सारी सब्जियां खा सकते हैं, मगर थोड़ा सा कंट्रोल. ये तक कहा गया है कि आप आम, केला और चीकू, जो सबसे मीठे फल होते हैं, उसको भी सेवन कर सकते हैं, मगर उसको दिन में नहीं, 3-4 दिन में एक बार. और ये नहीं कि आप बैठ गए तो आप आज पूरा 2 किलो आम खा लेंगे, नहीं नहीं सर, एक फाग आम खाइए, वो आपके मन को शांत करेगी. और अगर आपको आम बहुत पसंद है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. जो फल एक डायबिटीज के मरीज के लिए सबसे अच्छा है वो है सेब, नाशपाती, अमरूद, संतरा, मौसमी. अच्छा, संतरा और मौसमी का रस नहीं पीना है, संतरा और मौसमी को खाना है कि उससे आपको उसका खुज्जा भी मिले. ये अब कहा जाता है कि जो भी बेरीज हैं, जैसे ब्लूबेरी हुई, स्ट्रॉबेरी हुई, ये सब भी आपके लिए बहुत अच्छी हैं. और ये सब जो बेरीज हैं या जो भी सहतूत हुआ, कॉमन इंडिया मलबेरी जिसे कहते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और ये आपके लिए बहुत अच्छा है. स्नैक्स की जैसे भैया आपने बात की, स्नैक्स में आप जितने भी नट्स हैं, जैसे वॉलनट हुआ या आलमंड हुआ, आप इसको थोड़ी मात्रा में कच्चा खा सकते हैं, भिगो के खा सकते हैं या हल्का सा भूज के खा सकते हैं. आप चने को भूज के खा सकते हैं, मूंगफली को भूज के खा सकते हैं, आप पॉपकॉर्न हुआ उसको खा सकते हैं, आप अंकुरित मूंग को खा सकते हैं, आपको जो सलाद पसंद हो भैया, आजकल तो बहुत बड़े बड़े शहरों में सैलेड काउंटर्स होते हैं होटल में, आपको जो सलाद पसंद हो आप उसमें थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के आप इसे खा सकते हैं। आप अपने घर में बहुत सारी सब्जियों का काट कर उसमें थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा नींबू डाल के कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इवनिंग स्नैक है आपके लिए। और आप फरवी हुआ या जो भी हल्की चीजें हुई जैसे पॉपकॉर्न हुआ, आप इसे रेगुलरली खा सकते हैं।
0: जब हम इन चीजों को समझते हैं कि हम स्नैक्स तो खाते ही हैं, सिर्फ हमारे स्नैक्स के खाने के तरीके, किन चीजों को हम खाते हैं स्नैक्स में, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है, जिससे हमें पता चलता है कि डायबिटीज में ये चीज खाएंगे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। बहुत सारे लोग इस बात से भयभीत हो जाते हैं, अरे अब तो डायबिटीज है, अब तो हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। नहीं खाना है के बारे में जितनी जानकारी लोगों के पास है, उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हमें क्या चीज खाना है और वो कितनी मात्रा में खाना है। अब एक और चीज जो डायबिटीज के मरीज अक्सर कहते हैं वो है फ्रूट्स के बारे में। वो कहते हैं कि भाई नहीं नहीं अब तो फ्रूट्स वगैरह हमें नहीं खा सकते, भाई हमें तो डायबिटीज है, फ्रूट्स तो बहुत मीठा होता है, तो फ्रूट्स तो हमारे लिए जैसे अब फ्रूट्स का कोटा पूरा हो गया, अब हम फ्रूट्स नहीं खा सकते, ऐसा भी लोग मानते हैं। इस विषय पर आप क्या कहें
1: भैया? आप सारे फल खा सकते हैं। एक बड़ी बेसिक बात समझिए कि डायबिटीज ग्लूकोज इंटॉलरेंस है और फलों में जो शुगर होता है वो फ्रक्टोज होता है। दूसरी चीज, फलों में नेचुरल शुगर है जो उतना नुकसान नहीं करती है जितना केन शुगर करती है या गन्ने का जो चीनी है वो करती है। मैंने जैसे अभी बोला है भैया, सेब, नाशपाती, अमरूद, पपीता, संतरा, मौसमी, विदेश के आजकल फल इंडिया में बहुत मिल रहे हैं, कीवी हुआ, ड्रैगन फ्रूट हुआ, ये अनानास हुआ जिसको पाइनएप्पल कहते हैं, ये सब आपके लिए बड़ा अच्छा है। जो चीज का ध्यान रखना है कि फलों को खाना है, न कि उनका जूस बना के पीना है। अभी भैया यूरोप में एक चीज शुरू हुई है जो दही में, मतलब फल काट कर उसमें दही ऊपर से कर्ड डाल के या दही डाल के लोग खा रहे हैं, उसका एक सूदी या बहुत थिक शेक बनाकर उसको चम्मच से खा रहे हैं कि उससे उनको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वो उसको। और नेचुरल जो फल है उसकी मिठास से उनका जो मीठा खाने की जो क्रेविंग है या जो मीठा खाने का उनका जो अंदर से उनको मीठा खाने की इच्छा हो रही है, क्रेविंग है, उसको भी वो शांत करता है। इसीलिए आप जो भी फल है जैसे अमरूद, सेब, संतरा, मौसमी, ये सब आप जरूर खाइए। और इन फलों को खाने का सबसे अच्छी बात है कि इसमें बड़ा अच्छा आपको विटामिन मिलेगा, आपको बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा और आपको इसमें ट्रेस एलिमेंट भी मिलेंगे जो आपके शरीर के लिए और अच्छा है, और आपको इंसुलिन जो डायबिटीज से होने वाले साइड इफेक्ट है उनसे भी आपको बचा के रखेगा। पुराने जमाने में भैया मैं एक फल का नाम लेना ही भूल गया जो कि सबसे ज्यादा प्रचारित किया जाता है, वो है जामुन। सब लोग कहते हैं जामुन खाओ, और अब तो जामुन के लोग छोटे छोटे चिप्स भी बना के बेच रहे हैं। बारिश के मौसम में ये आता है, इसको अच्छे से धोकर इसमें थोड़ा नमक और नींबू डाल के आप खा सकते हैं। ये आपके डायबिटीज शुगर को कम करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। बहुत सारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पद्धतियों में जामुन की जो गुठली होती है या जो बिया होता है उसको पीस कर उसका पाउडर बना के भी डायबिटीज के मरीजों को दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे भी आपकी शुगर जो है वो कम होगी।
0: फलों के बारे में ये एक बड़ी भ्रांति जो लोग समझते हैं कि हम डायबिटीज के मरीज हैं तो हमें फल नहीं खाने चाहिए, ये भ्रांति आज दूर होती भी नजर आ रही है कि फल सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक ही हैं। और हम इन बातों को समझकर सही तरीके से अगर हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें तो ये चीजें सही हो सकती है। आपने कहा फलों को खाना है, फलों के रस को नहीं पीना है, इसको जूस के फॉर्म में नहीं पीना है। ये भी एक प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जूस जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं और वो बहुत जल्दी पच भी जाते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग समझते हैं और इसलिए जूसेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं फल खाने के बजाय। ऐसे में आप क्या कहते हैं, खासकर वो लोग जो थोड़े उम्र दराज हो रहे हैं, जिनको चबाने में दिक्कत है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये फल खाना ही तो नहीं आ रहा है, हम तो पी लेते हैं उसको तो चली जाएगा, ऐसा लगता है, ये ठीक है
1: भैया? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आपने खुद कहा कि वो जल्दी पच जाते हैं, तो डायबिटीज में इसीलिए फलों के जूस को मना किया जाता है कि अगर वो जल्दी पचेगा तो उसमें फाइबर कंटेंट कम हो जाएगा, और जहां फाइबर या खुज्जा उसमें कम हुआ वो बहुत जल्दी आपकी जो शुगर है शुगर को स्पाइक करेगा, मतलब आपके रक्त में चीनी को बढ़ाएगा। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप बहुत आराम से उस रस को पी सकते हैं, आप पाचन तंत्र आपका कमजोर है आप रस को पी सकते हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में पूरा रसाहार कराया जाता है जिसमें आदमी को सिर्फ रस पे रखा जाता है, अगर उसका पाचन तंत्र कमजोर होता है या उसको बुखार होता है या उसको सर्दी जुकाम होता है उसको सिर्फ और सिर्फ रस पिलाया जाता है, और मौसमी और संतरा तरबूज इनके रस में, और अब तो माल्टा भी मिलने लगा, इनके रस में बहुत मिठास है, बहुत अच्छा विटामिन है और ये शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। खीरे का रस निकाल के दिया जाता है लोगों को, लौकी का रस दिया जा रहा है जिससे पेठा बनता है भैया, उसका भी रस लोग निकाल के पी रहे हैं, और अब तो हम लोग तो पूरा एक लेक्चर अब बात कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ जूसेस पे जो हम लोग शायद आगे कभी करेंगे। अगर आप छोटे बच्चे हैं, आप बीमार हैं, आपको डायबिटीज नहीं है या उम्र में बड़े हैं, तो आप किसी भी फल का मिक्सी में चला के उसका जूस बना सकते हैं और आप उसे उसका सेवन कर सकते हैं। बहुत से लोग जिनको कमजोरी होती है उनको कभी कभार भैया आम को मिक्सी में चलाकर उसका शेक बना के दिया जाता है कि जिससे उसमें ताकत आए। तो ये अगर आप बीमार नहीं है आप नॉर्मल हैं तो आप जूस जरूर लीजिए और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जिन लोगों को जूस पीने की भी जरूरत है या स्वास्थ्य के हिसाब से उनको वो जूसेस पीने हैं तो क्या चीजें वो बनाकर पी सकते हैं और किन फलों का उन्हें पीने की जरूरत नहीं है और डायबिटीज के लिए कौन से जूसेस नहीं पिए जाने चाहिए, ये भी बात समझ में आती है। अब हम भोजन की बात

0: करते हैं, तो भोजन के बारे में भी बहुत सारे लोग डायबिटीज में ये कहते हैं कि नहीं, हमें चावल नहीं खाना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि भाई हम मीठा तो नहीं खाते हैं, मगर भोजन को एक समग्र आहार के रूप में हम हमेशा समझते आए हैं। एक बैलेंस डाइट के बारे में बात कही जाती है, कई लोग तो जैसे होटलों में इत्यादि में लोग खाते हैं, तो लोग एक भारतीय थाली को पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये साउथ इंडियन थाली है, ये नॉर्थ इंडियन थाली है। इस तरीके से थाली में बहुत सारी वैरायटी के साथ भोजन हमारे यहाँ परोसा जाता है। ऐसे में क्या डायबिटीज के मरीजों को इन थालियों से परहेज करने की जरूरत है, या इस थाली में से चावल हटा दें या ये हटा दें, या ऐसा कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है?
1: भैया उस थाली में सबसे पहले जो मीठा आपको मिला उसको हटाना चाहिए सबसे पहले। दूसरे नंबर पे या तो चावल को हटाइए या रोटी को हटाइए। कभी कभार ये भी देखा गया है कि आप उसमें तीन चार तरह की रोटियां मिलती हैं, जैसे आटे की रोटी, एक नान का टुकड़ा, एक मिस्सी रोटी। तो एक हम्बल मेरा एक सुझाव है कि किसी एक अन्न की रोटी खाइए या एक अन्न ही खाइए। आप कोई भी अगर थाली खाते हैं तो मैं सबको, स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट्स को एक राय देता हूँ, सिंगल प्रोटीन एंड सिंगल ग्रेन। मतलब आपका जो अनाज है वो एक होना चाहिए, और आपकी प्लेट में जो आप प्रोटीन खा रहे हैं, जैसे उसमें अगर दो तरह की दाल है, मूंग है आपका, उसमें पनीर की सब्जी है, तो कृपा करके सिर्फ एक प्रोटीन का सोर्स लीजिए, एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लीजिए, या मतलब एक अनाज लीजिए, एक प्रोटीन का चीज लीजिए, और जो भी उसमें सब्जियां हैं वो आप खा सकते हैं, सलाद आप खा सकते हैं। हाँ, ये जो जितनी मीठी चटनियां हैं प्लीज उसको, इमली की हो या किसी भी चीज की, अगर उस थाली में आपको मिल रही है आपको ध्यान देना चाहिए कि उस इमली में जो मिठास डाली जा रही है वो भी चीनी और गुड़ से डाली जा रही है, तो कृपा करके उसको छोड़ दें। अच्छा, एक भ्रांति और है लोगों की कि हम लोग गुड़ खा रहे हैं, हम लोग चीनी नहीं खा रहे हैं। दोनों का सोर्स एक है, दोनों गन्ने के रस से बन रहा है, तो दोनों एक ही, टेक्निकली एक ही चीज है। सो प्लीज सिंगल ग्रेन, सिंगल प्रोटीन आप अगर उसमें करें और उस थाली में से अगर मीठा निकाल दें तो वो थाली आपके लिए परफेक्ट है।
0: बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है कि हम अपनी थाली में क्या परिवर्तन लाएं और किन चीजों को हम करें। ये बात सही है कि डायबिटीज के बारे में आज बढ़ती संख्या में लोग बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों, मगर सही चिकित्सकीय सलाह अगर हमें मिलती है और हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स के कहे अनुसार करते हैं, तो फिर हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है, खासकर डायबिटीज के अगर आप मरीज हैं तो उन आपको किस प्रकार का स्नैक्स खाना है, किस प्रकार के फ्रूट्स कितनी मात्रा में और कैसे खाना है, और भोजन की थाली में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए, उसके विषय पर हमें डिटेल में जानकारी दी है। आशा करता हूं कि आप सभी अपने स्वजनों, मित्रों और परिवार के जनों के लिए इन जानकारियों का इस्तेमाल करेंगे और स्वास्थ्य की ये कुंजी सबकी बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएं करेंगे। आज हम सबके प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में हमने डायबिटीज के मरीज होते हुए भी स्वस्थ रहने की कुंजी क्या है उस चीज को समझा है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में आज जो कुछ भी सुना है उस पर काम करना शुरू करें। सबसे पहले, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो अपनी थाली से मीठे को बाहर करें। चीनी हो या गुड़ हो, दोनों को ना कहें। एक ही अनाज खाना शुरू करें। एक समय पर एक अनाज, एक प्रोटीन, चावल और रोटी दोनों एक साथ एक ही मील में यानी एक ही वक्त के भोजन में मिलाकर ना खाएं। साथ ही फ्रूट्स हमें कौन से खाने हैं, स्नैक्स में क्या खाना है, ये सब कुछ आज समझ में आया है। आज सेहत स्वास्थ्य में यही रुकते हैं। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों पर चर्चा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: हेलो बच्चों, रिमझिम करके परी और मनी दीदी आ गए सपनों की सैर कार्यक्रम को लेकर के।
2: हाँ बच्चों, और आप सभी को ये बारिश के फुहारों के साथ सपनों की सैर कार्यक्रम में स्वागत है, स्वागत है।
1: तो बच्चों, बारिश की सीजन चल रही, अपना ध्यान तो रख रहे है ना, ज्यादा बारिश में नहाने मत जाना।
2: सही कहा, और कई बार तो ऐसे भीग भी जाते हैं, मगर जानबूझकर बारिश में खेलना नहीं बच्चों।
1: हाँ, वरना सर्दी खांसी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा।
2: हाँ तो बच्चों, आपको अपना ध्यान तो रखना ही है ना।
1: तो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं कि ये बारिश की सीजन का महत्व क्या है।
2: हाँ, मानसून का महत्व क्या है, क्या क्या फायदे होते हैं और किसको किसको फायदे मिलते हैं।
1: बच्चों, सबसे पहले तो किसानों को फायदा होता है, क्योंकि फसलों की अच्छी पैदावार हो जाती है।
2: हाँ, तभी तो बारिश जब होती है तो किसान तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं।
1: और बच्चों, नदियाँ, तालाबों और जलाशयों में पानी भर जाता है।
2: हाँ परी, सही कहा, गर्मी के समय तो नदियाँ, तालाब और जलाशय बिल्कुल सूखे सूखे से हो जाते हैं, पानी एकदम कम हो जाता है, तो जब बारिश होती है तो फिर से भर जाते हैं।
1: और पता है बच्चों, भूजल स्तर भी वृद्धि को पाता है।
2: हाँ, तभी तो कुओं में भी पानी आ जाता है, क्योंकि नीचे भी पानी जमा होने लगता है बारिश का।
1: और बच्चों, आपने तो देखा होगा, पेड़ पौधे और वन जीवों के लिए भी ये कितना लाभदायक है।
2: हाँ, पेड़ पौधे तो हरे भरे भी हो जाते हैं ना, तो कितना सुंदर लगता है।
1: और साथ में बच्चों, गर्मी से तो राहत मिलती ही है।
2: सही कहा परी, अभी तो गर्मी भी इतनी टू मच थी और बारिश से तो बहुत ही ठंडक हो गई है।
1: तो बच्चों, ये थी आज की हमारी बातें, लेकिन अभी आगे और भी बातें बाकी है।
2: हाँ, परी की कहानियाँ भी सुननी है ना, तो चलो भाई, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद।
1: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

जाओ बच्चों, रेडियो के पास गाना पूरा हो गया है और कहानी शुरू कर रही है परी। तो चलो आज सुनेंगे एक चमगादड़ की कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक बार पशुओं और पक्षियों में झगड़ा हो गया। चमगादड़ों ने तो इस लड़ाई में किसी का पक्ष लिया नहीं। उन्होंने सोचा, हम पक्षियों की भांति उड़ते हैं, इसलिए पक्षियों में शामिल हो सकते हैं, मगर पक्षियों की तरह हमारे पंख नहीं होते, हम अंडे भी तो नहीं देते, इसलिए हम पशु दल में भी शामिल हो सकते हैं। हम पक्षी भी हैं और पशु भी हैं, इसलिए दोनों में से जो पक्ष जीतेगा, अभी तो हम इस बात का इंतजार करें कि इनमें से कौन जीतता है। तो पशुओं और पक्षियों में युद्ध शुरू हुआ। एक बार तो ऐसा लगा बच्चों जैसे पशु जीत जाएंगे। चमगादड़ों ने सोचा, अब शामिल होने का सही वक्त आ गया है। लेकिन बच्चों सोचो क्या हुआ, वे पशुओं के दल में शामिल हो गए और कुछ समय के बाद पक्षी दल जीतने लगा। चमगादड़ों को इससे बड़ा दुख हुआ। अब वे पशुओं को छोड़कर पक्षी दल में शामिल हो गए। बच्चों सोचो, अंत में युद्ध जब खत्म हुआ, पशुओं और पक्षियों ने आपस में संधि कर ली। वे एक दूसरे के दोस्त बन गए। दोनों ने चमगादड़ों का बहिष्कार कर दिया। स्वार्थी चमगादड़ अकेले पड़ गए। बच्चों फिर क्या हुआ, तब तो चमगादड़ वहां से दूर चले गए और अंधेरे कोटरों में छुप गए। और तब से बच्चों वे अंधेरे कोटरों में ही रहते हैं। केवल शाम के धुंधले में ही वे बाहर निकलते हैं। इस समय पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं, जंगली जानवर रात में अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं। तो देखा बच्चों, स्वार्थी मित्र किसी को अच्छा नहीं लगता, ना पशुओं को, ना पक्षियों को, ना हम लोगों को, है ना बच्चों। इसलिए कभी स्वार्थी नहीं बनना, सबके साथ मिलजुल के रहना, सबको मदद करना। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: छम छम लेकर छाता निकले हम।
1: बारिश आई छम छम छम लेकर छाता निकले हम।
0: पैर फुसला गिर गए हम नीचे छाता।

Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

तो चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली राम की किताब, और आज हम शुरू करने वाले हैं नई कहानी। और पता है इसका टाइटल क्या है? 99 का चक्कर, है ना? ये चक्कर सुनकर ही चक्कर में तो नहीं पड़ गए? तो चलो मैं बिना देर के ये नई कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे लोगों की फरियाद सुन रहे थे। उनके पास एक दिन एक विचित्र समस्या लेकर एक फरियादी आया। फरियादी ने अपनी समस्या महाराज के सामने इस प्रकार रखी, महाराज मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास एक मकान है जिसमें दो कमरे हैं। एक कमरे में मैं रहता हूँ तथा दूसरे कमरे में एक किराएदार। मेरा किराएदार एक मोची है जो दिन भर बाजार में लोगों के जूतों की मरम्मत करता है और रात को घर आकर घंटों पूजा करता है। महाराज चकराए, अरे ये तो अच्छी बात है, तब तो मोची भला आदमी है, ऐसे आदमी से तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ महाराज, वह भला आदमी है, मुझे समय पर किराया अदा करता है, किसी बात की कभी झिकझिक खिचखिच उसने मेरे साथ नहीं की है। रोज सुबह जगकर स्नान ध्यान करने के बाद ही वो अपने काम के लिए निकलता है, फरियादी ने कहा। तो फिर परेशानी क्या है? महाराज ने पूछा। महाराज, शाम को जब मोची पूजा करता है तब वह हाथ में ढोलक लेकर उसे पीटते हुए जोर जोर से भजन गाता है। उसके भजन गाने से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, शिकायत है उसकी ढोल से जिसकी धमक से मैं घंटों परेशान रहता हूँ और सो नहीं पाता, फरियादी ने कहा। और महाराज को फरियादी की वास्तविक परेशानी का अनुमान लग गया। और फिर इसके लिए महाराज ने किसे याद किया होगा? वो तो समझ ही गए होंगे, तेनाली राम को। तो अब तेनाली राम कैसे ये समस्या हल करेगा वो तो हम जानेंगे अगली कड़ी में। तो चलो बच्चों लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से, अभी तो कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हम आ पहुंचे हैं और आज हमने बहुत सारे कारनामे भी किए, मानसून की बातें भी की, कहानी भी सुनी, किताब भी पढ़ी और अब पिछली कड़ी में परी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी तो जानना है ना। पिछली कड़ी में परी ने पूछा था, छोटा सा रंग बिरंगा घर बरसात में देता सहारा, सिर पर रखो भीग न जाओ, बताओ उसका नाम प्यारा।
3: हाँ बच्चों, और मनी दीदी ने कितनी सुंदर हिंट दी थी जिससे ये पहेली और आसान हो गई थी, और आंसर है छाता।
2: हाँ छाता तो है ना, रंग बिरंगा घर और बारिश में देता है सहारा और सिर पर रखते हैं ताकि भीग न जाए हम।
3: बिल्कुल बच्चों, तो चलो नोट कर लो आज की पहेली। कागज की नाव बनाते हैं, पानी में उसे तैराते हैं, बचपन की सबसे प्यारी याद कौन सा मौसम देता साथ।
2: हाँ बच्चों, कौन सा मौसम जिसमें हम कागज की नाव बना करके उसे तैराते हैं पानी में। तो चलो चलो जल्दी से फोन उठाओ और 9914151415 पर हमें वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो जल्दी जल्दी।
3: हाँ बच्चों, और पता है ना करना क्या है, ऐसे ही मत सो जाना, पहले भगवान को गुड नाइट जरूर करना और सारे दिन की हालचाल की बातें भी उनको बताना।
2: हाँ, और फिर उनकी गोदी में सो जाना।
3: जैसे हम सो जाते हैं तो करते हैं हम गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट,
4: गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। भगवान गरीब निवाज है, सच्चे दिल और भावना से कोई एक पैसा भी सेवा में लगाता है तो उसे पद्मा पदम गुणा रिटर्न मिलता है। कैसे तो विचार जरूर करेंगे और देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे, परंतु कौन से वाले वो तो हम बाद में बताएंगे। आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और जी हाँ, जिस तरह पांच उंगुलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान का नेचर भी अलग अलग होता है, उसे समझने की जरूरत होती है। और आज बनाएंगे आशियाना में गुजराती डिश सुवारी। और तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये भी सस्पेंस रहेगा और पूछने वाली हूँ बहुत ही सुंदर प्रश्न, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: रुक, भाई रुक, रुक। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। ओए इतनी धूप है धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार ध्यान से सुनेंगे कि भगवान गरीब निवाज है। सच्ची दिल और भावना से कोई एक पैसा भी सेवा में लगाता है तो उससे पद्मा पद्म गुणा रिटर्न में जरूर मिलता है। कैसे, तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के साथी थे। संदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों एक साथ पढ़ते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और श्री कृष्ण द्वारिका के राजकुमार। विद्याभ्यास पूरा होने पर दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका जाकर के राज्य का कारोबार संभाला तो सुदामा की शादी गांव की एक गरीब कन्या से हो गई। सुदामा को अनेक संतानें हुई, एक तो गरीबी और दूसरा बड़ा हुआ परिवार, इससे सुदामा के हालात और भी खराब होते गए। बच्चों और गरीबी की परेशानी से तंग आकर के एक दिन सुदामा की पत्नी ने उसे गुस्से में कहा कि आप अपने मित्र कृष्ण की महिमा का वर्णन करते थकते नहीं हो, इतना धनवान इतने बड़े राज्य का मालिक आपका मित्र है तो क्या वह आपको मदद नहीं कर सकता? क्यों नहीं आप उनसे भेंट करते ताकि हमारे हालात कुछ तो सुधरे? पत्नी के जोर देने पर सुदामा कृष्ण से मिलने चल पड़े, लेकिन मित्र को भेंट क्या दे, घर में तो कुछ था ही नहीं, थे तो केवल मुट्ठी भर चावल। उन्हीं को एक पोटली में बांध करके बगल में तबा करके सुदामा द्वारिका पहुंचे। सुदामा के आने की खबर सुन करके श्री कृष्ण आनंद विभोर होकर के उसके स्वागत में प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उन्हें प्यार से गले लगाया, बड़ी आत्मीयता से अपने दरबार में अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया। उनका ये प्यार और सत्कार पाकर के सुदामा तो जैसे गदगद हो गए, लेकिन दरबारी भी कृष्ण को इस रूप में देख करके आश्चर्यचकित हुए बिना ना रह सके। कृष्ण ने बड़े प्यार से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। संकोच के मारे सुदामा ने जो चावल की पोटली छुपा रखी थी वे कृष्ण ने ले ली। कृष्ण ने बड़ी खुशी से चावल का एक एक दाना खाया। कृष्ण की निरहंकारिता और प्यार देख करके सुदामा तृप्त हो गया और अपने आने का उद्देश्य ही भूल गया। कृष्ण के पूछने भर भी मुख से अपनी सहायता के बारे में कुछ नहीं कह सका। श्री कृष्ण का अपार प्यार और सत्कार स्वीकार करके सुदामा अपने गांव वापस लौट आया, लेकिन यह क्या, उसका गांव तो पूरी तरह से बदल गया था। वह स्वयं भी धोखे में आ गया कि मैं सही जगह पर तो आया हूं ना। इतने में गांव वालों को और अपने परिवारजनों को रेशमी वस्त्रों में आता देख करके सुदामा मन ही मन समझ गया कि कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही उसकी सर्व मनोकामनाएं पूरी कर दी है। उसका घर महल बन गया था जिसमें पशुधन सहित सर्व सुविधाएं थी। सुदामा ने मन ही मन श्री कृष्ण जी को धन्यवाद दिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि भगवान गरीब निवाज है। सच्ची दिल और भावना से कोई थोड़ा भी सेवा अर्थ लगाता है तो उसे पद्मा पद्म गुणा रिटर्न में मिल जाता है। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे और आइए सुनेंगे गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर, सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। तेज सिर दर्द से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो एप्पल, जिसको सेब कहते हैं, उसको छील करके बारीक काटे, उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके सुबह ही सुबह खाली पेट खाइए। अगर सिर दर्द बहुत ही तेज है और अब क्या करें भाई, सिर दर्द के लिए अब इतनी सी तकलीफ के लिए हॉस्पिटल कोई तो जाते कोई जाते ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सेब को धुलाई करिए, छीलिए और बारीक बारीक काटिए, फिर उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट खाइए। सिर दर्द आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, अगला नुस्खा हमारी बहनों के लिए। मासिक धर्म में दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ठंडे पानी में 2-3 नींबू निचोड़ करके पी लीजिए। ऐसे समय में बहुत ही तकलीफ होती है और सबसे ज़्यादा तो पेट दर्द बहुत रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति में नींबू साधारण आप नॉर्मल पानी लीजिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, और नॉर्मल पानी में 2-3 नींबू निचोड़ करके पीजिए तो ये पेट दर्द से छुटकारा मिलेगा। अगर अगला नुस्खा आपको सुना रही हूँ कि अगर आप कहीं पर जल गए हैं या फिर तेज धूप से त्वचा झुलस गई हो, त्वचा पर झुर्रियाँ हो या त्वचा रोग हो, तो कच्चे आलू का रस निकाल करके लगाइए, फायदा ही फायदा मिलेगा। बहुत ही सुंदर ये नुस्खा है कि भाई कहीं पर जल गए हो, कभी कभी क्या है तेज धूप में जाते तो भी स्किन जलने लगती है, फिर

मान लीजिए समय से पहले ही चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो इन सारी तकलीफों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आलू, कच्चा आलू, उसका रस निकालिए और लगा दीजिए, टोटली आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आलू तो हमारे घरों में होते ही है, क्योंकि भाई कोई सब्जी मिले ना मिले फटाक से आलू की सब्जी बना देते हैं, और बच्चे तो बड़े पसंद करते हैं आलू की सब्जी। तो बस आलू अपने घर में ही होते हैं, और नहीं है तो भाई इकट्ठा तो लाते ही है, किल्ला दो किल्ला तो ला करके रख ही देते हैं। तो बस आलू ले आइए, कच्चे आलू का रस निकालिए, और अपने जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी झुर्रियाँ हैं या झुलस गए हैं, आराम से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट नुस्खा है कि अगर आप अपने काले होंठ को गुलाबी करना चाहते हैं, तो मक्खन में थोड़ा सा केसर मिला करके रोज़ लगाइए। मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोज़ लगाने से काले होंठ भी गुलाबी हो जाते हैं, धीरे धीरे होने लगते हैं। थोड़ा सा लंबे समय तक आपको करना है, लेकिन 2-3 महीना करने से ही आप अपने होंठों का चेंज महसूस करेंगे। लगेगा कि अरे कहाँ काले दिखते थे और अब थोड़े से गुलाबी दिखने लगे हैं। ठीक है, तो हर प्रकार के नुस्खे आपको दिए हैं, और चलिए अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न ध्यान से सुनना, एक शायरी की तरह बनाया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है,

परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे, परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे। तो कौन सा त्योहार आने वाला है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है? तो ये आज का प्रश्न है, उस त्योहार का नाम आपको बताना है। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अभी तो बढ़ते हैं गीत की ओर, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: हेलो।
1: हाँ, आवाज आ रही है?
0: हाँ जी, आ रही, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है विक्रम जी, बहुत बहुत रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप?
1: बढ़िया है दीदी, अभी खेती की तैयारी कर रहे हैं गेहूं बोने की।
0: जी जी जी, क्या बात है। आपके पहले भी आपसे बात हुई क्या?
1: हाँ दीदी, पहले भी 3-4 बार बात हुई ना।
0: अच्छा, हाँ मेरे को लग रहा है। चले बहुत अच्छा
1: हाँ
0: है, फिर भी बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से बात हो रही है।
1: हाँ
0: तो और कैसे हो आप, पूरा परिवार ठीक है?
1: हाँ दीदी, वो थोड़ा अपने दो बेटे हैं, मतलब कि एक बड़े वाला बेटे का भी वो डेंगू मलेरिया चल रहा है ना,
0: जी
1: तो वो डेंगू हो गया उसको, अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है उसका।
0: अच्छा, तो ध्यान रखिएगा, अभी तो मच्छरों के बहुत ही समस्या है और डेंगू चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत ध्यान रखना है। स्वच्छ पानी में भी मच्छर होते हैं, इसलिए पानी को भी ढक के रखना है।
1: हाँ, पानी को तो ढका ही हुआ है, बाकी हमारा कच्चा मकान है थोड़ा,
0: अच्छा
1: तो उसमें मच्छर ज्यादा आते हैं।
0: जी जी जी जी तो आप ऐसा करिए ना कि नीम के पत्ते होते ना, उनको
1: हाँ
0: थोड़ा सूखा करके जलाइए घर में, उसकी धुनी
1: हाँ
0: देंगे ना तो भी मच्छर भाग जाएंगे, मर जाएंगे और भाग जाएंगे।
1: वो धुआं रहता जब तक दीदी वो चले जाते, फिर वापस आ जाते हैं।
0: वो तो सही है, वो फिर रोज करना पड़ता है। नीम का थोड़े से पत्ते तोड़ करके रख दीजिए, सूखते जाए और थोड़े जलाते जाइए। घर में नहीं हो तब आप दरवाजा बंद करके जला दो,
1: हाँ, दरवाजा बंद करके
0: हाँ,
1: जलाना पड़े।
0: ताकि वो मच्छर खत्म हो जाए, उसके बाद आप जाओ अंदर, है ना
1: हाँ, वो अभी
0: कहीं।
1: मच्छर की अगरबत्ती आती है वो थोड़ा जला देते हैं,
0: हाँ,
1: बाकी
0: वो कुछ
1: नीम के
0: भी
1: पत्ते
0: ऑल
1: भी।
0: आउट कुछ भी करना ही पड़ेगा। जी जी
1: हाँ, वो तो करना पड़ता है दीदी।
0: जी जी और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
1: हाँ दीदी, वो सुदामा के बारे में वो शायद सुना था मैंने कि
0: वो आपने विचार
1: जो,
0: सुना था?
1: हाँ, बाबा मतलब गरीब निवास है तो गरीब बच्चों के लिए आए हैं,
0: जी
1: तो हम तो है ही गरीब,
0: कोई
1: तो
0: बात
1: हमारे
0: नहीं,
1: लिए
0: आप में
1: तो।
0: ज्ञान है, तो जो ज्ञानी आत्मा होते हैं ना वो गरीब कभी नहीं होते, वो ज्ञान के खजाने से भरपूर रहते हैं।
1: हाँ दीदी, वो तो ज्ञान
0: जी
1: तो है ही, और दूसरों को भी ज्ञान हम सुनाते हैं, बाकी जो सुनते हैं
0: जी
1: उनको हम
0: तो फिर
1: सुनाते हैं
0: आप
1: जो नहीं
0: क्यों
1: सुनते।
0: सोचते हो कि आप गरीब हो? हमको ऐसे संकल्प ही नहीं चलाने हैं, वो क्या है, जो सोचते हैं वही होता है ना। आप पॉजिटिव रहिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत धनवान हूँ। जी तो देखिए, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। हमको क्या चाहिए खाने को, वो कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए, है कि नहीं?
1: हाँ दीदी, तो है ही।
0: जी बाकी तो बहुत करोड़पति बन जाएंगे ना तो भी तकलीफ बहुत, वो कहते हैं दुश्मनी पैदा हो जाती है, इसलिए भगवान बस सब्जी रोटी दाल रोटी देता रहे,
1: हाँ,
0: यही।
1: हम तो खुश है और परिवार भी खुश है, सभी ऐसा कोई सोचता नहीं, मैं भी नहीं सोचता कि अमीर हो जाऊँ, ये कर लूँ कहीं
0: जी
1: नहीं।
0: जी इसलिए हमेशा यही सोचिए कि मैं बहुत अमीर हूँ। भाई जिसके पास ज्ञान का खजाना हो वो तो अमीर ही है, ठीक है। और
1: हाँ
0: आज का
1: दीदी,
0: प्रश्न आप
1: अगर तो
0: सुनिएगा, आप विक्रम भाई आप सुनिएगा, मैं सुना रही हूँ आज का प्रश्न, और हमारे जो श्रोता बंधु सुन रहे हैं वो भी जरूर सुने और जवाब जरूर देवे। सफाई

0: है वो पल आने वाला है, मिठाई मिल के खाएंगे परिवार के साथ मिल कर के वो त्योहार मनाएंगे।
1: दीपावली का त्योहार आ रहा है ना
0: देखते हैं भाई, अभी तो बहुत सारे त्योहार है तो हाँ। आपने सही जवाब दिया है गलत वो आप आशाना सुनते रहिए, हम जरूर देंगे ठीक है। और आज का विषय है कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, इसी तरह इंसान का नेचर भी एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, क्या कहेंगे आप?
1: बदल कर इंसान का नेचर भी देखो, कभी ज्यादा पैसे आते हैं तो लालच नहीं करना चाहिए, एक समान रहना चाहिए इंसान ने, मतलब पैसे तो आते हैं और चले भी जाते हैं और हमें खुशी थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर खुशी चले जाती है
0: जी।
1: तो ऐसा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि पैसे हमको आज से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, सभी समान रहना चाहिए।
0: यहाँ पर समानता की बात नहीं है, नेचर की बात है, स्वभाव संस्कार की बात है कि जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं है उसी तरह देखिए परिवार में भी सदस्य होते हैं तो भी सभी का स्वभाव संस्कार थोड़ा अलग अलग होता है और जो हमारे समान संपर्क में आते हैं उनके भी स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, तो कैसे हम उनके साथ एडजस्ट होंगे यह आज का विषय है।
1: देखो सबके विचार एक जैसे नहीं होते, सभी के अलग अलग होते हैं
0: जी।
1: तो जैसे हम ज्ञानी बच्चों में तो बाबा की शक्ति एनर्जी है ही, और जो बाबा से नहीं संपर्क नहीं रहता उनको तो मतलब कोई ज्ञान के बारे में पता ही नहीं है, और पता है भी मतलब अनसुने हो जाते।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, देखिए सभी कोई भक्ति में भरपूर होते हैं, कोई किस सत्संग में जाते हैं, ज्ञान तो होता है।
1: हाँ ज्ञान तो होता है दीदी, पर वो क्या है कि जैसे कोई गुरु गुरु के बारे में सोचेंगे कि हमारा गुरु ऐसा करता है, या उनको गुरु की बातें अच्छी लगेगी, हमको बाबा की जैसी बातें अच्छी लगती
0: वो है। वो अपने अपने ऊपर आधार है। तो चलिए विक्रम भाई बहुत अच्छा, अच्छा आप थोड़ा सा अगर स्पष्ट करना चाहें तो कर दीजिए क्योंकि दूसरे श्रोता बंधु भी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप?
1: देखो अभी तो एकदम फोन लग गया, मैं अभी बेल रुके हुए हैं और मतलब ये क्यारियां डाल रहा हूँ।
0: अच्छा तो क्या बात है, काम करते जा रहे हैं आप, खेत में है?
1: हाँ खेत में हूँ, प्याज का रोपा डालते है ना अपन।
0: जी जी जी
1: इधर तो वो डाल रहा था एकदम, मतलब ये सुन रहा था मैं
0: जी
1: रहा हूँ, तो मेरे मन में कुछ ऐसा विचार नहीं आ कि मैं सवाल का जवाब दूँ।
0: जी जी नहीं नहीं, पर आप रेडियो से जुड़े अच्छा लगा हमें भी, आप जुड़िएगा ठीक है, हम रोज प्रश्न भी पूछते हैं, खुशनुमा जीवन की बातें भी आप सभी के साथ ही करते हैं, तो आप जरूर जुड़िएगा और शनिवार को अंताक्षरी में जरूर जुड़िएगा ठीक है।
1: जी जी
0: जी बहुत बहुत आभार विक्रम भाई आपका। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती उसी तरह इंसानों के स्वभाव संस्कार भी अलग अलग होते हैं, क्या कहेंगे आप? दूर तक नहीं जाना है, हमें अपने परिवार में ही रह करके देखना है कि किस तरह सभी का नेचर अलग अलग है, फिर भी उनके बीच में हमको एडजस्ट होकर के चलना है, उनको भी चलाना है। हेलो
2: जय माता जी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: सभी सुनने चाहने वाले मेरे अजीत मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
0: जी।
2: आपको भी
0: आभार।
2: और क्या टॉपिक किया आज का?
0: टॉपिक यह है कि पांचों उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती है, हमारी उंगलियां बरोबर होती है, एक छोटी एक बड़ी ऐसे है ना, ऐसे ही मनुष्यों के स्वभाव संस्कार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनके साथ कैसे हम एडजस्ट होकर के चलेंगे?
2: एक्चुअल में आपने बहुत सुंदर टॉपिक भी रखा है, देखिए हाथों की अंगुलियां तो समान नहीं होती है, वैसे स्वभाव संस्कार स्वभाव भी एक समान नहीं होते हैं, तो उसमें क्या है अपन को जैसे कि अपना लोगो भी है कि ओम शांति, तो अपने अंदर शांति और धैर्यता रख के अपन जरूर सबसे संपर्क मतलब हिलमिल के रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु भी कहते सर मतलब कोई भी चीज करते हो तो उसको मतलब शांत धैर्यता अपने जीवन में अगर अपन ये ऐसा गुण है कि धारण कर दिया ना, तो किसी भी कार्य को मतलब कोई भी किसी के साथ रिलेशन बनाना है कोई भी कार्य तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी
0: जी। मान लीजिए सामने वाला क्रोधी है तो क्या करेंगे?
2: देखिए अपन सामने वाला क्रोधित है तो अपन शांत कुछ समय के लिए अपन शांत हो जाएंगे ना, तो उसका क्रोध शांत हो सकता है और उस मतलब वो शांत होने के बाद में अगर वो उसको भी मन में लगेगा कि मैंने बहुत कुछ बोला है
0: जी,
2: तो मतलब वो ब्लैक बॉल फेंक रहा है, परंतु अपन मतलब ईंट का जवाब अगर पत्थर से देंगे तो वहाँ मामला बिगड़ेगा ना
0: जी।
2: अगर आगे वाला अपना क्रोधित है और वो कुछ अब्द शब्द भी बोल रहा है मगर अपन शांति और धैर्यता रखेंगे
0: जी,
2: तो मतलब वो मामला आगे बढ़ने की जगह फैल जाएगा, नहीं तो वहाँ मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो
0: जी। जी बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है।
2: कहते किसी ने कहा सही कहा है ना कि देखिए अपन हाथों की 5 उंगुलियां है, अगर अपन 1 उंगुली उनकी तरफ करेंगे तो 4 उंगुलियां तो अपनी तरफ ही होंगी ना
0: जी,
2: ये गलत है?
0: सही है।
2: अब अगर उस समय अपन गुस्सा करेंगे तो वो और भी गुस्सा होगा
0: जी जी,
2: तो वहाँ तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी ना
0: जी। जी तो सुरेश भाई बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, आपने बहुत अच्छा उदाहरण देने की कोशिश की कि भाई मान लीजिए सामने वाला ब्लैक बॉल दे रहा है लेकिन हमें वाइट बॉल ही भेजना है, हमें उस समय शांति बनाए रखनी है। सामने वाला क्रोध करता है तो हमें मौन में रहना है, शांत हो जाना है या फिर उस स्थान से हट जाना है, तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी, नहीं तो फिर आप समझ सकते हो। हेलो
3: दीदी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका, कैसे हो आप?
3: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं
0: जी जी जी,
3: सुन रहे हैं कार्यक्रम, बहुत अच्छी बातें भी हो रही हैं
0: जी।
3: सुबह से बस हम तो अभी तो 7-8 बजे आ जाते हैं, 7 बजे निकाल के, तो दिवाली के सीजन ज्यादा है।
0: अच्छा फिर पूरे दिन रहते हैं दुकान पर?
3: सुबह से 7 बजे से रात को 9 बजे कर जाता हूँ, और दोपहर को बस आधा घंटे रोटी खा रहे ही जाता हूँ, क्योंकि घर मेरे पास 1 मिनट की दूरी पर है दुकान से
0: जी,
3: तो बस रोटी खा के तुरंत आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि अभी आराम करने की जरूरत है नहीं है क्योंकि काम इतना ज्यादा है इसलिए
0: जी जी जी। क्या बात है,
3: 9 बजे करते जाके 10 बजे आके विकेश हो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ
0: जी,
3: 6 बजे उठ के मेरा रूटीन बताऊँ, 6 बजे उठ के मैं तुरंत हमारे गांव की जो 10 परब है पानी की पर्दे बाजार में
0: जी,
3: तो पूरी भर देता हूँ, उठ के जाके पहला काम मैं ही करता हूँ सब।
0: अरे वाह क्या बात है,
3: 3 साल से लगातार एक दिन में इसमें कहते हैं छुट्टी नहीं दी है।
0: नहीं तो जैसे आप ये पानी की परब भरते हैं तो दूसरों को ऐसे प्रेरणा नहीं मिलती है कि अरे रोज ये कर रहे हैं तो कभी हम भी करें?
3: नहीं कोई नहीं करता है, क्योंकि मैं सुबह में वही करता हूँ, मैं बताऊँ तो मेरे पास मॉल के पास परब है, वो भी कोई नहीं पढ़ता है, मैं ही पढ़ता हूँ, दुकान की तो दुकान वाला है वो कुछ नहीं पढ़ता।
0: अच्छा
3: तो कोई बात नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ आराम से, मुझे अच्छा
0: नहीं तो बहुत दुआएं मिल रही है ना, दुआओं वाला काम कर रहे हैं, पंछी पक्षियों को जानवरों को भी तो पानी की आवश्यकता रहती है ना।
3: मैं सुबह में कई बार मुझे 6 बजे जाना होता है कोई जगह पे, तो मैं 4 बजे उठ के कर जाता हूँ काम सुबह में
0: जी,
3: लेकिन करता जरूर
0: जी।
3: बहुत अच्छा टॉपिक भी दिया दीदी की 5 उंगली एक साथ समान नहीं होती, वो भी हमारे कहवत है कि भाई 5 उंगली एक समान नहीं है, तो आप ऐसे मत सोचो कि सभी लोग एक समान है
0: जी।
3: तो कई बार यदि घर में भी बताओ तो हमारे बीवी है, बच्चे हैं, बेटे हैं
0: जी,
3: तो वो भी इसका भी थोड़ा सा चेंज होता है, अलग अलग दबाव के सब होते हैं, लेकिन इस दबाव से हमसे सेटिंग करना है
0: जी,
3: क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा कुछ बात होता है जल्दी बोल जाता है, हम तो शांत कर देते कोई बात नहीं, तो शांत के हम जो करेंगे तू बोलेंगे हम करेंगे
0: जी, सही है बिल्कुल,
3: लेकिन इसमें क्या है हम इस वक्त हमको बिल्कुल ठंडा बनाना पड़ता है, इसको सुनना पड़ता है, इसको जानना पड़ता है, कई बार जो पत्नी भी बोल देती है कि कोई बात होती है तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाता है सभी घर में, बेटी और बच्चे को सब थोड़ा सा, तो वो भी एक हल कर देते कि चलो कोई बात नहीं, इसे जाने दो।
0: जी जी,
3: जो ऐसे आप एक सामने दूसरे सामने ऐसा बोलेंगे तो मामला ज्यादा बढ़ने लगे, लेकिन इसको शांत कर देना और एक को ठंडा हो जाना है और वो आराम से सब कुछ से निपटा देंगे बात।
0: जी जी,
3: इसी स्वभाव से सबके स्वभाव समझना जरूरी है स्वभाव से, और हमको भी कुछ थोड़ा सा भी चेंजेस करना है, कहते हैं कि जैसा सामने व्यक्ति होता है ऐसे हमको करना पड़ता है, कोई ज्यादा एकदम बोल देता है तो कोई बात नहीं हम समझ लेते तो सही है, चलो भाई आपकी बात सही है, लेकिन सही नहीं हो तो फिर एक उस वक्त सही कर देंगे तो वो मामला आगे नहीं जाएगा।
0: जी
3: चलो हमारे सुनना तो सुने, नहीं सुने तो कोई बात, चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छा है ऐसे करके हम बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं तो यही मानता हूँ।
0: जी जी, बहुत सुंदर,
3: इसलिए एक दूसरे को सभा जानना जरूरी, तो
0: जी बिल्कुल
3: कोई बात आगे नहीं जाएगी।
0: जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बिल्कुल जी। तो बहुत ही सुंदर बातें स्पष्ट हो रही हैं कि किस तरह पांच उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती, उसी तरह परिवार में भी सदस्यों के स्वभाव संस्कार अलग होते हैं, समाज में भी हर इंसान का नेचर अलग होता है। तो इस विषय पर और भी अधिक स्पष्ट करेंगे, परंतु अभी ले रहे हैं एक अल्पविराम, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो।
2: हाँ दीदी, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्कार, हनुमान भाई बोल रहे हैं ना?
2: नहीं दीदी, मैं विक्रम कुशवाहा बोल रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा, हाँ जी विक्रम जी, बोलिए बोलिए।
2: हाँ वो तो क्या था प्रश्न, मतलब पांचों उंगलियाँ
1: प्रश्न, ये विषय है आज का कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती। इसी तरह हर एक का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन हम उनके साथ कैसे रहेंगे, कैसे एडजस्ट होकर के चलेंगे।
2: अच्छा अच्छा, हाँ तो थोड़ा मेरे को दिमाग में आया था कि मैं थोड़ा इसको स्पष्ट करूं।
1: जी जी जी, बिल्कुल करिएगा।
2: हाँ तो दीदी, जैसे पांचों उंगलियां समान नहीं रहती, ऐसे हमारे नेचर भी मतलब एक जैसे नहीं रहते हैं। कभी पलट जाते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी नहीं आता है। कभी हम बच्चों को भी गुस्सा करते हैं
1: जी।
2: कभी हम अच्छे भी रहते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं, ऐसा रहता है
1: जी। तो कैसे सेट होंगे ऐसे, तो फिर गृहस्थी बिगड़ जाएगी ना। हम अच्छे नहीं रहेंगे तो बच्चे सहमे सहमे रहेंगे, हम गुस्सा करेंगे तो बच्चे हमसे दूर रहेंगे।
2: वो बच्चों की बात नहीं है, जैसे हम तो किसान है, जैसे हम मजदूर लेने जाते हैं, मजदूर एकदम परेशान कर देते हैं हमको।
1: जी जी जी।
2: तो हम मजदूरों को समझाते हैं, बाकी नहीं समझते, थोड़ा गुस्सा तो उनसे करना पड़ता
1: जी। वो कहते हैं कि लव एंड लो दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है।
2: दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है। तो हम मतलब हमारे जो विचार है एक जैसे नहीं रहते हैं
1: जी।
2: कभी अच्छे रहते हैं, कभी थोड़ा चेंज आ जाता है।
1: तो चेंज आ गया, उसको वापस कैसे अच्छा बनाएंगे? चेंज किस तरह का आता है?
2: चेंज मतलब दीदी कि जैसे तो अभी तो अच्छे हैं, कभी कोई हमको गलत बातें मतलब आ जाती है, सुन लेते हैं, कभी कहीं गलत अपनों ने कुछ देख लिया तो उसको मतलब हमारे विचार भी फिर वैसा ही बन जाते हैं ना दीदी।
1: जी जी, चलिए विक्रम भाई बहुत बहुत आभार। तो बात चल रही थी कि पांचों उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती, वैसे हर एक इंसान का स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है, लेकिन बना करके रखना पड़ता है, अपने स्वभाव संस्कार को मोल्ड करना पड़ता है, तभी हम सभी के साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे। सामने वाला गुस्सा कर रहा है और हम डबल गुस्सा करें तो क्या होगा? तू मैं बढ़ेगी, लोग इकट्ठे होंगे और फायदा कुछ भी नहीं निकलेगा, उसका कोई भी रिजल्ट, उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जब सामने वाला गुस्सा करता है तो हमें एकदम शांत होकर के सुनना है, क्योंकि उस समय अगर हम कुछ भी एक्सप्लेन भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आवेग में है, क्रोध में है, और क्रोध में है तो वो हमारी बात को नहीं सुनेगा, और बात नहीं सुनेगा तो फिर कहने से कोई फायदा भी नहीं। हेलो। हाँ जी नमस्कार।
3: नमस्कार, कड़ियाग्रास बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा है?
3: कमलेश भाई बोल रहा हूँ, कड़ियाग्रास।
1: अच्छा कमलेश भाई, कहाँ से? माउंट आबू से?
3: नहीं, कड़ियाग्रास, कड़ियाग्रास इडर के पास है, गांव है।
1: अच्छा इडर के पास, बहुत बहुत स्वागत है कमलेश भाई, कैसे हो आप?
3: बस अच्छे हैं दीदी
1: जी।
3: अभी नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ प्रसारण कम्प्लीट नहीं आता है।
1: अच्छा आप इंटरनेट से सुन रहे?
3: नहीं रेडियो में।
1: अच्छा अगर इस तरह स्पष्ट नहीं आता है तो आप इंटरनेट के द्वारा सुन सकते हैं।
3: इंटरनेट द्वारा इससे बहुत अच्छा टाइम
1: जी जी
3: बहुत बढ़िया सुनाई देता है।
1: जी जी, हम समझ सकते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता बंधु जो सुनते हैं वो सुनते रहे, जुड़े रहे। तो अच्छा ये समस्या भी देखिए जल्दी ठीक हो जाएगी, इसका भी समाधान हो जाएगा। आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप कमलेश भाई? अच्छा तो मैं प्रश्न अभी बोल देती हूँ, आप सुना दीजिए, जवाब दे दीजिए। प्रश्न बहुत ही सुंदर है, एक कविता की तरह मैं गुनगुना रही हूँ, आप सुनेंगे। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है,

0: मनाएंगे, क्या कहेंगे आप जवाब में?
1: ये तो दीपावली की बात है ना।
0: अच्छा, तो आप आशियाना सुनिए, हम जरूर आपके प्रश्न का जवाब देंगे, सही है या गलत है। ठीक है जी, बहुत बहुत बहुत आभार कमलेश भाई। तो देखिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु ऐसे हैं जो कहाँ कहाँ से सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आया कि बहन जी, हम इस कार्यक्रम को सुनते हैं, हम फ़ोन कॉल्स नहीं कर पाते लेकिन कार्यक्रम हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह मैसेज आते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स आते हैं तो पता चलता है कि रेडियो मधुबन के लिसनर कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से वो कोशिश करते हैं। कोई मध्य प्रदेश, कोई यूपी से, उत्तर प्रदेश से, तो कोई विदेश से। जैसे कि आपने शनिवार को बेल्जियम से सुना, दीपक भाई का फ़ोन आया था। हेलो, तो दूर दूर से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और हमारे आबू के अंचल में। आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस तरह इशारा कर रही हूँ कि देखो दूर बैठे हुए श्रोता बंधु फ़ोन कर रहे हैं और हमारे आबू के अंचल में जो ये रेडियो मधुबन चल रहा है, तो हमारे श्रोता बंधु फ़ोन कॉल्स थोड़ा कम करते, सुनते तो हैं लेकिन फ़ोन कॉल्स नहीं करते। कभी फ़ोन कॉल्स करके बता दिया करो कि आप भी रेडियो मधुबन सुनते हैं, ठीक है, हमें भी खुशी होगी। और बात चल रही थी कि भाई जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह हरेक का स्वभाव संस्कार अलग होता है, लेकिन बस हमें उनको नहीं स्वयं को बदलना है। स्वयं को बदलेंगे तो वो कहते हैं ना, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हम ही अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हम भी गुस्सा कर रहे हैं, सामने वाला नफरत कर रहा है तो हम भी नफरत कर रहे हैं, सामने वाला उदासीन है तो हम भी उदासीन है, तो फिर तो हमारे अंदर और उनमें क्या फर्क है, कोई चेंज नहीं है ना। इसलिए हमें अपने स्वभाव संस्कार को सुधारना है कि सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हमें शांत रहना है, सामने वाला नफरत कर रहा है लेकिन हमें प्यार ही करना है, शुभ भावना ही रखनी है उसके प्रति, अपनी भावनाओं को चेंज नहीं करना है कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, वो ऐसा है, वो वैसा है, नहीं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि जो क्रोध रूपी भूत आ जाते हैं तो पूरे दिन के लिए टिका नहीं रहता, वो वापस चला भी जाता है, इसलिए हमें शुभ भावना ही रखनी है। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार कंचन।

0: कि जो बताया मैंने सुना था तुरंत पता चल गया था, लेकिन थोड़ी देरी हुई कॉल करने में।
1: अच्छा, और आज का विषय है पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, इसी तरह हर इंसान का नेचर अलग अलग है, हम कैसे उनके साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे, क्या कहेंगे आप?
0: हाँ, वो तो है जी, समाज में, समाज की बात है या घर परिवार की?
1: जी, समाज की, परिवार की, स्वयं की, कैसे कभी एग्जांपल दे सकते हैं जी?
0: समाज में तो क्या है बहन जी, भाई कोई चार गांव का हमारा गोल है, ठीक है, तो कौन का स्वभाव कैसा है वो तो हमें देरी से पता चलता है, एकदम तो पता नहीं चल जाता
1: जी।
0: तो ये थोड़ी देरी होती है इसमें, लेकिन घर परिवार की जो बात करें तो घर परिवार में तो हम पहचान जाते हैं भाई इसका स्वभाव कैसा है, ऐसा है
1: जी।
0: तो कोई बात हम घर पे करते हैं तो हम इशारे से बंद कर देते हैं, कोई ऐसा हमारा बेटा है, बेटी है, ऐसा घर बाहर होती है तो आ जाती है, तो क्या हम इशारे से सबको बोलते हैं कि चुप चुप कर दो, ये सब बातें बंद कर दो, क्योंकि इसमें स्वभाव एक तरीका नहीं होता, और वो इसमें ये बोल देती है कि बोल देता है कि भाई मेरे को सुना रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है
1: जी। जी, चलिए, बहुत बहुत आभार जी।
0: हाँ जी, नेचर ऐसा है, एक तरीके उंगली
1: जी जी
0: नहीं
1: जी।
0: होती, कोई किसी का उग्र स्वभाव होता है, किसी का शांत स्वभाव होता है
1: जी। चलिए कंचन भाई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है इसके लिए, और बस इस विषय को यही समाप्त करेंगे, क्योंकि भाई अगले भी आपको आशियाना के किचन में भी तो आना है ना, तो बस कहने का भाव यही है कि स्वयं को बदलना है, न कि दूसरों को। हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन दूसरों को शिक्षा देने के पहले खुद को देखना है कि मैं अमल कर रही हूँ, कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है? तो स्वयं को बदलेंगे तो विश्व बदलेगा, इसलिए हमें स्वयं को बदलना है। हम बदलेंगे, अपने स्वभाव संस्कार को अच्छा बनाएंगे, तो हर एक के साथ हम अच्छी तरह एडजस्ट होकर के चलेंगे, चाहे सामने वाला क्रोधी है, चाहे सामने वाला उदासीन है, या फिर किसी भी प्रकार का है, लेकिन हम उसके साथ अच्छी तरह एडजस्ट होकर के चल सकेंगे। और आइए बढ़ते हैं फिर से एक गीत की ओर, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो हम जरूर आपको आज गुजराती डिश सिखाएंगे, राजस्थानी भी है, ऐसा मत सोचिएगा कि राजस्थान में नहीं चलता है, लेकिन बस नाम अलग अलग है। गुजरात में कहते हैं सुआरी और राजस्थान में उसको खाजिया कहते हैं। अब देखिए राजस्थान में भी बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे गांव हैं, अलग अलग जिलों में इसको अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन इसका प्रॉपर गुजराती में नाम है सुवारी और राजस्थानी में है खाजा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये सिखाऊंगी क्योंकि ये दीपावली पर बहुत ही बनाए जाते हैं। सुवारी, मठिया, चोराफली, घूगरा, इस तरह के आइटम गुजरात में बहुत बनती है। उसके बाद और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये तो आपको हर घर में मिल ही जाएंगे दीपावली के दिनों में। जिसके भी घर पर आप मिलने जाएंगे ना, तो ये चार चीज़ें तो आपको नाश्ते में मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा फिर तो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें भी बहुत सारी बनाते हैं जो आए दिन हम आपको सिखाते रहते हैं। तो चलिए सुवारी बनाने से पहले आज का प्रश्न एक कविता की तरह मैंने बनाया है। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, बहुत ही सरल प्रश्न है, ज़रूर आप जवाब देंगे और रेडियो मधुबन से जुड़ करके जवाब देंगे। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है,

परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे, परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे। तो ऐसा कौन सा त्योहार आने वाला है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उस त्यौहार पर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो भले किसी भी राज्य में रहता हो, किसी भी शहर में रहता हो, लेकिन तो वो लौट आता है। कब लौट आते हैं अपने घर और कैसे परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। और चलिए सुवारी बनाना सिखा देती हूँ। आप 1 किलो लीजिएगा मैदा, ठीक है, फिर आप लीजिए 250 ग्राम मोवन के तौर पर तेल, और 250 ग्राम ही आपको लेनी है शक्कर, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार तलने के लिए फिर से तेल। बस इतनी सी ही सामग्री है जिसको फिर से दोहरा रही हूँ कि 1 किलो लेंगे मैदा, 250 ग्राम लेंगे इसके अंदर मौन डालने के लिए तेल या फिर घी, ठीक है। राजस्थान में घी यूज़ करते हैं, गुजरात में तेल यूज़ करते हैं मौन डालने के लिए। अब आपको जो इच्छा हो वो लीजिएगा। अगर घी ले रहे हो तो 200 ग्राम लेना, तेल ले रहे हो तो 250 ग्राम लेना, ठीक है, और 250 ग्राम ही लेनी है आपको शक्कर। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 250 ग्राम लीजिएगा शक्कर, और अगर स्लाइट मीठा खाना चाहते हैं तो 200 ग्राम शक्कर लीजिएगा, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार आप तेल लीजिए तलने के लिए। अब मैं बनाने का तरीका भी साथ साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, मैदे को पहले छलनी से छानिए, ठीक है, छानने के बाद मैदे की छलनी से छानना हो, ऐसे नहीं आटे की छलनी से छान रहे हो, मैदे की बारीक काने वाली होती है, ऐसी छलनी से छानिएगा ताकि कचरा ऊपर आ जाए। आटे की छलनी से छानेंगे तो सारा ही अंदर चला जाएगा। फिर आप चीनी को थोड़ा पानी में घोल करके एक रस कर दीजिए, ठीक है, और इस पानी से आपको इस लोट को बांधना है, लेकिन पहले आप मौन डालिए तेल या घी जो भी, फिर अच्छी तरह उसको मिक्स करिए मैदे को और मोवन को, फिर आप ये चीनी वाले पानी से अच्छी तरह आटे को बांध दीजिए। पानी ज़्यादा नहीं लेना है, अबे ज़्यादा भर के तपेली कर दी है और उसमें चीनी इतनी ही डाली है, फिर पता चला कि सुवारी बनाने के बाद बहुत ही फीकी लग रही है तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही पानी लेना है। पानी तो हम सादा पानी भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन चीनी वाला पानी हमको ज़्यादा नहीं बनाना है, आवश्यकता के अनुसार जितना उस आटे को बांध सके, ठीक है, फिर उससे आप इस लोट को अच्छी तरह बांध दीजिए। फिर आवश्यकता पड़े कि भाई थोड़ा सा पानी की कमी है तो ऊपर से आप सादा पानी भी ले सकते हैं। तो इस तरह अच्छी तरह इसको फिट बांध दिए, ठीक है, बांध करके आप गीले कपड़े से ढक करके 1 घंटे तक रख दीजिए, दूसरा काम करने लग जाइए। दूसरा काम हो गया आपका, फिर उसको वो अच्छी तरह गल के तैयार हो गया, अब उसके लुए बना करके फिर आप जो भी साइज पसंद करते हो उस साइज में आप बेलिए, बेल करके आप स्वच्छ कपड़े पर डालते जाइए, ठीक है, और जब आपके सारे ही डल जाए या फिर आप 2 जने हो, 2 मिल करके कर रहे हो, तो फिर 1 जने क्या करेंगे, तेल गरम करिए कढ़ाई में और तलते जाइए, और भाई अकेले हो तो फिर आप सारे बना दीजिए, लेकिन क्या करना है, जो पहले हम सुवारी डालते हैं ना उसको आप इकट्ठा करते जाइए, ज़्यादा नहीं सूखने देना है, भाई ज़्यादा सूखेंगे ना तो फिर तलते समय वो टूटेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं सुखाना है, जो पहले सुखाया है उनके आप झेट बनाइए, एक दूसरे के ऊपर रखिए, ठीक है, ताकि वो क्या है कि एक दूसरे के ऊपर रखने से दबे रहेंगे, फिर ऊपर से कुछ ढक दीजिए, कोई बड़ी सी पतीली है ढक दीजिए ताकि हवा नहीं लगे, पहले हवा लगानी है बाद में नहीं लगानी है, थोड़ी सी ही लगानी है, ठीक है। फिर आपके सारे जब सुवारी तैयार हो जाए बेल लो, उसके बाद आप कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल रखिए, गैस चालू करिए, तेल को गर्म कर दीजिए और मध्यम आंच पर सुनहरी सुनहरी होने तक ये सारी सुवारी तल दीजिए। चिमटे से निकालना है इसको, ठीक है, जाली वाली नहीं लेनी है, चिमटे की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए चिमटे से ही आपको निकालना है, और फिर ठीक है चिमटा नहीं है तो जाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक क्या है कि चिमटे से आप लेते हो ना तो वो जो अतिरिक्त तेल कढ़ाई में ज़्यादा चला जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ा सा प्लेन पेपर में रखिए, सफ़ेद पेपर आता है ना उसमें रखिए, उसको आप थाली या ऐसे तगारी की तरह होता है ना, जिसको हम तासला भी कहते हैं, तासले की तरह होता है, उसमें आप रखिए, पेपर बिछा दीजिए और ये निकाल के रखिए ताकि और भी थोड़ा बहुत तेल हो तो वो पेपर आपका चूस ले, ताकि तेल ज़्यादा हमारे नहीं जाए,
तो इस तरह सुनहरी सुनहरी सारी सुवारी तल दीजिए। अब देखिए, पहले बहुत सिंपल बनाए जाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा क्रेज चला है कि आटा बांधते समय कोई इलायची पाउडर भी डाल देते हैं, कोई तिल भी डालते हैं, सफ़ेद तिल, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिंपल बनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, टेस्टी ही लगेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है बनाने का कि मैदा छानना है, छानने के बाद मैदे में मोन डाल देना है, तेल या घी, अगर घी डाल रहे हैं तो उसको पिघला करके डालिए, ठीक है, और तेल डाल रहे हैं तो ठीक है, और अच्छी तरह मिक्स करिए दोनों हाथों से। फिर एक तरफ आप चीनी वाले पानी को अच्छी तरह घोल दीजिए, थोड़ा सा आप गैस पर भी गर्म कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, और बाकी ज़्यादा कर रहे हो तो उसको ठंडा होने दीजिए, नव सेका हो तो चलेगा लेकिन गर्म होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि बांधते समय हाथ जलेंगे, इसलिए अच्छी तरह चीनी को पानी में एक रस करके फिर उस पानी से इस आटे को अच्छी तरह बांध दीजिए। अगर आप ऐड करना चाहते तो थोड़े सफ़ेद तिल बांधते समय डाल दीजिए, इलायची कूट करके इसको भी डाल दीजिए, फिर आप चीनी वाला पानी डाल करके अच्छी तरह आपको बांधना है, इसको गूंदना है, गूंद करके भले आधा घंटा भले एक घंटा आप गीले कपड़े से ढक करके इस आटे को रख दीजिए और आप दूसरा कार्य निपटा दीजिए, दूसरा काम आपका हो जाए, भले आधा घंटा भी भीगेगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। वो काम होने के बाद बस लुए बनाइए, लुए बना करके फिर आप बेलिए, जो भी साइज पसंद करते हो, पूड़ी की साइज पसंद करते हो या रोटी की साइज, वो आपके ऊपर छोड़ा है, और बेल करके आप डालते जाइए एक स्वच्छ कपड़े पर, साड़ी बिछा सकते हैं और उस पर डालिए, फिर पहले वाले जो सुवारी है उसके थप्पी लगा दीजिए, एक के ऊपर रख दीजिए ताकि उसको ज़्यादा हवा नहीं लगे, तलते समय वो टूटे नहीं, और एक भगोना उसके ऊपर ढक दीजिए, और इस तरह सारे सुवारी बेल करके तैयार कर दीजिए। फिर आप रखिए कढ़ाई में तेल गरम, तेल गरम हो जाए तो मध्यम आंच पर सुनहरी सुनहरी होने तक दोनों तरफ से आपको मठिये तलने हैं, मठिये नहीं सुवारी तलने हैं, चिमटे से आपको थाल भी फेरनी है और अच्छी तरह तल करके चिमटे से आपको निकालना है, तुरंत नहीं निकालना है, थोड़ा सा क्या करेंगे आप, तो चिमटे से जो आपने सुवारी पकड़ रखी ना, हल्के से आप कढ़ाई के किनोर से थपकारिए ताकि और भी जो तेल है वो अंदर ही टपक जाए, फिर आप पेपर में रख दीजिए, इस तरह सारी सुवारी आपको निकाल देनी है, इस तरह बनाना है, ठीक है। तो चलिए सुवारी तैयार है, अब हम आपको और भी कुछ सिखाएंगे लेकिन कल, भाई आज तो समय आप देख रहे हो कि होने को आया है, इसलिए हम तो रोज ही सिखाते हैं। तो आइए अभी सुनते हैं गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं।
3: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, बहुत ही सुंदर विचार था, तो बहुत ही सुंदर नुस्खे भी आपको दिए हैं, और बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा है कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती। इसी तरह परिवार के सदस्यों के भी स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, लेकिन तालमेल बिठा करके अच्छी तरह हिल मिल करके चलना है, और उसके लिए हमें स्वयं को बदलना है। ठीक है, और आज का प्रश्न भी बहुत अच्छा था, देखते हैं आप भी सोच रहे होंगे कितना सरल प्रश्न है, लेकिन कभी कभी सरल प्रश्न भी पूछना चाहिए। तो जवाब तो आप सभी को पता ही है, सभी ने सही दिया है। जुड़े हैं सुरेश भाई झोटाना से, सबसे पहले इन्होंने जवाब दिया है, फिर सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, विक्रम भाई कुशवाहा बड़वानी मध्य प्रदेश से, हनुमान जी यूपी से, उत्तर प्रदेश से आप जुड़े हैं, कमलेश भाई इडर गुजरात से जुड़े हैं आप, कंचन भाई मंडाली से, कुपाराम जी कोजरा से और लीला जी कोजरा से। आप सभी ने सही जवाब दिया है, दीपावली। तो बिल्कुल सही है, दीपावली का त्यौहार आने वाला है, और दीपावली के त्यौहार पर ही पूरा परिवार इकट्ठा होता है, चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, लेकिन दीपावली के एक दो दिन पहले ही अपने घर लौट आते हैं। तो सभी के लिए ढेर सारी तालियां। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी राम जी पर, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे आशियाना कार्यक्रम लाइव में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 90.4।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे उषा। आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हम सब की जिंदगी में गहरे असर छोड़ सकता है, जेंडर आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा। ये एक विशेष महिला और पुरुषों के बीच हो रही आपसी असमानता, जिसमें विशेषकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के बारे में है, जिसे खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। आज ये विषय क्यों हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए सुनते हैं एक रेडियो नाटक जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास हो रही घटनाओं पर आधारित है।

0: खड़ी खड़ी चार पड़ोसन खड़ी खड़ी बाता बनावे खड़ी खड़ी।
1: अरे देख देख कांता, लक्ष्मी का मिजाज, चार चार बेटियां पर घमंड तो एड़ो करे, जाने बेटियां कोनी बेटाएं।
2: सही कह रही तू, मोट की छोरी ने तो अत्री बिगाड़ रखी कि आखा गांव में फटफटो लेन दौड़ती परे, वो छोरे की नैन पेंट शूट पेरे हैं।
3: छोरा की न्यान बॉयकट रखे, आदमी का सारा काम छोरी में करावे, पंचायत में जानो वे कि राशन पानी लाड़ो वे, दवा खाने जानो वे कि भले छोटी बेनिया के स्कूल को काम वे तो भी।
4: अरे एकदम देखने नाम कड़ाई माँ बापरो जदी था पड़ी।
5: अरे चुप चुप, वह देख लक्ष्मी आ रही है।
6: अरे कई बात है, आज तुम्हारी सारी सहेलियां एक साथ में।
3: लक्ष्मी आओ मारी सातन आओ, आज तो तू घनी खुश लाग रही है, अनी खुशी को राज।
6: खुशी की तो बात है।

0: आज तो
1: दीपक आपकी सैलरी रहेगी 35,000 और कविता आपकी सैलरी रहेगी 25,000। इज इट ओके?
2: सर ये अंतर क्यों है जब हम दोनों का काम एक ही है, पढ़ाई भी एक है, इंटरव्यू भी एक ही रहा, फिर सैलरी में अंतर क्यों?
1: क्योंकि दीपक लड़का है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अक्सर पुरुष लोग छुट्टियां कम रखते हैं, महिलाएं ज्यादा छुट्टियां रखती हैं। जैसे कुछ दिनों बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह, कभी क्या कभी क्या, लेकिन पुरुष लोग ऐसा नहीं करते हैं इसीलिए।
2: पर सर मैं भी तो उतना ही काम करती हूँ, लॉजिकल टेस्ट में तो मुझे उनसे अधिक मार्क्स मिले हैं। रही बात शादी की, सर क्या गारंटी है कि मेरी शादी इसी साल होगी? अगर होगी भी तो हो सकता है मैं इसी शहर में शादी कर लूं। सर जेंडर आधारित रूढ़िवादिता से आपका ये भेदभाव सही नहीं है सर।
1: कविता तुम सही कह रही हो, मुझे जेंडर के आधार पर ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेहनत और काबिलियत के अनुसार ही सैलरी देनी चाहिए। मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करता हूँ।
2: थैंक यू सर।
3: स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा और आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नौ में, जहां पर हम लिंग आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा के बारे में जानने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ नया भी सीखा होगा। दोस्तों लक्ष्मी जैसे लोग हमारे जीवन के हर मोड़ पर मिलते हैं। अगर थोड़ा और गौर करेंगे तो हो सकता है हमारा घर, परिवार और दफ्तर के आसपास ही होंगे। इन लोगों को हमारी तरफ से एक हौसला की आवश्यकता है, क्योंकि वो कुछ अच्छा और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस विषय को बेहतर समझने के लिए स्वागत करते हैं हमारी एक्सपर्ट का और समझेंगे इनके द्वारा लिंग आधारित और घरेलू हिंसा में अंतर क्या है।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हिंसा के नो इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नए मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा। दोस्तों हमें मदद करने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सुलेखा जी। आप 1998 से फेमिनिस्ट लीडर के तौर पे महिला समाख्या, इंसाफ एंड एक्शन इंडिया ऐसी संस्थाओं के साथ आप काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। वर्तमान में आप कैंपेन कोऑर्डिनेटर हैं बेटी जिंदाबाद कैंपेन का एक्शन इंडिया के संस्था में। तो स्वागत करते हैं सुलेखा जी को। नमस्ते मैम।
5: नमस्ते। लिंग आधारित हिंसा गर्भ में से ही महिलाओं के साथ शुरू हो जाता है। जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो सबसे पहले परिवार और समाज की उम्मीद उसके बेटा होने की चाहत को रखने लगता है और वहीं से हिंसा शुरू हो जाती है। देखा जाए तो गर्भ से ही कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव शुरू हो जाता है, लड़का की चाहत, लड़के की चाहत। उसके बाद जन्म के समय खुशी, फिर परवरिश में देखा जाता है, उसके दूध पिलाने से लेकर के और उसके देखभाल तक की गैप्स को हम देखते हैं। हर पल लड़की और लड़का में भेदभाव होता है, चाहे उसके खान पान को लेकर हो, चाहे उसकी परवरिश को लेकर के हो, चाहे उसके खिलौने को लेकर हो। फिर आगे जैसे जैसे वो किशोरावस्था तक बढ़ती है तो उसके पढ़ाई लिखाई पर भी, वो कौन सा साइड में पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगी और साइंस पढ़ेगी या कॉमर्स पढ़ेगी, ये परिवार तय करता है। जबकि लड़का लड़की को खुद से तय करना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। वही जब वो किशोरावस्था से ऊपर जाती है 16-17 साल से, वहां लड़की के प्रति शादी की चिंता परिवार वालों को सताने लगती है, और जबकि लड़के के प्रति उसके रोजगार को लेकर के। तो इस तरीके से हर जगह जन्म से लेकर के और मरते दम तक जेंडर बेस्ड वायलेंस होता रहता है। एक महिला की जिंदगी बचपन जवानी और बुढ़ापा तीन पापे टिकी है, पिता पति पुत्र। एक इंसान होने के नाते, एक महिला होने के नाते उसे हर जगह एक मर्द के अनुसार चलना पड़ता है, और कितने बच्चे पैदा करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है कि नहीं करनी है, वो एक औरत के हाथ में नहीं होता है, उसके शरीर पर खुद का हक नहीं होता है। इस तरीके से एक औरत की जिंदगी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक तीन पापे गुजरती है, और ये बहुत बड़ा वायलेंस है। कहीं ना कहीं एक औरत वहीं पर खत्म हो जाती है एक दूसरे के हाथ में, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है। इसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारे परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, श्रम विभाजन में भी होता है। कृषि में महिलाएं 80% काम करती, महिलाएं किसान कौन है आपके नजर में भी, अगर हम किसान सब कहेंगे तो एक किसान पुरुष ही नजर आएगा। तो काम हर जगह महिलाओं से लिया जाता है और उसका काम नहीं तय होता। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर जगह महिला पुरुष को डिवाइड किया गया है, और ऊंचा पद पैसा सम्मान वाली जगह पर पुरुष हावी हैं, और जहां पर उनका काम की वैल्यू का दाम कम से कम, और कहीं तो मान्यता ही नहीं, जैसे महिला किसान मानते ही नहीं महिला किसान। तो ये बहुत बड़ा, खुद के काम की वैल्यू एक महिला ही नहीं समझ पाती क्योंकि समाज ने उसे स्थापित नहीं किया, पर बदलेगा। हम महिलाओं ने उस पर बोलना और समझना, अपने काम को गिनना, अपने काम को महत्व समझना शुरू किया है, परिवर्तन आएगा, एक दिन धीरे धीरे आएगा। उसी तरीके से घरेलू हिंसा देखा जाए तो घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है
4: जी।
5: जेंडर भेदभाव, जेंडर आधारित हिंसा गर्भ में शुरू होता है कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, और घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है कि तुमने बेटा जन्म नहीं दिया, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारी शक्ल देखने से सुबह खराब हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या नाम है, शादी का, दूसरी शादी का वो देना कि तू तो बेटा दे ही नहीं सकती, घर से निकाल देना, खर्चा ना देना, बच्ची होने पर उसको छोड़ देना, इस तरीके की चीजें। और साथ साथ घरेलू हिंसा कई तरीके का होता है। घरेलू हिंसा घर एक छत के नीचे रहने वाले, चाहे वो पति हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो प्रेमी हो, लिव इन में भी लोग रहते हैं। अगर एक प्रेमी भी घरेलू हिंसा करता है, एक तो मानसिक हिंसा, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां औरत ने लगातार बच्चे हुए, उसकी हालत बहुत खराब हुई, हम लोगों ने उसे कहा कि आप कोई फैमिली प्लानिंग टेक्निक अपनाओ, तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद हो रही। आशा वर्कर ने उसे दिया और उसने अपनाया, उसके पति को कहीं पता चल गया, इतनी पूरी तरीके से पीटा, मतलब 6 महीने हॉस्पिटल में थी। फैमिली प्लानिंग में सारी विधियां सरकार ने औरतों के लिए बनाई है, एक विधि केवल पुरुष के लिए बनाई, और उसको भी अपनाने के लिए सरकार पुरुषों को तैयार नहीं करा पा रही है, बात करने की हिम्मत नहीं है हेल्थ वर्करों का। एक पुरुष से जाएगा और बोले कि आप अपनी क्या नाम है फैमिली प्लानिंग के लिए ये सुविधा को अपना सकते हैं, इतना जबरदस्त कंट्रोल है सत्ता की।
3: तो सुना दोस्तों हमारी एक्सपर्ट को लिंग आधारित और घरेलू हिंसा पर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का हमारा ये मकसद था कि आप सभी को जागरूक कर सके और इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यदि आप या आपके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी है जो इस समस्या का शिकार हो रहा है तो कृपया उनकी मदद करने का प्रयास जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम महत्वपूर्ण हो सकता है और उनकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हमारा लक्ष्य है समाज में जेंडर समानता की दिशा में कदम बढ़ाना और हर किसी को सुरक्षित और समृद्ध जीवन जीने का अधिकार दिलाना। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर, आप सुनिए ये गीत और मैं आरजे उषा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
0: सपनों पूरों

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपने लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में नाम सुनते हैं प्रोग्राम का नाम, कार्यक्रम का नाम मेरा गांव मेरा अंचल। जिस गांव जिस अंचल में हम रहते हैं, पले बड़े और यहाँ तक पहुँचे, वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि गांव स्वर्ग होता है। गांव को लेकर ही हमारा देश बनता है और देश को लेकर ही पूरा विश्व बनता है। तो इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव में अंचल में आते सभी वर्गों से मिलते, तो आज हमें खुशी है इस कार्यक्रम को लेकर पहुँचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवल में पहुँचे, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय के मिलित सहयोग से विद्यार्थियों का विकास में आज इनको मंच मिलेगा, जिसका चलते बच्चे अपना हुनर को प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को हमारा सही रूप में अनुशासन रूप में हमारा सर जी उपस्थित है, तो वो भी अपना परिचय देंगे और बच्चों को थोड़ा वार्म अप कराएंगे। सर जब भी हम माउंट आबू में जब थे उस समय भी उनको मिले थे, बहुत अच्छे से कोऑपरेशन किया, आज भी अवल में सहयोग दे रहे। तो सर जी आपको स्वागत करते, आप अपना परिचय देंगे और बच्चे कितना दिल से अपना भाग रखेंगे। तो
1: मैं पुनीत मिश्रा हूँ, राजकृत माध्यमिक विद्यालय अवल में उपाचार्य पद पर कार्यरत। आज का दिन वैसे तो पवित्र भाई जी रेडियो मधुबन स्थानीय विद्यालय के बालिकाओं का है, क्योंकि इन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। पवित्र भाई और रेडियो मधुबन 107.8 का बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ।
0: जी सर,
1: कि ये एक ऐसा मंच है जो अपनी हदों से आगे निकलकर विद्यालय के छात्र छात्राओं गांव के लोगों के साथ संपर्क कर रहा है, उनसे जुड़ रहा है और उनकी प्रतिभाओं को निखारने के साथ साथ अपनी जो भावनाएं हैं उनके साथ प्रेषित कर रहा है और उनकी भावनाओं को रेडियो मधुबन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत ही समुचित प्रयास कर रहा है। तो मेरी तरफ से तो बहुत ही बहुत आभार है और मैं विद्यालय के बालक बालिकाओं और गांव के परिवेश के जो लोग हैं
0: जी सर,
1: उनसे मैं भी आग्रह करूंगा कि ये ऐसा मंच है जो स्वयं चल के आपके पास आ रहा है, आपको इस मंच के पास जाने की आवश्यकता नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं चाहूँगा कि हम सब आप सब इस मंच का उपयोग करें, ये उपलब्धि हमें बार बार प्राप्त नहीं होती और ये ईश्वरीय देन है कि मंच स्वयं हमारे पास चलकर उपस्थित हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि बालक बालिका इस मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभाएं भी निखारें और उनको जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको ग्रहण करें, अपनी प्रतिभाओं को जन जन तक इस रेडियो मधुबन के माध्यम से पवित्र जी भाई के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करें। आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं रेडियो मधुबन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पवित्र जी भाई बार बार मिलते हैं, इनसे बड़ा प्रेम और सद्भाव प्राप्त होता है, तो इन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।
0: और सर आपका नाम कितना सुंदर, पुनीत सर, पुनीत काम में हमेशा तत्पर रहते हैं।
1: मेरा नाम और इनका नाम एक ही है, इनका नाम पवित्र और मेरा नाम पुनीत है ना। पवित्र जी भाई का नाम का अर्थ पवित्र है और मेरा नाम पुनीत है, उसका मतलब भी पवित्र ही होता है,
0: पवित्र।
1: और रामायण में ये शब्द बार बार दोहराया गया है, पुनीत शब्द बार बार दोहराया गया है, तो इसी से प्रभावित होकर मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था।
0: क्या बात,
1: क्योंकि उनको उनको रामायण का अध्ययन करने का बहुत शौक था और बहुत अध्ययन करते थे
0: जी सर,
1: तो ये नाम जब बार बार उसमें उनके द्वारा दोहराया जाता था, तो बचपन में छोटा था मैं, तो उन्होंने मेरा नाम भी यही रख दिया था।
0: यूनिक नाम सर, इसे मिलना बहुत कम होता नाम,
1: इसके लिए तो मैं अपने पिताजी को धन्यवाद देता हूँ
0: क्योंकि
1: उन्होंने ये नाम रखा मेरा।
0: बहुत अच्छा बात, इसलिए नाम से सार्थक कर रहे सर और आज पुनीत काम कर रहे हैं। नाम जैसे आज हर जगह में सभी बच्चों को आप समान बनाते हैं, सर के पास जो विशेषता है एक भी अंत जो भी है उनका पास देने के लिए कोशिश करते हैं, चाहे जो भी फील्ड में हो। हमें देखें आबू पर्वत में भी देखें बच्चों को ऐसे प्रोत्साहन करके पूरा एकत्रित करके उनको आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ ऐसे, तो आज भी दे रहे हैं और नाम का सार्थक भी कर रहे हैं। श्रेष्ठ पुनीत मतलब श्रेष्ठ काम, पावन काम है। तो आज इस मंच का माध्यम से सर अपना बात को रखें और ऐसे 15 साल से हम इस एरिया में एक मंच देते हैं, रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, आपका रेडियो है। ऑल इंडिया रेडियो में ये लोग बच्चे तो नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो तो बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, वो खुद आते नहीं। रही बात कमर्शियल रेडियो जो कि बड़ा बड़ा सिटी में होता है, तो गांव का बच्चों को कैसे मिलेगा, इसलिए सरकार का ये योजना FM चैनल शुरू किया कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी द्वारा कम्युनिटी भागीदारी आज देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको किताब भी दिखाया था, 3 साल में 3 कम्युनिटी रिपोर्ट बनाया, 2011 से 2015 तक एक रिपोर्ट बनाया, 15 से फिर 20 21 तक बनाया, अभी 21 से 2026 3 किताब हमारा इस आसपास जो कवरेज किया है, चाहे सभी वर्गों को मैंने उसमें जोड़ा है, चाहे प्रशासन गांव के संग हो, चाहे नशा मुक्ति हो, चाहे बच्चों का जो कुपोषण को लेकर भी बात करते हैं, नरगा में जाते हैं उनका जो संस्कृति है उसको भी जागृत करते हैं, और एक रेडियो पार्टनर हिसाब से पत्रकार के हिसाब से उसको कवरेज लाइव कवरेज करते हैं, जैसे नेशनल फेस्टिवल हो, चाहे अगस्त 15 हो, चाहे सरकार का जो भी जैसे ग्राम्य ओलंपिक होता है, सरकार का जो जो प्रोग्राम होता है, विकसित भारत हो, उसको हम कवरेज करते हैं डायरेक्ट जाकर, क्योंकि ये इसका माध्यम से हमारे आसपास क्या गतिविधि हो रही है तब तक उन तक पहुँचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे खासकर इंटरनेट ट्राइबल एरिया होने के नाते ट्राइबल तक पहुँचता है FM ही पहुँचता है, आजकल गाड़ी में भी पहुँचता है, तो रेडियो में ही हमारा पिताजी बा दादा परदादा रेडियो में ही सुनते थे, अभी तो इंटरनेट आ गया बा डिजिटल आ गया, लेकिन हमें इस रेडियो से ही हमें समाचार मिलता था, लेकिन रेडियो आज भी जिंदा है, जैसे साइकिल कितना भी मर्चेंट कितना भी एरोप्लेन आए लेकिन साइकिल अभी भी जिंदा है, तो कहने मतलब रेडियो एक शुद्ध अच्छा मैसेज देता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बच्चों का आवाज़ सुनेंगे, अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहले हम पुनीत सर को सुन रहे थे और वो अच्छा कोऑपरेट किए, जब भी जाते हैं एक इशारा से हमें सहयोग देते हैं, इसे होने से हमें भी स्कूल में बार बार आने के लिए इच्छा होता है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ 3 छात्र आए तो उनको भी स्वागत करेंगे, क्योंकि स्कूल में जाए विद्यालय में जाते तो विद्यार्थियों का साथ रूबरू नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। और खासकर जब हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में एक प्रार्थना करते हैं, माँ सरस्वती को आह्वान करते कोई भी कार्य करने का पहले प्रभु याद में रहते, तो इस कार्यक्रम को भी अच्छा से सुंदर रूप में सजाने के लिए 3 छात्र है। तो अपना अपना नाम, क्लास और कहाँ से आते हैं वो बताएंगे।
1: मेरा नाम अरुणा कुमारी है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ, मैं आवे से हूँ, राजकोट माध्यमिक विद्यालय आवे से।
0: लेकिन अरुणा आप बढ़कर क्या लक्ष्य रखे, कुछ बढ़कर क्या बनना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर इंजीनियर बहुत सारे पोस्ट होता है ना।
1: मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ।
0: टीचर, तो उसके लिए आपका परिवार में कोई टीचर है?
1: नहीं।
0: फिर भी स्कूल में जो आते टीचर को देखते हैं, मैम को देखते होंगे, सर को देखते हैं, तो कौन सा मैम या कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है, उनका जो अनुशासन हो, पढ़ाने का तरीका हो?
1: सभी टीचर अच्छी है।
0: मतलब पास हो गया भाई, सभी टीचर उनके लिए अच्छे हैं, क्योंकि सभी से गुण ग्रहण करते हैं, बुरा को नहीं देखते हैं, अच्छा चीज़ को ग्रहण करते हैं, इसको कहते हैं गुणग्राही। सबको गुण को उठाना है, अब उनको नहीं देखना है कि नहीं? तो बहुत अच्छा बात बताए अरुणा। नेक्स्ट, हेलो, नाम बताइए आप।
2: मैं मनीषा कुमारी, कक्षा 12 की छात्रा हूँ।
0: अच्छा, कहाँ से?
2: अंजलि।
0: यहाँ से कितनी दूर है स्कूल से? अंजलि थोड़ा दूर है ना। चलो नेक्स्ट।
3: मेरा नाम सुनीता कुमारी, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवन से हूँ, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ।
0: सुनीता, सुनीता तुम कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है खेलने में?
3: क्रिकेट।
0: भाई लोग सोचते क्रिकेट खेलते ज़्यादा, बहन भी कम नहीं, अव्वल में भी क्रिकेट, और खो खो तो नाम से प्रसिद्ध था, यहाँ पर खो खो बहुत अच्छा खेलते थे, है ना? खो खो खेलते हैं? खो खो तो बहुत अच्छा, अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी गए होंगे खो खो में, है ना? अभी भी खो खो चलता है या?
3: चलता है।
0: लेकिन आप क्रिकेट अच्छा लगता है आपको? क्रिकेट का कोई भी एक अच्छा प्लेयर का नाम बताओ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो।
3: विराट कोहली।
0: वाह, पास हो। आप क्या करना चाहेंगे, बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग, किस में आपका ज़्यादा रुचि है सुनीता?
3: सर बैटिंग।
0: बैटिंग में कितना मार सकते हैं? चौका छक्का? चौका छक्का लगाएंगे जब मौका मिलेगा, तो खेल खेलना चाहिए कोई भी। आजकल खेल में भी अच्छा रुचि रखेंगे तो ओलंपिक तक भी जा सकते हैं, नेशनल लेवल पर जाते, भारत का झंडा लहरा सकते हैं, है ना? अपना खांदा में, शोल्डर में तिरंगा झंडा होना चाहिए, जब विजय हो गए तब ना। वेरी गुड। चलिए एक प्रस्तुत सुनेंगे, अरुणा।

0: मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको जानो का संसार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। बच्चों को मिलता है चांस, और खासकर लड़कियों को, छात्राओं को, लड़के तो कर नहीं पाते लेकिन लड़कियां सब में होशियार हैं खेल में, और बड़े होकर सब कोई टीचर, कोई स्पोर्ट्समैन सब बनना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम को सुंदर में सजाए। और अरुणा आप बताओ, आवल का गाँव का आसपास कुछ नज़ारा तोरा बताओ, हमारा श्रोता मित्र सुन रहे आज कभी आएंगे तो आवल के आसपास क्या क्या देखने को मिलेगा? ग्राम पंचायत कौन कौन ग्राम पंचायत बताओ देखिए। अरुणा चनार, जैसे चनार ग्राम पंचायत है ना, चनार आगे
2: चनार है,
1: मूंगथला भी एक ग्राम पंचायत है, मूंगथला, चनार, गिरिवल, गिरिवल भी आसपास है। आप रोड कभी गए आप?
2: हाँ।
1: क्यों जाते हैं आप रोड? मामा का घर, मासी का घर तो जल्दी जाना होता है, क्योंकि मामा का घर तो मम्मी कुछ बोलेगा तो चलो मामा का घर, माँ कुछ बोलेगी डांटेगी तो चलते हैं मासी का घर, है ना? मासी और मामा मामी होते हैं।
2: हाँ।
1: मामा मामी है।
2: हाँ।
1: कितना मामा मामी? एक ही है, तब तो बहुत लाडला मामा है। क्या देते हैं मामा? कुछ भी, पढ़ाई करने से कुछ मदद मांगने से मिलता है? और ना क्या करते मामा जी, छोटे ना पढ़े?
2: घर में सबसे छोटे
1: मामा।
2: हाँ।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा, अपना बात को रखें सुंदर रूप में। और परिवार में कोई भी चीज़ होता है अरुणा, कोई भी नया चीज़, जैसे आम का सीजन में आम आएगा।
2: हाँ।
1: कोई त्यौहार में अच्छा कपड़ा आएगा, होली होता है, दिवाली समय में नया कपड़ा, तो पहले किसको देते? भाई को देते ना, बहन को देते? सही बात बताना अरुणा, तुम्हारा घर में जो रहते हैं तो किसको देता है?
2: भाई को
1: देता। बता दिया सही बात, बहन को नहीं मिलता, फिर भी अफसोस नहीं होते? भाई को आगे रखते आप? हाँ, भाई आगे रहे, भाई को मिले, हमको नहीं मिले चलेगा, लेकिन ऐसे तो थोड़ा पात्र अंतर हो जाता है ना, आपको मन में आता है भाई हमको क्यों मिलता है, झगड़ा कभी होता है दोनों भाई, अरे तुम हमेशा क्यों लेते हैं, हमें तो कम से कम मिलना चाहिए, हमें भी तो चांस मिलना चाहिए।
2: थोड़ा
1: होता है ना, कभी कभी होता है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि बराबर मम्मी पापा को समझाना चाहिए। एक बगान का दो फूल है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा, बराबर देखना चाहिए, क्योंकि जब हम समानता, जेंडर इक्वालिटी कहते हैं तो बराबर होना चाहिए। और ना आपका भी विचार में बराबर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बराबर होना चाहिए, लेकिन बहन सोचेगी मेरा भाई आगे बढ़े, भाई सोचेगा मेरा बहन आगे बढ़े, तब जाकर समानता आएगी। बहन को जब देंगे तो बहन बोला मैं नहीं लूँगा, भाई को दे दो, भाई जब को मिलेगा भाई बोलेगा नहीं मेरे हिसाब से मैं पहले बहन को, ये जब होगा तब हमारा राम राज्य आएगा, घर में राम राज्य होगा, भाई और बहन में कभी झगड़ा नहीं होगा। ऐसे करना चाहिए कि नहीं चाहिए?
2: चाहिए।
1: आप घर में बड़े हैं ना छोटे?
2: सबसे छोटे।
1: हाँ, तो सबका प्यार तो मिलता होगा? हाँ, सबका प्यार मिलता है कि नहीं? सबसे ज़्यादा प्यार कौन करते हैं आप, सबसे स्नेह?
2: मेरी बहन को।
1: बहन कितना? बहन
2: एक
1: ही बहन। पढ़ी वो क्या करती? पढ़ाई?
2: पढ़ाई तो पूरी हो गई है, अभी सिलाई करती हूँ।
1: सिलाई तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनको प्यार करते हैं, दो बहन पूरा दुर्गा और सरस्वती जैसे। हाँ, दुर्गा और सरस्वती दो बहन। अच्छा, वेरी गुड। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रश्न सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सुनते हैं अगला प्रस्तुति और खासकर हमें बहुत खुशी मिलता है जब भी गांव और अंचल में जाते हैं और खासकर जब विद्यालय में जाते हैं, विद्यार्थियों के साथ हम जब मिलते हैं तो अपना जो छुपी हुई चुप्पी को तोड़ देते हैं और अपना बात को रखते हैं, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, और बढ़ चढ़कर एक का बाद एक भाग लेते हैं। और हमारा शिक्षक तो पहले पूरा गियर स्टार्ट कर देते हैं, इसके बाद सेकेंड गियर थर्ड गियर पता कर पूरा चलते हैं। और जैसे हमारा थे अरुणा और सीमा नीता, ये सब मिलकर वार्म अप करा दिए और उनका आवाज़ को सुनते हुए और एक आवाज़ ग्रुप रेडी है तो क्या प्रस्तुत करेंगे वो उनको पता, मुझे तो पता नहीं, फिर भी अभी बताएंगे पता चलेगा। अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और क्या प्रस्तुत करेंगे, उनको कैसे महसूस होता है वो भी बताएंगे। अपना नाम बताएंगे प्लीज।
3: मेरा नाम सविता है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ, मेरा चूंकि माध्यमिक विद्यालय आगरा में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम कविता कुमारी है और मैं कक्षा 12 चूंकि माध्यमिक विद्यालय आगरा में पढ़ती हूँ और ब्लड बना रहती हूँ।
5: मेरा नाम कविता कुमारी है, मैं 12 कक्षा में पढ़ती हूँ, चौच माध्यमिक विद्यालय आगरा में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं कक्षा 12 पढ़ती हूँ, चूंकि माध्यमिक विद्यालय आगरा में।
2: चलिए सभी का नाम का साथ धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए। चलिए एक प्रार्थना ना क्या प्रस्तुत करेंगे सुना क्या आदिवासी करें। अरे वाह बहुत अच्छा, चलिए शुरू करते हैं आदिवासी।

ಮಾರಾ ವಿಷ್ಣುವೇ ವೈರಿಣ್ಯ ಬರ್ತೇರ ಸಕೇನಾ.

0: Aku bilang kau tak lebay hurre desia. Aku bilang kau tak lebay hurre desia.
1: बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा भाई। आदिवासी गीत में जो बोलापन जो सुंदरता है उनको मौका मिलना चाहिए। कभी शादी में जाते हैं, विदाई में जाते हैं, तो कोई गणगौर त्यौहार होता है, मेला होता है, तो पूरा नाचते हैं, गीत गाते, तो पूरा धूम मचा डीजे में पूरा बजते रहता है और बच्चे पूरा नाचते हैं। तो इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए। तो लीडर कौन है तुम्हारा यहाँ?
2: पूजा
1: पाठ तो करना ही पड़ता है और हमारा पूजा इस कार्यक्रम को सुंदर में सजाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चलेंगे और अरुणा हमारा इस कार्यक्रम को भी सजाएंगे। इसका बाद सुंदर है कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल मधुबन 107.8 FM पर। यह था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवल का आवाज़।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: वंस मोर गाते हुए आज बच्चों को और एक मंच मिल रहा है और इस मंच का माध्यम से अपना बात को रखेंगे। अगला प्रस्तुति के लिए अरुणा एंड दोस्त को बुलाएंगे और अपना आवाज भी सुनाएंगे, क्योंकि अरुणा तो पूरा नाम जितना काम उतना करते हैं और सबका बॉस है, सबका लीडर है। कौन अरुणा तुम्हें अच्छा दोस्त?
3: करिश्मा।
2: कौन सा क्लास के? ओ, तो उनका पास क्या विशेषता, क्या गुण है जो आपको अच्छा लगता है? सब मन का बात भी बताते, जो भी सहयोग जो भी बात होता तो दोस्त को बताते। मम्मी पापा को जो चीज़ नहीं बताते दोस्त को बता देते, हल्का हो जाते। हाँ, होते हैं ना दोस्त लोग, जैसे सुदामा और श्री कृष्ण, कितना दोस्ती है उसका। गरीब अमीर का बात नहीं, लेकिन गुण अच्छा रूप साथ अच्छा बनेंगे तो अच्छा सत्संग करेंगे तो अच्छा बन पाएंगे। चलिए देर किस बात की, अगला प्रस्तुति के लिए अरुण एंड पार्टी को स्वागत करते हैं, इस कार्यक्रम को सजाएंगे सुंदर रूप में। चलिए सुनते, जब उनका आवाज़ सुनेंगे, मम्मी पापा सुनेंगे, उनका जो अच्छा बहन जो उनको बहुत पसंद है, बड़ी बहन जो सुनेंगे, अरे देखो मेरा आवाज़ कितना सुंदर से गाए रेडियो में, जो आता है आकाशवाणी में, सभी लोग सुनते तो खुशी लगता है। चलिए अरुणा को स्वागत करते हैं और उनका दोस्त को भी शुरू हो जाइए

0: प्रभु याद में रहेंगे तो हमें खुशी मिलेगा, अच्छा बन पाएंगे, उनका आशीर्वाद, उनका गुण, शक्ति और ज्ञान जब मिलता है तो हम आगे बढ़ पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण, आपको कैसे लगा इस प्रोग्राम में, अचानक में रेडियो में माइक में आपको बोलने के लिए मौका मिला, क्या महसूस कर रहे हैं अरुण?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है, जैसे आपका अच्छा दोस्त का नाम बताए, आपका अच्छा बहन का नाम बताए, तो रेडियो भी आपका अच्छा दोस्त बन गया आपसे बात किए रेडियो के। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, खासकर ये था राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय अवल का आवाज़। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, तो रविवार हो गया है और हाजिर हो गया हूँ कार्यक्रम हम राही लेकर के हमेशा की तरह। और इन दिनों मैं ये कह सकता हूँ कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अच्छी अच्छी कहानियों को, प्रेरणादायक कहानियों को और प्रभावित करने वाली हस्तियों को आप सबके बीच में लाएं, क्योंकि हमरा ही एक ऐसा कार्यक्रम है जो हम जिसके माध्यम से समाज में एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं। खासकर हमारे जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनको जॉब अच्छी मिल जाती है थोड़ा बहुत संघर्ष करने के बाद, लेकिन ज्यादा संघर्ष अपने जीवन साथी की तलाश में करना पड़ता है। तो ये संघर्ष कुछ कम हो सके, और बल्कि ये संघर्ष हो ही नहीं, समाज सभी को एक समान समझे, यही उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं। और आप सबके सहयोग से उम्मीद है कि एक न एक दिन इस उद्देश्य में जरूर सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ ये निवेदन भी दोस्तों, कोई भी दिव्यांग साथी जो विवाहित है हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। खैर, तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में देश की राजधानी दिल्ली से श्रीमान आर के शुक्ला सर और उनकी श्रीमती जी हेमा मैम को। तो शुक्ला सर और मैम, आप दोनों का हमारे इस हमराही कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद संदीप जी।
2: जी शुक्ला सर, तो हेमा मैम आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद सुनील जी।
2: जी तो आर के शुक्ला सर, आप पहले हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताएं कि मूल रूप से आप कहां से हैं और क्या कर रहे हैं आजकल, कौन सी डिसेबिलिटी है आपको?
3: संदीप भाई, मैं मूलतः तो यूपी में कानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ
2: जी,
3: और विगत तकरीबन 40 साल से दिल्ली में ही हूँ और बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ मैं।
2: जी सर।
3: मतलब जो मेरी डिसेबिलिटी है वो
2: जी
3: बाय बर्थ है।
2: अच्छा, और वर्तमान में क्या कर रहे हैं?
3: हाँ, वर्तमान में मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में सेक्शन ऑफिसर।
2: अच्छा, तो ये आरके का पूरा नाम क्या है सर आपका? मतलब
3: राकेश कुमार शुक्ला।
2: ओके ओके ओके। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब ये कि आपकी एजुकेशन और सब कुछ जो है वो दिल्ली से ही हुई है?
3: हाँ, मेरी दरअसल प्रारंभिक शिक्षा जो है वो तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा
2: जी,
3: चित्रकूट के पास ही पड़ता है
2: जी,
3: तो वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ दिल्ली आ गया
2: जी,
3: तो दिल्ली से ही जो है 10+2 और उसके बाद फिर बीए एमए सारा सब कुछ दिल्ली से ही हुआ। 1988 में मैंने 12th पास कर लिया था, जिसी दौरान एसएससी के टेस्ट चालू हुए थे। पहला टेस्ट जो है 1987 में हुआ था, दूसरा 88 में हुआ था। तो 88 वाले टेस्ट में मैंने भी अप्लाई कर दिया
2: जी,
3: तो उसमें ही मेरा सिलेक्शन हो गया।
2: अच्छा।
3: तो उसके बाद 90 के लास्ट में रिजल्ट आया और फिर प्रक्रिया मतलब पूरी करते करते जो है उन्होंने 6 महीने लगा दिए। जुलाई 91 में मेरी पोस्टिंग हो गई
2: जी,
3: तो जुलाई 91 में मैं सर्विस में आ गया।
2: क्या बात है।
3: हाँ, और 92 में ये मेरे जिंदगी में आ गए, मतलब मेरा इनसे मिलना जुलना हो गया।
2: ये भी बड़ा अच्छा संयोग है कि जॉब पहले और फिर उसके बाद में आपके जीवन साथी का, आपके हमराही का आना हुआ आपकी जिंदगी में?
3: जी जी जी,
2: क्या
3: दरअसल क्या है कि एक हमारे मित्र हैं, वो बहुत ही मतलब एक तरीके से वो बड़े भाई की तरह ही है हमारे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉइंट डायरेक्टर थे, अब तो रिटायर हो गए। आपने शायद नाम भी सुना हो डॉक्टर राम मिलन व्यास का।
2: जी सर।
3: तो उनके पास मतलब ये आती जाती थी, मतलब ये हंसराज से थी, वो भी हंसराज के ही पड़े हुए थे
2: जी।
3: तो दरअसल क्या कि उस टाइम पे उनकी पीएचडी चल रही थी
2: जी,
3: तो थीसिस वगैरह लिखने के लिए उन्होंने कहा होगा अपने लेक्चरर्स को
2: जी।
3: तो वहाँ उस दौरान एक श्रीवास्तवा जी थे, तो उन्होंने इनको उनके पास भेजा।
2: अच्छा।
3: कि भैया आप सर के पास चले जाओ, उनके थीसिस वगैरह में थोड़ा सा मदद कर दो
2: जी।
3: तो ये रीडिंग के लिए वहाँ जाती थी उनके पास
2: जी।
3: वो वहीं पर हमारी इनसे मुलाकात हुई।
2: क्या बात है सर, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो हम चाहेंगे कि सर कार्यक्रम में आगे बढ़े, उससे पहले हेमा मैम भी जरा अपने बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं। और श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि हेमा मैम जो है वो दृष्टिवान है, उनको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी नहीं है। जी हेमा मैम।
4: नमस्कार संदीप जी।
2: जी।
4: दिल्ली से बिलोंग करती हूँ
2: जी,
4: और एजुकेशन मेरी दिल्ली में ही हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया
2: जी,
4: और उसके बाद इनसे फिर मुलाकात हो गई
2: जी।
4: वहाँ के हंसराज कॉलेज के प्रोफेसर थे डॉक्टर तनेजा
2: जी
4: और डॉक्टर श्रीवास्तव
2: जी, जी,
4: उनके थ्रू मुझे डॉक्टर रामलाल व्यास से मुलाकात हुआ। उनकी पीएचडी हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रहे थे
2: जी,
4: तो मैं उनके साथ उनकी मतलब थीसिस कंप्लीट करवाने में उनकी हेल्प करती थी। वहाँ इधर एक इनकी संस्था थी मुंबई,
2: अच्छा,
4: तो उन्होंने मुझे उसमें भी शामिल किया।
2: तो
4: शामिल
2: आप,
4: होने के बाद
2: जी, आप भी कोई जॉब कर रहे हैं मैम?
4: नो, मैं हाउसवाइफ।
2: ओके ओके।
4: मैंने इनकी मतलब जॉब तो उनके ऑफिस में, जब इनकी मेरी मुलाकात हुई आना जाना हुआ
2: जी,
4: तो इनके ऑफिस में तो कह रहे थे कि हम अपने ज्वाइन कर लो, मगर मेरे को नहीं करना था जॉब।
2: क्या बात, बहुत खूब जी।
4: मैंने कहा नहीं, पहले इनकी हेल्प है बाद में जॉब।
2: पूरी तरह से मतलब आपने घर परिवार को संभाला।
4: हाँ सब।
2: क्या बात,
4: जॉब यही है।
2: जी जी जी। हाँ तो शुक्ला सर
3: जी,
2: अब बताएं सर, आप जो मिलने की कहानी जो बता रहे थे जिसमें बीच में मैंने आपको रोका जी, जी जी जी, बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, अब बताएं।
3: तो मतलब वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई इनसे
2: जी,
3: और फिर जो उनकी वाइफ थी डॉक्टर व्यास जी की
2: जी,
3: तो उन्होंने भी इनको मोटिवेट किया, इनको मतलब कहा कि भाई देखो ये लड़का बहुत अच्छा है, और मेरी राय ये है कि तुम भी जो है ना
2: जी,
3: मतलब लाइन से ही शादी करो
2: जी,
3: और भाई इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं मेरी ये राय है कि भाई मतलब अगर तुम्हें सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो तुम जो है मतलब चयन कर लो
2: जी।
3: तो फिर मतलब हमारी बात आगे बढ़ गई, फिर मिलना जुलना शुरू हो गया
2: जी।
3: दरअसल मैं रामजस में था, ये हंसराज में थी, तो रामजस और हंसराज की कोई ज्यादा दूरी भी नहीं है।
2: अच्छा।
3: फिर हाँ, फिर मतलब हमारी मुलाकातें बढ़ती गई, और बस मतलब तकरीबन 6 महीने हम मतलब रहे होंगे, उसके बाद फिर अपना विवाह सूत्र में बंध गए।
2: क्या बात है सर, बहुत खूब, बड़ा मतलब
3: मतलब 6 महीने एक दूसरे को मतलब जानने में,
2: जैसे
3: जानने
2: कहते हैं ना वो महानगर में जिंदगी बड़ी फास्ट होती है, तो आपका भी जो कार्रवाई है सारी बहुत फास्ट हो गई मतलब।
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और तो, देखिए देखते देखते 28 साल निकल गए।
2: 28 साल निकल गए, क्या बात। तो 1993 में आपका विवाह हुआ मतलब।
3: जी जी जी जी
2: जी, बहुत खूब बहुत खूब। तो सर मैम से पहले भी कहीं कोई बात बात चली है आपकी या नहीं चली?
3: नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं,
2: कहीं नहीं। तो ये तो मतलब बहुत भाग्यशाली है आपकी, जीवन में जो आए पहले ही उनसे ही बात बन गई
3: जी।
2: इस बीच में सर मतलब चूंकि आपका घर परिवार यूपी में था
3: जी,
2: तो वहाँ भी तो कुछ प्रयास चल रहे होंगे ना फैमिली में?
3: हाँ प्रयास तो किए मतलब, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। और दूसरी बात ये कि वहाँ क्या है कि मतलब वो आमतौर पे मानना ही है लोगों का कि ये भाई ये हैंडीकैप है तो हैंडीकैप ही मतलब कोई ऐसा साथी मिले तो वो ज्यादा मतलब इनके लिए बेनिफिट होगा।
2: ऐसा आपसे किसी ने मतलब डायरेक्टली भी कहा या बस ये सुनी सुनाई बातें या इधर उधर जो फैमिली मेंबर्स जी?
3: कहा तो नहीं, लेकिन जो बातें मतलब लोगों के बीच में मैंने सुनी
2: जी जी जी, जी।
3: वो आपके सामने में।
2: हाँ बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर सोच यही रहती है लोगों की जी।
3: हाँ, और हालांकि मदर मेरी जो है ना वो इस मायने में बहुत जागरूक कहें या मतलब मोटिवेट करने वाली
2: जी।
3: मतलब वो मेरे फादर को मतलब हर तरह से जब मैं छोटा था मतलब स्कूल के लिए भी उन्होंने ही मतलब मेरे फादर को प्रेरित किया कि भाई ऐसे जीवन कैसे इसका व्यतीत होगा, भाई हम लोग कितने दिन तक रहेंगे और भाई कहीं इसको डाल दो, कहीं मतलब पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो कुछ बन जाएगा। और वास्तव में उनके आशीर्वाद से ही मैं आज जो कुछ भी हूँ। मैं तो ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी माँ सभी को मिले।
2: बहुत खूब सर। तो आपके फैमिली में कोई और को किसी को ये प्रॉब्लम थी किसी तरह की सर?
3: अच्छा, किसी को भी नहीं, किसी को भी।
2: और आप शहर से थे या गांव से थे?
3: नहीं, मैं शहर से ही, मेरी जो कानपुर सिटी में ही पैदाइश हुई थी।
2: कानपुर सिटी में। तो शहर में आमतौर पर थोड़ा सा माहौल अपेक्षाकृत थोड़ा सा ठीक होता है मतलब?
3: उस टाइम पे ऐसी बात नहीं, मेरे फादर ने प्रयास भी बहुत किया
2: जी,
3: जब मेरा जन्म हुआ तो उस टाइम पे सीतापुर एक जगह है यूपी में
2: जी,
3: वहाँ का हॉस्पिटल सबसे बढ़िया माना जाता था, वहाँ पे डॉक्टर ले करके गए। मेरी सिस्टर मतलब शादीशुदा तो वो और मेरे फादर मेरे को लेकर के गए, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने ये बोला कि भाई अभी तो ये छोटा है और जब एक आध साल का हो जाए तब लेकर के आना
2: जी।
3: बाद में फिर जब लेकर के गए तो बोला कि भाई ये तो इसके आंखों में तो कुछ है ही नहीं, नसें इसकी सूखी पड़ी हुई हैं। और अलीगढ़ में भी एक हॉस्पिटल होता था उस टाइम पे, वहां पर भी लेकर गए, जहां जिसने बताया मतलब वहां दिखाया, लेकिन कहीं से कोई सक्सेस नहीं मिली।
2: लेकिन सक्सेस मतलब आंखों के मामले में भी नहीं मिली, और जो वहां पर जीवन साथी की तलाश में भी आपको पहले ही समझ में आ गया था कि भाई कोई फायदा नहीं है यहाँ पे ज्यादा तलाश करने से।
3: हाँ हाँ, जीवन साथी के रूप में तो यूं कहें ना के बराबर ही, मतलब तलाश जो भी हुई वो ना के बराबर ही रही।
2: तो थोड़ा सा सर आपके समय में बताइए ना कि मतलब क्या होता था, जैसे आप कभी गाँव जाते होंगे मतलब शहर जाते होंगे अपने घर जाते होंगे तो फैमिली वाले आपके साथ बैठ करके पूछते थे, बात करते थे भाई क्या चाहते हैं आप, क्या अब जॉब भी लग गई है, क्या इरादा है?
3: मतलब वैसे तो हर तरीके से बातचीत करते थे और तारीफ भी करते थे और मतलब लोगों के सामने लोग, लेकिन इस विषय में कि भाई अब नौकरी लग गई तो शादी विवाह मतलब हो जाए इसका, वो कोई बातचीत नहीं।
2: अच्छा, इस बारे में कोई बातचीत नहीं होती थी। तो जब सर आपका मैम से जब ये तय हो गया, आपने बताया तो होगा ही घर वालों को?
3: हाँ हाँ,
2: बिल्कुल। उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं थी सर घर वालों की?
3: अरे उसके बाद तो उसके बाद जब पता लगा तो जो है ना
2: जी
3: भाई, अब मतलब इनके घर वालों को तो खैर होना ही था नाराज तो, लेकिन मेरे घर वाले भी कि भाई अपने आप कर लिया और बताया नहीं, और भाई थोड़ा सा वहाँ के सामाजिक तौर तरीकों के मुताबिक भी जो है
2: जी जी जी जी, जाति वाती के बारे में जो आमतौर पर सोच होती है जी।
3: हाँ हाँ
2: जी,
3: तो मेरी सिस्टर ने और मेरे बहन भाई ने समझाया कि देखो
2: जी
3: अब इसकी पोजीशन भी तो देखो, और मतलब अगर अपने आप कर लिया तो कौन सा पहाड़
2: टूट पड़ा, बिल्कुल सही है।
3: हाँ, कौन सा गुनाह कर दिया
2: जी,
3: और भाई ये प्रयास तो हम लोगों का था,
2: बिल्कुल सही है,
3: हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाए
2: जी,
3: हम लोगों ने कुछ नहीं किया तभी तो उसने ये ऐसे कदम उठाए।
2: क्या बात है, बहुत खूब जी।
3: तो फिर मेरे फादर राजी हो गए और यहाँ से मेरे को और मेरी वाइफ को दोनों को ले गए।
2: अच्छा,
3: फिर वहां जा करके मतलब काम ने रिसेप्शन वगैरह भी दिया, छोटी मोटी पार्टी जो होती है तो मतलब और नाते रिश्तेदारों को सबको बुला करके
2: जी,
3: इनके घर वाले भी 6 महीने में मान गए।
2: विवाह के बाद 6 महीने तक नहीं माने मतलब वो भी?
3: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
2: जी। तो अब बात करते हैं जरा हेमा मैम से। तो हेमा मैम, आप तो मतलब अच्छा खासा आपका मतलब पढ़ाई चल रही थी, और जब सर का प्रस्ताव आपके सामने आया तो मतलब आपको कुछ कठिनाई नहीं हुई निर्णय तक पहुंचने में, या पहले से ही आप?
4: कठिनाई तो नहीं हुई, बस मुझे जो व्यास जी की मिसेज थी ना
2: जी,
4: बिमला भाभी
2: जी,
4: उनका व्यास जी जो मिसेज उनका बिमला व्यास नाम था।
2: अच्छा।
4: तो उन्होंने मुझे हाँ मतलब इतना वो कर दिया, तो मैं फिर मैं कहा ठीक है देखा जाएगा।
2: तो वो दृष्टिवान थी या दृष्टिबाधित थी?
4: वो दृष्टिबाधित,
2: वो दृष्टिबाधित थी। अच्छा, तो वहाँ मतलब उस फैमिली को देख करके जी,
4: क्या कह रहे हैं सर?
2: उस फैमिली को देख करके मतलब कहीं ना कहीं आप पहले ही प्रभावित थे मतलब?
4: जी जी जी जी जी
2: जी जी। जो आपको एक तरह
4: से अपनी संदीप जी,
2: जी
4: मैंने अपनी लाइफ में कॉलेज टाइम पे मैंने, मैं हकीकत बताती हूँ, मैंने ब्लाइंड को नहीं देखा।
2: अच्छा जी।
4: मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं उनके घर गई, डॉक्टर त्रिनेत्र जी भेजा
2: जी,
4: तो उनको देख के मैं हैरान रह
2: जी,
4: तो मुझे तो पता नहीं था कि वो ब्लाइंड है ना। उन्होंने मुझे कहा, सर ने बोला कि मैं तुमको एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ चले जाइएगा
2: जी,
4: और वहाँ आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं चली जाती हूँ। मैं गई, बेल बजाई कि उन्होंने दरवाजा खोला और सर ने दरवाजा खोला
2: जी।
4: तो मैं देख के हैरान एकदम, डॉक्टर व्यास जी से मिलना था।
2: अच्छा।
4: तो हाँ कही कही नहीं व्यास। मैंने गुड आफ्टरनून सर, मुझे डॉक्टर तनेजा सर ने भेजा है। तो कहा हाँ आई आई आई, बस उन्होंने मतलब उनकी मतलब उन्होंने अपना काम बताया कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ हिंदी साहित्य से, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये आपको करना। मैं ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं कर। उनकी दो बेटियां थी छोटी छोटी
2: जी,
4: उनकी वाइफ आई, उन्होंने मिलवाया, मैं उनको भी देख के हैरान। तब मुझे कल आया कि एक ब्लाइंड मतलब हो करके इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो हम किसी के क्यों नहीं बन सकते।
2: क्या बात है, बहुत खूब है।
4: तो भाभी जी बोली कि हेमा तुम अगर मेरी सलाह मानो तो किसी के साथ ऐसे करना तो उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी, तुम्हारा भी आगे भविष्य बन जाएगा
2: जी।
4: मैंने कहा ठीक है भाभी जी, तो मैंने फिर ठान लिया, मैंने कहा करना है तो ठीक है, अब भाभी के मुताबिक ही चलना
2: जी।
4: अब तक हमारा भाभी का मतलब वो तो चले गए बेचारे, डॉक्टर व्यास जी अब अकेले हैं, तो अब तक उनकी 3 बेटियां हैं, काफी अच्छा चल रहा है।
2: तो फिर
3: मतलब ये है कि अभी भी अगर कोई फंक्शन होता है, चाहे छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा
2: जी, जी।
3: तो हमारे बिना वो फंक्शन अधूरा रहता है।
2: क्या बात है, अच्छा
3: हाँ
2: बहुत जबरदस्त जी। तो हेमा मैम, मतलब आपके फैमिली में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कौन कौन है?
4: हाँ मैं बता देती हूँ, मेरी मदर नहीं थी।
2: अच्छा।
4: हम दो ब्रदर दो सिस्टर थे, मैं बड़ी सिस्टर मतलब, और मेरी छोटी थी।
2: अच्छा। और आपके फादर?
4: और बड़ा ब्रदर थे वो घर जमाई एक तरह से।
2: अच्छा। और आपके
4: छोटा ब्रदर था वो हमारे पास ही था, हमारी छोटी सी फैमिली।
2: और आपके पिताजी?
4: मेरे फादर पहले गवर्नमेंट जॉब थे
2: जी।
4: वो जॉब बंद हो गया था तो अपना बिजनेस था उनका।
2: अच्छा अच्छा।
4: हाँ
2: तो जब ये सर से मुलाकात हुई आपकी
4: जी जी,
2: तो उस समय भी मतलब आप बस व्यास सर को देख करके ही प्रभावित थे, या धीरे धीरे आपने अपना मन बनाने के लिए भी मतलब शुक्ला सर का भी मतलब अध्ययन एक तरह से किया कि?
4: हाँ, गया मेरा
2: ये बताएं जरा मैं।
4: हाँ
2: जी
4: मैं बताती हूँ
2: जी।
4: व्यास की तरफ से तो था ही था
2: जी, जी।
4: जब मैं इनसे मिली ना तो मुझे इनका नेचर स्वभाव बहुत अच्छा लगा
2: जी।
4: मैं ये बताऊं
2: जी,
4: मैं मतलब बहुत लोगों से मिली, बहुत लोग मेरी मतलब उसमें आए, मोबाइल संस्था थी ना तो वहाँ हम लोग फंक्शन वगैरह करते थे डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बहुत लोग मिलते थे। तो कहते ना उंगली पकड़ के पोछा पकड़,
2: बिल्कुल
4: बहुत लोग आए, मगर मुझे इनके जैसा स्वभाव किसी का नहीं, मुझे इनका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा
2: जी।
4: तो इनसे मतलब मेरा दिल लग,
2: ब्लाइंडनेस कभी आपके लिए मतलब कोई परेशानी नहीं रही ब्लाइंडनेस की?
4: ये तो नहीं मेरे लिए तो नहीं रही, ये तो ये बता सकते हैं कि मेरे से आपको इनको कोई परेशानी हुई हो?
2: नहीं नहीं नहीं, वो तो खैर हम जानेंगे ही।
4: हाँ।
2: जी जी जी
4: मुझसे नहीं, मुझे कभी कोई नहीं हुई।
2: आमतौर से होता है ना मैं महिलाओं के मन में,
4: आपको मेरे को छोड़िए और भी शायद आपकी ना आपके उसमें आए होंगे, मेरे को सब जानते हैं दिल्ली में।
2: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
4: दिल्ली का कोई ऐसा मतलब लाइन सॉरी भाई नहीं है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगी, मैं जो वर्ड यूज कर रही हूँ ना मतलब है ना जो डिस्टर्बेंस है
2: जी,
4: जो मैं कह रही हूँ तो सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे नेचर के बारे में सब जानते हैं।
2: बहुत बहुत।
4: मगर एक बात तो बुरा मत मानिएगा
2: जी जी,
4: मैं दिल्ली जैसा आदमी कोई नहीं
2: जी। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया।
4: कोई भी नहीं है
2: जी जी जी जी,
4: मैं नहीं तो सब लोग एक क्या कहते हैं सेल्फिश को क्या बोलेंगे।
2: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
4: मैंने उस टाइप
2: सब अपने मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं। जी
4: जी जी जी जी।
2: तो जब आप
4: हमेशा अभी भी देखो एजुकेशन में होकर के ना दूसरों की हेल्प पूरी करते हैं
2: जी,
4: ठीक है, और लोग जो और उनके दोस्त वगैरह उनसे फायदा उठाते हैं।
2: अच्छा,
4: जब काम होता है ना तब शुक्ला जी याद आते हैं, कभी शुक्ला जी नहीं याद आते।
2: ये मैम ज्यादातर पत्नी की शिकायत रहती है। लेकिन खैर शुक्ला सर है ही इतने विनम्र की सबकी हेल्प कर दिया करते हैं। अच्छा मैम बताएं, जब आपने घर वालों को बताया आपने
4: जी,
2: फिर क्या कहा आपके फैमिली में सबसे पहले जब इस बारे में सुना?
4: पहली बात मैं बताऊं
2: जी,
4: मैं हकीर बात में झूठ नहीं बोलूंगी
2: जी, जी।
4: मेरी फैमिली एग्री नहीं।
2: बिल्कुल, वही हम जानना चाह रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा था, क्यों मना कर रहे थे
4: जी। उनके मन में नहीं, उनको मैंने बताया नहीं। अच्छा। मुझे पता था कि नहीं मानेंगे
2: जी,
4: कितना भी मैं कोशिश करूं मनाने की नहीं मानेंगे। मगर एक मेरे मौसा जी थे और मेरे नाना जी बहुत वो थे, तो वो कहते थे ठीक है कोई बात नहीं हम तेरे साथ हैं। मगर उस बीच क्या हुआ, उनका वो एक्सपायर, मेरी शादी होने से पहले एक्सपायर हो गए।
2: अच्छा।
4: और जो मेरे मौसा जी थे ना वो भी मेरी शादी से एक दिन पहले एक्सपायर, मेरा 21 का शादी था
2: जी,
4: और उनका 20 को उनको उनको मतलब जो 20 तारीख को वो एक्सपायर।
2: अच्छा।
4: हाँ,
2: जो सपोर्ट कर रहे थे आप, जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे।
4: जी जी जी, जी।
2: जब तक आप
5: इनकी भाभी थी, लेकिन की भाभी थी ना उनको भी पता था, लेकिन जो है ना वो उन्होंने मतलब डर की वजह से किसी को
4: नहीं बताया।
5: इनको सारी जानकारी थी।
2: लेकिन शुक्ला सर यहाँ पर एक प्रश्न मेरा आपसे है, कभी आपके मन में नहीं आएगी यार जब फैमिली में पता नहीं है, लोगों को ज्यादातर को बताया नहीं है, मैं कैसे एकदम कदम उठा लूं कल को बाद में?
5: दरअसल क्या है कि मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा था और इन्होंने भी मतलब मुझे पूरा भरोसा दिया था, तो इस वजह से हम दोनों मतलब बिल्कुल।
4: संदीप जी यहाँ पे मैं इनकी बात काटती हूँ
2: जी,
4: आपको बताती हूँ
2: जी,
4: क्या हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम वेल एजुकेटेड तो थे
2: जी जी जी,
4: है ना, हमने ठान लिया तो करना है तो करना है,
2: बिल्कुल
4: देखा जाएगा जो होगा
2: जी,
4: तो हमने कर लिया।
2: यानी एक तरह से सर को वो सर जो कह रहे हैं ना कि आप पर भरोसा था कि घर वाले अगर कुछ भी, घर वाले कितने ही विरोध में हो जाए कुछ भी कर लें, लेकिन आप पीछे नहीं हटने वाले थे। तो आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह में बताया आपने किसी को, उनका क्या रिएक्शन था अगर बताया हो तो?
4: मेरे फ्रेंड सर्कल में हाँ, उनके मतलब पेरेंट्स तैयार नहीं।
2: अच्छा।
4: मेरी फ्रेंड तो तैयार थी मगर उनके पेरेंट्स तैयार नहीं।
2: आपने अपने बारे में जब बताया, खुद के बारे में आपने?
4: हाँ।
2: अच्छा।
4: वो भी मतलब वो मना कर रहे थे कि नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो।
2: तो जब मैम शुक्ला सर से आपकी मुलाकात हुई तब आप क्या कर रहे थे, पढ़ाई कौन सी कर रहे थे उस समय?
4: मेरा बीए ही था।
2: बीए चल रहा था आपका ना?
4: हाँ,
5: बीए फाइनल ईयर था।
2: बीए फाइनल ईयर था
4: जी।
2: तो आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे थे हेमा मैम, और जाहिर सी बात है कि मतलब जिस कॉलेज में आप थे वो कॉलेज भी अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित।
4: जी जी।
2: तो कभी मतलब आपकी नजर में कोई और व्यक्ति आया हो या आप पर किसी की नजर रही?
4: जी नहीं,
2: ऐसा कुछ नहीं हुआ।
4: नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये तो मेरे कॉलेज में आप जाके पूछ लीजिए
2: जी।
4: हाँ, ऐसा कुछ नहीं था।
2: क्या बात, बहुत कुछ है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए भी यही कहा जा सकता है कि शुक्ला सर ही एक तरह से पहली बार जिंदगी में आए और बस आप दोनों आज

0: देता है और जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, यही सब बातें जो हमेशा दोहराई जाती है। दिल्ली में भी यही सब चलता है।
1: एक्चुअली संदीप भाई क्या है, हमारे देश में अजीब विडंबना है।
0: जी सर,
1: एक रिक्शे वाले को दे देंगे।
0: हाँ जी जी,
1: दृष्टिबाधित चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, हाँ, उसको ये सोचेंगे यार इसको मतलब हमारी लड़की कैसे रहेगी, कैसे जीवन यापन करेगी।
0: ये बड़ा ये सर कम, ये मतलब बड़ी गंभीर समस्या है देखा जाए तो। ये समाज दिव्यांगता को पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं कर पाता
1: है। हाँ, जबकि समय बदल रहा है
0: जी।
1: तो समय के अनुसार चेंजेस आने चाहिए
0: जी,
1: लेकिन अभी भी हम लोगों के मामले में लोगों की वही पुरानी सोच।
0: हाँ, जबकि आज इतने सालों से आप लोग बहुत सक्सेसफुली मतलब अपना जीवन चला रहे हैं, उसके बावजूद यह हाल है बताइए
1: जी।
0: तो आपके सर शहर में कानपुर वगैरह में आपके फैमिली में जाना होता है या अभी संपर्क
1: नहीं है? जाना होता है, और अब तो मतलब हम लोग जब जाते हैं तो हमें मतलब अच्छी आवा भगत मिलती है।
0: अच्छा,
1: मतलब अच्छी तो
0: रेस्पेक्ट पूरा मिलता है मतलब?
1: जी, पूरा रिस्पेक्ट मिलता है और मतलब अच्छे तरह से आदर भाव करते हैं, और जब मिलवाते हैं मतलब हमारे भाई वगैरह भी जो है ना, मेरे एक बड़े भाई हैं, एक छोटा है, तो छोटा तो यही दिल्ली में ही रहता है।
0: अच्छा,
1: बड़े वाले वहां रहते हैं, तो मतलब बहुत अच्छी तरह से बहुत मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं।
0: तो शुक्ला सर उस जमाने में मतलब तकनीक वकनीक का तो खैर कहीं नामो निशान ही नहीं था।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: तो कभी कभी आपके मन में भी आता होगा ना कि यार मैं मतलब साइटेड व्यक्ति के साथ सामंजस्य कैसे बिठाऊं, मैं मतलब हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग और इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी अलग, तो इस सब पर मतलब आपने कुछ सोचा या कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसे?
1: नहीं, दरअसल मेरे ऑफिस में तो फिर अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले जो मेरा प्रोफाइल वर्क था वो टेलीफोन का था, और अब जो है जब से मैं सेक्शन ऑफिसर बना तो अब फाइल वर्क आया मेरे पास, तो अब तो मेरे नीचे भी 10-12 आदमियों का स्टाफ है, तो उनसे मुझे हेल्प मिल जाती है। तो ज्यादातर तो साइन ही करना होता है, बाकी वो पढ़ करके खुद सुनाते हैं
0: सर। ये मैं मेरा मतलब था ये सर कि खासकर घरेलू मामलों में कि जैसे अच्छा, कुछ एक्सपेक्टेशन रही होंगी मैम की भी, अगर नहीं रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी होता ही है ना कि मतलब उम्मीद तो होती है यार किसी वाइफ को अपने हस्बैंड से।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो आपके मामले में कौन सी परिस्थितियां रही सर?
1: किस तरीके से?
0: कि भाई जो रोजमर्रा के जो कामकाज होते हैं हमारे जीवन से संबंधित।
1: देखिए, ज्यादातर तो हम काम करते थे तो मतलब साथ ही जाते थे
0: जी
1: शुरुआत में
0: जी।
1: मतलब कोई भी सामान लाना है तो हम साथ ही जाते थे।
0: अच्छा।
1: और घर में हालांकि मदर वगैरह थी तो वो अपना घर का ही काम देखती थी, कोई ना कोई तो मेरे साथ मतलब हमेशा रहा ही।
0: अच्छा, हमेशा कोई ना कोई था ही जी।
1: हाँ हाँ,
0: बहुत बढ़िया जी सर।
1: अब तो फिर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब तो सारा काम बच्चे ही करते हैं, हमें कहीं आना जाना ही नहीं पड़ता।
0: तो कितने बच्चे हैं सर, थोड़ा सा यहाँ पर ये भी मैं पूछना चाहूंगा।
1: जी, मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक जी, बेटी है
0: जी,
1: और 2 बेटे हैं।
0: क्या कर रहे हैं सर तीनों, जरा बताएं प्लीज।
1: बेटी मेरी जो है सबसे बड़ी है, वो वैसे तो MA BEd है
0: जी,
1: लेकिन इस समय वो फॉरेन में है, USA में जॉब कर रही है।
0: क्या बात। और दोनों जो आपके पुत्र हैं वो?
1: हाँ, 3 साल से वही।
0: अरे बहुत बहुत कुछ है। और दोनों आपके जो पुत्र हैं वो?
1: और बेटे मेरे बड़ा वाला जो है वो योगा ट्रेनर है,
0: योगा
1: की कोचिंग देता है।
0: योगा की? ओके।
1: हाँ जी।
0: और दूसरा बेटा जो है वो?
1: दूसरा बेटा उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बीएड कर रहा है।
0: क्या बात। पूरी तरह से मतलब सब कुछ कहा जाए कि वेल सेटल्ड मामला है।
1: हाँ जी।
0: तो सर आपकी बिटिया जो US में है
1: जी,
0: कभी मतलब इस बारे में चर्चा होती है उनसे कि वहाँ पर जो हमारे VI साथी हैं, ब्लाइंड साथी हैं?
1: नहीं, उसको जो है ना वहाँ के बारे में भी
0: दादा अभी नॉलेज है।
1: ओके। हाँ, नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है।
0: जी जी,
1: मैंने एक आध बार जिक्र भी किया उसे
0: जी,
1: तो उसने कहा पापा मेरे को पता नहीं।
0: अच्छा।

0: बाकी मतलब बातचीत तो डेली ही होती है।
1: जी
0: और उदयपुर जब हम लोग गए थे तो बेटी थी
1: अच्छा आई
0: उदयपुर
1: थी क्या वो
0: जो।
1: उदयपुर आई थी
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: क्या बात है। अच्छा अच्छा वही मैंने कहा ना कि अच्छा
0: याद भी करती है अभी तक जो है ना। हाँ, उनको
1: अच्छा
0: भूल नहीं पाई वो। बहुत एंजॉय किया दोनों। एक हमारे साथ थे ना नेगी जी,
1: जी।
0: त्रिपन सिंह नेगी,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: तो उनकी बिटिया भी थी और मेरी बिटिया भी थी, तो दोनों की
1: जी
0: अच्छी कंपनी
1: जी जी
0: हो
1: जी
0: गई थी। तो वो उन लम्हों को जो है वो अभी तक भूल नहीं पाई। जो क्या है वो कौन सा था, पटकल लेक,
1: अरे
0: कौन सा लेक था वो, पिचोला लेक या कौन सा लेक
1: हाँ
0: था
1: हाँ वो
0: ना।
1: फतेह सागर
0: हाँ वो
1: पिचोला। जी।
0: हाँ वहां पर बहुत एंजॉय किया उन दोनों बच्चों ने। हाँ बोटिंग बोटिंग जब करी ना, बोटिंग
1: जी
0: में बहुत एंजॉय किया।
1: क्या बात क्या बात।
0: हाँ और डेली तो मॉल जब 3-4 दिन जब तक रहे डेली मॉल
1: हाँ वो मॉल सामने ही
0: जाते थे।
1: था,
0: हाँ
1: वो सेलिब्रेशन मॉल जो था वो
0: मॉल
1: सामने ही था। खैर तो
0: तो
1: श्रोताओं, ये पुरानी थोड़ी
0: उनका
1: सी यादें हैं जो ताजा हो गई सर के
0: जी जी
1: माध्यम से। तो हेमा मैम जी, उस समय मतलब आपने क्या एक्सपेक्टेशंस की थी सर से, आपकी क्या
0: नहीं मैंने
1: जी?
0: ऐसा कुछ नहीं, मुझे बस शादी करना था मैंने कर लिया।
1: नहीं, लेकिन आपको मन में कभी कि यार कभी कभार चाय बना लें तो ठीक हो, ये छोटी छोटी बातें होती हैं
0: नहीं
1: जिंदगी
0: कभी
1: की, कभी
0: कभी
1: आपने
0: नहीं
1: सोचा?
0: कभी नहीं
1: जी।
0: कभी नहीं।
1: अच्छा क्या बात, मतलब आपको अपने आप पर तो पूरा भरोसा था ही था कुल मिलाकर के हर मामले में। और बगैर भरोसे के मुझे लगता है कि इस तरह के निर्णय लेना आसान भी नहीं होता है। क्यों, क्या मानना है आपका? क्योंकि जो लड़कियां हिचकिचाती हैं या डिसीजन नहीं ले पाती है खासकर किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के बारे में, तो उसके पीछे क्या कारण देखती हैं आप?
0: संदीप जी अपनी सोच समझ है।
1: जी
0: मैं बस अपने बारे में तो कह सकती, मैं दूसरे बारे में नहीं कह सकती
1: नहीं, बिल्कुल
0: उनकी सोच कैसी है।
1: बिल्कुल
0: मतलब मैं नहीं, मैं अपने बारे में जरूर कह सकती हूँ कि हाँ मैं पूरी हेल्प करती हूँ ऐसा मैं।
1: लेकिन मैम आप तो हेल्प करती हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मतलब जो समाज की जो सोच है उसमें भी तो परिवर्तन होना चाहिए ना, कि
0: होना
1: जो
0: चाहिए। हाँ होना
1: जिनको
0: चाहिए
1: नहीं दिखाई देता है वो भी सब
0: जी
1: कुछ कर
0: होना
1: सकते
0: चाहिए
1: हैं, वो पूरी तरह से कैपेबल हैं हर मामले में,
0: जी।
1: तो कमी कहाँ रह जाती है?
0: दरअसल क्या है संदीप भाई, मैं आपको बताऊं कि
1: जी।
0: जब तक हमारे से कोई मिलता नहीं है ना, तब तक वो हमारे बारे में नहीं जान पाता। और
1: जी
0: जब जब वो हमारे से मिल जाता है ना,
1: जी
0: वो उसके बाद फिर वो हमारे बारे में जान करके फिर वो पीछे नहीं हटना चाहता। मतलब फिर वो ये सोचता है यार
1: बिल्कुल
0: ना कि भाई ये लोग वाकई में कैपेबल हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, अगर इनको थोड़ा सा सहारे की जरूरत है, अगर इनको थोड़ा सा सहारा मिले साथ मिले तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: कहीं ना कहीं सर आपका इशारा इस बात की ओर है कि हम लोगों को, दिव्यांग साथियों को जो विवाहित हैं, उनको
0: जी
1: हर तरह की गैदरिंग में, हर तरह के फंक्शन में जितना संभव हो उतना जाना चाहिए, या मुख्य धारा के लोगों के बीच में ज्यादातर जाना चाहिए।
0: जी जी जी
1: कहीं
0: बिल्कुल
1: आपका
0: बिल्कुल
1: ये कहना तो नहीं?
0: नहीं मैं यही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग जो झिझकते हैं ना, तो हमें झिझकना नहीं चाहिए, हमें बराबर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक बार कोई साथ नहीं देगा, दो बार साथ नहीं देगा, तीसरी बार जब वो हमें देखेगा तो जरूर उसके मन में भी आएगा कि भाई इनको भी साथ में लेना चाहिए। अच्छा ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं पिछले 30 साल से सर्विस में हूँ।
1: जी
0: जो लोग कभी हमारे जैसों को या हमें दरकिनार किया करते थे,
1: जी
0: आज वो हमारे से जब जुड़ गए, हमारे बीच आ गए, तो
1: जी
0: वो और 10 लोगों को ये बताते हैं कि यार हमारी जो सोच इनके प्रति थी ना वो गलत थी,
1: जी
0: ये लोग हमारे से ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा कैपेबल हैं,
1: जी
0: और जो काम हम नहीं कर सकते वो ये कर सकते हैं। कई कई चीजें ऐसी हैं जो कि वो मतलब हमारे से ज्यादा इनके पास है।
1: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। बड़े शहर में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं,
0: जी
1: आमतौर से देश के हर कोने से,
0: हाँ जी,
1: मतलब वैवाहिक संबंधों को लेकर के कई तरह के जो केस हैं, कई तरह की घटनाएं जो है वो सुनने को मिलती है पढ़ने।
0: हाँ जी,
1: लेकिन पिछले कुछ समय से सर ऐसा हो रहा है कि ये जो बड़े शहर हैं जितने भी, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो और भी, मतलब आजकल जो उप महानगर है या महानगर जो है, तो हमारे क्षेत्र में भी दिव्यांगों के मामले में भी वैवाहिक संबंधों को लेकर के कई सारे अपराध, कई सारी समस्याएं, कई सारे इस तरह के केस सामने आ रहे हैं सर। तो आपको क्या लगता है कि ये सब, मतलब जो है कहीं ना कहीं और हमारी जो छवि है उसको थोड़ा सा कहीं कुछ, मतलब उस पर खतरा नहीं उत्पन्न हो जाए, आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, अपवाद तो हर वर्ग में ही होते हैं
1: जी,
0: लेकिन अब ये कि जो हमारे कैटेगरी के लोग हैं उसमें अगर ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है तो वो थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट हो जाती है।
1: बिल्कुल सर, जो समाज थोड़ा छोटा होगा उसकी समस्याएं जल्दी लोगों की निगाह में आ जाती है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: लेकिन बाकी अपवाद तो हर जगह ही होते हैं।
1: जी जी,
0: हाँ, तो, क्या कहना चाह रही थी?
1: जी, मैं वही कह रहा था कि ये अपवाद तो है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आमतौर पर जितना हो सके इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनको नजरअंदाज किया जाना चाहिए।
1: जी, तो हिमा मैम।
2: जी सर।
1: अब तक तो आप बहुत लोगों से मिले होंगे, कई फैमिलीज को देखा होगा आपने।
2: जी सर।
1: उस जमाने में यानी आज के 30 साल पहले और अब में आपको परिवर्तन नजर आता है कि नहीं अपने साथियों के बीच में या दृष्टिबाधित फैमिलीज में?
2: नहीं, कोई ऐसा तो नहीं लगता सीधा।
1: अच्छा, कोई खास बदलाव आपको
2: नहीं
1: नजर? नहीं, आज मतलब तकनीकी रूप से काफी कैपेबल हो गए हैं हमारे साथी, दिव्यांग साथी, ऐसा नहीं लगता?
2: मैं सर कहीं जाती नहीं हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी जी जी जी,
2: मैं अपने तक सीमित।
1: आप तो घर परिवार में खुश है, मतलब?
2: जी जी जी।
1: बाहर कार्यक्रमों में कभी कभार जाना हो जाए तो हो जाए?
2: हाँ, कभी कभी, साल में एक बार दो बार बस।
1: जी, तो बच्चों का खासकर क्या रवैया रहता है मैम, जैसे सर के प्रति, आपके प्रति, आपको कभी ऐसा महसूस? जी,
2: ये तो यही बता ना सर, मैं क्या बता?
1: जी नहीं, आप जैसे आंखों, बहुत सारी चीजें क्या होता है ना मैम कि इंसान आंखों से देख करके महसूस कर लेता है।
2: जी,
1: तो उस लिहाज से हम पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि आई कांटेक्ट जो आप लोगों का होता है वो मतलब काफी चीजें बयां कर देता है।
2: हाँ।
1: जी,
2: इनका पता है, इनका चुप रहना ही पता चल जाता है कि गुस्से में।
1: मतलब सर को गुस्सा आता है?
2: हाँ, तो चुप रहना ही इनका बेटर होता है, तो पता चल जाता है गुस्से में।
1: जी,
2: बस यही है और कुछ नहीं।
1: अच्छा, तो इतने सालों में मैम ऐसे भी पल आए होंगे कि जब आप दोनों के बीच में भी थोड़ा कभी कुछ खटपट हो जाती होगी?
2: संदीप जी, वो तो होता है हर जगह, हर घर में,
1: हर जगह होता है।
2: देखिए, चाहे हमारा घर हो, चाहे नॉर्मल सेटल्ड लोग जो है उनके घर में भी होता है, इतना छोटा मोटा चलता है।
1: जी,
2: मगर इतना हम लोग ज्यादा नहीं होता,
1: लंबा नहीं
2: खींचते हैं बस
1: बहुत। तो आमतौर पर मैम, जो शुरू शुरू में जब विवाह हुआ तो लोग जो देखते रहे होंगे आस पड़ोस के,
2: जी,
1: उनका क्या रवैया रहता था आप लोगों को देख करके? मतलब
2: बहुत लोग हैरान होते थे कि भाई उन, अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं था कि दिल्ली की लड़की है। अब जैसे मैं तिमारपुर में हूँ, तो कुछ लोग थे आस पड़ोस में, तो जो पता चला कि मैं यही की हूँ और सब कुछ यही है दिल्ली का, तो सब हैरान हो गए, तुमने कैसे कर लिया? अरे, ये भी तो इंसान है ना।
1: बिल्कुल सही है मैम,
2: फिर से करती है, मैंने से कर दिया तो क्या होगी?
1: क्या हो गया? बिल्कुल सही है,
2: मैंने गलत ना किया। मेरे मायके में भी सब कहते थे,
1: अच्छा,
2: तुमने इनसे क्यों किया? मैंने कहा मैंने किया, मेरा मर्जी।
1: बहुत सही जी, मतलब ये सारे प्रश्न जो आमतौर पर आपको भी सामना करना पड़ा इन सारे प्रश्नों का।
2: हाँ।
1: लेकिन आपने सबको मतलब समय के अनुसार जवाब दे दिया, और आज तो शायद ही कोई होगा जो कोई ऐसी बात करता होगा।
2: नहीं, कोई नहीं करता। आप तो, अब तो सब मतलब मेरे तरफ वाले चुप, घर वाले हैं, सब इनकी मतलब बहुत इज्जत करते हैं। जो मेरे चाचा जी थे, मेरी शादी के 9 साल बाद मुझे एक्सेप्ट किया था, 9 साल बाद किया
1: जी।
2: तो वो भी मरते दम तक इनको इतना पूछते थे मुझे बिना पूछे कोई काम नहीं करना
1: जी,
2: जब तक मैं पहुंच ना जाऊं या ये ना पहुंच जाता कोई काम नहीं करना, इतना वो हो गया था।
1: तो शुक्ला सर
0: जी,
1: आपने सीखा कभी कुछ कुकिंग या ऐसा कुछ?
0: नहीं
1: कभी जरूरत ही नहीं पड़ी?
0: नहीं,
1: जैसे कई लोगों का शौक होता है ना एक्चुअली, कि कुछ खटपट करते हैं
0: जी। राज की बात बताऊं
1: जी,
0: शादी से पहले
1: जी
0: मैं चाय बना लेता था।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो
2: वो भी हीटर पर।
1: अच्छा,
2: वो भी हीटर में।
1: क्या बात।
0: चाय बना लेता था, कपड़े प्रेस कर लेता था
1: जी,
0: और छड़ी से अपने आप इधर उधर आ जाता था
1: जी।
0: लेकिन शादी के बाद मेरी छड़ी खत्म हो गई
1: क्योंकि कभी गैस को छूने की जरूरत नहीं पड़ी।
0: गैस की छूने की जरूरत नहीं पड़ी
1: जी
0: और अब छड़ी खत्म हो गई क्योंकि जो है अब दूसरी छड़ी आ गई दो आंखों वाली
1: जी। बिल्कुल सर।
0: और अब तो कहीं भी आना जाना हो, अब तो घर पर मान लो बच्चे बड़े हो गए तो मैं मतलब कभी भी अकेले चलने का चांस ही नहीं मिलता। मतलब अगर कई जगह ऐसी होती है जहाँ की मान लो नहीं लाना ले जाना मुनासिब होता है, तो वहाँ पर भी ये मेरे साथ तैयार रहती है कि भाई नहीं, तुम्हें अकेले नहीं जाना, मैं साथ चलूंगी, बच्चे अगर नहीं जा सकते तो मैं साथ चलूंगी। मैंने कहा कोई बात वहाँ मतलब ऐसा कई जगहें ऐसी होती जहाँ पर मान लो लेडीज को थोड़ा सा
1: असहज महसूस हो जी।
0: हाँ, मतलब अब मान लो भाई कोई मीट वगैरह है तो वहाँ पर, तो इनका कहना यह था कि भाई वहाँ नहीं जाऊँ, मैं अपना बाहर वेट कर लूंगी, लेकिन नहीं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना
1: जी जी जी जी जी।
0: तो अब मैं तो कभी इमरजेंसी में मान लो अकेले चलना भी हो तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती स्टिक उठाने की, मतलब स्टिक से चलने की।
1: तो आप सर अपनी जिंदगी से आपने क्या अनुभव लिया है अभी तक, आपको क्या महसूस हुआ? आपकी अपनी जिंदगी को जब आप देखते हैं और आपके जैसे दूसरे दृष्टिबाधित साथियों की जिंदगी को जब आप देखते हैं।
0: देखिए, अपनी अपनी जगह दोनों ही मतलब अलग पहलू हैं, और अगर मैं अपने मुताबिक कहूँ तो भाई मैं ये कहूँगा कि मेरे जैसा मतलब भाई सभी को साथ मतलब जैसे मुझे मिला हुआ है जैसे सभी को साथ मिले
1: जी।
0: लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल सर।
0: ना? आप भी इस बात से सहमत होंगे?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल जी। कुल मिला के आप ये मानते हैं कि भाई आज समय के अनुसार अपने अंदर हम लोग बदलाव लाएं और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बहुत ही शानदार सफर रहा आज के हमारे हमराही का आप दोनों के साथ में, और समय जो है वो इशारा कर रहा है कि अब
0: बातों में पता ही नहीं लगा
1: कार्यक्रम समाप्त करने का भी इशारा मिल रहा है। और ये बात सही है सर कि जब आपकी तरह अनुभवी साथियों से बातें होती हैं तो वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि दृष्टिबाधित साथियों को भी, दिव्यांग साथियों को भी और हमारे समाज को भी ऐसे ही अनुभवों की शायद आवश्यकता है। तो हेमा मैम, पहले आपसे जानना चाहेंगे, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी सुनने वालों? जी हेमा मैम।
2: मुझे बहुत अच्छा लगा आपने हमसे डिस्कस किया।
1: ऐसा लग रहा है काफी भावुक हो गई है मैम आप शायद कार्यक्रम करते करते बहुत वाकई में ये इंसान जो भावुक इंसान है वही शायद किसी की फीलिंग्स को समझ सकता है, मुझे ऐसा लगता है जी। शुक्ला सर, तो मैम के दिल की बात और आपके दिल की बात आप ही कह दीजिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी सुनने वालों के लिए। जी सर।
0: जी भाई, मैं तो यही कहूंगा की जैसे
1: जी
0: 28 साल हो गए, पता ही भी नहीं लगा
1: जी
0: कैसे निकल गए
1: जी।
0: तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई आगे आने वाले साथियों को भी ऐसे ही अपने साथी का चुनाव करना चाहिए जो कि एक लाइफ पार्टनर अच्छा लाइफ पार्टनर बने
1: जी,
0: और भविष्य में किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें ना आए
1: जी,
0: क्योंकि जो लव मैरिज होती हैं तो उनमें दिक्कतें तो आती ही आती हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: लेकिन अगर हम और हमारा साथी
1: जी
0: अगर उनमें अटूट विश्वास है
1: जी,
0: तो दुनिया की भी ताकत क्यों ना हो, उससे भी हम मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे।
1: जी जी जी, क्या बात, बहुत खूब सर, निश्चित रूप से दोनों का एक दूसरे के लिए समर्पित और एक दूसरे के लिए खड़े होना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि यही कहना चाह रहे हैं। तो
0: जो होती है अरेंज मैरिज में तो खैर इतनी दिक्कतें
1: नहीं आती हैं, ठीक कह रहे हैं सर जी,
0: लेकिन अरेंज मैरिज होती कहाँ है हम लोगों की, अरेंज मैरिज को करना ही नहीं, जब हमारी जो सोच है ऐसी हमारे बीच में जो लोगों की बनी हुई है तो उसमें तो अरेंज मैरिज होंगी नहीं तो फिर जो है ये संभव ही नहीं।
1: बिल्कुल सही है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमा मैम और शुक्ला सर आज,
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, आप दोनों के साथ हमारा ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। तो श्रोताओं, आपने सुना आज दिल्ली से हेमा शुक्ला मैम और राकेश शुक्ला सर को, उम्मीद है आप सबको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर मिलेंगी। कैसे प्रतिक्रियाएं देनी है वो मैं रिपीट कर देता हूँ, 94-14-15-14-15 पे कॉल करें, रेडियो मधुबन का यही नंबर है। यदि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर ही आपको संपर्क करना है। इसके अलावा आप info@radiomadhuban.in पर ईमेल भी कर सकते हैं, रेडियो मधुबन का ऐप गूगल प्ले स्टोर से ले सकते हैं आप एंड्रॉइड ऐप, और रेडियो मधुबन को आप सुनते रहें, मुस्कुराते रहें और हर किसी के जीवन में खुशियां लाते रहें, बस यही रेडियो मधुबन की गुजारिश है आप सभी से। तो श्रोताओं, आज तो दीजिए मुझे इजाजत, अगले रविवार हाजिर होऊंगा फिर किसी और हमराही को लेकर के, तब तक के लिए

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं, पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को, डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

एम शांति, आज 23 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों को बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है, सबको घर चलने का मैसेज देना है। बाबा कहते, जो पैगंबर मैसेंजर आते हैं धर्म स्थापन करने अर्थ, वो मैसेज नहीं देते हैं, मैसेज देना होता है घर चलने के लिए। लेकिन वो आते हैं तो उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं नीचे आती है, तो उनको सच्चा मैसेंजर तो नहीं कहेंगे। सच्चे सच्चे मैसेंजर तुम बच्चे हैं जो बाबा का सच्चा परिचय देते हैं, मैसेज देते हैं और घर जाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं कि पतित से पावन बनना है। बाबा कहते, तुम बच्चे भगवान के बच्चे हो। तो कहा जाता भगवान के बच्चे तो भगवान भगवती होने चाहिए। जरूर है कि वो दैवी गुणों की धारणा जब करते हैं तो भगवान भगवती नहीं लेकिन देवी देवता जरूर बन जाते हैं। बाबा आकर के हम बच्चों को कर्म की गुह्य गति का राज भी समझाते हैं और उस कर्म की

तो ये गति के आधार से श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को बाबा के समान बनते जाना है, अर्थात संपूर्ण पावन बनना है और उस मात पिता की श्रीमत पर चलना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। आज की मुरली से प्रश्न है, आजकल मनुष्य की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? बाबा का ध्यान हर एक बात में होता है, तो बाबा ये भी देखते हैं कि मनुष्य की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है। उत्तर है फैशन के तरफ। मनुष्य को कशिश करने के लिए, कशिश मना आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, देवी देवताओं के लिए भी समझते थे कि ये भी फैशन करते हैं, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करनी है। श्रीमत बाबा ने दे दी कि दुनिया के लोग तो एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए फैशन करते हैं, बाबा कहते तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूं जहां नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार ही नहीं है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। कहां जाती है? उस मात पिता के पास बुद्धि चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खेवैया है, पतित पावन है अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं है। मैसेज व पैगाम होता है घर चलने का। तो बाबा कहते वो मैसेंजर पैगंबर मैसेज देते नहीं है, यह तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं, सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इस सृष्टि पर किसकी है? तो सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं, दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था, श्री कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि ये भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। लक्ष्मी नारायण या देवी देवता जैसे कृष्ण इस सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है, क्या कहती है? हम भगवान के बच्चे हैं तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। भगवान के बच्चे हैं, भगवान भगवती ये टाइटल होना चाहिए, परंतु कह नहीं सकते हैं। उन्हों को कहते हैं सतयुग के भगवान भगवती जो है, उनको भी भगवान भगवती नहीं कह सकते, उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। क्यों? दैवी गुणों से संपन्न है। यह सब बातें बाप पैर समझाते हैं, कितने बारीक से बारीक बातें कि भगवान भगवती नहीं कह सकते, उनको देवी देवताएं कहेंगे।
तो तुम बच्चों को भी नहीं कह सकते हैं। तो बाबा कहते, बाबा आकर के हर एक बात की गहराई हमें समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे, नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। आजकल मनुष्य को अपना अहंकार कितना है। बाबा कहते, आध्यात्मिकता की गहराई को मनुष्य नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अहंकार में है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु ये किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। भले ये कलयुगी दुनिया जहां पत्थर बुद्धि मनुष्य रहते तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी है, इसलिए इसको स्वर्ग समझते। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, यानी सुख सुविधा के साधन है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, ये सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं, पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, ये सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं, यानी एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनते थे कि कोई देखकर आशिक न हो जाए। इसको कहा ही जाता है पतित दुनिया। गाते भी है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, परंतु ये किसको कहना चाहिए, मात पिता किसको कहना चाहिए, मात पिता कौन है ये भी नहीं जानते हैं। मात पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा, बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी है बाबा, हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है, हम सो पावन थे अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता फिर 84 जन्म के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर वन पावन वह नंबर वन पतित, जैसे बाप वैसे बच्चे, ये खुद भी कहते हैं। ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं, मैं आता हूं इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में थे, अब है संगम, तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं, ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है, बाबा कहते बच्चों को ज्ञान तो मिला है। क्या ज्ञान मिला है? हम सो देवता थे फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो, यह तो बहुत सहज है। ये चक्र को जानना तो बाबा के बहुत सहज है, हमने 84 जन्म लिए। कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही है, राइट से लेकर के शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती है, हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, हम किसको समझा नहीं सकते हैं। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते, बाबा क्या करें।
बाबा से पूछते, बाबा क्या करे? यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। बाबा कहते, अगर मुख नहीं खुलता है तो यह भी कोई कर्मों का हिसाब किताब है। अब बाप कहते, मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूं। कर्म करना है यह तो तुम बच्चे जानते हो, थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सके, कर्मों की गहराई को समझ ना सके। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसको पता नहीं है। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे, विकर्म करेंगे तो नीचे गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, सदगति के लिए ही गुरु करते हैं। दुख की दुनिया में गुरु करते हैं सदगति प्राप्त करने के लिए, कि मुक्ति में ले जाए। वह है निर्वाण धाम, निर्वाण यानी वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थ ही कहते हैं, वह तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है, सब कुछ मिलकत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते। वानप्रस्थ किस रूप से कहा जाता है, किसी की बुद्धि में यह नहीं आता है कि हमको निर्वाण धाम जाना है, वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थ माना धीरे धीरे साइलेंस की ओर। तो निर्वाण धाम जाने के लिए वानप्रस्थ बनते हैं, अपने घर में जाना है। वह कोई घर नहीं समझते, निर्वाण धाम को कोई घर नहीं समझते। वह तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है, समाने का स्थान नहीं है, वो तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे, ये जैसे कि कायदा था। अभी भी ऐसे करते हैं, अभी भी कई लोग 60 साल के बाद वानप्रस्थ ले लेते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, बुलाते हैं बाबा को, हे पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। तीधाम ये है आत्माओं का घर। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है, वहां कौन रहते हैं, सतयुग में कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है, आदम शुमारी का भी किसको पता नहीं है। राम राज्य में आदम शुमारी कितनी होगी, आदम शुमारी यानी पॉपुलेशन कितना होगा, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते हैं। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता, इतनी रॉन्ग बातें हैं, बिल्कुल सूत ही मूंजा हुआ है, एकदम कंफ्यूज्ड हो गए हैं। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहां मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहां पतित दुनिया में पावन तो कोई रह ना सके। ये जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे नई दुनिया में, कैसे जाएंगे, ये सारी नॉलेज है। नॉलेज के आधार से वो दिव्यता को धारण करना है,
तब नई दुनिया में जाएंगे। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। नई नॉलेज है, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे हो, यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य है ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में है। हम सब संगम पर है, जा रहे हैं सतयुग में। बरोबर यह संगम युग है, वह तो है ही स्वर्ग। उनको संगम नहीं कहा जाता है, संगम है अभी। ये संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्माओ युग कहा जाता है। संगम युग को धर्माओ युग भी कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी है, वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं। सतयुग में धर्मात्मा, कलयुग में अधर्मी हो जाते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है, ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। सचमुच कई मूर्तियां तो इतनी सुंदर होती है जैसे चेहरे पर भी वो रूहानी भाव प्रकट हो जाते हैं। वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए। यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है, अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज दी है, परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेज फुल है। आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है, आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्कर लगाए कहां पहुंचे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे अब 84 जन्मों का चक्कर लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े, शरीर बिगर आत्माएं बोले कैसे, शरीर बिगर आत्मा कैसे बोले कैसे सुने। बाप कहते मैं निराकार हूं, मैं भी शरीर का आधार लेता हूं। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। ये बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं यह है ही पतित दुनिया, रावण का राज्य है ना, रावण पाप आत्मा बनाते हैं, ये और कोई भी नहीं जानते हैं। बल रावण की एफिजी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। सीता को रावण ले गया, ये किया, अशोक वाटिका में रख दिया। कितनी कथाएं बैठ लिखी है, जब बैठ कर सुनते हैं तो रो लेते हैं। कई भक्तों के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारे राम को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी आदि आदि। सुनाने वाले भी उस ढंग से सुनाते हैं तो जैसे आंखों से आंसू आ जाते हैं। बस सब है दंत कथाएं। बाबा हमको विकर्मा जीत बनाने के लिए समझाते हैं, कहते हैं मामेकम याद करो, कहां भी बुद्धि नहीं लगाओ। श
शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है, हमारा बाबा कितना मीठा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरी पॉइंट, ये वानप्रस्थ अवस्था है, इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है, पावन बनने का मैसेज सबको देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, अपने पुरुषार्थ से, सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजयी माला में आते हैं। पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सहन करने की व समाने की शक्ति को धारण करना है। आज का स्लोगन है, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। आज का व्यक्ति इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहजी एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कराता है, कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता, कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।